0: तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफरान नेमत से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया, यानी जहन्नम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बदतरीन जाय करार है। और अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज कर लिए ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो, अच्छा मजे कर लो, आखिरे कार तुम्हें पलट कर जाना दोजख ही में है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें न खरीदो फरोख्त होगी और न दोस्त नवाजी हो सकेगी। अल्लाह वही तो है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से तुम्हारी रिज्क रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि समंदर में उसके हुक्म से चले, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चले जा रहे हैं, और रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

0: दुश्मनी और शर छुपाए रखते हैं। ए अल्लाह हमें बसीरत अता फरमा और ज़ुकना बसीरा। बसीरत कहते हैं सही पहचान, दिल की समझ, सच और झूठ में फर्क कर पाना। ये बहुत बड़ी नेमत होती है। कैसी नेमत? इस बसीरत के जरिए हम दुश्मन और दोस्त में फर्क कर सकते हैं। ए अल्लाह हमें सालिहीन की माइयत नसीब फरमा, यानी हमारे इर्द गिर्द नेक लोगों की कसरत फरमा। नेक लोगों की सहबत आप सब जानते हैं कि ये तो दिल जिंदा करती है, ईमान बढ़ाती है, सीधे रास्ते और सिरात मुस्तकीम पर चलने में हमारे लिए आसानी का सबब बनती है। मजीद आगे ये भी कहा गया कि अल्लाह हमें सालिहीन ही में शामिल फरमा। सिर्फ उनकी सोहबत ही नहीं बल्कि हमें इसके साथ साथ सोहबत से मुस्तफीद होते हुए हमें इन सालिहीन ही में शामिल फरमा। क्योंकि सिर्फ अच्छों के साथ रहना तो काफी नहीं, खुद अच्छा बनना भी जरूरी है। समीन कराम हमें चाहिए कि हम दोस्त समझ सोच कर दोस्त बनाएं। एक बड़ी बात हमारे आज की दुआ में ये भी है कि सोहबत इंसान को बदल देती है। इस वजह से हम किसको अपना साहिब बनाएंगे, साथी बनाएंगे, ये कोई मामूली सी बात नहीं बल्कि इस सिलसिले में हमें काफ़ी मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह पड़ोस की अहमियत, पड़ोसी जो हमारे बाजू में रहते हैं इनका इख्तियार भी नहायत ज़रूरी है। साथ साथ मुनाफ़िकाना चेहरों से बचे रहना, अल्लाह से बसीरत मांगना, नेक लोगों के करीब रहना, ये सब ऐसे निकात हैं जो हमारे लिए दीन पर चलने को आसान बना देते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें। राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर

0: या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवंस का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवंस की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है, ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो, जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं, तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं, जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।

हर हाल में अल्लाह ही से मदद चाहो सबर और नमाज से। लाशुबा सबर और नमाज भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो अल्लाह के आगे आजिज़ इख्तियार करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब के रूबरू हाजिर होना है और बिलाशुबा उसी की तरफ पलट कर जाना है। समय किराम आगे अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, या बनी इस्राइल اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين।

और जब हमने उनसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और उसकी पैदावार में से जहां से जी चाहे सैर होकर खाओ, और जब उसके दरवाजे से गुजरो तो सर झुकाए हुए गुजरना और जबानों पर हत्ता हत्ता यानी हमारे गुनाह माफ हो, हमारे गुनाह माफ हो, इस तरह के अल्फाज जारी वसारी रहे, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और खुलूस कल्ब से नेकी करने वालों को मजीद फजल करम से नवाजेंगे। मगर जो बात कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर कुछ से कुछ कर दिया, तो हमने उन जालिमों पर उनकी नाफरमानियों की बिना पर आसमान से अजाब नाजिल किया। तो सामिने किराम, यहाँ जो बात है कि कहते जाओ हत्ता नग़फिर लकुम खताया, उनसे कहा गया था कि भाई तुम तौबा तौबा हत्ता हत्ता इस तरह कहते जाओ, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे। तो बनी इसराइल को तवील जो है ना एक अरसे के बाद जब उनकी ख्वाहिश आरज़ू के तहत अरीहा के शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़राए नसीहत कहा कि शहर में आबाद होने के बाद पहले की तरह सरकशी और नाफरमानी की ज़िंदगी बसर न करना, बल्कि हमेशा सलामती व मग़फ़िरत और इनामत व तौबा का शेवा इख्तियार करते रहना, ताकि शहरी ज़िंदगी का आगाज़ तुम्हारी दुनियावी और रूहानी कामरानियों का आईनादार बन सके। तहत्ता अरबी लफ्ज़ है और बनी इसराइल की ज़बान इब्रानी थी। मालूम होता है कि इब्रानी का जो लफ्ज़ उस वक्त बोला गया उसके माना अरबी में तौबा व इनाबत के इजहार ही के होंगे। तो यहाँ ये है कि भाई मकसद इस आयत में कि शहर में दाखिले के वक्त तुम्हारी ज़बान पर बख्शिश व इनाबत और तौबा व इस्तग़फ़ार के कलिमात जारी हों, जिस तरह जो है ना इस पर कहा गया कि हुक्म ये था कि जाबिर व ज़ालिम फातिहों की तरह अकड़ते हुए न घुसना, बल्कि खुदा तरसों की तरह जो है ना मुनकसराना शान हम इसे कह सकते हैं इस तरह दाखिल होना, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल हुए। इसी तरह सामने कराम हत्ता के दो मतलब हो सकते हैं कि खुदा से अपनी खताओं की माफ़ी मांगते हुए जाना, दूसरी

0: रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स ऑन FM 107 दिल से देसी. आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Doha wala Kabir and a lot of messages are coming in. Abhi se log keh rahe hain ki kahani mujhe bhej do. Are sun lo live.

हो सकता है कि ना भेज पाऊं, फिर क्या होगा, फिर आप मेरी गर्दन के पीछे भागेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आज की कहानी लाइव सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं दो तीन मैसेज पढ़ दूं। मोहम्मद दिलशाद फ्रॉम दिल्ली ओखला जामी आ रहे, क्या बात है, दिल्ली वालों सारे के सारे इधर ही आ गए आज, माशाल्लाह। एक मैसेज और है, यू आर अमेजिंगली एंटरटेनिंग एंड वंडरफुल इन सम डिफिकल्ट मॉर्निंग्स टाइम, यू मेक इट इजी एंड लाइटर फॉर योर ऑडियंस, थैंक्स टू ऑल योर एफर्ट्स इंक्लूडिंग द स्टोरी, दैट्स सच अ स्वीट स्वीट कॉमेंट माजिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे ब्रो। मतलब आज कुछ बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए मेरे पास, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। मैं ऑडियंस वॉडियंस मानते नहीं आपको, आप सब मेरे घर वाले हैं, मजा आता है भाई, इसी में फील है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही है ना बस। ओके सो आज गाने शुरू करते हैं। सबसे पहले एक किधर गई रिकॉर्डिंग, मैं भी कर लेता हूँ ना इन केस आपको, फिर आप मुझे पकड़ेंगे तो इससे पहले रिकॉर्डिंग। सो एक डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा एकदम रियल केस है ऑफकोर्स, एंड साथ ही ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो अगर आप इसे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नाम थोड़े से इधर के उधर है, मतलब इधर के उधर है, कहने का मतलब ये कि दूसरी लैंग्वेज है तो नाम याद करने में दिक्कत आ सकती है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं धीरे धीरे पढ़ूं। ओके रेडी, लेट्स गो। तो मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे शुरू करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं साल 2008 में। ओके ईयर 2008, 13 अक्टूबर, और इस दिन इस तारीख को एक 43 साल की 43-year-old एक औरत जो थी जिनका नाम था हुआ, एक्चुअली उनका नाम ही था हुआ, ताइवनीज नाम है ये, हुआ अपनी कार में थी और ये गाड़ी जो थी पार्क्ड थी, सो चल नहीं रही थी, चलती हुई गाड़ी नहीं थी, एक जगह पे इन्होंने गाड़ी अपनी पार्क की हुई थी, और जिस जगह इनकी गाड़ी रुकी हुई थी ये जगह बहुत ही डार्क, बहुत ही डिसोलेटेड, दुनिया से बिल्कुल अलग जुदा सी जगह थी ये, और वक्त भी ऐसा हो रहा था कि इस वक्त कोई आसपास था भी नहीं, और इस वक्त ये थी ऑन हाईवे 61 और ये न्यू टेपी सिटी ताइवान की जगह थी, तो अगर आप इस पे इंटरनेट पे देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये हाईवे कितना लोनली हो सकता है, एंड बैक इन द डे इन 2008 वाज मच मोर। खैर हुआ जो थी वो ड्राइवर साइड विंडो पे जो टेका लगा के बैठते हैं वैसे बिल्कुल बैठी हुई थी और बहुत देर तक बैठी रही, उसके बाद उन्होंने विंडो की सीट को पीछे किया और उसके बाद अपनी विंडोज को नीचे किया, गाड़ी के इंजन को ऑफ कर दिया और थोड़ी देर बस ऐसे ही हवा लेती रहेगी, चलो ठीक है, क्योंकि जिंदगी उनकी बहुत ही प्रेशराइजिंग चल रही थी, बहुत ज्यादा, घर में 3 बच्चे, बहुत सारे काम काज, तो ऐसा होता ना खुद को एक मोमेंट देने के लिए कि यार अभी मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, उस तरीके के मोमेंट में थी, उस तरीके के जोन में थी, शी वॉज जस्ट इंजॉइंग द साइलेंस। फिर वो एकदम से आगे बढ़ी, अपनी सीट को वापस आगे खींचा और डैशबोर्ड के पास से एक कागज उठाया, कागज को खोला और कागज को फिर खोलते के साथ ही थोड़ी देर तक देखा, उस कागज को फाड़ा, मरोड़ा और खिड़की से बाहर फेंका, पर उसी वक्त क्योंकि हवा के झोंके भी आ रहे थे तो उन हवा के झोंकों की वजह से उस कागज के जिसको उन्होंने फाड़ा उसके कुछ टुकड़े ड्राइवर सीट पे आके गिरे। जहां तक क्लियर है, अब मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको। कुछ देर बाद अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग, रात के सुबह के 3 बजे जैसे बोलना चाहे, एक कोस्टल गार्ड ऑफिसर थे वो ड्राइव करते हुए जा रहे थे ऑन द सेम हाईवे, तो वो भी हाईवे 61 पर ही थे, इस वक्त तो अपने नाइट टाइम जो डेली पेट्रोल होता है वो करने के लिए निकले थे। वो एक अंडरपास से गुजरे, उसके बाद वो एक ऐसे एरिया में आए जहां पर स्ट्रीट लाइट्स काफी कम थी, वहां उनकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी वो उससे जितना देख सकते थे बस उतना ही देख पा रहे थे, पर उन्हें कुछ ऑड सा नजर आया, उन्हें दिखा कि एक ग्रे सिडान गाड़ी जो है वो वहां पर है, आधी सड़क पर है आधी ऑफ रोड है, तो कोस्टल गार्ड होने के नाते उनको लगा कि उन्हें पता तो करना चाहिए कि क्या चीज है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को इस ग्रे सिडान के पीछे लगाया, गाड़ी से उतरे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उन्होंने देखा कि साफ नजर आ रहा है कि सिडान गाड़ी जो है उसकी लाइट्स बंद है, उसके दोनों इंजन भी बंद है। पहले उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई गाड़ी को ऐसी अबेंडेंट करके छोड़ गया हो, छोड़ के चला जाते हैं लोग, गया होगा, पर उन्होंने फिर नोटिस करना शुरू किया कि ड्राइवर साइड विंडो की जो खिड़की है वो खुली हुई है। अब माइंड यू इट इज 3 AM इन द मॉर्निंग, अभी सूरज भी निकला नहीं है, इट वॉज क्वाइट डार्क, बहुत अंधेरा था, तो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, पर इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने कुछ नोटिस किया है, कोई शायद कोई औरत बैठी हुई है इस गाड़ी के अंदर,
उन्होंने अपनी जेब से जो उनका पाउच होता है साइड के वहां से निकाले एक फ्लैशलाइट और फ्लैशलाइट जला के वो चेक कर रहे थे कि कौन है। उन्होंने फ्लैशलाइट जैसे ही इस औरत के चेहरे पे लगाई वो एकदम से पीछे हटे इन हॉरर। जो उन्हें पहले लगा था कि शायद कोई औरत गाड़ी में सो रही है, शी वॉज नॉट अस्लीप, उसके चेहरे पे और उसके चेस्ट की तरफ ब्लड ही ब्लड था। कुछ मिनटों के बाद वहां पर एक पुलिस ऑफिसर पहुंचे जिनका नाम था गुओ हुवेन। तो गुओ साहब जो थे, गुओ साहब एक पुलिस ऑफिसर थे और काफी वक्त से पुलिस डिपार्टमेंट में थे। ही वाज सच अ ग्रेट ऑफिसर। तो अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंचे और साथ में उनके साथ बहुत सारे ईएमटीज वाले थे, पैरामेडिक्स जो वहां पर पहुंचे, और उन्होंने देखते के साथ ही जिसका सबको ऑलरेडी यकीन था कि ऐसा ही है, वैसे ही ईएमटी वालों ने कहा कि शी इज ऑलरेडी डेड एंड वी कांट डू एनीथिंग, मतलब वो नहीं बची है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो नोटिस किया गया वो ये नोटिस किया गया ईएमटी वालों की तरफ से कि जो लेफ्ट कान है इस औरत का, लेफ्ट कान के ठीक नीचे एक छोटा सा गोल वूंड है, निशान है, एक गड्ढा सा है जो देखने में छोटा लग रहा है बट इट्स लाइक वेरी डीप इन द नेक। और उसे आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि ये बुलेट वूंड है, मतलब कि गोली चलाई गई है। तो ऑफिसर गोवा जो थे उन्होंने फॉरन क्राइम सीन से सबको दूर किया, हटो सब पीछे, हटो सब पीछे हटो, और उन्होंने क्राइम टेप जो है वहां पे लगाया, क्राइम सीन का जो येलो टेप होता है, और उस एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया। और फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। उन्होंने देखा कि जो बुलेट केसिंग है वो जमीन पे गिरी हुई थी, जो गोली चलाने के बाद केसिंग गिरती है वो वहां पर थी ग्राउंड के बिल्कुल पास में। और अंदर कार के बहुत ही छोटे पतले स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, शाइनी मेटल जो होता है कॉपर जैसा, वो भी था जो गोली में से निकलता है, मगर वहां पे आसपास कोई भी गन नहीं थी। ऑफिसर्स और उनके साथ, मतलब ऑफिसर्स और ऑफिसर गो, इन्होंने रियलाइज किया कि ठीक है अभी ये क्लियर हो रहा है कि ये एक मर्डर केस है। पर जैसे सब चीजें गो नोटिस कर रहे थे उनको उतना ही सब कुछ वियर्ड लग रहा था। ऑफिसर गो ने गाड़ी को देखा, जगह को देखा, सिचुएशन को देखा, सब कुछ देखा, बट इट वॉज ऑल वेरी वियर्ड। पहले अजीब चीज ये थी कि कोई गाड़ी के स्किड मार्क्स नहीं थे, मतलब गाड़ी आधी रोड पे थी और आधी ऑफ रोडिंग पे थी, तो ऐसा लग नहीं रहा कि गाड़ी जो है आई, उसने स्किड मारी और फिसल के आधी इस तरफ चली गई। बड़ा अजीब है, कोई स्किड मार्क्स नहीं थे। एंड ऐसा लग रहा है कि इस औरत ने गाड़ी को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में चलाया और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में गाड़ी को यहां पे रोक के वो खड़ी हुई, विच वॉज वेरी ऑड। और जो विंडोज थी गाड़ी की, उसमें ड्राइवर साइड वाली जो विंडो होती, खिड़की होती है, वो नीचे हुई हुई थी, यानी वो बहुत पहले से अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके चला रही होगी, शुरू से ही चल रही होगी ना, तभी तो ये पहले से खुला हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं था, किसी भी किस्म का ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई जबरदस्ती हुई है, कोई ऐसा लग रहा है कि इसने स्ट्रगल किया हो इस औरत से, किसी ने करवाया हो स्ट्रगल, नहीं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसके हाथ में फोन भी था, फोन तो गिर जाना चाहिए था अगर वो स्ट्रगल कर रही थी। शी हैड द फोन इन हर हैंड एंड सीट बेल्ट तक खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई थी, तो यह भी बड़ा ही क्लियर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जो फाइनल मोमेंट्स थे कि जब वो मरी, वो फाइनल मोमेंट्स उसके काफी काम डाउन, काफी सुकून वाले थे, लाइक उसको कोई आइडिया नहीं था कि कोई उसको मारने वाला है। तो ऑफिसर गो ने एक थ्योरी बनाई कि जिसने भी इसे मारा है वो जरूर इस औरत को बहुत करीबी से जानता था और वो कोई भरोसेमंद शख्स ही रहा होगा। ऑफिसर गो अब आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि ये औरत कौन है। उन्होंने लाइसेंस प्लेट नंबर को नोट किया और अपने सिस्टम में रन करने जा रहे थे चेक करने के लिए कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। लेकिन इतने में एक दूसरा ऑफिसर भागता हुआ आया ऑफिसर गो की तरफ, बोले सर सर सर सर सर सर कुछ अजीब सी चीज मिली सर गाड़ी में से, आई डोंट नो ये क्राइम सीन से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं सर। तो ऑफिसर गो ने बोला हाँ टेल मी व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर साइड की तरफ चार छोटे टुकड़े मिले हैं कागज के और हर हिस्से पे वर्ड्स और नंबर्स लिखे हुए हैं, पर क्लियर नहीं हो रहा कि उसका कोई सेंस बनता है नहीं बनता। उस पर लिखा था 65 दालियो जी एंड डा, एक पन्ने पे 65, दूसरे पे दालियो, उस पे जी और चौथे पे डा।
अब इसके कुछ खास मतलब तो नहीं है, बहुत कोशिश करी हिसाब बिठाने की कि वर्ड को इधर का उधर जंबल फंबल करें कि कुछ बन जाए, लेकिन कुछ भी सेंस नहीं बन रहा था, कुछ मैच नहीं कर रहा था। ऑफिसर गो ने बोला छोड़ो ये कुछ कूड़ा ही है मेरे हिसाब से, लेकिन एक काम करो प्रिकॉशन के लिए इसे यू नो क्राइम एविडेंस जो बैग है हमारा उसमें डाल दो, लेट इट बी, रखो, पर मेरे हिसाब से कूड़ा ही है। चंद घंटे बीतने के बाद ऑफिसर गो और उनके साथ उनके मेंबर्स, उनके पुलिस ऑफिसर्स, ये लोग एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर पहुंचे न्यू टेपी सिटी ताइवान में। ये जगह जो थी जहां पर ऑफिसर पहुंचे थे ये 64 किलोमीटर दूर थी, अराउंड 65 किलोमीटर दूर क्राइम सीन से जहां पे उन्हें वो लेडी मिली थी, वो औरत की बॉडी मिली थी इन अ ग्रे सेडान। अब यहां पर ऑफिसर गो एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट की तरफ गए, उन्होंने वहां पे खटखटाया और दरवाजा खटखटाते ही एक मिडिल एज्ड आदमी ने दरवाजा खोला जो कि बड़ा ही सरप्राइज दिख रहा था पुलिस वालों को देखकर। ऑफिसर ने पूछा सर आपका नाम बताइए प्लीज, और नाम उसने बताया, उसने बोला मेरा नाम शू बी चंग। तो शू बी चंग जो था उसने अपना नाम बताया और फिर सोचने लगा कि पुलिस यहां पर क्या करे, वेरी वेरी सरप्राइज। ऐसा इसलिए हुआ, यहां पर पुलिस वाले क्यों पहुंचे ये भी बता दूं आपको। तो ऑफिसर गो ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो बॉडी मिली है ग्रे सेडान में वो 43 ईयर ओल्ड 43 साल की एक औरत की है, और वो उसका कोई क्लोज रिलेशनशिप है तो इस बंदे से है जिसके अभी अपार्टमेंट में ये खड़े हुए हैं। अपार्टमेंट में पता लगा कि 3 बच्चे भी हैं, और साथ में यही पता लगा कि जिसने दरवाजा खोला है ये उसका एक्स हस्बैंड है, मतलब कि इनके बीच में डिवोर्स हो चुका है लेकिन ये दोनों फिर भी साथ में रहते हैं, और इसका नाम था शू बी चंग। बताया गया और पता भी लगा कि दोनों के बीच में डिवोर्स होने के बाद भी, जो कि 5 साल पहले हो चुका था, फिर भी ये दोनों की मोहब्बत खत्म नहीं हुई, एंड अल्टीमेटली इन दोनों ने डिसाइड किया कि साथ में रहेंगे, बच्चों के लिए रहेंगे, को पेरेंटिंग करेंगे साथ में। सो एक्स हस्बैंड होने के लिहाज से शू बी चंग सबसे पहला सस्पेक्ट था, सबसे पहला शक जो पुलिस वालों का गया वो उसी बंदे पे गया। पर अभी एकदम से सब कुछ बोल नहीं सकते, तो ऑफिसर गो जो थे वो अपनी बात करने के तरीके में बड़ी संभल की बात कर रहे थे, बड़ी केयरफुल थे। गो ने अपनी टीम को इंट्रोड्यूस किया, बोला हाय सर दिस इज ऑफिसर गो, दिस माय टीम, दिस माय मेंबर्स, और फिर उन्होंने बोला कि सर आपकी अपनी पार्टनर से कब बात हुई थी लास्ट टाइम, आई मीन योर एक्स वाइफ, उससे कब बात हुई थी आपकी। तो शू बी चंग ने बोला कि सर पिछली बार जो मेरी बात हुई हमारी रात में बात हुई है सर, पर हाँ सर वो जो बात हुई काफी वेयर्ड थी। तो शू बी चंग ने जब पुलिस वालों को ये बताया तो पुलिस वालों ने बोला वेयर्ड थी सर, क्या आप बताएंगे कि वेयर्ड क्या थी। तो शू बी चंग ने बताना शुरू किया, बोला सर कल रात मुझे ऐसे याद तो नहीं पर तकरीबन 9 बजे के आसपास हुआ जो थी वो मिलने जाने वाली थी, एक पॉन शॉप है ना सर, तो वहाँ पे वो एंटीक सामानों की दुकान है, वहाँ पे सर वो जाने वाली थी, तो वो शहर से दूर रहता है, हुआ के पास जो है थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ था सर, बहुत कर्जा था उसके ऊपर ना, तो रीपेमेंट प्लान के लिए वो वहाँ पर जा रही थी। 9:30 बजे के करीब सर जब वो रस्ते में थी तो उसने मुझे कॉल भी करी। तो ऑफिसर गो ने बोला तुम्हें कॉल करी बीच में रस्ते में, फिर क्या हुआ। तो बोले सर उसने जब कॉल करी सर तो वो हाईवे 61 पे थी, और बात करते करते सर वो एकदम से मुझसे बोली कि शू मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई गाड़ी पीछा कर रही है। पुलिस वाले ने बोला अच्छा फिर तुमने क्या किया जब तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें यह बताया। तो शू ने बोला सर उसने बोला कि अब पीछे गाड़ी शायद मुझे लग रहा है पीछा कर रही, तो मैंने उससे वही बोला, मैंने बोला अरे तुम्हें वहम हो रहा है, तुम सेम रूट पर हो तो और भी तो गाड़ी सेम रूट पर हो सकती है, जस्ट रिलैक्स, मैंने ये बोला सर। पर फिर उसने भी अग्री किया कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, फिर फ़ोन काट दिया सर। उसके बाद मैंने उससे कई मरतबा कॉल करी लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई सर, फिर बात नहीं हुई, बस इतनी बात हुई। और हाँ सर मैंने फिर 10 मरतबा और भी कॉल करी आधे घंटे के बाद, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं पता सर वो कहाँ गई है, तो अब मैं कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आया। ऑफिसर गो को समझ में नहीं आया ये आदमी जो ये कहानी बता रहा है ये क्या कहानी है, एंड ही वाज लाइक अच्छा ओके, क्योंकि उनके हेड में ऑफिसर गो के दिमाग में ये चल रहा था कि कैसा आदमी है यार ये, बीवी ने बोला एक्स वाइफ ये, चलो ठीक है उसके पीछे गाड़ी
उसे लग रहा है कि कोई पीछा कर रही है, वो बता रही है कोई पीछा कर रही है, और ये कह रहा है कि हो सकता है उस सेम रूट पे गाड़ी होगी, तो क्या ही बात हो गई, और फोन काटने के बाद भी ये कॉल ही कर रहा है, इसे परवाह ही नहीं है, लाइक एवरीथिंग विल बी फाइन। अरे वो मतलब इसके तीन बच्चों की माँ है, एंड ही इज रिएक्टिंग एज इफ इट्स वेरी बिजार। मतलब ये रिएक्शन हजम करना मुश्किल हो रहा था ऑफिसर गुओ के लिए। ऑफिसर गुआ जो थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे शू को और नोटिस कर रहे थे कि शू बी चांग अभी क्या बोलेगा। अब उन्होंने खबर को ब्रेक किया, तो ऑफिसर गुआ जो थे उन्होंने खबर को ब्रेक करते हुए बोला कि मिस्टर शू बी चांग, हम आपको बताना चाहते हैं आपकी बीवी की बॉडी जो है वो सुबह सुबह ग्रे सेडान में मिली है सर, ऑन द हाईवे 16 साइडवे पे। गुआ का रिएक्शन देखना, गुआ ऑफिसर को रिएक्शन देखना था। जब उन्होंने देखा शू बी चांग एकदम आंखें बड़ी हो गई, डरा हुआ, एक शॉकिंग जेन्युइन रिएक्शन, क्या बात कर रहे हैं सर, अरे सर मत बोलिए सर। पर उसका रिएक्शन ऐसा था ना कि रीड करना मुश्किल था कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये रिएक्शन जो है उसका ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि ये अजीब आदमी है। इसकी बीवी जो है वो बता रही है कि वो मुश्किल में हो सकती है, वो कॉल नहीं उठा रही, तो ये कहता है हाँ ठीक है ओके व्हाटएवर आ जाएगी, ये कैसा रिएक्शन है। लाइक इसको टेक्निकली पुलिस को बताना चाहिए था, उसने बताया क्यों नहीं, मगर अभी कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय शक के। तो ऑफिसर गोवा जो थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड किया कि जो भी शू बी चांग ने उन्हें बताया है वो उसी कहानी को फॉलो अप करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में ढूंढेंगे कि क्या फ्लॉ है या नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑफिसर गोवा ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मालिक से कहा कि मुझे सारी सर्विलेंस फुटेज चाहिए, और वहां की सारी सर्विलेंस फुटेज जो थी वो निकाली गई, पर काम की नहीं थी, जो काम की थी वो एक लिफ्ट की थी जो एलिवेटर है, तो जो ओनर मैनेजर इस बिल्डिंग का था अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का, उसने फुटेज रिकवर करी, तो एलिवेटर के अंदर की जो जो कैमराज होते हैं लिफ्ट के वो वाले रिकवर करके दिए, तो उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर किया गया। समझ में ये आया कि 8:45 पे रात को हुआ जो थी वो लिफ्ट में थी और वो अपार्टमेंट से बाहर निकली जैसे बताया गया था, और इस वक्त कुछ बहुत ही अजीब सा उन्हें नजर आया उस कैमरे में। पहली चीज उन्होंने देखी कि हाँ हुआ लिफ्ट में है, अपार्टमेंट से जा भी रही है, लेकिन उन्हें साथ में शू बी चंग भी उसी एलिवेटर में नजर आया, यानी एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ साथ में थे। उसमें नजर आया कि शू बी चंग अपनी वाइफ की माथे को चूम रहा है और उसके बाद जो है वो उसे गले से लगाता है, और बहुत देर तक जब तक लिफ्ट जो है एलिवेटर जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर तक नहीं आ जाती और वहां से निकल नहीं जाती तब तक। अब नॉर्मल सिचुएशन में इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, कपल है ठीक है, मगर ये दोनों एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ थे, एंड ऑल्सो दोनों क्योंकि अलग हो चुके हैं तो देर वॉज नो रोमेंटिक कनेक्शन बिटवीन देम। ऑल्सो ताइवानीज कल्चर में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव जैसे हमारे भी कल्चर में है वो प्रोहिबिटेड है, ममनू है, मतलब इट कैन नॉट हैपन, होता ही नहीं है, और ओल्डर जनरेशन के लिए तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। तो ऑफिसर गुआ ने एक थ्योरी बनाई, उन्हें ये समझ में आ रहा था कि शू चंग को पहले से ये पता था कि उसकी एक्स वाइफ के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, वो इसीलिए इतना लाड दिखा रहा था, और जैसे जैसे शू बी चंग ने बताया वैसे ही सब कुछ फॉलो करने के बाद, खंगालने के बाद धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम्स ऑफिसर गुआ को नजर आ रही थी। उसने जिस शॉप के बारे में बताया जहां पर हुआ मिलने के लिए निकली थी, उस शॉप को ढूंढा गया जो कि असल में एग्जिस्ट करती है, तो शॉप तो कम से कम थी, लेकिन वहां के जो शॉप ओनर था उसने बताया कि सर पैसे उधार तो थे हुआ के, लेकिन हमारा मिलने का कोई सी नहीं था, कोई मीटिंग डिसाइडेड नहीं थी सर। अब बाकी कैमरास को देखने की जरूरत थी, तो बाकी जो कैमरास थे वो भी देखे गए। उसमें दिखा कि जहां कार पाई गई वहीं का कैमरा है बस, जो काम नहीं कर रहा। बाकी हुआ कि ड्राइविंग के पूरे पूरे वीडियोस मिले, मतलब बाकी जो हाईवे पे कैमरास थे वो बढ़िया काम कर रहे थे, तो उसमें नजर आ रहा है कि वो ड्राइव करती हुई जा रही है, हाईवे 61 पर है, और फिर ऐसी जगह पे मुड़ी जहां पे कैमरास की पहुंच नहीं है।
जिस टाइम शू ने बताया कि उसकी वाइफ एक्स

है, ज्यादा चांसेस है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसके बाद अपार्टमेंट के आसपास के तमाम कैमरास और बहुत से सीसीटीवी फुटेज ऑफिसर गोवा ने लिए और फिर शू बी चंग के सेलफोन के जीपीएस रिकॉर्ड्स को चेक करने लगे कि उस रात कहां कहां उसका सेलफोन गया, वो खुद कहां गया, ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। उस रात की फुटेज और रिपोर्ट सबको सामने आया तो मामला बड़ा अजीब था। यह नजर आया कि पूरी रात अपार्टमेंट में ही था वो शू बी चंग, वो घर से निकला ही नहीं। मतलब क्लियरली इम्पॉसिबल है कि वो बाहर निकला और उसने अपनी एक्स वाइफ को मार दिया, तो ये तो थ्योरी गलत हो गई। पर हां, मतलब ये भी हो सकता है कि शू बी चंग ने किसी को हायर किया हो, सुपारी दी हो और उसका इन्वॉल्वमेंट पक्का है। पर कुछ सवाल बड़े मेजर थे। पहली बात कि शू बी चंग आखिर अपनी एक्स वाइफ हुआ को मारने क्यों जाता है, और हुआ आराम से कार पार्क करके शीशे डाउन करके हमला करने वाले का इंतजार क्यों करेगी? इट डजंट मेक सेंस। ऑफिसर गोवा ने बोला, ऐसा तो नहीं कि किसी को मारने के लिए इस बंदे ने बोला, कोई स्ट्रेंजर, कोई जानने वाला स्ट्रेंजर। खैर, इस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते करते करते कुछ महीने बीत गए और फिर ऑफिसर गोवा और उनकी टीम एक साथ थी और एक हाई राइज बिल्डिंग में बैठे हुए थे ये लोग, न्यू चेबी ताइवानीज में, ताइवान में। और सामने उनकी बहुत बड़ी सी डेस्क थी, बहुत बड़ी सी टेबल, और डेस्क के उस तरफ एक आदमी बैठा हुआ था जो इस कंपनी में काम करता था। ये कोई और नहीं, ये था वो औरत जो मारी गई, हुआ का भाई। दरअसल ऑफिसर सब कुछ जानना चाहते थे। उन्होंने कुछ महीनों से लगातार सेल फोन कॉन्टेक्ट्स, जितने भी हुआ के फोन में नंबर थे, सबको चेक किया, सबके कनेक्शंस को, कौन क्या रिश्ता रखता है, पर अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। पर जितना भी पता लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। पुलिस वालों को यह पता लगा कि हुआ जो है, उसकी उधारी सिर्फ एक दुकान पे नहीं थी, उसकी उधारी अलग अलग बैंक्स पे भी थी, दोस्तों पे थी, खानदान वालों पे थी और कई बहुत ही ब्लैक मार्केट्स वाले सरगनाहों पर भी उसकी उधारी थी, जो बहुत डेंजर थे। कुल मिलाकर हुआ पे $500,000 की उधारी हो चुकी थी, $500,000 की उधारी। इसलिए ये एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ का रिश्ता थोड़ा और क्लियर हो गया नजरों में। अब ये समझ में आया कि दोनों ने डिवोर्स क्यों लिया होगा। दरअसल अगर दोनों पति पत्नी साथ में रहते तो इतनी उधारी की वजह से हुआ का क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा था और फाइनेंस बिगड़ रहे थे, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों अलग हो जाते हैं मगर दुनिया की नजरों में, जिसकी वजह से क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हुआ का खराब होगा और शू बी चंग का खराब नहीं होगा। तो यानी कि ये दोनों एक साथ ही हैं, बस ऑन पेपर्स इन्होंने डिवोर्स ले लिया था ताकि इनका फाइनेंशियल जो पिक्चर है इनकी वो ना बिगड़े। तो ऑफिसर गोवा जो थे, अब उन्हें अचानक से शू बी चंग शरीफ आदमी लग रहा था जो पहले सस्पेक्ट की लिस्ट में था, पर अभी वो हुआ के भाई के सामने बैठे थे और उम्मीद थी कि शायद बातों बातों में कुछ मिल जाए। उन्होंने उसके भाई से बातचीत करना शुरू करी और ऑफिसर गोवा ने पूछा कि देखिए, आप जितना भी जानते हैं ना सब बताइए, आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना टाइम ले रहा हूं आपका, लेकिन प्लीज मुझे कुछ बताएंगे तो हो सकता है कि हमारी कुछ मदद हो पाए और आपकी बहन का जो केस है हम वो सॉल्व कर सके। तो भाई ने कहा ओके, मैं सब बताऊंगा, और उसने बोलना शुरू किया। पर वो जो भी बोल रहा था वो ऑलरेडी पुलिस जानती थी, ऑफिसर गोवा जो थे उसकी बात सुन के बोर हो रहे थे, तो इसलिए गोवा जो थे वो सुनते सुनते अपनी नजरों को घुमा रहे थे। इस तरफ भाई बोल रहा है और ऑफिसर गोवा जो है वो अपने राइट टांग पे लेफ्ट टांग रखे हुए और इधर उधर नजरें घुमा रहे हैं, पूरे कमरे को स्कैन कर रहे थे कि ये बोर कर रहा है आदमी, मैं इधर ही देख लूं। नजरें घुमाते घुमाते घुमाते घुमाते उनकी नजर एक जगह रुकी और ये जगह जहां रुकी वो एक बुक शेल्फ था। ये बुक शेल्फ हुआ के भाई के ठीक पीछे था, मतलब वो बात कर रहा है उसके पीछे एक बुक शेल्फ था, वहां पे ऑफिसर गोवा की नजरें अटक गई। वहां पे उन्होंने देखा कि किताब के अंदर एक कागज का टुकड़ा है जो थोड़ा सा भार आ रहा है, इतना भार आ रहा है कि समझ में आ रहा है उस पर क्या हो सकता है। ठीक से तो नहीं पता चल रहा था, पर उस पर जो लिखा हुआ था वो काफी जाना पहचाना सा लग रहा था, बहुत जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो इस हैंडराइटिंग को कहीं कहीं देख चुके हैं।

गुआ का भाई बोलता रहा, लेकिन इतने में ऑफिसर गुआ जो थे वो उठे और चलते चलते चलते चलते इस भाई के पीछे वाले बुक शेल्फ की तरफ गए। वहां से उन्होंने ये कागज उस किताब में से खींचा बाहर, और जब उन्होंने इसको देखा तो उनका दिल जैसे बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऑफिसर गुआ को अंदाजा हो रहा था कि हाँ, वो इस राइटिंग को अच्छे से जानते हैं। दरअसल ये वही राइटिंग है जो उन्होंने ड्राइवर सीट पे देखी थी, ड्राइवर साइड में देखी थी, ये वही राइटिंग है। पर उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त ये रैंडम टुकड़े थे कागज के, रैंडम चीजें लिखी हुई थी, और ऑफिसर गुआ ने खुद उसे कूड़ा कह दिया था, इससे कूड़ा है, किसी काम का नहीं है। पर अभी वही कागज जुड़ा हुआ ऊपर से नीचे तक, अभी चार टुकड़ों में नहीं, पूरी एक कॉपी के शक्ल में उनके सामने था। और जब ये पूरी शक्ल में सामने था तो ऑफिसर गुआ को समझ में आया कि एक्चुअली में क्या है ये, क्योंकि चार टुकड़ों में कागज नहीं पल्ले पड़ रहा था। बट नाउ ही कुड सी कि ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का पूरा सेट है, मतलब इस कागज पे बेसिकली लोकेशंस मार्क्ड है, इसमें डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। और उन्होंने फिर इस डायरेक्शन को देखा एंड ही रियलाइज कि कागज पे जो लोकेशन आ रही है, ये लोकेशन ठीक उसी जगह जाके रुकती है जहां पे उन्हें वो सिल्वर सेडान मिली, और सिल्वर सेडान में हुआ मिली। इसके बाद पुलिस को समझ में आया कि दरअसल मास्टरमाइंड कौन है और कौन जिम्मेदार है। ये केस जितना समझ में आ रहा था उससे कहीं ज्यादा डार्क था, कहीं ज्यादा आउट ऑफ देयर माइंड था, कोई सोच भी नहीं सकता था वैसा केस था ये। तो सब कुछ कैसे शुरू हुआ ये समझिएगा, सब कुछ कुछ महीने पहले शुरू हुआ कि मरने से पहले। तीन लोग मिले आपस में जो हुआ को मरा हुआ देखना चाहते थे। एक था हुआ का भाई, एक था हुआ का एक्स हस्बैंड, और तीसरा एक मास्टरमाइंड जिसने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया। प्लान तीनों का ये था कि एक हिटमैन हायर करेंगे, और प्लान ये था कि हाईवे के साइड पे शूट करेंगे। एक दिन डिसाइड हुआ, एक तारीख डिसाइड हुई, और मारने का तरीका डिसाइड हुआ, और वो जगह डिसाइड हुई जो एम्प्टी रहती है, जहां पर कैमराज की नजर नहीं पहुंचती। तो हाँ, लिफ्ट में जब वो अपनी वाइफ को गले लगा रहा था, इतनी देर तक लगाए रखा, वो जानता था शूबी चंग के क्या होने वाला है। और जैसे ही वहां से निकली हुआ बिल्डिंग से, शूबी चंग ने सीधा हुआ के भाई को कॉल करी, और हुआ के भाई ने फिर एक हिटमैन को कॉल करी जिसे सुपारी देनी थी। हिटमैन ने डायरेक्शन जो कागज पे लिखे हुए थे इनको फॉलो किया, और हुआ के पीछे पीछे पीछे पीछे लग गया। वही डायरेक्शंस जो गुआ को मिले इस कागज पे। हिटमैन लोकेशन में पहुंचा, उसने देखा कि गाड़ी साइड में लगी हुई है। उसे इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद वो आगे गया ग्रे सेडान की तरफ। उसने देखा कि ड्राइवर की तरफ की खिड़की नीचे हुई हुई है। हिटमैन गया, उसने गन निकाली, सामने किया एंड गोली चला दी। ये तीसरा जो शख्स था, जो मास्टर माइंड था, वो कोई और नहीं, वो खुद हुआ थी। वो कागज उसने फाड़ के लोकेशन जो फेंक दिया था बाहर, उसमें लोकेशन थी। वो खुद इस लोकेशन पर पहुंची थी इसको फॉलो करते हुए। उसने खुद गाड़ी के शीशे नीचे किए थे उस हिटमैन के लिए, ताकि वो आके उसे मार दे। शी वॉज वेटिंग वहां पे गाड़ी पार्क करके इस बंदे के लिए, क्या के मारेगा। उसके नाम की एक लाइफ इंश्योरेंस थी पॉलिसी, और उस पॉलिसी में बहुत बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इससे होता यह कि उसके मरने के बाद वो सारा कर्जा भी उतर जाता जो उसके सर पे था, और उसकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ बचता। तो बेसिकली हुआ ने डिसाइड किया कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगी। उसे ना जाने कैसे अपने हस्बैंड को और अपने भाई को कन्विंस कर लिया कि वो ही किसी को सुपारी दें उसकी खुद की, और कोई आके उसे मार दे। अब क्योंकि केस सामने आ चुका था, इट वॉज रूल्ड आउट टू बी नॉट अ मर्डर, इसलिए पॉलिसी का एक रुपया भी किसी को नहीं मिला। एंड शूबी चंग और हुआ का भाई जो है, और साथ में वो हिटमैन, इन तीनों को सजा सुनाई गई 6.5 और 7 साल की, और वो जेल में सड़ने के लिए भेज दिए गए। सो दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, एंड आई स्टिल डोंट नो कि हुआ ने ये किया कैसे, हुआ से ये हुआ कैसे। 666-22107 नंबर है, 666-22107। आप पे छोड़ रहा हूं मैं ये कहानी, आप बता दीजिएगा कैसी लगी।

0: 666-22-107-TT. प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत टाइम लगता है इन कहानियों को तैयार करने के लिए, एंड आपके मैसेजेस ही हैं जो फील कराते हैं कि कुछ किया है.
1: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज, बेस्ट ऑफ शोज ऑन उर्दू रेडियो एफएम 107, दिल से देसी.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
0: हाँ उसके लिए तो
4: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
0: वैसे वो तो देखो,
4: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है.
5: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे.
6: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
7: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने. नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं. डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन 2, जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट. एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स ऑन FM 107, दिल से देसी. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
0: Assalamualaikum, मैं दुआ वाला कबीर FM 107 पे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हम चलाएंगे कहानी. लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. तो मैं दुआ वाला कबीर FM 107, और जिन्होंने अभी ट्यून किया Assalamualaikum, आज का किस्सा सुनाने के लिए भाई हमें बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत सालों पीछे. तो अपने आपको ना उस एरा में ले जाने की कोशिश कीजिएगा जितना भी उस एरा के बारे में आप जानते हैं. आज का किस्सा सुनाने के लिए चलता हूं आपको 1845 में, इन द 19th century. समझ रहे हैं आप, बहुत पीछे गए हम. सो स्प्रिंग का महीना, स्प्रिंग का सीजन चल रहा था और 1845 था इस वक्त. इन वियना जनरल हॉस्पिटल, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था उस वक्त वियना जनरल हॉस्पिटल, और आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस वक्त ये दुनिया के अव्वल दर्जे के अस्पताल में आता था. इस वक्त यहाँ पर एक खातून थी जो मटर्निटी वार्ड में थी, एंड चंद मिनटों में शी डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी, एक काफी हेल्दी बच्चा हुआ उनका. एंड शी वाज रियली रियली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश. और ऑफ कोर्स ये इससे सबसे इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है. बट 24 घंटे के बाद इस यंग वुमन को बुखार चढ़ा और बहुत तेज बुखार आया. उसकी पल्स रेट अचानक से दौड़ने लगी जैसे, और एब्डोमिन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा. एंड फिर 3-4 दिन उसका दिमाग जो था वो ऐसा लगा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है. और 5 दिन के बाद वो बची ही नहीं. 1845 में चीजें मुश्किल थी तो आप जानते हैं, लेकिन ये किस्सा आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा. बहरहाल इनकी ऑटोप्सी की गई कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो समझ में आया कि एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक इन्फेक्शन हुआ था बॉडी में जो फैल गया, एंड इसकी वजह से डॉक्टर्स इस लड़की को नहीं बचा पाए. बीमारी को कुछ नाम देने के लिए बचा नहीं था, क्योंकि ये बीमारी काफी टाइम से यहां पे चल रही थी. तो उसको जो नाम था वो दिया गया चाइल्ड बेड फीवर. तो हो ये रहा था कि बच्चे की दुनिया में आते के साथ ही कई सारी माएं जो थी इस वार्ड में, इस मैटरनिटी वार्ड में गुजर जाती थी, बेचारी बच नहीं पाती थी. और ये एक मिस्टीरियस इलनेस करार दे दी गई. समझ में नहीं आया किसी को कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड एवरीबॉडी वाज कंफ्यूज्ड. और वो जमाना भी आप सोचिए 1845 का, तो और भी ज्यादा मुश्किल रहा होगा. लोगों ने बहुत कोशिश करी, बड़े से बड़े लोग उस दौर के आए और उन्होंने जानना चाहा कि ठीक है एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन हर बार रिपोर्ट में लिखा आता है कि चाइल्ड बेड फीवर, हर बार लिखा आता है, ये क्या चक्कर है. अब क्या है?

0: किसी के भी दुनिया से चले जाना कोई अच्छी बात तो नहीं लगती, ऑफ कोर्स स्पेशली जब एक नया बच्चा इस दुनिया में आया हो। लेकिन वियना हॉस्पिटल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, किसी को हैरानी नहीं थी, क्योंकि ये एक आम बात बन चुकी थी सैडली। अब इस कहानी का मेन हिस्सा है तो मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। इस हॉस्पिटल में, वियना जनरल हॉस्पिटल में, एक वार्ड था जहां पर हर तीसरी मां आफ्टर डिलीवरिंग द चाइल्ड उसे हो जाता था चाइल्ड बेड फीवर और वो दुनिया से गुजर जाती थी। 19th सेंचुरी के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा नंबर है, हर तीसरा पेशेंट, मैं कह रहा हूं हर तीसरा पेशेंट जो एडमिट हो रहा था मैटरनिटी वार्ड में, इट्स अ ह्यूज नंबर 19th सेंचुरी के लिहाज से भी। और ये सिर्फ इसी वार्ड का मसला था। मैं क्यों इस वार्ड पे इतना जोर दे रहा हूं, अब आपको स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। सो वियना जनरल हॉस्पिटल दुनिया के नंबर वन हॉस्पिटल्स में से एक था। इसमें दो सेपरेट क्लिनिक्स थी, ठीक है। पहली जो क्लिनिक थी, इसमें भी जो न्यू मदर्स आती थी उनको बचाने के चांसेस 4 गुना कम हो जाते थे चाइल्ड बेड फीवर की वजह से। और जो दूसरी क्लिनिक थी सेम अस्पताल की, वहां पे सब कुछ नॉर्मल रहता था। अब आप बोलेंगे हो सकता है एक जगह गरीबों को भर्ती किया जाता, कोई एक जगह अमीरों को, नहीं। ये एडमिशंस इन दोनों क्लिनिक में बिल्कुल ऑल्टरनेट थे। इसमें पेशेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए किसी किस्म की क्लास, कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेट कुछ भी नहीं देखी जाती थी, बिल्कुल रैंडम था ये सब कुछ, बिल्कुल रैंडम एडमिशन। फर्क इन दोनों क्लिनिक्स में क्या था, जो पहली क्लिनिक थी जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की जाने जा रही थी, फर्स्ट क्लिनिक में डॉक्टर्स ट्रेन्ड डॉक्टर्स थे, ट्रेन्ड डॉक्टर्स बाय द वे, और नए नए डॉक्टर्स को ट्रेन भी किया जा रहा था यहाँ पे। दूसरा जो वार्ड था, हाँ, दूसरी जो क्लिनिक थी उसमें मिडवाइफ्स थी, जिसे हम हिंदी में दाई भी कहते हैं, हमारे तो ये चलता है कि दाई है, दाई है। बाकी कोई फर्क नहीं है, ओके, बाकी कोई फर्क नहीं है। अभी तक इतना ही लोगों को पता था इन दोनों क्लिनिक्स के बारे में। हर महीने, इनफैक्ट हर साल, ये जो डेथ रेशियो है पहली क्लिनिक का, ये बढ़ता ही जा रहा था और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक साल आया 1846, एक साल बाद, ठीक, एक बहुत ही ब्रिलियंट नौजवान फिजिशियन यहां पर आने के लिए तैयार था। उसका मकसद था कि इस मिस्ट्री को वो सॉल्व करे, और उनका नाम था इग्नस सेमेलविस। इग्नस जो थे, इग्नास या इग्नस, दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोला था, इग्नास वैसे मैंने मोस्टली सुना है, सो IGNNAZ, इनके बारे में क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं पता लगेगा। तो इग्नास जो थे वो यहां पर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे। इनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, इग्नास का भी नाम सुना है, कभी नहीं सुना होगा, मगर आज इनके बारे में आप जानेंगे और जानेंगे कि क्यों जानना जरूरी है। इग्नास का जन्म हुआ था 1818 में, 1818 में, और उनका जन्म हुआ था इन द सिटी ऑफ बूडा, जिसको उस जमाने में ऑस्ट्रियन एम्पायर का ये हिस्सा थी और आज की तारीख में हंगेरियन कैपिटल यानी बुडापेस्ट। उनके जो वालिद साहब थे इग्नास के, वो बहुत ही प्रोमिनेंट मर्चेंट थे, उनका काफी जगहों पे ट्रेडिंग का धंधा था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, और जाहिर सी बात है वो भी चाहते थे कि उनकी औलाद जो है, इग्नास जो है, वो भी इज्जत की नौकरी करे। उस टाइम पे बहुत जरूरी था 1845 में कि अगर कोई बाप मर्चेंट है, लॉयर है, कुछ है, तो उसके बेटे के लिए बहुत प्रेशर हो जाता कि वो ऐसी ही नौकरी करे जहाँ पे बहुत इज्जत का काम हो और लोग जाने के भाई क्या क्या बात है, क्या जोड़ी है इनके घर में, सब पढ़े लिखे हैं। तो इग्नास ने पूरी जान लगा के पढ़ाई करी, बहुत उम्मीदें थी उस पे। 1837 में वो एनरोल हुए इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, और उनका जो ओरिजिनल प्लान था वो लॉ पढ़ने का था, पर फिर अचानक से जिंदगी में एक मोड़ आया। इग्नास जो थे वो एक मेडिकल लेक्चर को अटेंड करने के लिए पहुंचे, और ये महज एक इत्तफाक था, उनके दोस्त के साथ बस वो बैठ गए, और बैठ के वो मेडिकल लेक्चर सुनने के बाद इतने इंस्पायर्ड हो गए, उन्हें लगा यार मैं तो गलत काम में हूँ, गलत डिग्री की तरफ जा रहा हूँ। फिर 1844 में वो पूरी दुनिया अपनी बदल चुके थे, लॉ की तरफ सेट किए, वो मेडिसिन की दुनिया में चले गए और उन्हें डिग्री मिली। और फिर उन्होंने जो ब्रांच पकड़ी वो ब्रांच थी ऑब्स्टेट्रिक्स, चाइल्ड बर्थ की जो ब्रांच होती है मेडिसिन की, वाली ब्रांच में वो आ गए। बहरहाल साल 1846 यानी 1846, 28 साल के थे इग्नास, और इग्नास जो थे वो बतौर असिस्टेंट भेजे गए थे फर्स्ट क्लिनिक में वियना जनरल हॉस्पिटल की। फर्स्ट क्लिनिक कौन सी, जहां पर सबसे ज्यादा जाने जा रही थी। तो एट वियना जनरल हॉस्पिटल, दुनिया का नंबर वन जाने वाला हॉस्पिटल उस दौर का, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी उस दौर के हिसाब से, और फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट क्लिनिक में ऐसा हो क्यों रहा है। मोर्टेलिटी रेट 20% पहुंच चुकी थी फर्स्ट क्लिनिक की, और हर रोज बढ़ रही थी। कंपेयर करूं तो फर्स्ट क्लिनिक में मोर्टेलिटी रेट 20 थी और सेकंड क्लिनिक में बिलो 5, मतलब सेकंड क्लिनिक में सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। ये डेटा भी इग्नास ने निकाल के दिया था पब्लिक को, और जब ये पब्लिक को डेटा मिला कि वियना जनरल हॉस्पिटल में एक ऐसी क्लिनिक यहाँ पे जाने जा रही है और एक ऐसी क्लिनिक जहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आप जानते हैं उस जमाने में रूमर कैसे फैलता होगा, आजकल तो लोग थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा हैं, आज भी फैलता है रूमर, लेकिन उस ज़माने में रूमर जब फैलता था, अफवाहें जब फैलती थी तो बहुत रैपिड स्पीड से फैलती थी, क्योंकि सुपरस्टिशन भी बहुत ज़्यादा था। तो लोग जो थे प्रेफर करते थे हॉस्पिटल ना जाना, और जब ये डेटा सामने आ गया तो फिर तो लोगों ने डिसाइड किया कि ना जी ना, वियना जनरल हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे, स्पेशली पहली क्लिनिक में तो नहीं जाऊंगी मैं। और सारी की सारी औरतों ने डिसाइड किया कि जो चाइल्ड बर्थ का पूरा प्रोसेस है वो घर पे ही होगा। इनफैक्ट जो होमलेस थे वो तो सड़क पे ही टेंट लगा के सारा काम कर लेते थे, बिकॉज दे वर रिलक्टेंट कि वो वियना जनरल हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगे, वो एक मिडवाइफ की मदद ले लेंगे मगर नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं हाउ क्रिटिकल दिस इज। तो इग्नास जो थे वो ये सोचते थे यार लोगों का कितना भरोसा उठ गया, वो हॉस्पिटल से ज्यादा सेफ अपने घर को और सड़कों को समझ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन है। फर्स्ट क्लिनिक से कम डेथ रेट घरों पे था माओ का, क्लिनिक इनसाइड द हॉस्पिटल उससे कम डेथ रेट सड़क पे था। तो इसी वजह से ये मिस्ट्री और भी गहरी होती चली जा रही थी, और इग्नेस भाई बहुत बहुत बेचैन हो रहे थे। ही जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है। बाकी दुनिया जहां के डॉक्टर्स थे वो इसे एक इत्तफाक कह रहे थे, कह रहे नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो इत्तफाक है यार, होता रहता है, ये क्या है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पर इग्नेस इसे इत्तफाक नहीं मानते थे, वो कहते थे आप रिकॉर्ड्स तो देखिए, इतने सालों के रिकॉर्ड्स, ये इत्तफाक हो ही नहीं सकते। पर उनकी सुनने कौन वाला था, किसी ने नहीं सुनी। वो जानते थे कुछ तो है जो पहली क्लिनिक को डेडली बना रहा है, लेकिन क्या है। तो उन्होंने ये सजेस्ट करने के लिए, टेस्ट आउट करने के लिए एक पूरी लिस्ट बनाई कि वो एक एक करके सब चीजों को टेस्ट करेंगे। तो जो पहली लिस्ट थी, और बाय द वे लिस्ट बनाना और इतना ज्यादा मेहनत करना 19 सेंचुरी के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, बाय द वे बहुत बड़ी बात है। मैंने जितना पढ़ा मैं उतना समझ पाया कि स्पेशली द ऑस्ट्रियन एम्पायर अगर कोई बीच में दखल देना प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करता था, सो दे वर कंसिडर्ड रियली रियली बैड। तो ये बंदा एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था ये सोच करके ये कुछ अलग करेगा। सो ही स्टार्टेड मेकिंग अ लिस्ट, और उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस जो थी इसमें लिखी कि क्या क्या वो सोचते हैं, फिर टेस्ट करना शुरू किए। बेसिकली साइंस का सहारा ले रहे थे जितनी उन्हें आती थी। पहली जो थ्योरी थी इग्नेस की, उन्हें लगा कि जो फर्स्ट क्लिनिक है यहाँ पे बीमारी फैल रही है मायाज्मा से। मायाज्मा मतलब कि पॉइजनस वेपर्स जो हवा के थ्रू ट्रेवल कर लेते हैं। पर ये पॉइंट उन्हें काटना पड़ा क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों ही क्लिनिक्स सेम हॉस्पिटल का हिस्सा है और एक दूसरे के आजू बाजू में है। इनफैक्ट दोनों ही क्लिनिक के बीच में एक दीवार है बस। और सुनिए, कॉमन एंट्रेंस हॉल भी है, वेंटिलेटेड विंडोज हैं जो तकरीबन चंद मीटर एक दूसरे की दूरी पर है। तो यानी कि सारे पेशेंट्स क्लिनिक नंबर 2 और क्लिनिक नंबर 1 के सेम ही हवा, सेम ही तरीके से सांस ले रहे हैं। तो जब सेम हवा में सांस ले रहे हैं तो ये मायाज्मा तो नहीं हो सकता। तो लिस्ट में से मायाज्मा उन्होंने हटा दिया। अब उन्होंने दूसरी चीज नोटिस करी, पहले में ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं और दूसरे में मिडवाइफ्स हैं। और उन्होंने देखा कि मिडवाइफ्स के थोड़े से मेथड्स अलग होते हैं। उन्होंने कहा चलो सो एक काम करते हैं, ये वाले मेथड्स इधर अप्लाई करके देखते हैं। मगर रिजल्ट अभी भी जीरो था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी आइडियाज धीरे धीरे खत्म होने थे, पर इग्नेस काफी ढीठ थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं और फोकस करूंगा, मुझे जानना है कि पहली क्लिनिक में ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या चीज है। और फिर उन्हें कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा, दूसरे वार्ड में जहां मोर्टेलिटी रेट ठीक ठाक था, वहां अगर कोई किसी का, मान लो कोई बेचारा नहीं बच पाया, कोई पेशेंट उसकी जान चली गई, तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता था उसकी बॉडी को एक प्राइवेट रूम में। और उसके बाद जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं, उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जो बुलाते थे लोगों को, जो रिलीजियस लोग होते हैं जो लास्ट राइट्स करते हैं, आखिरी रिचुअल करते हैं, तो वो उस प्राइवेट रूम में जाके वो रिचुअल्स किया करते थे। मगर फर्स्ट वार्ड में ऑपोजिट था, फर्स्ट वार्ड में कोई प्राइवेट रूम नहीं था। तो अगर किसी की जान चली गई तो जो आ रहे थे, जो रिलीजियस लोग आते थे, वो सारे पेशेंट्स को क्रॉस करते हुए जाते थे, उन्हीं के बीच में एक बॉडी है उस पर लास्ट रिचुअल्स करते थे और वहीं से वापस गुजर रहे होते थे पेशेंट्स के सामने। तो इग्नेस को लगा हो सकता है कि ये भी एक वजह हो। अब वो इसे समझा नहीं सकता कि क्यों यह वजह हो सकती है, बट उसने कहा हो सकता है भाई, सबके साथ सब देख रहे हैं कि कोई बेचारा बचा नहीं, तो डर के मारे ऐसा होता हो, क्या पता। तो उन्होंने इस सिस्टम को भी ठीक किया, उन्होंने एक प्राइवेट रूम फर्स्ट क्लिनिक में ही बना दिया कि चलो इससे फर्क आ जाएगा, और मॉनिटर किया एक महीना, लेकिन कोई भी फर्क नहीं आया। अगले कई महीनों तक इग्नेस इस हॉस्पिटल का हिस्सा बनके पढ़ाई करते रहे, समझने की कोशिश करते रहे कि इन दोनों क्लिनिक में ऐसा क्या है जो इन दोनों को अलग करता है सेम हॉस्पिटल होने के बावजूद। पहले उन्हें लगा कि हो सकता है कि पहली क्लिनिक में क्राउड ज्यादा हो, तो जब उन्होंने देखा कि नहीं ऐसा तो है नहीं, दोनों ही क्लिनिक्स में बराबर का क्राउड है, फिर उन्होंने खाने का चेक किया तो पता लगा सेम ही खाना मिल रहा है, बेडिंग चेक करी बेडिंग भी दोनों क्लिनिक की सेम है, रूम का लेआउट भी ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है, लाइटिंग भी सेम है। उन्होंने एक एक जगह के जो बल्ब्स थे वो तक चेक कराने की कोशिश करी कि जितनी भी रोशनी है इधर से उधर कर लो, सब तरीके के उन्होंने हिसाब किताब बिठा लिया। वो इतने आंसर को ढूंढने के लिए डेस्परेट हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि आदमी क्या करना चाह रहा है। जब कुछ नहीं मिला तो बस वो अपने कैबिन में बैठे थे, सोच रहे थे कि मैंने सब कुछ तो कर लिया, अब मैं क्या करूं, कुछ बदल ही नहीं रहा है। फिर आया साल 1847, मार्च का महीना था, और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिस एक्सीडेंट ने चाबी दे दी इस मिस्ट्री की, और ये चाबी भी मिली इग्नेस को ही। इग्नेस के एक बहुत ही करीबी दोस्त थे और उनके कलीग भी थे कोलेक्चा। कोलेक्चा जो थे वो ऑटोप्सी कर रहे थे और डेमो दे रहे थे बाकी स्टूडेंट्स को। डेमो देते देते जो स्कैल्पल होता है, डॉक्टर्स के पास स्कैल्पल होता है, तो स्कैल्पल काफ़ी धारदार होता है, बहुत तेज़ धार होती है उसकी, तो उनकी खुद की उंगली कट गई। अभी कोई नॉर्मल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, वो उंगली कट गई, नॉर्मल बात थी, पर उंगली कट गई। अब वो उसे ठीक करने के बजाय उनको थोड़ी देर में नोटिस किया उन्होंने कि उन्हें फीवर चढ़ गया, और बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ गया, उनकी पल्स रेट हाई हो गई और सांसें फूलने लगी, और फिर मिस्टर कोलेक्चा उनकी जान चली गई। ऑटोप्सी के दौरान आई एक चोट से उनके ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन चला गया। ये इनका नाम था याख्याब कोलेक्चा। इनकी जान भी सेम डिजीज से गई जिसे दुनिया चाइल्ड बेड फीवर कह रही थी। अब डॉक्टर तो फीमेल भी नहीं है, पर इनको कैसे चाइल्ड बेड फीवर हो सकता है। तो ये जब हुआ ये एक्सीडेंट, तो इसने कुछ दिमाग में क्लिक किया इग्नेस के। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे सालों पहले क्लिनिक में, डॉक्टर्स ऑटोप्सी करते थे, राउंड्स पे जाते थे, और बच्चे जब डिलीवर होने के बाद फिर वो आगे ऐसे ही बढ़ जाते थे कैजुअली। तो ये कह रहे थे वो बेसिकली इग्नेस बाकी हॉस्पिटल वालों से कि जो लोग नहीं बचे हैं, जिनकी जान जा चुकी है, उनकी वजह से जो जिंदा लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। लोगों ने पूछा ऐसा क्या है, वो तो बचे भी नहीं, वो तो जिंदा भी नहीं है ना, तो उसमें से क्या है। तो उन्होंने कहा कि उसको मैं नाम देना चाहता हूँ कैडावरस पार्टिकल। ये कैडावरस पार्टिकल इन बॉडीज में से निकलते हैं जो लोग जिंदा नहीं हैं, और ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं जिंदा लोगों में थ्रू ब्लड। अब 19th century में अगर आप किसी से ये बोलेंगे कि कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है मगर वो पार्टिकल हैं और उनसे लोग बीमार हो रहे हैं, तो ना सिर्फ आपके आइडिया को खारिज कर दिया जाएगा बल्कि उल्टा आपको समझा जाएगा कि आप में अकल ही नहीं है और आप शायद पागल हो चुके। सेम सिचुएशन इग्नेस के साथ हुई। जब इग्नेस ने ये थ्योरी दी इन लोगों को तो सबने कहा अरे यार कैसा आदमी है ये, कुछ भी बोल रहा है, और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पर इग्नेस बोले कि मेरी बात को समझिए, सेकंड क्लिनिक में मिडवाइज ऑटोप्सी नहीं करती, इसलिए वहां पे ऑटोप्सी नहीं हो रही है, कुछ किसी किस्म का डेमो नहीं दिया जा रहा है, तो वहां की मोर्टेलिटी रेट अच्छी खासी ठीक बनी हुई है। ये फर्क फर्स्ट क्लिनिक का है, वहां पे मोर्टेलिटी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर ऑटोप्सी की जाती है डेड बॉडीज पे। इग्नेस ने यह थ्योरी चेक करने के लिए फर्स्ट क्लिनिक में सबसे कहा, कि ठीक है मेरी बात नहीं माननी मत मानो, लेकिन एक महीने बस मेरी बात मानो, एक महीने अपने हाथों को धोना है आप लोगों को क्लोरिनेटेड लाइम सॉल्यूशन से प्लीज। और उनकी इस बात पे लोग ने अग्री किया कि ठीक है कुछ तो होने रहा, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो सब ने अपने हाथों को धोया, किसी भी ऑटोप्सी से पहले ऑटोप्सी के बाद क्लोरिनेटेड लाइम सॉल्यूशन से अच्छे से धोया, और देखा गया उसके बाद अप्रैल के ही महीने में 1847 में फर्स्ट क्लिनिक में हुई जो मोर्टेलिटी रेट थी वो पहले 306 बर्थ्स में से 57 की जो थी वो जाने जा रही थी। मोर्टेलिटी रेट 18.7 थी जो कि बहुत हाई थी, लेकिन ये हाथ धोने के बाद क्लोरिनेटेड लाइम सॉल्यूशन से जो फर्स्ट मंथ का रिजल्ट था वो था मोर्टेलिटी रेट 2.2, मतलब इतना ज़्यादा घट गया था, और एक महीना और करने के बाद 1.3 पे पहुंच गया था, 1.3 पे। अब कहानी ऐसे इंटरेस्टिंग होती है, 1848 में आ जाते हैं, एक साल बाद। लोग जो थे इस थ्योरी को हजम नहीं कर पा रहे थे। एक ने से सोचा कि मेरा जो काम है अब ये दुनिया बदल देगा, दुनिया को समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये काम कुछ मेडिकल जर्नल्स में छापा गया और उन्होंने सोचा कि अब तो सब समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इग्नेस की इस चीज को इग्नोर कर दिया गया, और कहा गया कि तुम्हारे अंदर कोई दिमाग नहीं है।
1: और वो कहता है, अरे अभी तो मैंने तुम्हें ये करके बताया, देखा नहीं तुमने क्या हुआ, रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा, तुम लोग कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी थी। 1847 में लोगों ने उस पर यह कहा कि इग्नस तुम ये बताओ, तुम कह रहे हो कि कैडावरस पार्टिकल्स इन डेड बॉडीज में, पर वो डेंजर क्यों है, इससे बीमारी क्यों फैल रही है, और हमें ये बताओ ये कैसे क्लोरिनेटेड लाइम सॉल्यूशन जो है हाथ धोने पे काम कर रहा है, है ऐसा क्या है इसमें। तो बड़ी अजीब सिचुएशन में इग्नेस पड़ गए थे, मतलब उनके पास कॉज भी है तो और उनको पता भी क्या करना है, पर इस चीज को जोड़ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं है। सिंपल भाषा में कहूं तो एक डेड में से, डेड को हाथ लगाने से एक जिंदा को बीमारी हो पा रही है, ये कैसे हो रहा है ये समझा नहीं पा रहे थे वो, उन्हें दिल में पता है कह नहीं पा रहे। एंड लोगों के लिए इट साउंडेड लाइक मैजिक, है ना, बड़े परेशान थे कि भाई मैं बता तो रहा हूं तुम्हें कि हाथ गंदे हो जाते हैं, हजारों जाने चली जा रही हैं, आप लोग क्यों नहीं मान रहे मेरी बात को। पर उस दौर में अगर कोई सिस्टम चेंज करने निकले तो उसे लोग इंसल्ट समझते हैं, और इग्नस को, इग्नस के इस रोल को कि ये होता कौन है, 30 साल का हुआ हमें बता रहा है, इतने सालों से हम नहीं जानते। एंड इट वॉज टेकन एज एन इंसल्ट, और इग्नस समझा ही नहीं पाया और सारे डॉक्टर्स ने उसकी बात को डिसमिस कर दिया, जबकि रिजल्ट उनके सामने था। इतिहास की सबसे जरूरी डिस्कवरी मेडिकल फील्ड की इग्नोर कर दी दुनिया ने, इग्नोर। इग्नस को उसके बाद हॉस्पिटल वाले रिजल्ट के बाद भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक सपोर्टर नहीं मिल रहा था उन्हें, एक सपोर्टर। 1849 में तो हद ही हो गई, उनका एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था और रिन्यू करने से हॉस्पिटल ने मना कर दिया। उन्होंने लाख कोशिशें करी, दूसरी जॉब्स ढूंढी, लेकिन जब तक मामला फैल चुका था और सबने कहा कि वियना में आपके लिए तो जॉब नहीं है, उन्हें मजबूरी में बेचारे को एक लोअर पोजीशन पे काम करना पड़ा एज इन इन द ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट, वहां पर उन्हें जॉब मिली। ये जॉब मिली एट सेंट रोचेस हॉस्पिटल, ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, छोटा हॉस्पिटल था। यहां भी बेचारे ने बड़ी कोशिश करी, यहां पर भी चाइल्ड बेड फीवर अपने उरूज पर था, और बहुत कोशिशों के बाद, कुछ लोगों को मनाने के बाद, इन्होंने भी यहां पर ट्राई करना शुरू किया। हाइजीन पर जब लेगा इग्नेस लोगों को कि हाइजीन की तरफ आओ, हाथ धो हाथ धो हाथ धो, तो आने वाले सालों में 9 deaths per 933 डिलीवरीज ये बन गया था, मोर्टेलिटी रेट अराउंड 1%। ये बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ थी, जैसे हालात थे पहले उनके उस हिसाब से। फिर आया साल 1855, इग्नेस सेमोविज, उनको बनाया गया प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेस्ट। एक बार फिर से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी मोर्टेलिटी रेट, इतना सबूत उन्होंने मुंह पर दिया दुनिया को, लेकिन मेडिसिन की दुनिया उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम मैं बताता हूं को क्या थी, इट्स लाइक वो समझा नहीं पा रहे, उन्हें पता है कि क्या हुआ, ये कैसे ठीक होगा, ठीक है, पर ये क्यों हुआ और ये मैं कैसे ठीक कर रहा हूं ये नहीं बता पा रहे हो, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने किया है, समझ रहे हैं आप, पब्लिश ही नहीं किया कुछ, कभी कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं बस जगह जगह जाके लेक्चर दे दूंगा, लोगों से कह दूंगा अरे हाथ धो हाथ धो हाथ धो, इससे काम हो जाएगा। तो वो लेक्चर्स डिस्कशंस और बातों से अपने कलीग्स के जरिए बातों को फैलाना चाहते थे, जो बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। और फिर साल आया 1861, उन्होंने फाइनली एक ओवरव्यू लिखा, अच्छा कोशिश करी कि चलो अब मैं कुछ लिख देता हूं, अपना काम पूरा, अपनी पूरी डिस्कवरी लिखने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं से कुछ भी लिख दूं मैं। किताब का नाम भी इतना भारी लिखा, नाम सुनेंगे आप, नाम सुनिए किताब का, द एटियोलॉजी एटियोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड प्रोफिलेक्सिस प्रोफिलेक्सिस ऑफ चाइल्ड बेड फीवर। दोबारा पढ़ाऊ, बहुत डिफिकल्ट नाम है, द एटियोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड प्रोफिलेक्सिस ऑफ चाइल्ड बेड फीवर, ये किताब का नाम था। इसमें इतना कुछ लिखा, इतना लंबा चौड़ा लिखा कि उसे समझाना और समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एंड हुआ ये रिजल्ट आया कि मेडिकल कम्युनिटी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। गुस्से में इग्नेस के सीनियर्स और वो खुद बड़े परेशान थे। इग्नेस ने बहुत सारे लेटर्स लिखे गुस्से में कि मेडिकल फील्ड को क्या हो गया, मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही है, मैं बताना चाह रहा हूं ये पब्लिक के हक में है, हक में है, हक में, बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर पंगे हो गए।
0: फ्रेंड्स, उनके खुद के दोस्त, उनके कलीग्स को लगा कि एग्नेस का दिमाग शायद काम नहीं कर रहा है, बहक गया है। हर लेक्चर में उसे गुस्सा आने लगा और बहुत गुस्सा आने लगा। 1865 में एग्नेस सोमोवेस की खुद की फैमिली ने, उन्हें एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में, असाइलम में भेज दिया। वहां पर जब उन्हें ले जा रहे थे तो रस्ते में उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी किया, हाथापाई भी करी, गार्ड से भी उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ। और फिर 13th of August 1865 में जब वो 47 साल के थे, महज 47 years old, तो उनको एक बीमारी हुई सेप्सिस की, एक सीवियर इन्फेक्शन, बहुत गहरा इन्फेक्शन, जो उन्हें गार्ड्स के हाथों से हुआ था वो इन्फेक्शन। जिंदगी की आयरनी ये थी, ये जो इंसान पूरी जिंदगी इन्फेक्शन से लड़ने की बात करता रहा, उसी की जान इन्फेक्शन की वजह से हुई और वो चल बसा। लोगों ने ये भी बोला कि एक टाइम पे आके उन्हें डिमेंशिया भी हो गया था, इतने ज्यादा जिंदगी में रिजेक्शन झेलने के बाद ही जस्ट ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज मेमोरी। उनके गुजर जाने के बाद साइंटिफिक वर्ल्ड में कुछ सालों बाद नींद से उठे लोग, ना 1860s में ही एक शख्स, इनका नाम था लुई पेस्टर, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहा और कर चुके थे, इन्होंने पूरी चीज बताई जो शायद एग्नेस नहीं बता पाए। मिस्टर लुई पेस्टर ने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे प्रोसेस के लिए, जैसे कि फर्मेंटेशन और डीके, यानी कि किसी चीज का सड़ जाना। फिर कई सालों बाद इन 1940 एक साइंटिस्ट आए, मिस्टर रॉबर्ट कोश, और रॉबर्ट कोश ने अच्छे से इन्फेक्शन के बारे में बात करी और एक टर्मिनोलॉजी साइंस को दी, जिसको हम जानते हैं द जर्म थ्योरी। ये फंडामेंटल चीज बनी, मगर सैडली एंड आई एम रियली सैड अबाउट दिस गाय, एग्नेस ये देखने के लिए जिंदा नहीं बचे थे। एग्नेस सोमोवेस, उन्हें सेलिब्रेट करना जरूरी है, उन्हें याद रखना जरूरी है। इनका नाम शायद किताबों में ना मिले, लेकिन पास ऑन जरूर कीजिएगा, जो लोग मेडिसिन मेडिकल फील्ड में हैं शायद उन्हें ना पता हो, या मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं, सो लेट देम नो कि एक ऐसा भी शख्स था जिसे दुनिया ने पूरी तरह से नकार दिया, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। ये था आज का किस्सा 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। अब आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं दोहा वाला कबीर। आई नो आज की कहानी हर किसी के लिए नहीं थी, पर जिन्हें आज की कहानी अच्छी लगी या आज का केस अच्छा लगा कुल मिला के, तो प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा 666-22-107 पर, 666-22-107 पर बताइएगा आज का केस कैसे लगा। बहुत ज्यादा मैं डीप जाके आज की कहानी को पढ़ाई और बताए, तो व्हाट्सएप के पर, व्हाट्सएप पर भी आते रह करें, मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से, एंड व्हाट्सएप 666-22-107। हर शो में पार्टिसिपेट करें, दिल लगा के पार्टिसिपेट करें, बड़ा अच्छा लगता है लोगों कॉन्वर्सेशन सुनना बाकी शोज में भी। एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मासलामा।
2: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज ऑन उर्दू रेडियो FM 107।

0: की गश्ती जो गाड़ी है वो भी आपको नज़र आ जाएगी कि वो भी खड़ी होती है। तो ओवरऑल यानी एक्सपेरिमेंट के लिए हो या कोई ओवरऑल यानी ऑन दी ड्यूटी हर वक्त जहाँ से ट्रम वगैरह गुजर रहा है यानी हर हालत में आपने अगर वहाँ ट्रम के रास्ते नज़र आए तो आप एहतियाती जो है ना कार्रवाई उसके इख्तियार करें और यकीन बनाएं कि भाई यहाँ से कोई चीज़ नहीं गुजर रहा, फिर आप आगे बढ़ें क्योंकि आपकी सलामती की बात है, साथ साथ जो है ना वो ट्रम के अंदर जो बैठा हुआ है उसकी सलामती की भी बात है। तो अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो आप भी सलामत रहेंगे और वह अंदर जो भी है ट्रम के अंदर वो भी बिल्कुल सही सालम रहेंगे। लेकिन मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि ट्रम जब जहाँ से गुजरता है ना तो वो कुछ ऐसे घंटियाँ वगैरह बजाते हुए गुजरता है तो इससे पता लगता है कि ट्रम आ रहा है। तो आपको अगर इस तरह कोई आवाज़ आ जाए तो ज़रूर आता है रुकना है, यानी आप जल्दबाजी न करें कि भाई मैं जल्दी निकल जाता हूँ ये वो कर लूँ, अपने आप को रिस्क में डालने की क्या ज़रूरत है। तो काफ़ी सारी अहम बातें आज हमारी आ गई अवामी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ये हिफाजती इकदाम आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट जो अवामी ट्रांसपोर्ट बस के हवाले से जो बस यूज़ करते हैं तो सिलसिले में भी वो हमें कुछ नसीहत फरमाएंगे। سيادة النقيب عبد العزيز أحمد حسن النعمة من إدارة أمن النقل العام، ننتقل إلى المحور التالي بخصوص النصائح التي بتوجهها لمستخدمي باصات النقل العام.
1: صحيح، أما بخصوص الباصات فهي نصيحة تعتبر مقاربة للنصائح ما قبلها، يعني تأكد من المتعلقات الشخصية.
0: جميل،
1: وأنا حرص عليها لأن كثير من الناس ينسون أغراضهم تكون داخل الهاي، فيكون في إجراءات صحيح. من تبع الشركة أن تستلم فيها متعلقاتك، لأن يرجع الباص المستودع ويأخذون فيها الأغراض وعقبها يودونها الإدارة وعند المفقودات عقبها يستلمها. وأيضا الاستماع إلى توجيهات السائق بحكم أن الباص متحرك وممكن أنه يعني في فترة ازدحام أو مثلا يتوقف بشكل مفاجئ فممكن يسبب ضرر للراكبين داخل، فاحنا نحرص عليهم بالتزام بقواعد السلامة داخل الباص وفي النقل العام بشكل عام، لأن تعريض الأشخاص للخطر هو فعل مخالف للقانون حسب المادة من قانون العقوبات 249، فاحنا نحرص على المستمعين والراكبين بالالتزام حفظا لهم وحفظ لأرواح الراكبين.
0: جميل سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو پرسنل جو چیزیں ہیں سامان ہیں ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ ہر کسی وسیلہ نقل ہو چاہے وہ میٹرو ہو ٹرم ہو بس ہو، آپ نے عموماً اس بات کا اپنا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس سے جو متعلقات شخصیہ یا آپ کے جو پرسنل چیزیں ہیں آپ انہیں ان کا خاص ان کی حفاظت کریں.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
6: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो
2: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
6: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पर।
2: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
6: ऑन पिच परफेक्ट,
2: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।

0: वेलकम एक सामने एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस आरावा में। मैं हूं आपके साथ तलहा अशरफ जमान और अब हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ दूसरे मेहमान वजारत दाखिला के अहम शोबे के नुमाइंदा तशरीफ फरमा है। और जैसे कि आपने हमें सुना ब्रेक से पहले, हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू की और हमारे इदारत नकलाम के जो मेहमान थे कैप्टन अब्दुल अज़ीज़ अहमद हसन अन्नामा, तो उन्होंने हमें काफ़ी सारी तफसीलात फराहम की कि भाई हम रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें जो है ना इस सिलसिले में किस तरह के हिफाजती इकदाम जो है इख्तियार करनी चाहिए। और दरअसल ये एक, यानी आप जब ये बातें होती है तो पता चलता है कि भाई इन मकामात पर ये जो नकल आम की बात हो रही है या फिर अब जो हमारे मेहमान हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से, वो हमें काफ़ी सारी जो है ना हिदायत देंगे, तो ये इन तमाम तर मकामात में किस तरह की हमारे लिए हिफाजत के लिए कितनी मरबूत कोशिशें जारी हैं, कैसे कैसे इकदाम किए जाते हैं और एक आम शहरी और मुकीम के तौर पर हमें जो है ना किस तरह की जिम्मेदारी अदा करनी है। तो आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारे जो है ना इस तरह के सवाल किए हमारे फर्स्ट मेहमान से और इसी तरह अब जो है ना हम सेकंड सेगमेंट में दाखिल हो रहे हैं और हमारी यहाँ सनती सलामती के हवाले से अलम असनाई ये भी एक अहम है, बिलखसूस जो हमारे पेशवराना जो कारकुन हैं जो सनत के हवाले से यहाँ काफ़ी वो काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अहम हिदायत देंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है फर्स्ट लेफ्टिनेंट तलाल अब्दुल्ला अल महमूद, इनका ताल्लुक जनरल डायरेक्टरेट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से है, तो चले हम पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। يسعدنا أن نرحب بكم ملازم أول طلال عبد الله آل محمود في استوديو 107، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبتين هلا أخوي، أولا أنا سعيد بتواجدي معاكم فالإذاعة ونشكركم على الاستضافة لنا وتقديم نفسي وتمثيلي لإدارة الأعمى الأمن الصناعي.
0: بارك الله فيكم سامعين الكرام، उन्होंने जैसे कि सलाम और दुआ के साथ जो है ना ये शुक्र अदा किया और फिर इस तरह जो है ना उनकी और वो जिस इदारे के नुमाइंदा हैं उसकी तरफ से उन्होंने ये जो है ना हम सबको सलाम कहा है और शुक्रिया अदा किया है। और अब जो है ना बिदनल्लाह ताला वो इस मौके पर हमें काफ़ी सारी अहम तफसीलात जो है ना बताएँगे अपने इदारे के हवाले से। سيادة الملازم أول طلال عبد الله آل محمود من العامة للأمن الصناعي، أولا يعني قبل كل شيء، ما هي الإدارة العامة للأمن الصناعي وما أبرز اختصاصاتها التي تهم الجمهور؟
1: أول شيء في البداية الله يسلمك، الإدارة العامة للأمن الصناعي هي الجهة المسؤولة عن حماية المنشآت الحيوية والنفطية سواء كانت البترولية أو الغازية أو الصناعية بشكل عام.
0: جميل.
1: وتأمين سلامة العاملين فيها وضمان استمرارية الإنتاج. وكذلك تعمل الإدارة لدى وزارة الداخلية وغالبا ما تقوم بالتعاون والتنسيق مع قطر للطاقة في شؤونها العملياتية.
0: جميل جميل.
1: واختصاصها طبعا تقوم بتأمين المناطق الصناعية وخطوط أنابيب الغاز.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप चाहे वो छोटे बच्चे से शुरू हो जाएं, चाहे वो अडल्ट्स एडोलेसेंट्स के अंदर, इन्फेंट से लेके एडोलेसेंट से लेके यंगर अडल्ट्स के अंदर तक, सारों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन कंटेंट मौजूद है. सो वो जो स्क्रीन है आपकी आंखों पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते
1: हैं. पॉजिटिव भी हो सकते हैं
0: डेफिनेटली.
1: जैसे डॉक्टर साहब हम बात करें, जैसे एज वाइज हम थोड़ी सब पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं और वो स्क्रीन टाइम जो है उनका होता है, या जो मदर्स हैं वो भी बिजी हैं खुद भी और उनके साथ भी, और फिर जैसे वीनिंग स्टार्ट होती है तो बड़े वो राइम्स बेशक लगाते हैं या कुछ, मगर ये कि उन्हें दिखा भी रहे होते हैं साथ साथ, तो इस पर थोड़ी बात करने से क्या ये भी इफेक्ट करते हैं बच्चों की आई साइट पर या इस तरह से, या ब्रेन पर? या
0: आप बच्चों को जो चीज़ दिखाएंगे
1: जी,
0: ब्रेन डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, उस उनके रेगुलर डेवलपमेंट के अंदर यानी उनके ग्रोथ के अंदर उसका कोई ना कोई असर तो होगा
1: जी.
0: ये आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है बच्चे वो देख के सीखते हैं. अब आंखों पे जैसे आपने कहा कि न्यू नेट्स और यानी छोटे से इन्फेंट्स जो बच्चे वगैरह के अंदर, उसको दिखाना यानी कितना बच्चा वो देख सकता है और क्या वो देख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब राइम्स वगैरह और ये कंटेंट जैसे कलरफुल कंटेंट कुछ हद तक यानी कलरफुल कंटेंट रेटिना के लिए बेहतर होता है, लेकिन अगर उसी को आप एक्सेस में ले जाएंगे और अगेन जैसे कि कहते हैं कि स्क्रीन ब्राइट नहीं होनी चाहिए, अंधेरे के अंदर नहीं ज़्यादा दिखाना चाहिए, डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है. प्लस सेकेंड थिंग मैं कहूँगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्क्रीन टाइम के अंदर कॉन्टेंट है, क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है और क्या कंटेंट बच्चा देख रहा है. क्योंकि बच्चे को फॉर एग्जांपल अगर आप पॉजिटिव कोई कंटेंट दिखाते हैं किस टाइम बीइंग के लिए टाइम लिमिट के अंदर, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है. अगर वही कंटेंट आप उसको किसी ऐसी चीज़ में ले जाएं जिसका कोई फ़ायदा नहीं और बच्चों को कोई यानी नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं, नेगेटिव मैसेज आ रहा है, तो वही कंटेंट नेगेटिव हो जाएगा. सो इसलिए कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है स्क्रीन टाइम के अंदर, चाहे वो इन्फेंट्स के अंदर हो चाहे वो बड़ों के अंदर हो. सो इस वजह से हम बच्चों के नशोनुमा के अंदर मैं कहूँगा कि कुछ हद तक स्क्रीन टाइम का होना ज़रूरी है, लेकिन उसको एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है वो अगेन इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, वो जो है बच्चों के ऊपर गलत असर भी छोड़ सकता है. मायोपिया का जैसे तरह आपने बात की, मायोपिया इटसेल्फ जिसलिए कहा जाता है कि हमेशा बच्चों को जितना मर्जी स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट किया जाए और रोज़ एक से दो घंटे धूप के अंदर ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लाइट मायोपिया की प्रोग्रेशन को रोकता है. इसलिए धूप के अंदर स्पेशली लाइट के अंदर बच्चों को बाहर निकलना चाहिए और एक से दो घंटे कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे मायोपिया का प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके.
1: अच्छा ठीक. जैसे डॉक्टर साहब यहाँ का मौसम है जैसे गर्मी है तो फिर पॉसिबल ज़रा कम होता है, या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर क्या करें?
0: मॉल्स वगैरह के अंदर इस तरह की जगह पे जाके आपको देखें कितने ज़्यादा प्रोग्राम मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो इंडोर हैं. आजकल आपको पता है फुटबॉल, टेनिस या इवन पूल्स वगैरह इंडोर पूल्स होते हैं, आपको आजकल मार्शल आर्ट्स वगैरह की क्लासेज होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपको आउटडोर एक्टिविटी, एक तो टीम वर्क आउटडोर एक्टिविटीज़ और एक आपके ऊपर एक पॉजिटिव असर छोड़ सकता है. आपके जैसे मौसम की बात हो गई, उसके किसी ना किसी तौर पे आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट तौर पे इधर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम कंडक्ट्स होते हैं, इवन समर के अंदर भी
1: जी, समर कैंप्स
0: बच्चों के समर कैंप्स के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती हैं. आजकल के दौर के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ का होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्पेशली कतर जैसे मुल्क के अंदर आपको पता है सारी जगह पे एक तो इंडोर काफ़ी ज़्यादा मौसम वगैरह काफ़ी ठीक है, एसी वगैरह हर जगह पे मौजूद है. सो इस वजह से बच्चों को उस तरफ हर रोज़ कोई ना कोई उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वैसी एक्टिविटी इसके अंदर हिस्सा लें. स्क्रीन टाइम के साथ इसको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे नॉर्मली स्क्रीन की तरफ जो है ना उनका रागिब होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि उन्होंने अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ कि नहीं ये देखना है मैंने, वो देखना है. दूसरी चीज़ स्क्रीन के अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, यानी बच्चे अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट कुछ देख रहे हैं या आधा घंटा कुछ देख रहे हैं उसके बाद कंटेंट चेंज हो जाता है जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करता है, अब ये चेंज हो गया बस दूसरी चीज़ चेंज हो गई. एंटरटेनमेंट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं. इसी तरह हमें बच्चों को फॉर एग्जांपल स्क्रीन के साथ उस पर रीडिंग का प्रमोट किया जा सकता है, जरूरी नहीं कोई सिर्फ वीडियोस देखे उनकी. आप जैसे देखें ना आजकल ऑल एजुकेशनल सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑडियो बुक्स हैं, नॉर्मल बुक्स हैं, इस तरह रीडिंग को प्रमोट किया जा सकता है. सो इसको पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट किया जा सकता है.

0: जो के ऊपर।
1: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब जैसे आपने हमें बताया कि जो ये थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी किस तरह जैसे उनकी आई ग्रोथ हो रही होती है उस पर भी इफेक्ट करता है ये स्क्रीन टाइम।
0: देखिए लाइट जो है आपके रेटिना के ऊपर असर करती है, स्क्रीन के अंदर नॉर्मली ब्लू लाइट होती है जो कि अच्छा। कहते हैं कि ये नहीं कहते कि मुझे से थे, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है क्योंकि पहले आप बताओ अगर फिल्टर लगाया जाता था स्क्रीन्स के ऊपर जो कि अब ऑटोमेटिकली हर स्क्रीन के अंदर ब्लू लाइट कम कर दी गई है जिसकी वजह से रेटिना के ऊपर असर नहीं होता क्योंकि जो ब्लू लाइट थी वो आपके मैक्यूला को जाके डैमेज कर सकती थी। सो इस वजह से अब जो है ब्लू लाइट का जो है स्क्रीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, उसके कॉन्टेंट को आई के लिए बेहतर बना दिया गया है। दूसरी चीज़ जब आप डिम लाइट या किसी भी लाइट में देखते हैं सो सीधा जाके आपके आंखों पे जाके फोकस होती है और डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट, एक तो हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है जो कि मायोपिया को प्रोग्रेस करता है। इसलिए स्क्रीन के अंदर जो दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो लाइट है, यानी आप उसको ब्राइट लाइट में ज़्यादा नहीं देखें। तीसरी चीज़ स्क्रीन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन आप कितने दूर से देख रहे हैं और स्क्रीन आप किस पोस्चर में देख रहे हैं। स्क्रीन अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल्स और टैब्स अगर छोटी स्क्रीन पे उसके साथ मायोपिया का प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर जैसे टीवी की स्क्रीन या कोई बड़ी स्क्रीन मोनिटर वगैरह इस तरह की स्क्रीन जो ज़रा डिस्टेंस से देख रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट मायोपिया पे कम होता है। क्योंकि आप जितनी स्क्रीन देखते हैं वो आपके नियर साइटेडनेस के अंदर वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्योंकि आपकी आँख उसके लिए ट्रेन हो जाती है।
1: जी ठीक, कि इस तरह से ये लिस्ट जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने इसको दोबारा भी रिपीट किया कि किस तरह से जो बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है इस पूरे जिस्म में ही ग्रोथ जो है वो हो रही होती है तो जो आंखें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो भी, और ये भी जो नज़र कमज़ोर हो जाती है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है कि जो ख़ास तौर पर जो स्क्रीन है साइज़ ऑफ द स्क्रीन उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक और बात जो डॉक्टर साहब ने इम्पॉर्टेंट मुझे लगी डोपामिन रिलीज, मतलब आपने कहा कि उसमें भी उस पर असरात होते हैं तो उसमें हम देखिए कि जब ज़्यादा बच्चे स्क्रीन टाइम जो है लेते हैं या ज़्यादा स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं तो चिड़चिड़ापन हो जाते हैं।
0: सही, बिल्कुल ऐसी ही है देखिए, क्योंकि जितना आप वो कंटेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप उनको कोई अग्रेसिव कंटेंट दिखा रहे हैं जैसे कोई गेमिंग के इस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं उससे ये डोपामाइन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो कहते हैं कि जैसे ऑटिस्टिक बिहेवियर और इस तरह का चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो जाती है। तो इस वजह से यही ज़रूरी है कि जो कॉन्टेंट है उसको मोनिटर किया जाए इन अ फ्रेंडली मैनर, क्योंकि ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल के दौर में स्क्रीन को बिल्कुल हम कहें कि हम बंद कर सकते हैं और बच्चों को रोका जा सकता है बिल्कुल स्क्रीन ना दी जाए ये कहने के तकरीबन नामुमकिन है। आई थिंक हम लोग सारे पेरेंट्स हैं, हम लोग सारों के लिए, हम हमारे घरों के अंदर बच्चे हैं, हम उसको एक पॉजिटिव तौर पे लिमिट कर सकते हैं और मॉनिटर किया जा सकता है और उसको ऐसे दिखाया जा सकता है कि बच्चे उससे एक तो फ़ायदा भी हासिल करें और उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट भी हमारे नज़रों के सामने हो। उसको ऐसे ना किया जाए कि बच्चे जो मर्ज़ी देख लें, और ऐसे भी ना किया जाए कि नहीं आप स्क्रीन बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको इस तरह करना चाहिए कि आप स्क्रीन अगर आप इतना देखते हो तो इतना ही आपको बाहर खेलना पड़ेगा। अगर आप इनडोर और स्क्रीन टाइम को यानी उसको एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस अप्रोच नहीं होगी सो दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होगा।
1: ठीक ठीक, इससे ये कि मायोपिया जिसे आपने कहा कि बहुत एक जो है बहुत बड़ा उसका असर है, मतलब मुतासर होते हैं बच्चे, तो इसमें डॉक्टर साहब फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती हैं? सिर्फ मायोपिया की बात करें, एमरजेंसीज की तो हम बाद में बात करेंगे, जैसे हम एडल्ट्स की बात करते हैं कि उनमें रेटिनल डिटैचमेंट और इस तरह से, तो बच्चों में भी मायोपिया?
0: बिल्कुल, देखिए नॉर्मली आई 10 ईयर्स तक ग्रो करती रहती है, सो मायोपिया नॉर्मली भी यानी हम जब पैदा होते हैं तो हमारी आंख प्लस के अंदर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस की तरफ जाती है, प्लस होता है हाइपरमेट्रो और मायोपिया होता है माइनस, दूर की जो है वो जो है कमज़ोर हो जाती है। सो इस वजह से क्योंकि आप स्क्रीन की वजह से उनको नियर साइटेडनेस यानी नज़दीक की नज़र को ट्रेन कर रहे हैं, दूर की नज़र बेहतर नहीं होती, इसलिए आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ और उसको प्रमोट करने कहते हैं ताकि बच्चे दूर और दूर देखें और बाहर देखें यानी नॉर्मल देखी। सो इस वजह से मायोपिया के जैसे आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, सो जितना मायोपिया इंक्रीज होता है उतना ही रेटिनल डिटैचमेंट का खतरा बहुत

0: ज़्यादा होता है, यानी पर्दे के फटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, प्लस आपकी आंख स्ट्रेच हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो आंख की साइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, यानी उस पतली हो जाती हैं, सो जितना उस पर खिंचाव पड़ता है उसके फटने का उतना ज़्यादा डेंजर होता है, ख़तरा होता है। सो रेटिनल डिटैचमेंट जो इटसेल्फ है वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी नज़र काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और आप अडल्ट में काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चों में सोचें वो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी नज़र उससे मुतासर हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें मोनिटर करना, आपके ग्लासेस का नंबर मोनिटर करना, जैसे हम फिर वही बात के बच्चे स्क्रीन तो देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को स्क्रीन के साथ ये भी ज़रूरी है देखना कि क्या वो स्क्रीन प्रॉपरली देख सकते हैं कि नहीं। सो ग्लासेस उनके चेकअप कराना, उनके नॉर्मल आईज़ को चेकअप कराना, रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है।
1: ठीक इसमें से रेटिनल डिटैचमेंट तो आपने बता दी, कोई और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है?
0: नॉर्मल जो होती है जैसे डिजिटल आई स्ट्रेन जिसे कहा जाता है बच्चों की आंखों के अंदर, फिर रिफ्रैक्टिव एरर जैसे हमने उस तरह की बात की, फिर इसी तरह आपकी आंखों के अंदर जो है ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, फिर आपकी आंख जो है खिंचाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर अफेक्ट करती है, क्योंकि आप जो है जितनी ज़्यादा बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर डिजिटल आई स्ट्रेन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं 60% बच्चों का जो ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है। सो जितना आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है उतनी आपकी आंखें ड्राई रहती हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है। सो इनडायरेक्टली सारी चीज़ों का असर आपकी आंख के ऊपर चल रहा है, जब आपकी आंख ड्राई ज़्यादा रहती है उसमें इन्फेक्शन होने का या एलर्जी होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है, फिर उसके साथ साथ आपके ये कि आपको ऐसे लगता है जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपको आंख दर्द हो रही है, ये काफ़ी कॉमन कंप्लेंट्स है बच्चों के अंदर। ऑफ कोर्स ये कंप्लेंट्स रिफ्रैक्टिव एरर के साथ भी हो सकती है, यानी आपकी एनक का नंबर या चेक नहीं किया या गलत है। तो आपको नॉर्मल बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, बोर्ड नज़र नहीं आ रहा स्कूल के अंदर, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, सो वो नॉर्मली रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से होता है, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन और ज़्यादा बुरी हो सकती, यानी ज़्यादा हो सकती। सो ये ज़रूरी है कि जैसे रूल्स ऑफ 20 बात है, जिसके अंदर आप हर 20 मिनट्स के बाद ब्रेक लें 20 सेकंड्स के लिए, और 20 फीट को जो है वो देखना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। वो अगेन आप जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाएं कि वो खुद करें कि हर 20 मिनट्स के बाद आपने ब्रेक लेनी है, और 20 सेकंड आप 20 सेकंड को ज़्यादा कर दे, उसको बोलो एक मिनट की ब्रेक लेनी या 5 मिनट की ब्रेक लेनी या 10 मिनट की ब्रेक लेनी, वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे खुद सीखना शुरू हो जाएंगे कि हाँ इसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। रूल्स ऑफ 20 इवन छोटों से बड़ों तक सबके ऊपर अप्लाई होता है, स्पेशली जो स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और जिन स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ये कि बच्चों के अंदर उससे वो उनकी आँख जो उतनी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगी, उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा उसका।
1: ठीक कि 20-20-20 जो रूल है वो अगर अपनाया जाए, मगर आपने कहा कि जो सेकेंड टाइम जो है वो ड्यूरिंग उसमें ज़्यादा कर सकते हैं 1 मिनट,
0: आप बच्चों को रेस्ट ज़्यादा दे सकते हैं। नॉर्मली रूल्स ऑफ 20 एक नॉर्मल सबके लिए, अडल्ट से लेके बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर आप उस रूल को 20 सेकंड से ज़्यादा करके 1 मिनट नहीं तो 5 मिनट्स इवन आप जो उनको बच्चों को कह सकते हैं आप रेस्ट करें, आपने अगर ये वीडियो ख़त्म कर लिया, ये पेज ख़त्म कर लिया, सो बस अब आप थोड़ा सा रेस्ट करें, आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको आजकल बच्चों को रोकना और ये कहना कि आप बिल्कुल स्क्रीन ना देखें, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और फिर वही बात के कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है, कि उनको ये समझाना कि उस जो भी वो कंटेंट देख रहे हैं हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं क्या देखा जा रहा है, और हम उसको ताकि मोनिटर कर सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ आजकल जो अवेलेबल है वो स्क्रीन के ऊपर है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के तौर पर हो, चाहे वो नॉलेज के तौर पर हो, चाहे वो किसी भी तौर पर, इवन कम्युनिकेशन के तौर पर हो। सो वो सारी चीज़ें आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आजकल, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपके होमवर्क्स हैं, आपकी सारी चीज़ें हैं,
1: सो सारी जो हैं वो ज़ाहिर डिजिटल हैं आजकल, जैसे ऑनलाइन
0: और से और डिजिटल हो जा रही हैं। आप ये कह लें कि आजकल तो पेपर और उससे सारे लोग बाय रही जा रहे हैं, यानी आप अगर आप हमारे स्कूल्स वगैरह देख लें आप जो हैं वो 90% तकरीबन जो डिजिटलाइज हो चुके हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसी टाइम सबमिट कर देते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन है, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अंदर लेनी है वो भी ऑनलाइन है, कुछ प्रोजेक्ट्स के अलावा मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुके हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, अगर किसी बच्चे ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आजकल आपके पास AI आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बच्चों को अगेन उसको भी पॉजिटिवली तौर पे किस तरह उससे ले सकते हैं, यानी उसको इस तरह ना लिया जाए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे लें, लेकिन एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन देन उसको अपने हिसाब से उसको डाल सकते हैं कि मैं उसको किस तरह प्रेजेंट किस तरह करूं आइडियाज़ के लिए।
1: ठीक डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि जेनेटिक्स या वो कोई उसका किरदार है कि अगर पेरेंट्स को है या किसी और को तो पॉसिबिलिटी है?
0: डेफिनेटली, अगर आपके पेरेंट्स में कोई भी चीज़ अगर आपके दोनों पेरेंट्स के अंदर है, मैं आंखों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, चाहे वो ग्लूकोमा हो, चाहे वो कैटारेक्ट हो, चाहे वो मायोपिया हो,

0: जेनेटिक फैक्टर्स भी उसके अंदर उतने ही कॉमन है। अगर माँ बाप को ऐनक लगी हुई है तो बच्चों को ऐनक लगने का चांसेस ज़्यादा हैं। अगर उनका मायोपिया हाई था, देखिए अगर हम प्लस माइनस सिक्स से ऊपर चले जाते हैं सो हाई मायोपिक की तरफ चले जाते हैं। सो अगर उनका हाई मायोपिया था तो आपका भी काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्यों? क्योंकि आपके जो जेनेटिक है, आपका बिल्ड जो है, जैसे हमारी शक्ल हमारे माँ बाप के ऊपर और फैमिली के ऊपर होती है, ऐसी आपकी आँख की जो है सारे वो उसके ऊपर होती है, क्या शेप होगी, कितनी बड़ी होगी, वो सारी चीज़ें जेनेटिक उसको अफेक्ट करती हैं जी।
1: ठीक है जी डॉक्टर, इसमें जैसे ज़्यादा छोटे बच्चे हैं आमतौर पर तो स्कूल गोइंग तो वो बता देते हैं, अच्छा हमें स्क्रीन वो बोर्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो बाकी क्या कंप्लेन होती है, क्या जो है अलामतें होती हैं?
0: देखिए सबसे जो है आई स्ट्रेन से मतलब यानी सर दर्द, दर्द जो है ना आपको बचा के कहेगा,
1: छोटे बच्चे जो है वो नहीं बता,
0: वो आपको ये बताता है कि मुझे जो है ना आंख से सही नजर नहीं, यानी आंख जो है ना, दूसरी चीज झपकता बहुत ज्यादा है, ब्लिंकिंग, आंखें मलता बहुत ज्यादा है, आंखें ब्लिंक बहुत ज्यादा करता है। अगेन ये जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा जो ब्लिंक कर रहा है या आंख मल रहा है वो सिर्फ कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो, यानी कोई उसके ऐनक की ज़रूरत है, कभी कभार आई स्ट्रेन की वजह से, ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है। बट अगर बच्चा कॉमनली अपनी आई ब्लिंक कर रहा है या अपनी आंख को बड़े आंख बंद करने कोशिश करके देखने की कोशिश कर रहा है स्क्रीन को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ग्लासेस के जो नंबर चेक करें। और मैं कहूँगा कि आजकल के दौर में स्पेशली साल में एक दफ़ा बच्चों का नंबर ज़रूर चेक होना चाहिए, इवन उनको ऐनक नहीं भी लगी तो, यानी आपको किसी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास नहीं, आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं जो कि रेडीली अवेलेबल है बाय किसी भी उस हेल्थ सेंटर्स के अंदर अवेलेबल है, आप एक दफ़ा चेक करा सकते हैं। अगेन वो नॉर्मली बेहतर होगा, जैसे आप एक चेकअप कराते हैं रेगुलर, सो आंखों का एक रेगुलर चेकअप बच्चों का साल में एक दफ़ा ज़रूर होना चाहिए। स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है इधर जो कि एक्चुअली रेगुलर चेक करते हैं, आई विजन वगैरह टेस्टिंग होती है, सारा कुछ होता है, सो उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग हो जाती है इसकी। बट स्टिल अगर आपको लगे कभी भी ये शक हो कि आपके बच्चों का नज़र नहीं सही आ रहा है या ब्लिंक ज़्यादा कर रहे हैं, आंखों को मलते ज़्यादा हैं, दूर से बैठ के नहीं देखते, नज़दीक जा के देख रहे हैं स्क्रीन को, अगेन वो ज़रूरी नहीं है कि आंख के अंदर कुछ हो, लेकिन आंख का जो ग्लासेस का चेकअप है वो नॉन इन्वेसिव, यानी उसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, नंबर लगा के चेक करना है सिर्फ।
1: ठीक ठीक, कि इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि सारे फैक्टर ही जैसे इन्वायरमेंटल है, जेनेटिक्स है, वो आपने बताया कि वो उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे डायग्नोज भी हो गया जैसे आप, तो फिर क्या आप क्या करते हैं?
0: मायोपिया
1: जैसे स्क्रीन टाइम की हम ज़्यादा बात तो वो कर रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह डॉक्टर से पूछेंगे क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं, मगर इसमें डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, या सिर्फ आप आई टेस्ट करते हैं उसमें आई साइट देखते हैं, कैसे करते हैं?
0: नॉर्मली जो मायोपिया और रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर है, जो हम ग्लासेस चेक करते हैं, एक चीज़ होती है जिसको हम रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपका नंबर देता है, आप एक मशीन के अंदर आंख के नंबर वो आपको दे देता है। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है रेटिनोस्कोपी, वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आप जो है आप बच्चों का रिफ्रैक्टिव एरर चेक करते हैं, वो सारा कुछ चेक करते हैं कि बच्चों का जो ऑप्टोमेट्रिस वगैरह उससे चेक करते हैं कि उसके अंदर आपका एरर कितना है, वो आपको जो है मैन्युअली एक ग्लासेस वगैरह लगा के वो देखते हैं आंख के अंदर कितना एरर है। फिर आपका सब्जेक्टिवली चेक होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिवली एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिवली से मतलब ये कि मशीन ने नंबर दे दिया आपको, लेकिन बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों के अंदर एक अकोमोडेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप ये कह लेंगे वो पुराने कैमरे आते थे जिसके अंदर फोकस और जूम होता था, बच्चे बहुत जल्दी जूम और फोकस कर सकते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नंबर कभी कभार करेक्ट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, सो इसलिए आपको मैन्युअली चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, ताकि बच्चों को आप कितना नंबर देना है वो ज़रूरी होता है। सो फिर वो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट वगैरह है वो लोग चेक करते हैं कि आपका नंबर जो है एक्यूरेट है, उनको मैन्युअली ग्लासेस पहन के नंबर डाल के। और ये दूसरी चीज़ एंगल एक्सेस एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर कभी कभार सिंपल प्लेन नहीं
1: एंगल
0: होता, एंगल होते हैं, सो एंगल कितने एंगल पे है और बच्चा क्या उस एंगल पे कंफर्टेबल है कि नहीं। मशीन जो आपको नंबर देता है जरूरी नहीं कि बच्चा उस पे कंफर्टेबल, इसलिए वो ज़रूरी है कि आप उसको मैन्युअली चेक करके उनसे पूछें कि क्या वो कंफर्टेबल हैं। और स्पेशली जब बच्चों को नई नई ऐनक लगती है, टेक्स टाइम के वो एडजस्ट करें उस नंबर के ऊपर। आप लोग देखें कि अगर आप अपनी भी ऐनक एक ऐनक से दूसरी ऐनक को चेंज करें
1: तो आपको थोड़ा
0: टाइम लगता है उसके अंदर। सो इसी तरह वो बच्चों को भी टाइम लगता है उसको चेंज करने में। और बच्चे को, जैसे हमने पहले भी बात की, बच्चों को नहीं पता कि मेरी नज़र कमज़ोर है या ये ब्राइट कैसे होगा, इसीलिए फिर वही बात कि वो ज़रूरी है चेक कराना कि उसको नज़र को

0: नज़र बनने की जो उम्र होती है वो 10 साल होती है.
1: अच्छा.
0: सो इसलिए ज़रूरी है कि वो रिफ्रेक्टिव एरर को चेंज कराया जा सके. सो इसमें भी स्क्रीन आपकी ये हो सकता है एक तरह से मदद कर सकती है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका बच्चा सही तरह नहीं देख रहा स्क्रीन को या दूर करीब बैठ के देख रहा है ऐसे ही. उसके बाद जैसे हमने बात की जैसे छोटी स्क्रीनों से आपको डिस्टेंस रखना बड़ा ज़रूरी है. आपका एक आर्म लेंथ का डिस्टेंस होना चाहिए स्क्रीन से.
1: अच्छा.
0: जो छोटी स्क्रीन
1: छोटी जैसे मोबाइल
0: जब मोबाइल गाले टैब लगा लें.
1: अच्छा,
0: मोबाइल कहूँगा ज़्यादा छोटी स्क्रीन है. टैब्स वगैरह आप जितना बच्चों को छोटी स्क्रीन पे दिखाना अवॉइड कर सकते हैं. छोटी से मुराद मोबाइल स्क्रीन पे टैब वगैरह या उससे बड़ी चीज़ वो बेहतर है उनके लिए. एटलीस्ट स्क्रीन टाइप के आंखों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. अगेन कंटेंट और उसकी बात नहीं हो रही, ये बात ये कर रहे हैं कि आंखों पे उसका
1: क्या असर.
0: एक आर्म लेंथ का डिस्टेंस जो है ना स्पेशली टैब के अंदर वो जरूर होना चाहिए. और टीवी वगैरह से जरा जितना दूर उसको कंफर्टेबल डिस्टेंस है वो रखना चाहिए. लेकिन टैब वगैरह से एक आर्म लेंथ. पोस्चर काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि
1: अच्छा।
0: बच्चों का पोस्चर काफ़ी ज़्यादा उस पर अफेक्ट करता है. रात को सोने के टाइम पे अवॉइड किया जाए स्क्रीन टाइम को.
1: कितनी देर पहले तक अगर आप
0: जी आप कह लें कि एक दो घंटे से पहले बंद कर देना चाहिए क्योंकि बच्चों की नींद वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है. बच्चों को डिफरेंट इसका इम्पैक्ट नींद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि बच्चों को नींद नहीं आती बच्चे स्क्रीन के ऊपर. दूसरी चीज़ क्या रात को सोने के टाइम बेड पर जो है बच्चों को नहीं प्रोवाइड करना चाहिए स्क्रीन वगैरह जिसकी वजह से अगेन वो आपके सुपरविजन में रहेंगे. आप मॉनिटर नहीं कर सकते. सो आपको ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन रख के बताना चाहिए. इसलिए उसका बैलेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है. उनको आप ये ना करें ज़बरदस्ती कि नहीं आप स्क्रीन यूज़ ही नहीं कर सकते और ये भी ना करें कि बहुत एक्सेसिव यूज़ किया जाए. उसका बैलेंस और आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे हमने पहले कहा आउटडोर एक्टिविटीज़
1: करती हैं इसमें
0: मायोपिया प्रोग्रेशन के लिए. आउटडोर एक्टिविटी से अच्छी ट्रीटमेंट कोई नहीं है जी.
1: ठीक.
0: आजकल ड्रॉप्स दिए जाते हैं एट्रोपिन के मायोपिया के प्रोग्रेशन को कम करने के लिए. लेकिन उसमें भी यही कहा जाता है कि आप वो ड्रॉप्स डाल के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी कराई जाए.
1: अच्छा.
0: ताकि आप जितनी एक्टिविटी करेंगे वो जितना बच्चा बाहर देखेगा नॉर्मल रेगुलर लाइट में देखेगा उतना उसके आंख बेहतर होगी उतनी उसके मायोपिया प्रोग्रेशन बेहतर होगा.
1: ठीक ठीक. किस तरह से वो फिर देखिए बाकी जो ग्लासेस वगैरह लगाए जाते हैं वो तो
0: अगर जैसे अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल ग्लासेस लगाता है और उसने कोई स्पोर्ट्स खेलनी है आउटडोर एक्टिविटी खेलनी है आपको उस टाइम ग्लासेस उतारने नहीं चाहिए. उनको सेफ ग्लासेस देने चाहिए. आजकल काफ़ी प्लास्टिक मिराफ्लेक्स टाइप के ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी बच्चों के प्लास्टिक है जो कि अनब्रेकेबल होते हैं तकरीबन बड़े फ्लेक्सिबल ग्लासेस होते हैं. ऐनक को कभी कभार समझा जाता है कि जो बच्चे ऐनक पहनते हैं शायद वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते. स्पेशली जो स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल हो गया क्रिकेट टाइप हो गया. लेकिन एक्चुअली बच्चों को उसमें अवॉइड नहीं कराना चाहिए बल्कि उनको सेफ ग्लासेस देने चाहिए जिसको पहन के वो स्पोर्ट्स कर सके और ऐसी स्पोर्ट्स कर सके जिसके अंदर रेगुलर टीम वर्क होता है दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन होता है. ये एक बॉन्ड और बच्चों को सिखाने में सोशल बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद देता है.
1: बिल्कुल.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें.
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आज हम बात कर रहे हैं अभी तक जो बात की स्क्रीन टाइम के हवाले से और उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि क्यों कब किस वक्त जो है स्क्रीन टाइम को हमें कम करना है कितना कम करना है और उससे जो प्रॉब्लम्स जो इश्यूज होते हैं बच्चों को उन पर भी बात की जी. डॉक्टर साहब अब हम एंड में तो ज़रूर पूछेंगे कि कैसे अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि प्रिवेंशन जो है वही बेहतरीन सबसे बेहतर भी होती है कि एमरजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं बच्चों के आई में बाज़ दफ़ा कभी कोई चोट लग जाती है कभी कोई खुद से ही वो कोई ऑब्जेक्ट कोई पेंसिल कोई कुछ इस तरह की बहुत सारी जो है प्रॉब्लम सामने आती हैं तो क्या क्या हो सकती हैं.
0: कतर के अंदर यानी स्पेशली हमारे अहमद हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो कॉमन एमरजेंसीज आती हैं उसमें सबसे कॉमन एमरजेंसी एक तो कॉर्नियल एब्रेशन की है.
1: अच्छा.
0: कॉर्नियल एब्रेशन का मतलब होता है बच्चे के जो कॉर्निया पे है जख्म हो जाता है ये कह लें एब्रेशन हो जाती है. नॉर्मली उसका मेन रीज़न एक तो पेपर वगैरह इस पेंसिल वगैरह जैसे आपने बात की दूसरे बच्चे किसी की उंगली लग गई है क्योंकि वो इतनी जल्दी लगती है कि बंदा ब्लिंक नहीं कर सकता. अल्लाह ताला ने एक सेफ मैकेनिज्म बनाया ब्लिंक करने का. आप जब भी कोई चीज़ आपकी आँख के अंदर जाने लगती है आप आँख बंद

0: कर लें या ब्लिंक करते हैं सो नॉर्मली वो इतने आपको एक सेफ्टी देता है इन्फेक्शन से किसी और ये मतलब कह लेंगे मक्खी मच्छर से कोई चीज़ आपके आँख के अंदर ना आए कोई चीज़ वैसे गिरदो गुबार से सारी चीज़ों से लेकिन ये उंगली वगैरह कभी बार क्योंकि इतनी तेज़ी से आती है और आप शायद ध्यान नहीं दे रहे उस वजह से
1: छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा रबिंग रब भी कर रहे होते हैं ये भी प्रॉब्लम
0: बिल्कुल रबिंग के वजह से भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली कॉर्निया की जो एपिथेलियल सरफेस है जो सबसे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है
1: अच्छा
0: सो नॉर्मल रबिंग से नहीं होती अनटिल के आपका कॉर्निया ऑलरेडी वीक हो कभी कभार इन्फेक्शंस के अंदर आपका कॉर्निया वीक हो जाता है स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस के अंदर सो उसमें स्लफिंग हो सकती है उसकी यानी वो जो ऊपर वाली जिल्द है कॉर्निया की वो डैमेज हो सकती है लेकिन नॉर्मली कॉर्निया इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता अनटिल के कोई फॉरन बॉडी जैसे कि किसी और की उंगली या अपनी उंगली बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से डिसओरिएंटेड होते हैं उनका बैलेंस बड़ों की तरह इतना ज़्यादा नहीं होता सो कभी कभार खेलते हुए कोई चीज़ लगने में क्योंकि वो इतने आपको उनको पता नहीं लगता कि वो कभी कभार अपने हाथ से कभी कभार किसी दूसरे के हाथ से खेल के दौरान वैसे कुछ हो गया स्कूल में घर में सो जो कॉर्नियल अब्रेजन है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है बच्चों के लिए एक तो आपकी आँख काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है प्लस बच्चा आँख बंद नहीं कर सकता
1: अच्छा
0: क्योंकि जब आप आँख बंद करते हैं बच्चों को ऐसे फील होते हैं जैसे आँख के अंदर कोई कुछ चीज़ फॉरन बॉडी जो उनको टच कर रहा है वह रिड़क पड़ रही है यानी तो आप आँख बंद करते हैं तो आपसे इस वजह से बच्चा जो है वो उसी टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा रोता है स्पेशली मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बता नहीं सकते कि हमें हुआ क्या है क्योंकि कभी कभार वो खेल रहे होते हैं और आप एकदम से देखते हो बच्चा काफ़ी ज़्यादा रो रहा है आँख जोर से बंद की हुई है या एक आँख को मली जा रहा है ज़ोर ज़ोर से कि इस आँख के अंदर कुछ और आँख भी लाल है सो नॉर्मली वो इसी वजह से होता है कि उनके जो कॉर्निया के अंदर है वो छोटा सा जख्म हो जाता है
1: अच्छा
0: ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कॉर्नियल अब्रेजन अगेन कॉर्नियल अब्रेजन के अंदर इमरजेंसी के अंदर या डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर वो
1: क्या मतलब क्या अलामत होती है बच्चों की आमतौर पर वही रेडनेस और
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेडनेस टीरिंग बहुत ज़्यादा होगी
1: अच्छा इस
0: और बच्चे आँख नहीं खोलेंगे
1: अक्सर हम बात जब करते हैं एडल्ट की उसमें तो ये बहुत तो काफ़ी डेंजरस है तो बच्चों में क्या हीलिंग हो जाती है
0: इसकी इसीलिए उसका ज़रूरी है कि उसको जल्दी दिखाया जाए अगेन कॉर्नियल अब्रेजन के ये कह लें कि क्योंकि वो बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है आँख नहीं बंद कर सकता सो नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को जल्दी ले आते हैं एमरजेंसी के अंदर सो इसमें डिले नहीं होता क्योंकि बच्चा सो ही नहीं सकता अच्छा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता सो जब वो हमारे पास इमरजेंसी में आता है सो हम उसको एग्जामिनेशन अगर कंफर्म होगी कॉर्नियल अब्रेजन एक स्पेशल ड्रॉप्स होते हैं जो स्टेन करता है कॉर्निया के
1: अंदर
0: सो स्टेन से हमें पता लग जाता है कि अगर अब्रेजन है कि नहीं फिर उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑइंटमेंट देना ताकि वो मरहम लगा के आँख बंद कर दी जाती है या ड्रॉप्स दिए जाते हैं नॉर्मली मरहम से क्या होता है बच्चे की जब आँख बंद कर देती है तो वो लुब्रिकेट हो जाती है
1: ठीक है
0: तो आँख बंद हो जाती है सो वो आपकी अपनी लिट की वजह से वो आपको फॉरन बॉडी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है दूसरी चीज़ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन का अगर कॉर्नियल अब्रेजन ख़राब हो जाए तो कॉर्नियल एब्सेस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है जिसका मतलब है आपका कॉर्निया काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है क्योंकि ये जो एब्सेस जो इन्फेक्शन है वो आपके कॉर्निया के सरफेस को डैमेज कर सकता है जो कि आपके ज़िंदगी भर के लिए कभी कभार कॉर्निया डैमेज हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक
1: है बच्चों में तो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल
0: क्योंकि उनकी नज़र भी अफेक्ट हो जाती है और कभी कभार वो उसको ट्रीट करने के लिए आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है और इस तरह नौबत आ जाती है लेकिन ये कि नॉर्मली कॉर्नियल अब्रेजन काफ़ी जल्दी हील हो जाती है क्योंकि बच्चों के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है बट उसका जल्दी तशखीस करना और जल्दी पर वक्त तशखीस करना बड़ा ज़रूरी है
1: और ये कि जो पेरेंट्स हैं जैसे देखें ये नहीं है कि खुद से कुछ ना कुछ सेल्फ भी होता है ना
0: बिल्कुल आप देखें उसके अंदर कभी कभार पेरेंट्स कहते हो ये पानी डालूंगा ये चीज़ें उसको वॉश कर देंगे उससे ट्रीट नहीं होता अनटिल वॉश सिर्फ एक चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा देता है जैसे केमिकल इंजरी कोई फॉर एग्जांपल बच्चों को आपको लगा है कि कोई केमिकल चला गया आपके आँख के अंदर आपको पता है कोई धोने वाला साबुन चला गया इवन धोने वाले कोई फर्श धोने वाला कोई साबुन हो गया इस तरह की चीज़ें हो गई क्योंकि उसके अंदर एसिड या एल्कलाइन होता है
1: जिससे आपके पास इस तरह के कोई पेशेंट्स होते हैं
0: बिल्कुल जी काफ़ी पेशेंट इस तरह के नॉर्मली अडल्ट्स ज़्यादा आते हैं केमिकल इंजरीज के अंदर अडल्ट ज़्यादा आते हैं स्पेशली जो लोग गाड़ी के अंदर बैटरी वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं या कोई जो घर के अंदर यानी वॉशरूम वगैरह की सफाई हो रही है या किचन की सफाई हो रही है इस तरह के अंदर क्योंकि उसके अंदर कॉस्टिक एसिड वगैरह काफ़ी ये जो लोग हाँ कभी कभार आपको पता है कुछ चीज़ पड़ी है कोई लिक्विड पड़ा है बच्चों ने खोल के गलती से उसको खोल लिया आँख के अंदर डल गया कुछ इस तरह हो गया ब्लीच

0: डल गई, साबुन डल गया कभी कभार, साबुन इटसेल्फ कैन बी इरिटेटिंग टू द आईज. सो वो केमिकल इंजरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंख को धोना. 10 से 20 मिनट जो है आंख को धोई जाए पानी से, और उसके बाद आपको इमरजेंसी आना चाहिए. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने वो नहीं भी किया, सो जब आप इमरजेंसी आते हैं, हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि आंख को धोया जाता है, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स उसको धो के उसके बाद कोई चीज़ किया जाता है, ताकि जो भी जो केमिकल्स अंदर गए हैं वो बाहर निकल सके, धुल जाए. क्योंकि उसको जितनी जल्दी साफ़ किया जाए उतनी जल्दी होता है, क्योंकि अल्कलाइन जो होते हैं जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, ब्लीच हो गई, इस तरह की चीज़ें होगी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेनिट्रेट जल्दी करते हैं आपकी आँख की बाहर वाली लेयर को, कॉर्निया के बिल्कुल अंदर तक चले जाए. सो इस वजह से ज़रूरी होता है कि उसको जितना जल्दी धोया जाए उतना बेहतर है.
1: ठीक, तो उसके बाद फिर बाकी जो भी उसका ट्रीटमेंट,
0: उसके ट्रीटमेंट नॉर्मली अगेन वो उसके अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं. फिर वही बात, अगर उसने आपके वेसल्स के जो सफ़ेद है आपका कंजक्टिवा है उसकी वेसल्स को डैमेज कर दिया है, सो पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स, विटामिन सी और टेट्रासाइक्लिन, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं. प्लस कभी कभार आपको जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है उसके अंदर, क्योंकि उसके आपकी जो कंजक्टिवा से वो हीलिंग ख़त्म हो जाती है. सो स्टेम सेल्स आपको पता है हीलिंग को प्रमोट करते हैं, तो कभी कभार वो
1: तो ये जो प्रोसीजर है वो करना पड़ता है उसमें. ठीक, यहाँ लिस्ट आप सुन रहे हैं कि जो इसी तरह इमरजेंसी इमरजेंसी है ये ना?
0: बिल्कुल, केमिकल इंजरीज 100% इमरजेंसी, कॉर्नियल एब्रेजन इमरजेंसीज, फिर इन्फेक्शन हो गई हमारी कंजक्टिवाइटिस. अगेन कंजक्टिवाइटिस वगैरह बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकता है, क्योंकि उस कभी कभार ऐसा बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों की आँख की लेयर को डैमेज कर सकता है.
1: ठीक है,
0: क्योंकि हमारे कॉर्निया के किसी भी चीज़ को अफेक्ट करता है तो हमारा विजन, स्पेशली फिर वही बात जैसे हमने पहले की कि बच्चे 10 साल तक उनका विजन डेवलप होता है, अगर उस टाइम इन्फेक्शन या किसी भी वजह से कॉर्निया का सरफेस डैमेज हो गया कि तो उनकी नज़र फॉरएवर डैमेज होने का खतरा होता है. ये बच्चों और बड़ों के अंदर फर्क है. बच्चों के विजन डेवलप हो गया होता है, ठीक है थोड़ा टाइम जरूर लगेगा,
1: ये कि वो
0: उतना ज्यादा विजन के लिए खतरनाक नहीं होता अंटिल के कोई परमानेंट डैमेज हो.
1: क्योंकि मगर ये कि एडल्ट्स में तो वो एक डैमेज हो जाता है, जिससे हमने बात की कोई ओब्रेजन है, इवन कॉन्टेक्ट लेंसेज
0: बिल्कुल आप उतार रहे हैं निकाल रहे हैं, आप कह लें कि यंग अगर कोई अडल्ट है उसके अंदर उनको निकालना और पहनना नहीं आता, तो आपने स्क्रैच कर दिया, आप कभी कभार मिस हो जाता है कि कॉन्टेक्ट लेंस गया किधर है, इस तरह की चीज़ें तो जरूरी है.
1: ये बहुत सारे पेशेंट्स तो नहीं कहेंगे, नॉर्मली कॉन्टेक्ट लेंस लगा रहे हैं मगर वो पीछे चले जाते हैं, तो वो फिर किस तरह से क्या करते हैं?
0: देखिए नॉर्मली अगेन कॉन्टेक्ट लेंस पीछे नहीं जाता
1: जी, नॉर्मल नहीं जाता जी,
0: लेकिन अगर पीछे चला जाए तो उसको निकालना जरूरी है. होता क्या है,
1: खुद से ही करते रहे या कंसल्ट
0: कर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके अंदर है कि आपने पहली चीज पैनिक नहीं करना, क्योंकि पैनिक के अंदर क्या होता है आप उसको ढूंढने लग जाते हैं, स्क्रैच करने लग जाते हैं. वही जैसे हमने कॉर्नियल एब्रेजन की बात की, कॉर्नियल एब्रेजन भी करते हैं, आंख उंगली भी मारी जाती है, इन्फेक्शन भी उसकी वजह से हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है और कॉन्टेक्ट लेंस भी नहीं मिलता किसी के लिए भी, क्योंकि कॉन्टेक्ट इतनी छोटी चीज़ है. एक तो आप पहले ही पैनिक मोड के अंदर होते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस गया क्या, दूसरी चीज़ खुद अपनी आंख के अंदर ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग खुद उसको स्लिट लैम्प के अंदर यानी माइक्रोस्कोप के अंदर देख के
1: देखते हैं, क्योंकि हम खुद तो नहीं कर सकते, होल्ड भी नहीं कर सकते,
0: कभी कभार आपके लिड के अंदर चला जाता है. सो आपको लिड को एवर्ड करके उसको निकालना पड़ता है. सो नॉर्मली ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर हो भी जाए सो आपको उस टाइम पैनिक नहीं करना चाहिए. और अगर हमारे पास इमरजेंसी के अंदर ऐसे केसेस आते हैं सो उसमें आपको डॉक्टर के पास जरूर जाके दिखाना चाहिए, रादर देन कि आप खुद कोशिश करें और आंख को और डैमेज करें.
1: सही, क्योंकि खुद कोशिश ज्यादा की जाती है कि किसी ना किसी तरह
0: आप जो है उस टाइम काफी ज्यादा पैनिक किधर चला गया, आंख के अंदर तो नहीं चला गया, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि वो आंख के बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता.
1: अच्छा,
0: मैक्सिमम लिड के उधर तक जाता है, उससे आगे नहीं जा सकता. सो अगेन इस वजह से आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं और आपसे निकलेगा भी नहीं. कभी बार होता है कि कॉन्टेक्ट लेंस एक्चुअली कहीं नहीं गया होता, वो बाहर निकल गया था या गिर गया होता
1: जी, ये बिल्कुल.
0: लेकिन क्योंकि आप उस टाइम पैनिक मोड में और आपको पता नहीं लगता, दो चीज़ें जरूरी है. एक तो किसी और की मदद लेना
1: जी,
0: कि आप देख लें कि वाकई कॉन्टेक्ट लेंस बाहर आया है कि नहीं आया है. दूसरी चीज़ क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं मायोपिक हूँ, मेरी नज़र ऑलरेडी कमज़ोर है, मैं कॉन्टेक्ट लेंस नज़र के लिए लगा रहा हूँ. अब कॉन्टेक्ट लेंस तो बाहर गिर गया, मुझे तो ऑलरेडी नज़र नहीं आ रहा
1: जी.
0: सो आप उस टाइम एक तो पैनिक करें और आपको नज़र भी नहीं आ रहा. सो इसलिए ज़रूरी है किसी की हेल्प ले लीजिए कि देख ले कि वाकई कॉन्टेक्ट लेंस बाहर गिरा है कि नहीं. दूसरी

0: इस आंख में बिला वजह उंगली वगैरह मार के देख नहीं देखना चाहिए। फिर वही बात, दूसरा बंदा ज्यादा बेहतर देख के बता सकता है कुछ है कि नहीं,
1: कुछ है बिल्कुल।
0: और इनके एनी
1: बहुत आम, बहुत ज्यादा है ये प्रॉब्लम के,
0: कॉन्टैक्ट लेंस काफी ज्यादा जरूरत है। स्पेशली होता क्या कि आप फॉर एग्जांपल किसी दावत भी गए हैं, पार्टी भी गए हैं, रात लेट नाइट हो गया है, आप कह लें ऑलरेडी आप थके हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एकदम से हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए होते हैं, नींद के अंदर होते हैं, क्योंकि ये केसेस नॉर्मली आते हैं रात को लेट नाइट,
1: जैसे आप उसको ऑफ मतलब उतारते
0: हैं, क्योंकि बंदा पहले ही थका हुआ होता है और कोशिश कर रहा होता है
1: जल्दी से जो है
0: निकाले उसको, तो उसके अंदर पैनिक के अंदर बंदा चला जाता है। प्लस दूसरी चीज, कभी कभार कह लें कि आप मेकअप वगैरह किया होता है उसके साथ, सो वो चीज है क्योंकि वो आंख के अंदर और ज्यादा आपको मेकअप वाला हाथ कहने चला गया इस तरह की चीज, तो वो काफी ज्यादा डैमेज जो है हो जाता है बल्कि।
1: ठीक ठीक ठीक। और इसी तरह से जो है मुख्तलिफ जो चीजें, इन्फेक्शन भी इसी तरह से आंख जो है ख़ास तौर पर जो है वो रगड़ी भी जाती है, और बच्चों की बात तो क्योंकि उन्हें वैसे भी पता नहीं होता और वो इतनी केयर भी नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल, देखिए छोटी चीज़ ऐसे पेपर कट है आपकी आंख पे, पेपर कॉर्नियल एब्रेशन, छोटा सा स्क्रैच करता है, लेकिन वो स्क्रैच बच्चों के लिए काफ़ी पेनफुल होता है, बच्चे अपनी आँख बंद नहीं कर सकते और वो इतना ज़्यादा तड़प जाते हैं, क्योंकि आँख आपकी थोड़ी सी भी लाल हो पानी निकली आएगा, बच्चे रोते रहेंगे, सो इसलिए वो ज़रूरी है कि उस बात को समझना कि आप कोई बगैर किसी और ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास लेके जाए, क्योंकि उसको बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा दवाइयों से, उनकी आंख के कोई ना कोई किसी चीज़ से बर वक्त, यानी
1: ठीक ठीक कि वो लेके जाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है,
0: चेक कराना डॉक्टर को, चेक कराना,
1: जी डॉक्टर को चेक करवाना,
0: ऑप्थल्मोलॉजिस्ट,
1: ऑप्थल्मोलॉजिस्ट।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आज हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त, पहले तो मैं उसकी बात की कि स्क्रीन टाइम जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है ग्लोबली पूरी दुनिया में, और ये कि इमरजेंसीज़ क्या क्या हो सकती हैं बच्चों की, आई इमरजेंसीज़ में, तो वो डॉक्टर ने हमें बताया डिटेल में डॉक्टर साहब, और कौन सी जैसे आपने बताया कि एब्रेशन हो सकती है, रगड़ते हैं बच्चे, या कोई पेपर या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है वो लग गया, इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन
0: इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज काफ़ी ज़्यादा कॉमन,
1: ठीक है,
0: स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, ट्रॉमा हो गया, बच्चे फॉर एग्जांपल कल क्लास के अंदर बैठे एक दूसरे पेंसिल फेंकी आंख के अंदर लग गई, क्रिकेट फुटबॉल स्पेशली क्रिकेट इंजरीज काफी ज्यादा कॉमन है, फुटबॉल इंजरी, बैडमिंटन से शटल कॉक की काफी ज्यादा इंजरीज काफी कॉमन है। सो फिर वही बात, बच्चों को जो स्पोर्ट्स है उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, स्पेशली एज के हिसाब से
1: जी,
0: आपके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे जब कोई स्पोर्ट्स करते हैं उसके अंदर जो एज है वो बच्चों की के हिसाब से वो एनवायरनमेंट दी जाए, ये ना देखा जाए कि एक तो बच्चों का लेवल नहीं है, यानी कोई बड़े बच्चे हैं कोई छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, क्योंकि उसके जब बच्चे खेलते हैं तो उसके अंदर आपको पता है थोड़ी सी धींगा मुश्ती हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर, और जिस टीम स्पोर्ट्स है जैसे फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई जिसमें एक फॉरन ऑब्जेक्ट काफ़ी फास्ट आ सकता है, जैसे कि बॉल, जो फुटबॉल है हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, शटल कॉक हो गया, इस तरह के वॉलीबॉल हो गया
1: जी।
0: क्योंकि ये बॉल आपकी आंख पे डैमेज कर सकता है काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली बच्चों के अंदर, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस उतने तेज़ नहीं होते रोकने के लिए,
1: सो
0: कभी कभार बच्चों को ये नहीं पता लगता कि हमने खेलना किस तरह है, इसलिए नॉर्मली सुपरविजन के अंदर बच्चों को खिलाना चाहिए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एज ऑपरेट अप्रोप्रिएटली उनको देखना चाहिए कि क्या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और किस लेवल पे खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए लेकिन उसको इन्वायरमेंट देनी चाहिए कि कैसे बच्चे खेल रहे हैं उनको देखना चाहिए,
1: ठीक।
0: सो ये जो, क्योंकि कभी कभार जो बॉल हिट करता है आपके आंख के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो मोस्ट कॉमन डैमेज है उसे कहते हैं हाइफीमा, यानी आपके आंख के अंदर खून आ जाता है, जो इसका काफ़ी कॉमन है बच्चों के अंदर, वो खून की वजह से जो आपके आयरिस का लेयर है जो आपके कॉर्निया के बैक होता है, यानी कॉर्निया के पीछे होता है, जो आप अपना ब्राउन पार्ट देखते हैं, जो कलरफुल पार्ट देखते हैं आंख का, उसके अंदर खून आ जाता है
1: जी
0: तो उसकी वजह से आपके जो बच्चों की इन्फ्लेमेशन आपके बच्चों की नजर फिर वही बात अफेक्ट हो सकती है आपके बच्चों का आंख का प्रेशर ज्यादा हाई जा सकता है आपके बच्चों को कैटरेक्ट हो सकता है आपके बच्चे का रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है सो इसलिए ये जरूरी है कि आप जो है अपने बच्चों का अगेन उसका ख्याल रखा जाए कि बच्चों को स्पेशली जितना छोटा बॉल होता है वो उतना ज्यादा डैमेज कर सकता है
1: अच्छा ठीक
0: क्योंकि वो आपकी आंख के ऊपर डायरेक्टली

0: है, आंख की सॉकेट पे डायरेक्टली। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को समझाया जाए कि जो बॉल जब फुटबॉल वगैरह या कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए
1: जी। इस तरह से जो बाज़ ब्लंट ट्रामा भी होता है, ट्रामा तो है ही, बाज़ दफ़ा एकदम इट्स सडन तो फौरन नहीं पता चलता, तो
0: फिर इस तरह से चोट स्पेशली कभी बार बच्चे हो सकता है आपको बता ना रहे हैं
1: जी,
0: कभी बार होता है इस तरह के ट्रॉमा हो गया, बच्चे खेल रहे थे ट्रॉमा हो गया लेकिन बच्चे ने आपको बताया नहीं, आंख बिल्कुल सही है, आपको बाहर से आंख सही लग रही है उस टाइम पे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जहाँ तो इन्फ्लेमेशन थी या इन्फेक्शन थी क्योंकि उसका बर वक्त इलाज नहीं हुआ सो वो ज़्यादा हो गई। सो इसलिए अगर कोई ट्रॉमा वगैरह बच्चों को ये बताना चाहिए कि उसी टाइम आके बताया जाए, क्योंकि कभी कभार वही बात बच्चों को जैसे हमने पहले भी बात की कि नहीं पता लगता कि हमें इंजरी हो गई, हमें नज़र नहीं आ रहा, अब बच्चे को एक आंख से तो नज़र नहीं आ रहा बट दूसरी आंख से नज़र आ रहा है, तो इस तरह क्या होता है एक आंख उनकी डेवलप हो जाती है दूसरी आंख डेवलप नहीं होती,
1: ठीक है,
0: जहाँ तक ट्रॉमा की वजह से या किसी भी वजह से। सो जो हम नॉर्मली देखते हैं आंख, हम दोनों आंखों से देखते हैं, बाइनोकुलैरिटी होती है, लेकिन जब बच्चे की एक आंख बढ़ जाती है और दूसरी आंख नहीं डेवलप होती तो एक आंख कमज़ोर रह जाती है, तो वो ज़िंदगी भर के लिए नज़र जो है दोबारा नहीं बन सकती।
1: ठीक है, इस तरह डॉक्टर बाद साथ बच्चे खुद भी या फौरन जैसे कोई चीज़ आँख में डाल ली, या वैसे तो है कि कोई पेपर उससे और भी आपने जैसे बताई कि ये इंजरीज हो सकती हैं तो वो भी बाद साथ नहीं पता चलता।
0: मैं आपको कह रहा हूँ जी लोग शार्प ऑब्जेक्ट्स छुरी कान इस तरह की कैंची बच्चों के हाथ में आ गई, बच्चों की आंख जो है वो पेनिट्रेटिंग ग्लोब आगे आप हमने हाइफीमा की बात की, आगे चले जाएं कॉर्निया का पूरी लेयर ही, अब्रेजन का मतलब है सिर्फ उसके सरफेस पे चोट लगती है, कॉर्नियल पेनिट्रेटिंग इंजरी का मतलब है कॉर्निया पूरा कट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल बच्चे छुरी से खेल रहे हैं, शार्प ऑब्जेक्ट से खेल रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन ही छोटे बच्चे, फिर आपकी पेंसिल की जो नीडल होती है वो काफ़ी जो टिप होती है यानी वो काफ़ी शार्प होती है, पेन्स हो गए इस तरह की चीज़ें, अगर आप उसको देखें कंपस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट। सो उसको बच्चों के ऑब्जर्व आप ये देखें जो बच्चों को दी जाती है क्राफ्ट्स वगैरह के लिए सीजर्स वगैरह वो नॉर्मली ब्लंट होती है, बट अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल शार्प आ गई है, बड़ा बच्चा था फॉर एग्जांपल उनके पास अगर आ गई है, छोटे बच्चे ने ले ली है भागते भागते, क्योंकि होता क्या कि बच्चा एकदम से चीज लेके भागता है, वो जब भागता है आप उसको रोकने की कोशिश करती है तो उसकी वो उसके अंदर जो है ना बच्चे को इंजरी होने का बहुत
1: चांसेस,
0: और ज्यादा से ज्यादा इंजरीज होती ऐसी ही है कि आप उससे छीनने की कोशिश की या दो बच्चे आप उसमें छीन रहे थे एक दूसरे से छीनने के चक्कर में, क्योंकि जब आप छीनते हैं आपका कंट्रोल नहीं रहता और वो सीधा आपकी आंख की तरफ या किसी भी बॉडी पार्ट की तरफ वो आ गई, वो लग जाती है आपकी आंख की तरफ। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज पकड़ ली है तो उससे आराम से लिया जाए, इन ऐसे मैनर में लिया जाए कि डैमेज लगे ना उसको। तो इस पहली चीज़ तो शार्प ऑब्जेक्ट्स हमेशा सेफ स्पेस में रखने चाहिए
1: जी,
0: कि बच्चों के हाथ में ना आए या उसके उधर ना यानी वो उससे डैमेज ना हो सके।
1: ठीक जी डॉक्टर साहब, इसमें जो बाजू का फिर क्या कॉम्प्लिकेशन खुदा नास्ता आंख,
0: देखिए अगर आंख का आपका कॉर्नियल पूरा पेनिट्रेटिंग ग्लोब इंजरी तो उसको सर्जरी करनी पड़ती है, उसको सूचर करना पड़ता है पूरा, और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कॉर्निया तक रहे, कभी कभार आंख के अंदर आयरस भी आपका डैमेज हो जाता है, आपका स्क्लीरा जो आपका व्हाइट पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, इसके पीछे आपका रेटिना होता है, दूसरे टिश्यूज होते हैं। सो हर एक डैमेज को प्रॉपरली ट्रीट करने में उसको हील करने में जितनी कम इंजरी उतनी जल्दी हील होती है, जितनी ज़्यादा इंजरी है उतनी उतना टाइम लगता है। फिर वही बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी चीज़ अफेक्ट होती है वो विजन है
1: जी,
0: और बच्चों के सारी जिंदगी के लिए वो विजन जो है वो डैमेज हो जाता है।
1: ठीक है, इस एडॉक्ट से बीच में इन्फेक्शन जैसी हो जाती हैं तो क्या उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कब जब अगर ट्रीट ना किया जाए या किस वक्त?
0: बिल्कुल देखिए, वायरल कंजक्टिवाइटिस सेल्फ लिमिटिंग होता है नॉर्मल, अगर आपको लगे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस काफी ज्यादा हो गया, बैक्टीरियल हो गया और उसके
1: पिंक आई भी थोड़ा सा,
0: बिल्कुल पिंक आई के अंदर यानी नॉर्मली वायरल कंजक्टिवाइटिस सेल्फ लिमिटिंग होता है,
1: ठीक है
0: अगेन, लेकिन उसका मसला ये कि आपको डॉक्टर को दिखाना फिर भी जरूरी ताकि उसके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की जाए, क्योंकि अगर उसके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कभी कभार स्पेशल वायरस जैसे एडीनो वायरल है स्पेशल टाइप का वायरस होता है जो कि आपके कॉर्निया के सरफेस को भी अफेक्ट करता है, वो उसके ऊपर धब्बे बना देता है, तो जिसकी वजह से आपके कॉर्निया का सरफेस जो है डैमेज हो जाता है, कभी बार उसको ट्रीट करना पड़ता है, कभी बार ट्रीटमेंट से भी दवाई से भी उसको फर्क नहीं पड़ता, तो आपको उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, कॉर्निया की ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, स्पेशली यंग बच्चे जब बड़े हो जाते हैं क्योंकि फिर वो आपके विजन पे इफेक्ट करता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है जो पस निकलती है आंख के अंदर से. सो अगर आपकी आंख के अंदर से कोई ज़्यादा पस निकल रही है, कोई इस तरह के डिस्चार्ज हो रहा है जो कि येलोइश है, वाइटिश है, स्पेशली बच्चों की बात हो रही है, आंख लाल है उसकी, सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि उसका मोनिटर किया जाए. यूवीआइटिस वगैरह, यानी कभी कभार कंजक्टिवाइटिस यूवीआइटिस के ऐसा आता है. यूवीआइटिस का मतलब होता है आंख की आपकी अंदर वाली लेयर भी अफेक्टेड हो गई है उसके अंदर. सो वो जितनी जितनी वो इन्फेक्शन अंदर जाई जाएगी वो उतना उतना डेंजर यानी ख़तरा ज़्यादा बढ़ता रहता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके रेटिना तक पहुँच जाती है.
1: ठीक.
0: अगर वो रेटिना तक पहुँच जाए तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा यानी आपकी परमानेंट आई डैमेज होने का खतरा होता है.
1: ठीक. इसमें सबसे रेड फ्लैग्स भी होते हैं ना कि जब बहुत ही ज़रूरी है, वो क्या क्या हो सकते हैं?
0: सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी आँख जब भी लाल हो.
1: अच्छा.
0: जब भी लाल हो इसका मतलब है ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और डेंजर साइन है आपकी आँख की तरफ से. दूसरी चीज़ आपकी आँख से कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, किसी तरह का भी डिस्चार्ज निकल रहा है. आपकी विजन, अगेन बच्चे कभी कभार नहीं बता सकते, बट स्टिल अगर आपको बच्चे कह रहे हैं मुझे नहीं नज़र आ रहा सही तरह या मुझे धुंधला नज़र आता है, उसको ये नहीं लेना चाहिए कि ये कोई टेम्पररी आज नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है वो आपको नेक्स्ट टाइम ना बताए, हो सकता है उसको वाकई सही नज़र नहीं आ रहा. तो ये सारी चीज़ों को इसको यानी सर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभार कम्युनिकेट सही तरह नहीं कर सकते, बता नहीं सकते सही तरह, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है आंख के अंदर. सो अगर आपको कोई भी साइन नजर आए जैसे कि आंख लाल हो गई है, आंख के अंदर से डिस्चार्ज निकल रहा है, नजर सही नहीं आ रहा, आपको लगा कि आपकी आंख के अंदर कोई व्हाइटिश स्पॉट आ गया
1: जी.
0: कुछ आ गया जैसे बच्चों को कैटरेक्ट हो गया, आपको नजर आ रहा है कि कोई व्हाइट है, क्योंकि कभी कभार वो व्हाइट जो रिफ्लेक्स है वो कैंसर की भी निशानी हो सकती है.
1: अच्छा.
0: रेटिनोब्लास्टोमा जिसे कहा जाता है. सो इस तरह की चीजें जरूरी है कि बच्चों के अंदर वो देखा जाए और उसको चेक कराया जाए.
1: बिल्कुल जी. जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि कोई भी आप ऐसी चीज़ अब नॉर्मल हम कहेंगे ना कि कोई भी आप देखें तो बच्चों का चेकअप
0: एक साल में जैसे हमने बात की चेकअप
1: चेक
0: और अगर आपको लगे रेड फ्लैग है कोई भी चीज़ है, अगेन आपको एक दफ़ा चेक ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपको नहीं पता होता वो कितनी ज़्यादा डेंजर होगी. और कभी कभार ये होता है कि आपके डिले की वजह से आप आते हैं तो आप कहते हैं हमें यानी पता नहीं लगे, हम देख रहे थे, हम समझे कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बच्चों के अंदर आपको उसको ज़रा सीरियस लेना चाहिए, स्पेशली आँख जब आपकी कोई अबनॉर्मल यानी उसकी उसकी वजह कथा में कोई अबनॉर्मेलिटी है यानी आपको लग रहा है लाल है सिर्फ यानी कोई धब्बा है या आँख में से डिस्चार्ज निकल रहा है, आपको कोई ऐसी चीज़ कोई भी नज़र आँख आपकी खुल नहीं रही सही तरह, आपको इरीटेशन हो रही है, सो ये सारी चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए.
1: इस तरह हम कह सकते हैं अगर सीवियर पेन है या वो तो फिर भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है, वेट नहीं करना.
0: जैसे पेरिसेप्टल सेलुलाइटिस कहते हैं.
1: अच्छा, अच्छा.
0: पेरिसेप्टल सेलुलाइटिस बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. बच्चों को कोई चीज़ काट गई
1: जी,
0: मच्छर वगैरह कह लें, कोई भी कह लें कि कीड़ा मकोड़ा काट गया, सो उनकी जो बाहरी लेयर है काफ़ी सूज जाती है. आँख के अंदर डैमेज नहीं होता बट वो आँख आपकी खुलती नहीं, आपकी पूरा आँख इर्द गिर्द सूज जाता है, आपका पलके वगैरह सारी सूज जाती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर कन्वर्ट.
1: अच्छा,
0: हो सकता है.
1: अच्छा,
0: ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का मतलब है आपके मसल्स आंख के इन्वॉल्व हो गए, आपकी आंख मूव नहीं करती, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, और कभी कभार वेरी वेरी सीवियर केसेस के अंदर आपके दिमाग के अंदर तक जा सकते हैं, क्योंकि वो आहिस्ता कवर्नस साइनसिस तक, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अंदर से कनेक्टेड हैं. सो इसलिए छोटी चीज़ को उसको बर वक्त एंटीबायोटिक्स देना, ये देखना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सारी चीज़ें. प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस बच्चों के अंदर यानी काफ़ी कॉमन हो जाता है, स्पेशली कोई चीज़ काट जाए या उनको कोई वैसे इन्फेक्शन होगी उसकी वजह से.
1: डॉक्टर साहब, वाइट जो पीपल है कैटरेक्ट भी बच्चों में होता है जैसे आपने बताया हमें, एक तो ये कि खुदा ना हंसता वो कुछ ना कुछ ग्रोथ भी हो सकती है, मगर वाइट भी कैटरेक्ट भी हो सकता है.
0: वाइट रिफ्लेक्स को हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं.
1: अच्छा.
0: क्योंकि वाइट रिफ्लेक्स को कैटरेक्ट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा उसके डिफरेंशियल है. सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल उसका रेटिनोब्लास्टोमा है. रेटिनोब्लास्टोमा का मतलब आँख का कैंसर. वो कैंसर एक तो ये कि आपकी आँख पूरी डैमेज और आपकी लाइफ जो है बच्चे की लाइफ खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वाइट रिफ्लेक्स को हम तब तक कैटरेक्ट और सारी बाकी चीज़ें का इलाज है क्योंकि रेटिनो हम तब तक उसको बहुत सीरियस लेते हैं क्योंकि जब तक रेटिनोब्लास्टोमा रूल आउट नहीं हो जाता वो हम उसको यही सोचते हैं समझ यानी उसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि जब तक पहले रेटिनोब्लास्टोमा की पूरी तहकीक की जाएगी उसका स्कैन उसके सारा कुछ वो नहीं निकला तब हम दूसरे डायग्नोसिस की तरफ आते हैं
1: अच्छा,
0: क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ सेविंग
1: जी
0: रेटिनोब्लास्टोमा आपकी जो है लाइफ के अंदर वो उसको खतरा हो सकता है इस वजह से उसको सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है वाइट रिफ्लेक्स को बाकी उसके डिफरेंशियल में आपने जैसे बोला कि कैटरेक्ट हो सकता है पीएचपीवी आंख के अंदर रेटिना के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट है कोर्स डिजीज यानी आंखों के पर्दे की कुछ डिजीजेज हैं जो कि उतनी खतरनाक नहीं है जितना रेटिनोब्लास्टोमा जो कि आंख का कैंसर है वो
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब इसमें जिसे आपने हमें डिटेल में बताया मगर अब प्रिवेंशन पूछना चाहूँगी किसी तरह कौन सी एहतियात ऐसी की जाए कि इंजरी बच्चों को ना हो
0: देखिए इंजरी इटसेल्फ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एहतियात के मॉनिटर बच्चों को स्पेशली जैसे हमने बात की शार्प ऑब्जेक्ट से बच्चे जब खेल रहे हैं बच्चों को ये समझाया जाए कि आप किस तरह प्रोटेक्टिवली खेल सकते हैं आप अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को दे इंजरी ना होना ये कह के होएगी नहीं नहीं लेकिन आप उस बच्चों को
1: कोशिश कर सकते हैं
0: ऐसे कर सकते हैं कि इंजरी हो भी तो एक लिमिटेड उसके अंदर हो आप इस तरह करें कि डैमेज कम से कम हो ऐसी इंजरी ना हो जो कि बच्चे के लिए जो है फ्यूचर पे अफेक्ट कर सकती
1: है
0: अगेन हम आंख की बात कर रहे हैं तो विजन पे अफेक्ट कर सकती है बच्चों को शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रखें बच्चों को ये बताएं कि इवन स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर कैसे नॉर्मली खेला जा सकता है ऐसे खेला जा सकता है और सुपरवाइज उसको सही तरह प्रॉपरली स्पेशली यंग बच्चों के अंदर किया जाए
1: और उसको स्क्रीन टाइम
0: उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों देखना चाहिए हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि एक तो कम्युनिकेशन होना चाहिए स्क्रीन टाइम एक्सेसिव नहीं होना चाहिए आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन स्क्रीन टाइम को पॉजिटिव कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है
1: ठीक जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने डिटेल में बताया और सामिन मोहतरम इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर उस्मान नईम और फौजे शफीक को इजाज़त दीजिए हमारे साथ रहिए असली भंडारा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है वो एहतियात के साथ आप जरूर करने दीजिए अल्लाह हाफिज
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdu Radio, FM 107, aap se mukhatib hai. طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے اب کی خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر یونیورسٹی کے ہیلتھ سیکٹر کالج کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب شیخ علی احمد بن سیف آل ثانی نے اپنا حرمت سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مجوزہ قرارداد پر منعقدہ ایک میڈیا بریفنگ میں شرکت کی انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والی مشترکہ مشق اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے صحت کی عالمی تنظیم WHO نے واضح کیا ہے کہ کروز شپ پر ہنٹا وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود موجودہ صورتحال کو عالمی وبا یا وبائی بحران کا آغاز قرار نہیں دیا جا سکتا اور روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ 8 سے 10 مئی تک مکمل جنگ بندی نافذ رہے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور بابر دو ریڈیو FM 107 پر سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ

0: अमरीकी टैरिफ फौरी तौर पर कहीं ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। और सेहत के आलमी तंजीम WHO ने वाज़ह किया है कि क्रूज शिप पर हेंटा वायरस के फैलाव के बावजूद मौजूदा सूरत हाल को आलमी वबा या वबाई बहरान का आगाज़ करार नहीं दिया जा सकता, अगर इस वाक़े में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। WHO के शोबा इंसदाद व तैयारी की डायरेक्टर मारिया वान करखोफ ने कहा है कि यह सूरत हाल अगरचे तशवीशनाक है, ताहम इसे वबा या आलमी वबा के आगाज़ के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाकया इस वायरस से मुतालिक तहकीक में सरमायाकारी की अहमियत को उजागर करता है। इधर नदरलैंड्स की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि एक फ़्लाइट अटेंडेंट को, जिसका मुख्तसर राबता युंडेई से नामी क्रूज शिप पर हंटा वायरस से मुतासर एक शख्स से हुआ था, एम्स्टरडेम के एक अस्पताल में दाखिल किया गया है। वज़ारत के मुताबिक मस्कूरा खातून में हल्के अलामात ज़ाहिर हुई और एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्हें दीगर मरीजों से अलग रखा गया है, जबकि उनके हंटा वायरस टेस्ट जारी हैं। और लीजिए समीत खबरों के अख्ताम से कबल एक मरतबा फिर समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस। कतर फाउंडेशन बराए तालीम साइंस और समाजी तरक्की के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन शेखा मोजा मतनासर ने कतर यूनिवर्सिटी के हेल्थ सेक्टर कॉलेज की ग्रेजुएशन तकरीब की सरपरस्ती फरमाई है। अक़वामे मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब शेखा अली अहमद बिन सैफ अल सानी ने अबनाए हुरमुस से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुजव्वज़ा क़रारदाद पर मुनाक़िद एक मीडिया ब्रीफिंग में शिरकत की। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया की मेज़बानी में मुनाक़िद होने वाली मुश्तरक मशक अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन को तजारती माहदे के तहत अपने वादे पूरे करने के लिए 4 जुलाई तक मोहलत देंगे। के साथ सामीन आज का दूसरा पहला मुफसल नशीरा अपने अख्ताम को पहुंचता है। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन सलमान अल मोमिन और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
7: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में।
8: एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में
7: वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
8: कुछ मिलेगा यहाँ।
7: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट,
8: एमओआई वीकली अपडेट,
7: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर,
8: विद आरजे सर्वर।
6: मेहतराज ऐप पर लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म की एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन, अपडेट या रिन्यू करने का तरीका क्या है, आइए जानते हैं। वजारत दाखला ने मेहतराज ऐप पर एक नई सहूलत मुतारफ कराई है, जिसके जरिए लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म की एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन, अपडेट या रिन्यू की जा सकती है। ये सर्विस जनरल सर्विस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है और चंद आसान कदम में मुकम्मल हो जाती है। स्टेप बाई स्टेप तरीका कुछ इस तरह है। सबसे पहले मेहतराज ऐप ओपन करें और अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाएं। मेन मेन्यू से जनरल सर्विस पर क्लिक करें। जनरल सर्विस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद अपडेट या रिन्यू एस्टेब्लिशमेंट सर्विस चूज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद कैटेगरी में से लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म सिलेक्ट करें। जरूरी मालूमात एंटर करें, डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करें और कंफर्म करें। तमाम डेटा कंफर्म करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अप्रूवल का इंतजार करें। अप्रूवल के बाद रिक्वायर्ड फीस पे करें। अप्रूवल और पेमेंट मुकम्मल होने पर अपडेटेड या रिन्यूड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐप के मेहतराज ई वैलेट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, आसान और तेज है। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती और वहीं सर्टिफिकेट सीधा ई वॉलेट में मिल जाता है। ये सर्विस एमओआई की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज को और बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कानून पर अमल करना जरूरी है। वजारत दाखला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग शौक से करने वालों को हिदायत दी है कि हिफाजती कानून पर सख्ती से अमल करें, ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी महफूज बनाई जा सके। डाइविंग शुरू करने से पहले तस्दीक शुदा ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है, जो किसी ऑफिशियल और मकबूल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समुंदर और मौसम की सूरत हाल भी चेक करना चाहिए, ताकि नामुनासिब हालात में डाइविंग से परहेज किया जा सके। वजारत ने वाज़े तौर पर कहा है कि अकेले डाइव ना की जाए और ना ही खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग की जाए जो तवज्जो को या होश पर असर डालती हो। समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच करना लाजमी है, ताकि ये

यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया बीओआई लगाएं ताकि कश्तियां और लोग मुतनब्बे रहें। डाइविंग के दौरान गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हदूद से दूर रहना जरूरी है। और खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। हिफाजती कवानीन पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी से उठाएं। वजारत दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी की जानिब से शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी ने मिली पोल टेक एक्स 2026 एग्जीबिशन और समिट की हिफाजती तकरीब में शिरकत की। ये इवेंट मरीना बे सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर सिंगापुर में मुनक्किद हुआ, जिसमें पब्लिक सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स के शोबों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स की जानिब से वसी बैनुल अक्वामी शिरकत देखने को मिली। एग्जीबिशन के दौरान मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड सेशंस और पैनल डिस्कशंस का एहतमाम किया गया, जिनमें सिक्योरिटी सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी कॉपरेशन को मजबूत बनाने और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के हवाले से तबसरे और मशावरत शामिल हैं। दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी ने जमहूरिया सिंगापुर के मुस्लिम अफेयर्स के एक्टिंग मिनिस्टर इंचार्ज और होम अफेयर्स के सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोहम्मद फैसल इब्राहिम से मिली पोल टेक एक्स 2026 एग्जीबिशन और समिट की इफ्तिताह के मौके पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के शोबों में मौजूदा ताबुन का जायजा लिया और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की। इसके साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने GCC सिक्योरिटी मीडिया कमेटी की 21वीं मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मीटिंग में वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मुफ्ताह ने की। इजलास के दौरान एजेंडा के मुख्तलिफ नुकात पर बहस की गई और जरूरी रिकमेंडेशंस को मंजूरी दी गई। दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अलसानी ने रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के दोस्त मुल्क के दौरे के दौरान पुलिस ऑपरेशंस कमांडर सेंटर और सिंगापुर नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का दौरा किया। ये दौरा मिलीपोल टेक एक्स 2026 एग्जीबिशन और समिट में शिरकत के हवाले से उनके सिंगापुर के दौरे के मौके पर हुआ। दौरे के दौरान पुलिस ऑपरेशन कमांडर सेंटर के जिम्मेदारान ने उन्हें मरकज के काम करने के तरीके, रिपोर्ट्स और रिसीव और प्रोसेस करने, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करने और मुख्तलिफ सिक्योरिटी यूनिट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन के निजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्हें बताया गया कि ये मरकज शहरी अमन व अमान बरकरार रखने और फौजी और सिविल सिक्योरिटी इदारों के दरमियान रबते में किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ उन्होंने सिंगापुर नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के ऑपरेशनल सिस्टम का भी जायजा लिया। IFC को समंदरी मालूमात को शेयर और एनालाइज करने का एक एडवांस्ड प्लेटफॉर्म करार दिया जाता है, जो मैरीटाइम रूट्स की हिफाजत, ट्रांजेशनल क्राइम्स से मुकाबला और समंदरी सलामती को बेहतर बनाने के लिए रीजनल और बैनुल अक्वामी सतह पर कोशिशों को सपोर्ट करता है। इस मौके पर शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद

0: सानी ने सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मैदानों में सिंगापुर की तरक्की याफ्ता महारत को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि दोनों जानिब सिक्योरिटी सिस्टम्स को मजीद तरक्की देने के लिए तआवुन को मजबूत बनाना और तजुर्बात का तबादला बेहद जरूरी है। पुलिस एकेडमी जो सिक्योरिटी रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर के जरिए नुमाइंदगी कर रही है, इसने सिविल डिफेंस काउंसिल के तआवुन से एक साइंटिफिक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसका उन्वान इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल और इंटीग्रेटेड नेशनल सिस्टम की जानिब रखा गया। इस सेमिनार में वजारत दाखिला के लीगल एडवाइजर और पुलिस एकेडमी के जनरल सुपरवाइजर मेजर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अल माल और पुलिस सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल और सिविल डिफेंस काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन मेजर जनरल मोहम्मद जासिम अल सुलैती ने शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स और अफसरान भी इस सेमिनार का हिस्सा बने। सेमिनार का बुनियादी मकसद कौमी तजुर्बात का जायजा लेना, बेहतरीन रिवायात का तबादला और अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजीद बेहतर बनाना था, ताकि इदारों के दरमियान बेहतर हम आहंगी कायम और मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी का दर्जा बुलंद किया जा सके। सेमिनार के दौरान दो बुनियादी मौजूदात पर खास कर तवज्जो दी गई। पहला मौजू इदारती चैलेंजेस, रिस्क रजिस्टर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग पर मरकूज था, जबकि दूसरे मौजू में नेशनल रिस्पांस मैकेनिज्म, बिजनेस कंटिन्यूटी और सपोर्टिंग पॉलिसीज का तफसीली जायजा लिया गया। इस साइंटिफिक सेमिनार को इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से कौमी सतह पर मनसूबा बंदी को मजबूत करने और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी निजाम को फरोग देने की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया। वजारत दाखिला ने आवाम से अपील की है कि रियासत कतर की समंदरी हदूद में अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज या अनजानी डेब्रीज नजर आए जो इंटरसेप्ट की गई मिसाइल से या ड्रोन से मुतालिक होने का शक हो तो फौरन इत्तला दी जाए। वजारत ने वादे किया है कि ऐसी चीजें खतरनाक हो सकती हैं जो अवाम की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं, इसलिए अवाम को सख्ती से हिदायत दी जाती है कि ना तो इन चीजों के करीब जाएं और ना ही उन्हें छूने की कोशिश करें, बल्कि सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुतालिक इदारों को ही इस किस्म के अशिया से निपटने का काम करने दिया जाए। वजारत दाखिला ने मजीद कहा है कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में फौरन इमरजेंसी नंबर 999 पर राबता किया जाए, ताकि मुतालिक अथॉरिटीज मंजूर शुदा सेफ्टी प्रोसीजर्स के मुताबिक जरूरी इकदाम कर सकें और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अपनी और दूसरों की सलामती के लिए इन हिदायत पर अमल करें, नामालूम चीजों से दूर रहें और सिर्फ ऑफिशियल इदारों को इत्तला दें। जेट स्की से महफूज रहते हुए लुत्फानंदोज होना है तो चंद बुनियादी हिफाजती हिदायत पर अमल बहुत जरूरी है। पानी पर जाने से पहले हमेशा मौसम का हाल जरूर चेक करें। अगर तेज हवाएं चल रही हों या लहरें ज्यादा बुलंद हों तो बेहतर है कि पानी में जाने का इरादा पोस्टपोन कर दें। इसके साथ साथ जेट स्की का मुकम्मल जायजा लें, इंजन ठीक तरह काम कर रहा हो और फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ हो, इस बात को यकीनी बनाएं। जब आप पानी में उतरें तो लाइफ जैकेट पहनना कभी ना भूलें और किल स्विच लैनयार्ड को ठीक तरह से बंद करके ही सवारी शुरू करें। हमेशा मुकर्रर करदा राइडिंग एरियाज के अंदर ही जेट स्की चलाएं और स्विमिंग जोन्स, आउटर बीच एरियाज और पानी के किनारे बने घरों से मुनासिब फासला रखें। सेफ स्पीड में सवारी करें, दूसरों से दूरी बरकरार रखें और किसी किस्म के खतरनाक स्टंट्स या लापरवाही से परहेज करें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी इमरजेंसी का सामना हो तो फौरन 999 पर कॉल करें। याद रखें, असल हिफाजत आपकी अपनी जिम्मेदारी से शुरू होती है। इन हिदायत पर अमल करके आप ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बना सकते हैं और जेट स्की का तजुर्बा खुशगवार बन सकता है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
0: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो।
1: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
0: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पे।
1: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
0: ऑन पिच परफेक्ट,
1: क्योंकि यहाँ क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
0: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
1: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, marhaba. Studio ki ghadi mein is waqt theek 10:02 ho rahe hain. To sami ikram, kya hal chal bataiye, khair khairiyat? Ek martaba phir hazir khidmat hoon main ek bahut hi gran qadar azim ul qadar program juma reflection lekar.
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो अल्लाह जी साहब इकराम, जुमा एक के बाद एक जुमा आता है, फिर ईद के बाद एक ईद, और इस तरह जो है ना एक हज के बाद दूसरा हज। मुझे याद है हम इसी स्टूडियो में बैठकर पिछले दो जो हज के जो मौसम गुजरे हैं इनमें अरफा के दिन के हवाले से गेस्ट के साथ बैठकर हम लोग

ले रहे थे और ये वो यादें आ रही हैं, लेकिन अब देखें दोबारा एक हज का मौसम आ गया है। हज का मौसम और ये जो इबादत के जो मौसम होते हैं ना, ये मौसम जब इसके आमद आमद होती है और तो यहाँ दो किस्म के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। एक तो वो जो यानी मैदान में उतर जाते हैं, फील्ड पे आ जाते हैं और मेहनत इबादत करते हैं और जो मकासद है इस पर फोकस करते हुए, यानी मकासद को छोड़ें, यानी इबादत जो है ना वो करते हैं, इसमें दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है। रमज़ान आ गया, क़यामुल लैल शुरू कर दी और ये नमाज़ें रोज़े रखें सही से, क़ुरबानी आमद आमद है तो फिर क़ुरबानी की जो मवेशी है जो जानवर है इसकी तैयारी शुरू से, फिर पूछ रहे हैं इधर उधर भाई कि तो आप क्या हिस्सा ले रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी बातें इनकी जारी व सारी हैं और सारी जो है ना सब सिलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, तो ये तो अपने इबादत में है, जो भी है दिलचस्पी लेते हैं। और एक किस्म के ऐसे लोग हैं जो इबादत में दिलचस्पी नहीं लेते, ठीक है, तो वो पैवेलियन में बैठकर ऐसे देख रहे होते, बड़ा नमाजी है तू, क्या कर रहा है, सब कुछ बड़ा कामयाब हो गया है तो, हाँ तुम्हारे बरादरी की इधर उधर सारी जो है ना भरमार कर रहे हैं वो लोग, मार के ये जुल्म ढाए मजालिम ढाए जाओ, तुम बड़े एसी में आके नमाज पढ़ के बड़े सुकून में मस्जिद से निकलते हो और फिर कुर्बानी दे रहे हो, ये वो बड़े यानी इबादत और शायर इस्लाम की जो है ना अहमियत को तुम जिंदा कर रहे हो माशाल्लाह, ये वो। तो ये देखें एक वक्त इबादत में ये दिलचस्पी नहीं लेते, यानी बहुत वो नहीं कि नमाजी हैं या फिर सही से रोज़े भी नहीं रखते, लेकिन इनका काम है सिर्फ तबसरा करना, तजिया करना, बैठे एनालिसिस कि अरे बहुत वो दिखा रहे हो ना, जज्बा दिखा रहे हो बहुत, ये कब सब काम करने वाला नहीं। तो ये लोग सिर्फ यानी पस्त हिम्मती का बायस बनते हैं, यानी करते तो नहीं है लेकिन उम्मत में जिस सतह पर जो काम है, जो जिस सतह पर वो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी वो रुकावट डालते हैं इस तरह की बातें करके। तो इन्हीं में ये है, यानी ये मुहावरा है, यही लोग जो है ना इस मुहावरे के कायल होते हैं कि 900 चूहे खाकर या 700 चूहे खाकर एक एक यानी अनगिनत शुमार है यहाँ पर बिल्ली हज को चली। तो अच्छा ये हो गए दूसरी किस्म। अच्छा एक तीसरी किस्म में मुझे याद आ रहा है, तीसरी किस्म के लोग ऐसे हैं जो यानी एक तरफ जज्बा भी है होश भी है, जोश भी है होश भी है, इबादत में भी दिलचस्पी ले रहे होते हैं और फिर हर चीज़ को एक अवलविया और प्रायोरिटी की बुनियाद पर जो है ना तमाम तर चीज़ों को तदबीक और एक शेड्यूल के बुनियाद पर वो आगे बढ़ते हैं। तो जोश भी है होश भी है, अमल में दिलचस्पी भी है और दीन के जो मकासद हैं अहदाफ हैं इसको सही से समझ रहे होते हैं। तो ये अगरचे बहुत कम है, बहुत कम है, अक्सर बेशतर हमारी हालत ये कि हम तो या तो इबादत में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे होते हैं लेकिन दीन के सही मकासद जो असल मकासद है इससे बहुत दूर हो, यानी ऐसे ही जो रस्म व रवाज के तौर पर कुछ अदा कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना हदीस में है कि काफ़ी ऐसे रोज़ेदार हैं काफ़ी ऐसे नमाज हैं कि दरअसल यानी इनकी यानी आखिर ये जो हो रहा है उनके नामाल से ये कि वो भूखे रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बस यही और कुछ नहीं, उन्हें इसका कोई जजा नहीं मिलने वाला। दैट इज़ ए बहुत बड़ी यानी हिला देने वाली बात है ना कि बंदा रोज़ा भी रख रहा है नमाज पढ़ लेकिन मकबूल नहीं है, मकबूलियत नहीं है इन आमाल की, क्यों कबूल क्यों नहीं हो रहे हैं ये आमाल। तो इसकी वजह यह है कि वो दिल में वो इस्लाम की सही मकासद अहदाफ नीयत की खलूसियत ये बातें वहाँ मफकूद है, नहीं पाई जा रही हैं। तो ओवरऑल ये तीन किस्म के लोग होते हैं और जैसा कि हमने कहा कि दूसरी किस्म के जो लोग हैं जो इस तरह के मुहावरे कह रहे होते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली,
तो आज हम इसी मुहावरे पर ही हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगी।

कि भाई अब तो हज का मौसम आ गया है, तो कई लोग ऐसे जो है ना इस तरह के जुमले बोल देते हैं, और बिलखुसूस आप तो आपको पता है कि यानी ये मुहावरा उन लोगों के लिए बोला जाता है जो एक उनका एक मनफी रवैया था अरसा भर, अब अचानक से वो जो हज पर जाकर अपने आप को कुछ अलग फेस देने की कोशिश होती है। हमारे यहाँ होते हैं ना कि वो हाजी नाम के शुरू में हाँ बड़े बड़ा एक लकब इस्तेमाल करते हैं हाजी, वैसे आपको यानी इन ममालिक में, अरब ममालिक में, बिलखसूस खलीजी ममालिक में ऐसे अलकाब की इस्तेमाल आपको नज़र नहीं आएंगे, चूँकि ये लोग शुरू में नाम के शुरू में अलहाज या ये वो अलकाब का भरमार हमारे यहाँ के लोग ही करते हैं, चाहे वो कोई आम सब कोई आवाम में से हो या फिर कोई खवास में से हो, बड़ा कोई यानी साइंटिस्ट हो या फिर आलिम दीन हो या जो भी हो, हमारे यहाँ एक वो होता है कि बड़े से बड़े अलकाब यूज़ करने के लोग पागल होते हैं, कि जितना ज़्यादा अलकाब इस्तेमाल किए जाएंगे उतना ही उसका जो है ना मकाम और मर्तबा है। हमारे मुझे याद आ रहा है हमारे एक उस्ताद थे, तो वो कहा करते थे कि देखो तुम यानी एज ए अगर कोई जितने अलकाब यूज़ करोगे ना तो उस अलकाब के बिना पर तुम्हारी जो है ना जो अल्लाह सुबहान तआला हिसाब व किताब यौम क़यामत जो हिसाब व किताब होगी वो भी उतनी ही टफ होगी जितने अलकाब, चूँकि हर एक अलकाब के हवाले से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ रही है, आप यूज़ कर रहे हैं ये ये ये ये, तो अलहाज अगर आपने यूज़ किया तो इसकी भी एक वो है यानी लोग बड़े उस एहतराम की नज़र से वो देखते हैं कि भाई इसने हज किया है तो यानी इसके हज यानी हज किया है जिसका मतलब है अल्लाह ने अल्लाह का महबूब बंदा है तो फिर उसके एतमाद कर सकते हैं ये कर सकते हैं। तो बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं आपको पता है कि वह हज सिर्फ करते हैं दिखावे के लिए और अपनी एक पहचान एक शनाख्त बना के बस आ जाते हैं, फिर आके वही हालत जो पहले की थी, तो वो दिखावे के लिए शुरू में ही नीयत अलग है कि नाम के शुरू में अलहाज का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, तो अलहाज लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बड़े आलम दीन अपने नाम के शुरू में अगर इस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाजिल और ये वो तो ये जो अलकाब होते हैं ना अगर हम यूज़ करने के लिए इतने पागल होते हैं तो वही बात है हमारे उस्ताद की जो वो कहते थे मुझे यानी हमारे जो हम जो तलबा थे उनके, तो वो इस तरह कह रहे थे कि आप लोग जितने अलकाब यूज़ करोगे उतने ही आप लोगों के साथ जो है ना सवाल और जवाब का वो मरहला उतना ही सख्त होगा। तो ये अलकाब यूज़ करने से गुरेज करने में ही क्या है हमारा खैर है, चूँकि हमारे जो असलाफ थे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा इकराम तबे ताबीन उनके पास इस तरह के इतने अलकाब नहीं थे, तो ये अलकाब बने बनाई जो बातें हम इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल इससे गुरेज करना ही यानी बेहतर है। जी सामने किराम प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शन रोज़ जुमा हर जुमे को हम 10 बजे आते हैं और जैसा कि आप की खिदमत में आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो उसका एक अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि क्या है वो एक मुहावरा एक तरफ इस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली या हज को निकली, तो ये इस मुहावरे की हकीकत इस मुहावरे के कायल और इस मुहावरे के जो यानी से मुराद जो जो तबका है समाज का, तो दरअसल इसकी क्या हिकमत है क्या राज है क्या पैगाम है ये मुहावरा क्या सही है या नहीं, तो इस तरह की जो है ना हम इंशाल्लाह तबादला ख्याल करेंगे इस मौजू पर मज़ीद। जैसा कि हमने बताया कि हज का मौसम आ गया है तो बिस्मिल्लाह ताला ये हज के हवाले से इसकी अहमियत पर भी हम गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक में वो जो हमारा रोज़ जुमे का एक अमल है

0: तो वैसे ही बंदे को सुकून मिलता है, ये अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के ऊपर खर्च किया, अल्लाह और बरकत देगा।
1: मैं वो कहता हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, वो कहते थे कि भाई जो इबादत है ना उसमें जब हम आ जाते हैं तो वहीं पर आके खर्चों वगैरह के हवाले से काफ़ी बात हो जाती है, इतना ज़्यादा खर्चा है, ये है वो है, ये सारी बातें आ जाए, लेकिन बंदा कोई अगर टूर के लिए इधर उधर जाए सियाहत के लिए तो कोई मसला नहीं है, ऐसे खोल के दिल खोल के खर्च करता है तो उसमें कोई फिक्र नहीं
0: है। आप थोड़ा सा फिर भी चेक करें, हर जगह एक बिजनेस है, यानी अगर आप हज के लिए भी जाएं ना तो फॉर एग्जांपल कोई 10,000 में दे रहा है, कोई 25 में दे रहा है, तो वो आपको कह रहा है जी इस पे खर्च करें, नहीं ऐसा भी नहीं है, आप देखभाल के देख के करें। अब ये भी नहीं है कि वो आपको इस नाम पे लूट रहा है
1: वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, जी जी हाँ हकीकत तो है।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो, अच्छा हर बंदा जिस बिजनेस में आ जाता है ना उसको प्रैक्टिस लगती है, वो इन चीजों से बढ़ जाए, उनके लिए कस्टमर है, उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है, हम जितना इनको ना इस नाम के ऊपर लें। तो बाकी आप गौर व फिक्र करें, देखें, क्योंकि इस काम में जितने पैसे जरूरी हैं वो तो लगे, लेकिन जो गैर जरूरी हैं ना सिर्फ वो आपके काम आए, आप किसी को जरूरतमंद को भी दे सकते हैं।
1: सही,
0: क्योंकि उनके पास गए तो गए।
1: सही, आप ये मुझे कहते हैं ना इतने बड़े अब तो काफ़ी लोग हज कर रहे हैं, बड़े आरामदेह हज भी है, तो दरअसल यानी इतने VVIP हज नहीं करके, वो आपकी बात बहुत मुझे उम्दा लगी, नहीं ठीक है कि आप जो है ना सही से हज करें और फिर कुछ ज़्यादा पैसे आप खर्च करते थे तो फिर आप उसे किसी ज़रूरतमंद फर्द को दीजिए, बहुत बड़ी बात है जी। जज़ाकुल्लाह खैर ज़ुल्क़रनैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया आपसे।
0: नहीं नहीं,
1: तो बारकल्लाह
0: फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: जज़ाकुल्लाह खैर, मअस्सलाम। जी सामने कराम, एक हज के हवाले से चूँकि गुफ्तगू करनी है ज़रूर, आगे मौसम आ रहा है ना, तो इस हज के शऊर को उजागर करना है। देखें लोग समझते हैं कि भाई ये हज कोई बिजनेस है, ये है वो है, सारी बातों का भी एक तरफ रखें, खुद हमारे नबी रसूल मुस्तफ़ा मुजतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आप ज़रा सोचें कि इन मकामात पर वो गुज़रे थे और उन्होंने इबादत की थी और ये हज का फरीज़ा अदा किया था, तो हाँ जिन्होंने हज अदा कर लिया, हज का फरीज़ा मुकम्मल कर लिया, तो वो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ने तौफीक दी है। अब जिन्होंने हज नहीं किया और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और फिर ये हज न करने के सिलसिले में फिर काफ़ी जो है ना लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं, अरे भाई तुम्हें क्या हज करोगे, हज करने में क्या फ़ायदा है, और ये फिर तुम्हें दूसरों की मदद करो, ये करो, तो मिस गाइड यानी यहाँ डायरेक्शन जो जहाँ जिस तरफ होनी चाहिए थी उधर से अब लोगों को मिस गाइड करते हैं। लेकिन देखें हज का फरीज़ा अगर आपने हज नहीं अदा किया तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, आपकी डायरेक्शन को सही करने के लिए, आपकी दिली सफाई के लिए, और जैसे कि हमारी बात हो रही थी तो अपने दिल, अपने आमाल, अपने गुनाह जो भी हमारी कोताही हुई है इसकी सफाई के लिए, ये बहुत ही उम्दा अमल है। और इस हज को अगर आप सही माने में सही तरह अगर आपका हज मबरूर नसीब हो तो ये बहुत किस्मत की बात होती है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें हज की तौफीक दे, अल्लाह सुब्हान तआला हमें काबे की ज़्यारत नसीब फरमाएं, और ये हज के फरीज़ा इसको सेहत व आफियत के साथ साथ जो है ना हमारी इस हज के फरीज़े को अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। बाज़ ऐसे करते हैं कि भाई वो दुनिया के तकाज़े तो ख़त्म नहीं होते ना, एक के बाद एक तकाज़ा आता रहता है, तो इसको टालते रहते हैं, तो जब उम्र रसीद हो जाते हैं तब जाकर यानी करते हैं, लेकिन वो फिर भी किसके बलबूते पर, वो बच्चे जो है ना पैसे देकर हज में भेज रहे होते हैं। अरे भाई जब आपकी ताकत है, आपकी सेहत है, आपकी आफियत है, आपके पैसे हैं, आप अभी जाएँ, आप जो हज़ारों जायदाद कर रहे हैं, जायदाद बना रहे हैं इधर उधर के, तो उस जायदाद को बाद में जब आप यानी क्या करते हैं ज़मीन बेचकर हज को निकलते हैं या वो करते हैं बुढ़ापे में, तो फिर वो बच्चों को भी ऐसा लग रहा होता है अरे कितने पैसे इधर उधर करके वो सिर्फ हज के लिए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उंगलियाँ जो है ना ये आपकी तरफ मुड़ने से पहले और किसी की तलखी सहने से पहले आप ख़ुद चले जाएं आपकी सेहत आफियत के दौर में, आपकी शबाब और ये नौजवानी के दौर में, अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको तौफीक दी है हज के शुरू जो है ना वो है, अक्सर वो बेशतर ऐसे होते हैं हज फर्ज है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, शऊर भी नहीं है इस सिलसिले में, दुनिया के पीछे लगे होते हैं। तो देखें अगर ये फ़र्ज़ है तो फिर हमें इसकी जो है ना इसकी अहमियत को सही से समझनी है और फिर इसकी अदायगी में वो जो दिलचस्पी लेनी चाहिए वो भी लेनी है। तो आप रابطہ कर सकते हैं हमें 4434377 पर इस सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए कि भाई आपको क्या लगता है आवाम का जो रुख है इस दौर में वो यानी हम इबादत में दिलचस्पी लेते हैं ज़्यादा बग़ैर किसी मकासद और इसकी जो हिकमत है ना स्ट्रेटजी फ़लसफ़ा काफ़ी इस दौर में मुझे एक चीज़ याद आ गई, इस दौर में एक दूसरा अलमिया ये भी है कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े फ़लसफ़ाबाज हैं, फ़लसफ़े पर बहुत नज़र देते हैं माशाल्लाह से, हर चीज़ का फ़लसफ़ा बयान करना उनके लिए एक दिलचस्पी की बात होती है, इबादत में दिलचस्पी नहीं लेते हाँ ठीक है बैठे बैठे हाँ बड़े फ़लसफ़ा और फ़िलोसफ़ी और ये वो बताते रहते हैं कि इसका हदफ ये है, यानी गोया के इबादत की हकीकत को नहीं समझ रहे, इबादत के मकसद को लेकर इतने वो दरपेश हैं उस मकसद के कि वो इबादत की अहमियत को ही ख़त्म कर देते हैं कि रोज़े के हदाफ ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं, इबादत के फ़लसफ़ा ये है यानी हज का फ़लसफ़ा ये है, लेकिन फिर आके इन हज की अहमियत ख़त्म, हज करने की चूँकि अगर ये जो फ़लसफ़ा है ना हदाफ को इस तरह जब हम बयान करते हैं, अब जब हदफ कहीं एक दो जगह मुतहक्क नहीं हो रहे हैं तो फिर कहते हैं भाई तो फिर हज की क्या ये इस हज की क्या कबूलियत है, इस हज की क्या ज़रूरत है ये वो, तो ये फ़लसफ़ा गिर जो होते हैं ना ये भी मुझे एक हद तक ये पसंद नहीं कि बस फ़लसफ़ा बयान करना बैठे बैठे, और कुछ होते हैं सिर्फ सब फ़लसफ़ा मकासद उनको इससे कोई यानी उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं बल्कि वो सिर्फ जो है ना इबादत में लगे रहते लेकिन उन्हें सही पता भी नहीं होता भाई इबादत का सही हदफ क्या है और हम इबादत में प्रायोरिटी के लेवल को कैसे जो है ना सही से इसके तवाज़ुन को बरकरार रखे। तो इसी हज के सिलसिले में कोई भी आपको आपकी कोई यादगार कोई लम्हे हैं आपकी कोई यानी कोई राय है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए 4434377 इस नंबर पर। और जी हाँ मेरे जुमा की तरफ जुमे नमाज के लिए रवा दवा सामीन किराम, इस वक्त जो है ना हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, मज़ीद हम हमारे इस जो है ना कन्वर्सेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे बिइज़्निल्लाही ताला, जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
5: दिल से देसी।
6: साइंस कैन बी फन, ना साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट हर संडे दोपहर 3 to 4 PM सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए
7: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं ये अल्लाह का कलाम है, यह हमें बताता है क्या सही है कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा तिलावत की लफ्ज दोहराए लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 PM से RJ तलहा के साथ।
8: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुल जमान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: سے.
1: جی سامعین کرام, اس جمعے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے حج کی عبادت کے حوالے سے, اور حج قربانی یہ تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جب یہ موسم آ جاتا ہے نا, جب عبادات کے موسم آتے ہیں, تو یہ جو میں نے شروع پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں بتایا تھا, تو کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں. ہماری کانورسیشن ذوالقرن بھائی کے ساتھ بات بھی ہو رہی تھی, تو اس میں بھی انہوں نے, میں نے بات ان کے ساتھ شیئر کی تھی کہ دیکھیں یعنی یہ کہنا شروع کر دیا, ارے بھائی کیا ضرورت ہے اتنی اینیمل, یہ جو نا لائف اسٹاک جو یعنی آپ اتنے جو ہے نا اس کو استہلاک یا پھر اس کو کمی ہو رہی ہے مویشیوں میں, اور یہ وہ گویا کہ یہاں تک کہ تلوث کے حوالے سے, پولیوشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اچانک پورے ملک میں اس طرح کے سارے کتنے ذبح کیے جا رہے ہیں, کتنے وہ, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موسم, یعنی عبادات کے جو بھی موسم ہیں, جو بھی طریقے ہیں, چاہے وہ یعنی مویشیوں جانوروں کی قربانی حج میں, جیسے کہ حاجی تو جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں, وہ حج کے بعد بھی کرتے ہیں, اور وہ ایک سفید کپڑا پہن کر آوارہ ہو کر ایسے گشت کرتے رہتے ہیں, یعنی گویا کہ یا اللہ ہم سارے عقل, ساری عقل, سارے فلسفی اور جو بھی ہے وہ ایک طرف, ہم تو تیرے دربار کے یعنی غلام ہیں, اور بس ہمیں یہ کچھ سمجھ نہیں, بس تو نے جیسے کہا, تو نے کہا چکر مارنے کے لیے اس گھر کو, تو ہم سات مرتبہ چکر مار رہے ہیں. کون ہے عقل کبھی یہ گواہی دیتی ہے, عقل کبھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ بھائی ایک دیوار کو, ایک گھر کو کیوں سات مرتبہ ہم چکر ماریں, اس کی طواف کریں؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک توحید اور ربوبیت اور اپنی جہنم مصداق, اس کو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ہمیں یہ مذہبانہ یعنی ایک یہ عبادت کا ایک طریقہ ہمارے لیے رحمت کے طور پر عطا کیا ہے, تاکہ ہم جو ہے نا پوری امت اس توحید کی طرف لوٹ آئیں, جس کی جو ہے نا اجتماعی فی الحقیقت فی الواقع جو ایک سرگرمی کے, ایک مشق کے ہم کرتے ہیں, ایک سرگرمی میں ہم آپس میں پوری امت شریک ہوتی ہے. تو سامعین کرام, اس حج کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں, اتنے مویشی یہ وہ سب ختم ہو رہے ہیں, تو یہ بات دراصل اگر آپ اس کو اس زاویے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جانوروں کو لوگ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہوں گے, لیکن بات تو ایسی نہیں ہے. آپ تو ہر وقت یعنی میٹ کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں لوگ, لیکن اگر کوئی ایسا تقریب, ایسی تقریب ہے جس تقریب کے ذریعے یہ گوشت جو ہے نا, جہاں کہا گیا, یہ کہا گیا کہ آپ یعنی ایک حصہ تو آپ کو دینا ہے غریبوں کو, محتاجوں کو, تو اوور آل پھر لوگ آپس میں یہ رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں اسے بھی یہاں اجاگر کے, یعنی اس سلسلے میں بھی لوگ آپس میں گوشت بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو, اور پھر یہ کام بھی یہ ملحوظ ہے ہر معاشرے میں. جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے امت اسلامی کے درمیان قربانی وغیرہ کا عمل ہے, تو وہاں سماجی جو ہے نا آپس کے تعلقات اس میں بھی کافی یہ نمایاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
9: احمد سرفراز
1: بھائی, کیا حال ہے بھائی احمد, خیریت؟
9: الحمدللہ.
1: آپ کا سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں جمعہ ریفلیکشن, اور جیسا کہ آج ہماری گفتگو آپ سن رہے تھے کہ قربانی کے حوالے سے اس کی اہمیت, اور یعنی حج عبادات میں دلچسپی لینا ایک طرف یہ ضروری ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو نکلی, اور قربانی کے وقت جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے نا مویشی اور جانور قربانی کر کے ہم اپنا بڑے دکھاوا کرتے ہیں, لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے یہ بات؟
9: یہ قربانی کے بارے میں تو
1: خیر
9: ہم سنے نہیں تھے, حج کے بارے میں سنے تھے.
1: ہاں حج کے بارے میں, قربانی کے بارے میں بھی آپ کچھ, جی جی بتائیے.
9: حج کے بارے میں ہی ہمارا کچھ خیال ابھی کچھ دن پہلے ہی بدلا ہے, کچھ دن نہیں کچھ سال پہلے, کیونکہ پہلے جیسے اپنا انڈیا ہو یا نیپال ہو یا بنگلہ دیش, پاکستان میں جو بدل سگیر کے کنٹری ہے,
1: جی جی,
9: جس میں سب آپ کا خیال یہی ہے کہ آرام سے پوری زندگی بسر کر, وہ جب آپ پاؤں کام نہ کریں تب حج کے لیے جایا کرو, مطلب جو بھی ہے. تو قرآن کی قرآن میں جو حج کے بارے میں بتایا گیا, اس کو جب اردو ترجمہ میں بار بار سنتے چلا گیا نا,
1: اچھا اوکے جی کال کٹ گئی ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان سے جو ہے نا رابطہ قائم

0: कर लेंगे। तो हज की अहमियत के सिलसिले में वो बात कर रहे थे, हमारे अहमद सरफराज भाई दोबारा उनकी कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी अहमद भाई।
1: वही है हज के बारे में ये ख्याल कि जो बुढ़ापे में आदमी जाए वगैरह वगैरह। अभी कुछ दिन पहले जो कुरान की आयत सुन रहा था मैं, ये ख्याल है कि अभी तो जिसमें ताकत है, हज में तो कहा जाता है ना बहुत सा बहुत कंट्री के लोग आते हैं, उसमें भीड़ भी होती है, बुढ़ापे में आपका शरीर उस हिसाब से काम ही नहीं करता है। जैसे कि है ना कि कुरान में बार बार कहा गया कि नेक कामों में आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये तो उस वक्त के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप जब बूढ़े हो जाओ आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर क्या फायदा।
0: सही
1: जो
0: सही।
1: जवान है आज जैसे कि भी आदमी कमा रहा है, घर बनाना है तो 10 लाख का लोन लेके आदमी कर ही रहा है,
0: सही
1: है। शादी करनी है तो 10 लाख का लोन लेके कर रहा है काम, लेकिन हज और उमरा पे जाने के लिए इंसान ये कहता है कि अभी बेटी की शादी कर ले, खुद की शादी कर ले, इसकी शादी कर ले, वो कर ले, ये कर दे, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि वो पूरी जिंदगी इंसान इसी में चक्कर में खत्म हो जाता है, घर बनाना, फैमिली में अपनी शादी करना, बच्चों की शादी करना, बहन की शादी,
0: और ये तकाजे तो पूरे नहीं होते ना बिलाखिर
1: नहीं होते।
0: यानी आखिरी अब बुढ़ापे की बात करें, बुढ़ापे में भी जब बंदा निकल रहा होता है तो या फिर हज में जाता है तो फिर वो लोग इस तरह देख रहे होते हैं बच्चे भी कि भाई हमारी इतनी ज़रूरत थी, ये थी वो थी, कहाँ आप लोग सारे पैसे ये खर्च करके हज के लिए जा रहे हैं। तो वो उसमें उस वक्त भी एक कड़वाहट और वो अजीब किस्म की एक एहसास जो है ना लोगों में या फिर आसपास के लोगों में आप ज़रूर देखेंगे।
1: अगले साल हम ऐसे ही मतलब नियत नहीं किया, बोले थे फैमिली में क्या नहीं होगा तो हम तो चाहते हैं आप लोग को हज और उमरा करवा दे अपने वालिदैन, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप लोग को दो आदमी को तो एक साथ में लेके जाने पैसा है नहीं। एक काम करते हैं कि हम पहले हम अपना ही हज कर लेते हैं, बाद में लोग बोलते हैं इतना जवान है अभी शादी नहीं हुई है हज करना, मतलब हज करने के लिए शादी करना कोई जरूरी नहीं है, आप
0: सही
1: है, आप अभी कमा रहे हो अभी कर लो।
0: सही सही।
1: अगर आपके पास
0: बिल्कुल
1: साथ है तो फिर वाले जन को तो कराना ही कराना है,
0: सही
1: है कि ठीक है चलो, लेकिन नहीं है अगर नहीं कर पा रहे तो आप खुद भी तो टाइम नहीं बर्बाद करो। अगर आप कर सकते हो तो अभी विदेश में हो, यहाँ से आराम से इजली जा सकते हैं, अभी है आपके पास मौका भी है पैसा भी है, तो
0: इंशाल्लाह अल्लाह सुबहान तौफीक देंगे आपको भी और आप अपने वालिदैन को भी करवाएंगे बाद में, और इस तरह जो है ना अल्लाह सुबहान तौला हमें हाँ भाई हमारे सामीन आप लोग भी नियत करें कि भाई हज जो है ना इससे टालने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके सारे दुनिया के दूसरे तकाजों को टालें, लेकिन जी जी
1: कुर्बानी भी जो आजकल का फैशन हो गया बड़ा बकरा वगैरह वगैरह, ये भी तो नहीं है आदमी को इसमें कुर्बानी आदमी करना ही क्यों है। जब इस्माइल इस्लाम का जब कुर्बानी हुआ था तो वो तो उस टाइम बकरा का तो चलन नहीं था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो इम्तिहान था ना कि आप सबसे अपनी मोहब्बत और प्यारी चीज अजीज जो है उसको अल्लाह के नाम में कुर्बान करो।
0: जी भाई
1: दिखावा तो अल्लाह को तो चाहिए नहीं, आप लाखों करोड़ों खर्च करो दिखावा कोई फायदा नहीं, खालिस नियत होना चाहिए बस अल्लाह के लिए। तो ये है आपको जिसका आपको पास जितनी दौलत है अल्लाह से उसी में आपको बरकत है, उसमें कुर्बानी के लिए अल्लाह के नियत अल्लाह के साथ नियत से लोगों को क्यों दिखाना है कि हमारे पास 50,000 का बकरा है देखो हमारे पास 100 है, नहीं ये सब आजकल के टाइम पे ज्यादा हो गया।
0: सही सही सही। आजकल दिखावा भी काफी ज्यादा और फिर सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई वीडियो कर रहा होता है ये वो दिखावा, तो यानी उरूज को पहुंच चुका है
1: उरूज पे, हर चीज में है, एक कुर्बानी के मसले पे नहीं है, दुनिया में हर चीज पे दिखावा
0: है। हज पे चले जाए लोग जो है ना वीडियो कर रहे होते हैं दिखा रहे होते हैं ये
1: अभी आजकल बहुत ट्रेंड में है, अभी
0: अल्लाह
1: में अल्लाह बुला रहा कि मेरे पास और मेरे इबादत के लिए आओ ना, है ना, आप दुनिया को आप वीडियो करके दिखा रहे मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो।
0: अल्लाह
1: तो होना चाहिए कि आदमी को सोशल में कम से कम हज पे जा रहा हूँ एक हफ्ता 3 दिन सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, एक महीना का टाइम आप अल्लाह का।
0: अरे भाई उम्रे में जाकर लोग ये देखते हैं ना तवाफ में लोग मोबाइल ऑन करके वीडियो पे ऐसे घूम रहे होते हैं और फिर तवाफ कर रहे होते हैं, क्या किसको दिखा रहे हैं भाई आप किसके लिए आए हैं, क्या इबादत कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं।
1: अभी क्या बोला जाए, गवर्नमेंट भी ऐसा है कि चलो ठीक है अभी वो लोग भी पाबंदी नहीं कर रहे हैं ना, एक पाबंदी सख्ती होती शायद हो सकता था रुक जाए, अभी तो हर आदमी अपना यही चल रहा है, अल्लाह खैर
0: करे सबको तौफीक दे। जी जी जी जी अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो है ना बहुत अहम अहम जो सिलसिले में आपने हमारी रहनुमाई की, उम्मीद है कि हम सब मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।

0: हो जाते हैं। याद रखिए, तकदीर भी इंसान के माथे पर मोहर की तरह है और इस मोहर को सीधा सिर्फ हमारे सजदे ही कर सकते हैं। और यूं भी तकदीर में जो लिखा है, लिखने वाले के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए उसको बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी और अपने खानदान की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सजदारीज होकर दुआ कीजिए। सजदे की हालत में मांगी गई दुआएं अक्सर कबूल होती हैं।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें, ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
1: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग 10 to 11 AM Only on FM 107. Dil Se Desi.
2: Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi. Aap sun sakte hain. FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website, urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड, एक ऐसा सफर जहां हम उन किताबों की कहानी सुनते हैं भाई जिनके अल्फाज ने दुनिया भर के लोगों को बदला, बेहतर सोच दी और जिंदगी को नए अंदाज से देखना सिखाया है। यहां हर एपिसोड में हम एक ऐसी किताब पर बात करते हैं जिसने दुनिया को सोचने का तरीका दिया है। आज भी हम एक ऐसी ही किताब पर बातचीत करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों कायरीन के दिलों को छुआ है और किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लिखने वाले हैं जेम्स क्लियर। तो दोस्तों, आज की किताब एक ऐसी गाइड है जो बहुत ही खामोशी से, आराम से, चुपचाप लेकिन बहुत ही गहरा असर छोड़ जाती है हमारे दिलों पर। भाई अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी कुर्बानी और बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन आज जिस किताब पर हम बात करने जा रहे हैं वो हमें सिखाती है कि भाई छोटी छोटी आदतें, रोज के मामूली फैसले और रेगुलरली की गई छोटी कोशिशें कैसे वक्त के साथ साथ एक बड़ी तब्दीली बन जाती हैं। ये प्रोग्राम उन सब के लिए है जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं मगर प्रेशर, स्ट्रेस या कंफ्यूजन का शिकार हैं। भाई आज की दुनिया बहुत तेज है, हर शख्स सक्सेस चाहता है, बेहतर हेल्थ चाहता है, बेहतर करियर चाहता है और बेहतर रिश्ते और बेहतर रूटीन, लेकिन अक्सर हम शुरू ही नहीं कर पाते। भाई कभी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कभी वक्त नहीं मिलता और कभी हम सोचते हैं कि हमसे हो ही नहीं सकता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जेम्स क्लियर ने ये मशहूर किताब लिखी जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। भाई एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, एटम होता है ना, बहुत ही जर्रा जिसको हम कहते हैं, लेकिन पावरफुल। ऑथर का ये कहना है कि अगर हम अपनी आदतों को सिर्फ 1% भी रोज बेहतर बना लें, सिर्फ 1%, तो भाई हर साल के आखिर तक नतीजा हैरत अंगेज होता है। इस किताब का हमें यही एहसास दिलाना है कि असल मसला हम नहीं बल्कि हमारा सिस्टम होता है और जब सिस्टम ठीक हो जाए तो नतीजे खुद ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शो के शुरुआत में ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आदतें असल में होती क्या हैं और जो राइटर हैं जेम्स क्लियर हमसे असल में इस किताब

के जरिए एटॉमिक हैबिट्स के जरिए क्या कहना और बताना चाहते हैं। तो भाई आदतें असल में होती क्या हैं और ये क्यों इतनी पावरफुल होती हैं? भाई आदतें वो काम हैं जो हम बिना सोचे समझे बार बार करते हैं, जैसे सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, चाय पीना या रात को देर तक जागना वगैरह। ये चीजें छोटी लगती हैं लेकिन टाइम के साथ साथ ये आदतें हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सेहत, हमारी शख्सियत, यहाँ तक के हमारे फ्यूचर को भी शेप करती हैं, इनमें असर डालती हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स का पहला लेसन ये है कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी हो तो गोल्स पर नहीं बल्कि आदतों पर पहले काम करना चाहिए, क्योंकि गोल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं जबकि आदतें डेली प्रोसेस होती हैं और प्रोसेस ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। जेम्स क्लियर अपनी किताब के शुरुआत में ही बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप वीक हैं, कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम भी गलत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रोज एक्सरसाइज करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता तो मसला उसकी नीयत नहीं है बल्कि उसका एनवायरनमेंट हो सकता है, उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, जो लोग हैं वो हो सकते हैं। शायद जिम दूर है या शेड्यूल अनक्लियर है, ये भी हो सकता है। तो भाई ये किताब हमें जो शर्मिंदगी है उससे बाहर निकालकर प्लानिंग और स्ट्रक्चर की तरफ ले जाती है। तो भाई अब यहाँ तक इस हवाले से हम ये बात समझते हैं कि छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना और छोटे फेलियर से सीखना ही असल स्ट्रेटेजी होती है। किताब लिखने के सिलसिले से उनका मानना ये भी है कि वो हम सबको ये एहसास दिलाएं कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल मैनुअल है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना चाहिए बल्कि ये भी समझाती है कि क्यों और कैसे करना चाहिए। जेम्स क्लियर साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए ये बताते हैं कि इंसान का दिमाग आदतों पर कैसे रिएक्ट करता है। भाई जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उसे सेव कर लेता है और फिर बिना एनर्जी लगाए वो काम होने लगता है। इसीलिए बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल और अच्छी आदतें बनाना स्लो प्रोसेस में होती हैं। ये बुक हमें ये तसल्ली देती है कि स्लो होना फेलियर नहीं है बल्कि नेचुरल है। तो जनाब किताब ने ये बहुत ही खूबसूरती से अपने इंट्रोडक्शन का बयान करते हुए हमें समझाने की कोशिश करी है, बल्कि यूं कहिए कि जो ये किताब पढ़ रहे हैं उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी होता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ हम ये बात भी शेयर करते हैं या कर सकते हैं कि भाई एटॉमिक हैबिट्स उन लोगों के लिए खास है जो मददगार हैं और जो बार बार शुरू करना चाहते हैं। जो लोग डाइट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ लोग प्लान बनाते हैं फिर भूल जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मायने रखती है। रोजमर्रा थोड़ा सा काम लेकिन रेगुलरली, वो ऐसी पावर रखता है जो लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ उनका मकसद ये है कि जितने भी पढ़ने वाले हैं ये महसूस करें कि ये किताब उसी के लिए लिखी गई है और चेंज उसके अंदर मुमकिन है। दोस्तों एटॉमिक हैबिट्स में हमें ये भी बताया गया है, समझाया गया है कि आइडेंटिटी और हैबिट्स ये दोनों का गहरा ताल्लुक होता है। जेम्स क्लियर के मुताबिक जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो असल में हम अपनी पहचान बदलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रोज लिखने लगता है तो वो सिर्फ लिख नहीं रहा होता है बल्कि वो अपने आप को राइटर समझना शुरू कर देता है। तो हम इस बात पर फोकस करते हैं कि जब ये काम रोज हो, कोई भी काम रोज किया जाए, वही आप बनते चले जाते हैं उसी काम के हवाले से। तो ये सोच बहुत पावरफुल है क्योंकि जब आदत आइडेंटिटी बन जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल और निभाना आसान हो जाता है।
दोस्तों किताब के जरिए ये भी बयान किया गया है कि किताब सिर्फ थियरी ही नहीं या प्रोग्राम ही का हिस्सा नहीं जो मैं शेयर कर रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल जिंदगी से जुड़ी हुई है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में बहुत सिंपल टूल्स दिए हैं जो आम आदमी आसानी से अपना सकता है, जैसे आदत को ऑब्वियस बनाना।

0: एट्रैक्टिव बनाना और सेटिस्फाइंग बनाना, ये चार बुनियादी बातें हैं जो आदत को बना या बिगाड़ सकती हैं, है ना। तो बुक सिर्फ हिंट देती है कि ताकि हम सब पढ़ने वाले क्यूरियस रहें और आगे के जो भी मराहिल हैं जिंदगी उनको समझने की पूरी कोशिश करें। तो जनाब, किताब इनोवेशन है, एक सफर है जो शुरू हो गया है और हम सब पढ़ने वालों को ये महसूस करवा रही है कि इस किताब के जरिए हम अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को समझना शुरू कर दें जो आम तौर पर नजरअंदाज होते जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि वक्त के साथ छोटी तब्दीलियां कैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हैं। समझाने के तरीके से समझा रहा हूं। तो किताब हम सब को ये बताती है कि भाई जो भी माहौल बनता है उससे आप किस तरीके से अपनी सोच और अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, किताब का मकसद यही है कि मेंटली इंगेज हुआ जाए इसके साथ और सीखना शुरू किया जाए, बल्कि अपनी आदतों, अपने रूटीन और अपनी सोच पर गौर व खौज किया जाए। एटॉमिक हैबिट्स में यही एक खासियत है, क्योंकि ये किताब ब्लेम कल्चर से बाहर निकाल कर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल प्लानिंग सिखाती है। स्मूथली इस बात की तरफ ले जाती है कि हम किस तरीके से अपने ऊपर काम करें और जो भी किताब के कंसेप्ट्स हैं उसको किस तरीके से एक्सप्लोर करते चले जाएं और आगे सीखते चले जाएं। तो भाई, प्रोग्राम के हिस्से में मुझे लगता है कि काफ़ी क्लियर हो गया है शुरुआत में ही कि किताब में लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं, जो राइटर हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे भाग की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ, और क्यों हमने इस बुक को बुक ऑफ द वीक के तौर पर चुना, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो वो ये कि ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं लेकिन बार बार कंसिस्टेंसी का मसला फेस कर रहे हैं। जेम्स क्लियर इस किताब में ये बताते हैं कि बड़ी कामयाबी हमेशा बड़ी कोशिश से नहीं बल्कि छोटी छोटी डेली आदतों से आती है। उनका कहना ये है कि अगर हम अपनी आदतों को सिर्फ 1% रोज बेहतर बना लें तो वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क पैदा होने लगता है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। किताब एटॉमिक हैबिट्स में लेखक जेम्स क्लियर आदतों का बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, जहां वो बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेजेस से गुजरती है, इशारा, ख्वाहिश, अमल और इनाम। तो सबसे पहले कोई चीज हमें सिग्नल देती है, फिर दिमाग में एक डिजायर बनाती है, उसके बाद हम कोई एक्शन लेते हैं और आखिर में हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। तो यही वो साइकिल है, या इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आदतों का मैकेनिज्म नहीं समझते हम उन्हें ठीक तरह से बदल नहीं सकते। ये किताब रीडर्स को ये एहसास दिलाती है कि आदतें रैंडम नहीं होती बल्कि एक सिस्टम के तहत काम करती हैं जो हर रोज रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों, जेम्स क्लियर इस किताब में आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो एटॉमिक हैबिट्स का सबसे मजबूत और पावरफुल आइडिया माना जाता है। उनका कहना यह है, या उनके मुताबिक, असली तब्दीली तब आती है जब हम अपनी सोच और पहचान को बदलते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हमें कोई काम करना है लेकिन ये नहीं कहते कि हम कौन बनना चाहते हैं। जब कोई शख्स अपने आप को एक हेल्दी इंसान, राइटर या डिसिप्लिन्ड पर्सन समझने लगता है या शुरू कर देता है तो उसकी आदतें खुद ब खुद उस आइडेंटिटी के मुताबिक बनने लगती हैं, और इस सोच से आदत टेम्परेरी नहीं रहती बल्कि पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। एटॉमिक हैबिट्स गोल्स और सिस्टम के दरमियान वाज़े फर्क समझती है या समझाती है जो इस किताब को दूसरी सेल्फ हेल्प बुक से मुख्तलिफ बनाती है। जेम्स क्लियर इस किताब के जो राइटर हैं कहते हैं कि गोल्स सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं जबकि सिस्टम रोज के अमल को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी का गोल फिटनेस है लेकिन उसका सिस्टम डेली मूवमेंट और रूटीन पर बेस्ड नहीं तो गोल सिर्फ लिखा हुआ प्लान ही रह जाता है। इस किताब में फोकस रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर रखा गया है क्योंकि प्रोसेस ही हमें रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है। रीडर्स को ये समझ आता है कि जब सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो नतीजे खुद ब खुद उसके पीछे आने लगते हैं बिना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर के। जेम्स क्लियर माहौल के रोल पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि आदतें सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं होती, अगर हम अपना माहौल ठीक कर लें तो आदतें खुद इम्प्रूव बेहतर होने लगती हैं। जो चीज हम रोज देखते हैं वही चीज हमसे रिपीट होती है। अगर हेल्दी चीजें नजर के सामने हो तो बेहतर फैसले आसान हो जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में हमें ये बताया या ये किताब हमें ये सिखाती है कि अपनी सराउंडिंग्स को अपने फायदे में कैसे डिजाइन करें ताकि हमें हर वक्त अपने आप से कुछ ना कुछ लड़ने के लिए मिलता रहे और वो जो चीज है सेल्फ डिफेंस की वो पैदा होती रहे। इस अप्रोच से गिल्ट कम होती है और चेंज नेचुरली हो जाता है, जो इस किताब का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डेली लाइफ लाइन के लिए। तो जेम्स क्लियर आदतों को आसान बनाना बहुत जरूरी समझते हैं क्योंकि मुश्किल काम दिमाग नेचुरली अवॉइड करता है। एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक अगर कोई आदत स्टार्ट करना हैवी लग रही हो तो उसे छोटा कर देना चाहिए। सिर्फ पहला कदम लेना भी प्रोग्रेस होती है। जब हम सिर्फ शूज पहनते हैं या सिर्फ एक पेज पढ़ते हैं तो दिमाग पर प्रेशर कम होता है और ये छोटी जीत हमें अगला कदम लेने का मोटिवेशन देती है। इसी तरह कंसिस्टेंसी नेचुरली डेवलप होती है बिना इस डर के कि हम फेल हो जाएंगे। ये अप्रोच उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो परफेक्शन की वजह से अक्सर रुक जाते हैं। तो जनाब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर हैबिट स्टेकिंग का कंसेप्ट बहुत आसानी से समझाते हैं, जिसका मतलब है कि हम नई आदतों को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप रोज चाय पीते हैं तो उसके बाद एक नया काम जोड़ दिया जाता है। इस तरह नए अमल को याद रखना आसान हो जाता है क्योंकि पुरानी आदत पहले से मौजूद होती है। तो ये टेक्निक कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहाना खत्म करती है कि वक्त या याद नहीं रहता, कि हैबिट स्टेकिंग डेली रूटीन का हिस्सा बनकर आदतों को जिंदगी के साथ नेचुरली इंटीग्रेट कर देती है बहुत स्मूथली। जेम्स क्लियर बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सिर्फ ताकत पर भरोसा करने के खिलाफ बात करते हैं और उनकी किताब एटॉमिक हैबिट कहती है कि आदत को खराब बनाने के लिए उसे मुश्किल और अनअट्रैक्टिव बनाना जरूरी होता है। अगर मोबाइल ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसे दूर रख देना मददगार होता है। तो इसमें ये कंसेप्ट समझाया गया है जितने कम ऑप्शन होंगे उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन आसान होगा और माहौल कंट्रोल करने से सेल्फ ब्लेम कम होता है और हमारी एनर्जी सही जगह यूज होती है। तो ये आइडिया सब पढ़ने वालों को प्रैक्टिकल रिलीफ देते हैं और चेंज को पॉसिबल बनाते हैं। बिना शर्मिंदगी के एहसास के या कोई भी स्ट्रगल किए आप रोज रोज बेहतर बनना शुरू हो जाते हैं। एटॉमिक हैबिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रोग्रेस की समझ से जुड़ा है। जेम्स क्लियर इसे लैटेंट पोटेंशियल कहते हैं, जिसमें मेहनत हो रही होती है लेकिन नतीजा फौरन नजर नहीं आता। अक्सर लोग यहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी वक्त के साथ कंपाउंड होती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भाई बिल्कुल पैसे की तरह जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। और आपको ये तसल्ली मिलती है कि अगर आज फर्क महसूस नहीं हो रहा तो भी काम जाया नहीं जा रहा। सब्र और यकीन इस सफर का बुनियादी हिस्सा है जो कामयाबी तक जरूरी तौर पर पहुंचते हैं बिना जल्दबाजी किए। तो दोस्तों एटॉमिक हैबिट्स में रिवॉर्ड का सिस्टम भी बहुत अहमियत रखता है। जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर कोई आदत हमें खुशी का एहसास नहीं देती तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करते। इसलिए अच्छी आदतों के साथ छोटी छोटी खुशियां जोड़ना जरूरी होती हैं। तो इसमें यही समझाया गया है कि दिमाग पॉजिटिव फीडबैक चाहता है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। जब हम प्रोग्रेस देख के या महसूस करते हैं तो मोटिवेशन नेचुरली बढ़ती है। ये सिंपल अप्रोच आदतों को लॉन्ग टर्म तक कायम रखने में मदद देती हैं और रीडर्स को होप और कॉन्फिडेंस फीलिंग देती हैं रोज रोज अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। वहीं इस किताब में अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स क्लियर के मुताबिक जब हम किसी और के सामने कमिटेड होते हैं तो हम अपनी आदतों को ज्यादा संजीदगी से फॉलो करते हैं। तो यही वो आदत है जो पार्टनर ग्रुप या कमिटमेंट कंसिस्टेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब कोई हमें देख रहा होता है तो हम एक्सक्यूजेस कम बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। ये अप्रोच उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अकेले स्ट्रगल करते रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम मोटिवेशन को जिंदा रखता है और रूटीन में वापस आने में मदद करता है। तो इस तरह आदतों का सफर अकेला नहीं रहता। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट में और एक चीज जेम्स क्लियर बताते हैं और वो क्या है, वो है बोर्डम और कंसिस्टेंसी के दरमियान गहरा रिश्ता। वो समझाते हैं कि किस तरीके से ये सक्सेसफुल लोग भी बोर होते हैं लेकिन वो रूटीन नहीं छोड़ते। तो समझने की बात ये है कि हमेशा मोटिवेटेड रहना नहीं होता बल्कि बोरिंग दिनों में भी काम करते रहना जरूरी होता है। और ये सोच सीख देती है कि इमोशंस आते जाते रहते हैं लेकिन आदतें रहनी चाहिए मजबूत। जब हम कंसिस्टेंसी को आइडेंटिटी बना लेते हैं तो बोर्डम भी रास्ते से नहीं हटा सकता। सपोर्ट और रूटीन मिलकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की बुनियाद बनाते हैं। यहाँ से बंदा हिम्मत पकड़ लेता है रोज थोड़ा सा बेहतर बनने के लिए। जेम्स क्लियर कामयाबी और आदतों के दरमियान सीधा ताल्लुक वाजे करते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेस कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता बल्कि रोजाना आदतों का नतीजा होता है। तो समझना क्या है इनकी बातों से, वो ये कि भाई आपकी जो भी जरूरियात हैं उनको आप छोटी छोटी डेली चॉइसेस के वक्त के साथ बड़ी तब्दीली बनाते चले जाइए। यही स्टाइल सोच प्रेशर कम करती है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रैक्टिकल बना देती है, है ना। और वहीं से आपका जो रूटीन है नए नजर से देखना आप शुरू करते हैं और समझते हैं कि हर दिन उसके फ्यूचर पर असर किस तरीके से डलता चला जा रहा है या उसका असर आपके फ्यूचर पर किस तरीके से आता चला जा रहा है। तो जनाब, इस किताब में ट्रैकिंग का कंसेप्ट भी बहुत अहम है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो चीज मेजर होती है वही इम्प्रूव होती है। तो समझाया ये जाता है कि हैबिट ट्रैकर कैसे मोटिवेशन को जिंदा रखता है। जब हम अपनी प्रोग्रेस लिखी हुई या देखी हुई देखते हैं या रिपीट करते हैं तो दिमाग पॉजिटिव सिग्नल लेता है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये विजुअल प्रोग्रेस कंसिस्टेंसी को मजबूत करती है और गिव अप करने के चांसेस कम करती है। और हम लोगों को ये एहसास होता है कि छोटी छोटी जीत भी आगे बढ़ने की ताकत रखती हैं जो सफर को लंबा और मीनिंगफुल बनाती हैं। रोज रोज बेहतर धीरे धीरे। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि एक दिन आदत मिस हो जाना फेलियर नहीं होता। असल रूल ये है कि दो दिन लगातार मिस नहीं होना चाहिए। तो समझने की बात ये है कि हम सबको ये रिलीफ मिलता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी होती है। ये बात इस चीज से और ये किताब हमें समझाती है। ये सोच प्रेशर कम करती है और शर्मिंदगी को खत्म करती है। जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम रूटीन में वापस आना सीखते हैं और इस तरह आदतों का सफर सस्टेनेबल बनाता है और बंदा फिर से हिम्मत करता है आगे चलने के लिए बिना डर के रोज थोड़ा सा एफर्ट करने का, जो वक्त के साथ साथ नतीजा दे जाता है।
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
0: तो सामीन, आइए अब बात करते हैं कुछ इम्पैक्ट की जो इस किताब के जरिए पूरी दुनिया पर पड़ा है। और उसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का असर सिर्फ इंडिविजुअल रीडर्स तक महदूद नहीं रहा बल्कि इस किताब ने पूरी दुनिया में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सोच को नया रुख दिया। जेम्स क्लियर ने लोगों को ये समझाया कि चेंज ड्रामेटिक नहीं बल्कि सिस्टमेटिक होता है। इस वजह से ये किताब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एथलीट्स, टीचर्स और यहाँ तक के लीडर्स के लिए भी एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है। किताब के जरिए ये बताया जाता है कि छोटी आदतों का कंसेप्ट ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये रियलिस्टिक और प्रेशर फ्री लोगों के लिए बना। पहली दफा ये महसूस किया गया कि इम्प्रूवमेंट उनके कंट्रोल में है। एटॉमिक हैबिट्स ने मोटिवेशन के बजाय कंसिस्टेंसी को हीरो बनाया, जो हर कल्चर में कनेक्ट हो गया है नेचुरली और सस्टेनेबल बन गया है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। वहीं जेम्स क्लियर की ये किताब, इसने एजुकेशन सेक्टर पर भी गहरा असर छोड़ा है। दुनिया भर के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने एटॉमिक हैबिट्स के कंसेप्ट को स्टडी रूटीन

हैं। इस किताब ने ये सोच बदली कि इंटेलिजेंट होना ही सक्सेस की गारंटी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट रहना भी उतना ही जरूरी है। ये वर्ल्ड व्यू स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और फेलियर के डर को कम करता है, जिससे लर्निंग एक हेल्दी प्रोसेस बन जाती है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हमारे तलबा को अब बहुत कुछ मिल रहा है। एटॉमिक हैबिट्स का बिजनेस और कॉरपोरेट वर्ल्ड पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नजर आता है। कंपनीज ने परफॉर्मेंस को ओवरनाइट रिजल्ट्स के बजाय डेली सिस्टम्स के जरिए देखना शुरू किया है। मजीद ये इससे ये एक्सप्लेन होता है कि कैसे लीडर्स ने जेम्स क्लियर के आइडियाज को प्रोडक्टिविटी कल्चर के लिए यूज किया। छोटी छोटी हैबिट्स, आदतें जैसे डेली प्लानिंग, रेगुलर फीडबैक और फोकस्ड वर्क सेशंस वगैरह वगैरह ने टीम्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव की। ये किताब मैनेजर्स को ये समझाती है कि प्रेशर और डेडलाइन से ज्यादा इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट और रूटीन होता है। इस अप्रोच ने बर्नआउट कम किया है और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट किया है। जो कंपनीज इस सोच को अडॉप्ट करती हैं, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल रहती हैं, बिना अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट किए रोजाना सिस्टम के साथ काम करती रहती हैं। वहीं स्पोर्ट्स और फिटनेस की दुनिया में भी एटॉमिक हैबिट्स का बहुत गहरा इम्पैक्ट नजर आया है। एथलीट्स ने ये सीखा कि सिर्फ मोटिवेशन से ही नहीं, बल्कि डेली डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस बिल्ड होती है। किताब के जरिए ये आसानी हुई है कि कैसे प्रोफेशनल्स ने छोटी डेली इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस करके वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स अचीव किए। जेम्स क्लियर की आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कंसेप्ट्स ने एथलीट्स को अपने आप को चैंपियन सोचने में मदद की है, जबकि सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग ने उनकी स्किल्स को पॉलिश किया है। तो साहब, इस किताब ने फिटनेस को क्रैश डाइट्स और एक्सट्रीम वर्कआउट से निकालकर लाइफ स्टाइल बना दिया है, जहां डेली मूवमेंट और कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी दी जाती है। ये शिफ्ट लॉन्ग टर्म हेल्थ और मेंटल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ है। हर लेवल के लोगों के लिए दुनिया भर में एक्सेप्ट हो चुका सोच के तौर पर ये एक बढ़िया नुस्खा निकला है। वहीं मेंटल हेल्थ और पर्सनल वेलबींग के हवाले से भी एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों की सोच बदली है और ये समझाया है कि कैसे छोटी सेल्फ केयर हैबिट्स एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना शुरू करती हैं। जेम्स क्लियर की ये सोच कि एनवायरमेंट गलत होता है, इंसान नहीं, लोगों के लिए हीलिंग बन गई है। जब गिल्ट कम होता है तो रिकवरी आसान हो जाती है। लोगों ने मेडिटेशन, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसी हैबिट्स को स्लोली और कंसिस्टेंटली अडॉप्ट किया है। एटॉमिक हैबिट्स ने सेल्फ कंपैशन को प्रोमोट किया है, जहां परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी मैनुअल नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट टूल भी बन गई है। रीडर्स के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है और रोजमर्रा जिंदगी में चेंज लाती है बिना किसी प्रेशर के। वहीं सोशल मीडिया और डिजिटल कल्चर पर भी एटॉमिक हैबिट्स का असर वाजे है। आज दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एडुकेटर्स जेम्स क्लियर के आइडियाज को शेयर करते नजर आते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि कैसे छोटी डेली एक्शंस वायरल सक्सेस का बेस बनती हैं। इस किताब ने ओवरनाइट फ्रेम के कंसेप्ट को चैलेंज किया और पेशेंस को वैल्यू दी। डिजिटल दुनिया में जेम्स कंपैरिजन और बर्नआउट आम है, एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों को अपनी लेन में रहकर ग्रो करना सिखाया है। एल्गोरिथम से ज्यादा सिस्टम पर फोकस का ट्रेंड इसी सोच से आया है। किताब ऑनलाइन कल्चर को ज्यादा हेल्दी और रियलिस्टिक बनाने में मददगार साबित हुई है, जहां लोग लॉन्ग टर्म क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। शॉर्ट टर्म वैलिडेशन के बजाय डेली रूटीन और डिसिप्लिन को अपनाया जा रहा है दिन ब दिन। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का फैमिली और रिलेशनशिप्स पर भी इम्पैक्ट देखा गया है। किताब के जरिए ये समझ में आता है कि छोटी अच्छी आदतें जैसे रेगुलर बातचीत, एप्रिसिएशन वगैरह और टाइम देना रिश्तों को मजबूत बना देती हैं। जेम्स क्लियर ये मैसेज देते हैं कि रिलेशनशिप भी एक सिस्टम होता है जो डेली बिहेवियर से इम्प्रूव होता है। लोगों ने एक्सपेक्टेशंस और कंप्लेंट्स के बजाय डेली पॉजिटिव एक्शंस पर फोकस करना शुरू किया है।

ये वो सोच है जो घरों को ज्यादा पीसफुल और स्टेबल बनाती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि रिश्ते भी गोल्स से नहीं बल्कि हैबिट से बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। जो लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग होती हैं। बिना अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स के रोजमर्रा नॉर्मल रूटीन के थ्रू स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं। वहीं लीडरशिप और सेल्फ लीडरशिप के कंसेप्ट में भी एटॉमिक हैबिट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। किताब के जरिए ये समझ में आता है कि कैसे लीडर्स ने रूल करने के बजाय एग्जाम्पल बनकर लीड करना सीखा है। जेम्स क्लेयर के मुताबिक लीडर की डेली आदतें टीम कल्चर बनाती हैं। जब लीडर पंक्चुअल, फोकस्ड और कंसिस्टेंट होते हैं तो टीम भी वैसी ही बन जाती है। ये किताब पावर से ज्यादा प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देती है, जिससे लीडरशिप टॉक्सिक नहीं बल्कि इंस्पायरिंग बनती है। एटॉमिक हैबिट्स ने दुनिया भर में लीडरशिप को अग्रेसिव कंट्रोल से निकालकर काम डिसिप्लिन की तरफ मूव किया, जो कि हेल्दी और रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करने का तरीका सिखाता है, जहां हर मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटे स्टेप्स के थ्रू निभाता है और कलेक्टिव सक्सेस पॉसिबल होती है बिना फेयर के एनवायरनमेंट के चलते चलते। समझ रहे हैं मेरी बात? और यही बात है कि हम इनकरेज कर सकते हैं एक दूसरे को, भाई जब गुस्सा आए तो आप अपने आप से पूछिए, मैं असल में किस चीज से डर रहा हूं या डरता हूं। ये सवाल गुस्से को आराम मिलाने का है, अपने आप से बात करने का है। और जब गुस्सा आसान हो जाए तो जॉय की जो स्पेस है वो बनती है, क्योंकि पीस जो है वो वापस आना शुरू हो जाती है। डर, फेयर, यानी मॉडर्न लाइफ का अगर साइलेंट कंपेनियन कोई है तो वो आज यही है। डर फ्यूचर का, डर फेलियर का, डर लोगों का कि वो क्या कहेंगे। किताब ये सिखाती है कि डर को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन डर को बॉस भी मत बनने दीजिए। डर सिर्फ एक फीलिंग है, फेट नहीं है। आप अपने अंदर डर को पहचानिए, उसको नाम देकर उसकी पावर कम कीजिए। भाई मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं। जब आप इस सेंटेंस को बोल देते हैं तो फीलिंग कंक्रीट हो जाती हैं और मैनेजेबल बन जाती हैं। फिर आप अपनी प्लानिंग करते हैं, मैं क्या प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं किससे मशवरा ले सकता हूँ, मैं कौन सी छोटी सी एक्शन जो है लेकर अपनी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। किताब का टोन यही है, स्मॉल स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग माइंड और छोटी एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। भाई ये एक बात और समझने की ज़रूरत है हमें कि मतलब डर के बावजूद कदम उठाना ही उठाना है, और जब आप कदम उठाते हैं तो सेल्फ ट्रस्ट बनता है और सेल्फ ट्रस्ट ही जॉय की बेस है। और दोस्तों किताब हमें ग्रीफ के बारे में समझाती है, यानी गम के हवाले से भी हमसे बात करती है और लॉस की भी बात करती है ये किताब के भाई इंसान किन किन तरीकों से गुजरता है। लॉस सिर्फ किसी की डेथ का नहीं, लॉस रिश्तों का नहीं, टाइम का नहीं, हेल्थ का नहीं या किसी ख्वाब का भी नहीं होता। किताब ये रिमाइंड कराती है कि गम को रेस्पेक्ट जरूर दीजिए, गम को कहीं ना कहीं सराहिए कि अंदर से आपको वो भारी ना लगे, उससे बात करिए। लेकिन गम को फील करने से उसका वजन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। भाई आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू इंसान को कहना चाहिए अंदर से क्लीन करने का पूरा काम करते हैं। कहते हैं ना कि रो लेते हैं जब थोड़ा सा हैवी हैवी दिल होता है वो इजी हो जाता है। फिर किताब ये भी सिखाती है कि गम के साथ लाइफ कंटिन्यू करना इंसान की कुव्वत है। आप अपने दुख को अपनी जिंदगी की पूरी कहानी ना बनाएं, दुख को एक चैप्टर बनाएं, है ना, पूरी बुक मत बनाइए। जब आप अपनी कहानी को चैप्टर में देखते हैं तो होप जो है वो वापस आती है, और होप का मतलब ये नहीं कि दुख खत्म हो गया, होप का मतलब ये है कि आगे चलना पॉसिबल है, और यही जॉय का रियलिस्टिक वर्जन है।
वहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री के लिए भी एटॉमिक हैबिट से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है और किताब के जरिए ये सोच बदली कि किस तरीके से लाउड मोटिवेशन और अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस से हटकर एक ग्राउंडेड अप्रोच लाई जा सकती है. लोगों को सिखाया कि चेंज ऑर्डिनरी दिनों में होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन क्या इंतजार नहीं होना चाहिए. इस सोच ने वर्कशॉप कोर्सेज और कोचिंग मॉड्यूल्स को भी ट्रांस किया है. अब फोकस हाइप से ज्यादा हैबिट्स और सिस्टम्स पर है. एटॉमिक हैबिट्स ने सेल्फ हेल्प को साइंटिफिक और कंपैशनेट बनाया, जहां इंसान को ब्लेम की जगह सपोर्ट दिया जाता है. इसी वजह से ये किताब सालों के बाद भी रेलेवेंट है और नए रीडर्स को इंस्पायर करती रहती है, क्योंकि इसका मैसेज वक्त और कल्चर से ऊपर उठकर यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह काम करता है. रोजाना जिंदगी में अप्लाइड चेंजेस के लिए रियलिस्टिक रोड मैप प्रोवाइड करता है, जिससे लॉन्ग ओवरवेल्म होने के बजाय स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व किया जा सकता है. तो जनाब, एटॉमिक हैबिट्स का कल्चर इम्पैक्ट ये भी है कि इसने फेलियर को देखने का एंगल चेंज कर दिया है. किताब के जरिए ये सोच बदलती है कि अब फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बल्कि फीडबैक समझने की जरूरत है. जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर सिस्टम फेल है तो उसे ठीक किया जा सकता है, और यही वो माइंडसेट है जो दुनिया भर में रेजिलियंस को बढ़ा रहा है. लोग गिव अप करने के बजाय एडजस्ट करना सीख रहे हैं. इससे कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों डेवलप होते हैं. एटॉमिक हैबिट्स ने कंपैरिजन कल्चर को भी वीक किया, क्योंकि ये हर शख्स को अपने पेस पर इम्प्रूव करना सिखाती है, और यही वो कल्चर शिफ्ट है जिसने लोगों के मेंटल लोड को कम किया है और सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत बनाया है, जो किसी भी सोसाइटी की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है. आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में देखा जाए तो जहां प्रेशर हर जगह मौजूद है और हर शख्स अपनी जर्नी में उलझा हुआ है, वहां उनके लिए डायरेक्शन और क्लैरिटी प्रोवाइड करती है ये किताब बिना किसी एडजस्टमेंट के. तो जनाब, एटॉमिक हैबिट्स ने गोल सेटिंग कल्चर को भी रीडिफाइन किया है. किताब के जरिए ये बात बदली है कि दुनिया भर में लोगों ने सिर्फ रेजोल्यूशन बनाना छोड़कर सिस्टम्स बनाना शुरू करने पर गौर करना शुरू किया है. न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का प्रेशर कम हुआ है और डेली रूटीन्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी है. जेम्स क्लियर ने लोगों को सिखाया ये है कि फ्यूचर की टेंशन कम करने का बेस्ट तरीका आज का सिस्टम बेहतर बनाना है, और यही वो सोच है जो सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज ने भी अडॉप्ट की हैं. इससे कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी है, और जब सिस्टम मजबूत होता है तो मोटिवेशन की कमी भी ज्यादा डैमेज नहीं करती. एटॉमिक हैबिट्स ने शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को वैल्यू देकर प्लानिंग और सेल्फ मैनेजमेंट के तरीकों को ग्लोबली रीशेप किया है, जो सस्टेनेबल सक्सेस के लिए बुनियादी बुनियाद है और हर लेवल के लोगों के लिए अप्लाई होता है. छोटी डेली एक्शंस के साथ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विदाउट बर्नआउट. ख्वातीन हज़रात, दुनिया भर में हेल्थ और लाइफ स्टाइल कोचेस ने भी एटॉमिक हैबिट से बहुत फायदा उठाया है. किताब के जरिए क्रैश प्रोग्राम्स की जगह डेली हैबिट बिल्डिंग ने ले ली है. जेम्स क्लियर के आइडियाज ने वेट लॉस और वेलनेस को एक्सट्रीम से निकालकर बैलेंस्ड अप्रोच दी है, जिससे लोग ज्यादा रियलिस्टिकली अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने लगे हैं. एटॉमिक हैबिट्स ने पेशेंस और कंसिस्टेंसी को हेल्थ का कॉर्नर स्टोर बनाया है, जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पॉसिबल हुए बिना डैमेज के. ये किताब हेल्थ को पनिशमेंट के बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट बनाती है, और जब लॉजिक और कंपैशन साथ चलें तो लोग नेचुरली प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं. इसी वजह से एटॉमिक हैबिट्स को डॉक्टर्स, ट्रेनर्स और वेलनेस एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर चेंज को सेफ और सस्टेनेबल बनाती है हर एज के लोगों के लिए, विदाउट अनरियलिस्टिक प्रेशर और गिल्ट जो ज्यादातर लोगों को पहले डिस्करेज करता रहता था. अब उन्हें सपोर्ट और डायरेक्शन मिलता है. एटॉमिक हैबिट्स का ग्लोबल इंपैक्ट ये भी है कि इसने लोगों को प्रोसेस ओरिएंटेशन सिखाई है, जहां पे आउटकम के बजाय इनपुट पर फोकस करना शुरू किया गया है. भाई, जब हम सिर्फ अपनी कोशिश और रूटीन पर ध्यान देते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है. जेम्स क्लियर के आइडियाज ने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि कंट्रोल उनके हाथ में है, चाहे रिजल्ट्स फौरन आए या ना भी आए.
तो ये जो माइंडसेट बन जाता है ये अनसर्टेनिटी के दौर में बहुत पावरफुल साबित हुआ है। जहां लोग कंट्रोल की तलाश में होते हैं, एटॉमिक हैबिट्स ने दुनिया भर के रीडर्स को ग्राउंडेड रहना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना सिखाया है, जिससे सेल्फ ट्रस्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ी। इस ग्लोबल साइकोलॉजिकल शिफ्ट का असर लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होगा, जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी से दोनों के लिए फायदेमंद है। हर लेवल पर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बिकॉज स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन साथ चलकर प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं विदाउट पैनिक और रश। तो जनाब, एटॉमिक हैबिट्स ने लोगों को टाइम के साथ फ्रेंडशिप करना सिखाया है। किताब के जरिए ये बात बताई गई है या समझ में आती है कि कैसे पेशेंस और डेली एफर्ट को वैल्यू मिलने लगी है। जेम्स क्लियर के मुताबिक टाइम सबसे पावरफुल फैक्टर है जो आदतों की रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। जब ये सोच आम हो जाती है तो लोग जल्दबाजी छोड़ देते हैं। ये किताब फास्ट रिजल्ट्स की डिमांड को स्लो कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करती है, जहां लोग अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स ने दुनिया भर के रीडर्स को ये लेसन दिया कि आज का काम कल का स्ट्रेस कम करता है। ये माइंडसेट लोगों को काम डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाता है, जो मॉडर्न दुनिया में रेयर मगर बहुत जरूरी क्वालिटी बन चुकी है। इसी वजह से ये किताब टेम्पररी ट्रेंड के बजाय लास्टिंग मूवमेंट बन गई है, जो हर साल नए लोगों को अट्रैक्ट करती रहती है रिपीटेडली, बिकॉज ह्यूमन नेचर और डिसिप्लिन का रिश्ता हमेशा रिलेवेंट रहेगा हर जनरेशन के लिए, जहां चेंज एक कॉन्स्टेंट होता है और आदतें उसे हैंडल करने का टूल बन जाती हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट का असर सिर्फ इंडिविजुअल रीडर्स तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इस किताब ने पूरी दुनिया में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सोच को नया रुख दिया है। इस किताब के राइटर, लेखक, मुसन्निफ जेम्स क्लियर ने लोगों को यह समझाया कि चेंज ड्रामेटिक नहीं बल्कि सिस्टमैटिक होता है। इस वजह से ये किताब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एथलीट्स, टीचर्स और लीडर्स सब के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है। किताब ने बहुत ही ज्यादा वाज़े तौर पर यह बताया है कि आपकी परेशानियां सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। दूसरों के बजाय पहले खुद पे फोकस करें और आगे बढ़ते चले जाएं। वहीं एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि एक दिन आदत मिस हो जाना फेलियर नहीं होता। भाई, असल रूल ये है कि दो दिन लगातार मिस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है। तो साहब, परफेक्शन जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी होती है, और यही वो सोच है जो प्रेशर कम करती है और गिल्ट को खत्म करती है। भाई, जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम रूटीन में वापस आना सीखते हैं, और इस तरह आदतों का सफर सस्टेनेबल बनाता है या बनता है, और बंदा फिर इसमें से हिम्मत करता है कि आगे चलने के लिए बिना डर के रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा एफर्ट करता रहूं, ताकि इसके जो भी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ही बेहतर हो, कारकुन हो और मेरे लिए ही अच्छे निकले। अब हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इसमें ये कहना बनता है कि यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ग्लोबल माइंडसेट बन चुकी है। किताब में जेम्स क्लियर समराइज करते हैं कि दुनिया को ये सिखा दिया जाए कि कैसे छोटी चीजें मामूली नहीं होती बल्कि उन्हीं से जिंदगी बनती है। ये किताब हर उस शख्स के लिए एक रास्ता है जो प्रेशर के बगैर बेहतर बनना चाहता है। एटॉमिक हैबिट्स ने प्रूफ दिया कि चेंज पॉसिबल है अगर सिस्टम सही हो। आखिरी तौर पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस महसूस करने लगे, जो किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे कीमती चीज होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपके लिए सोच और अमल
दोनों में तब्दीली का सबब बनेगी और आप अपनी जिंदगी में छोटी लेकिन पावरफुल आदतें बनाना शुरू करेंगे जो वक्त के साथ आपको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा इंशाल्लाह। हर रोज छोटा कदम आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बस इसको याद रखिए और अल्लाह सुबहान व तआला आपको कंसिस्टेंसी और हिकमत अता फरमाए, आमीन। तो जनाब अगले एपिसोड में हम एक और इसी तरीके की कहना चाहिए बेहतरीन किताब, सच्ची किताब, रूह पर असर अंदाज किताब के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर

0: शकीब अहमद जी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107 दिल से देसी.
3: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस. और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से. सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में. हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन FM 107.

0: क्वेश्चंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच।

पेज नंबर 107, दिस इज दुआ वाला कबीर स्पीकिंग. आखिरी पन्ने पे आप ड्राइंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. हम तो क्या करते थे. आज भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स की जो स्कूल में, उनकी जो टीनेजर्स है, माय गॉड, इन देयर कॉलेजेस, एंड ये जो लर्निंग कर्व है उनके लिए बड़ा काम आएगा. बट जैसे मैं डिस्क्लेमर देता हूँ हर स्टूडेंट्स गाइड से पहले, भाई देखो बहुत सिंपल डिस्क्लेमर है, इधर कोई आपको ज्ञान नहीं मिलेगा. इधर आपको अगर कड़वा सच सुनना है तो आप बिल्कुल इसे सुनिए, बिकॉज आई विल नॉट गिव यू फॉल्स मोटिवेशंस एंड होप्स. आई विल ओनली गिव यू समथिंग विच इज विच माइट वर्क फॉर यू. कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम कर जाएंगी, और हो सकता है आपके काम ऐसे आए कि आप फॉरन अप्लाई करें, या हो सकता है आगे जाके अप्लाई करें. बट ऑल एंड ऑल स्टूडेंट्स गाइड में आपका स्वागत. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 के, और सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, FM 107 कतर इस नाम से हर जगह मौजूद है. एन इशू सिर्फ बच्चों के लिए या सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, बड़ों के लिए, ताकि वो भी अपने आसपास जो बच्चे हैं उनकी मदद कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें. एंड ऑल्सो ये कि आप भी मुझे बता सकें कि और क्या क्या बात

0: तेज जिंदगी में जब लाइटनिंग स्पीड से जा रही है, यू शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल. वो कहते हैं कंट्रोल करो, ये करो, वो करो. नहीं, यू कांट डू दैट, सिंपली कैन नॉट. टाइम के साथ साथ अगर आपको चलना है तो टाइम जैसा ही होना पड़ेगा. टाइम के साथ तेज है तो आपको तेज बनना पड़ेगा. तो इस बारे में बात करेंगे. आज हम बात करेंगे उस इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो आपको एक्चुअली में आगे ले जाएगा. जैसे मैंने कहा, कड़वा सच में आज आपको बताऊंगा. बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, और अगर आप मुझसे रात कायम करने जाएं तो 666-22-107. ठीक है, तो स्टूडेंट्स गाइड का जो आज का टॉपिक है, इसमें बात करूंगा, वो इतना पावरफुल है कि लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं, हल्के में लेते हैं और बाद में आ जाता है इनको. आज बात करूंगा नेटवर्किंग की. तो बड़ा सिंपल सवाल है मेरा, स्टूडेंट से भी, टीनेजर से भी, बड़ों से भी, ये बता दीजिए आप, आपको क्या लगता है, मेरी छोड़ी, डिग्री और स्किल सक्सेस के लिए काफी है? जस्ट टेल मी. डिग्री हाथ में आ गई आपकी, स्किल भी आपके पास है, तो आपको लगता है सिर्फ यही चीजें जो आपके काम आएगी आगे? हाँ, मैं आपको कड़वा सच बताऊं, ऐसा नहीं है. आपको एक और चीज चाहिए, वो है लोगों से कनेक्शन बनाना. ये भी उतना ही जरूरी है. आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग एक्चुअली में किस चिड़िया का नाम है, क्यों ये जरूरी है, ये मांग है 21वीं सदी की भाई, और स्टूडेंट्स इसे कैसे यूज कर सकते हैं. अगर सिंपल वर्ड में बात करूं, नेटवर्किंग का मतलब है लोगों से मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना. दैट इज इट. सिर्फ कॉन्टेक्ट सेव करना नेटवर्किंग नहीं होता. आइए, अरे भाई आप यार भेजिए, सोचते हैं आइए, नंबर क्या आपका, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो. दिस इज नॉट नेटवर्किंग. नेटवर्किंग सिर्फ नंबर सेव करना नहीं है. नेटवर्किंग एक एक एक हेल्दी रिलेशनशिप, काम का रिलेशन बनाना, बिल्डअप करना बहुत जरूरी है. जैसे हम कहते हैं ना, बचपन में लोगों को क्या कहा जाता है, भाई दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्त अच्छे बनाओ. दोस्त हम अच्छे बुरे हम बाई चॉइस नहीं बना सकते. दिस इज जस्ट अ वेरी फॉल्स स्टेटमेंट कि अच्छे बनाओ. यू कांट चूज योर फ्रेंड्स. वो लगता है यू आर चूजिंग योर फ्रेंड्स, बट देन अगेन आपको किसी की वाइब अच्छी लगती है तो आप बना लेते हैं. आप फिर नहीं सोचते कि उसके अंदर कितने ऐब हैं, क्या है. पर जब बड़े हो जाते हैं एंड यू रियली नीड टू बिल्ड समथिंग, तो आपको फिर स्किल के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ, वो लोग भी चाहिए जो आपकी तरह ही बिल्ड करना चाहते हैं कुछ, या कर चुके हैं कुछ, और उनके जरिए आप एक मकसद की तरफ बढ़ सकते हैं. एग्जाम्पल, टीचर से गाइडेंस लेना. अगर आप बड़े हो गए हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी आप टीचर से बात ही नहीं करेंगे. अरे अपने टीचर से जानिए, पूछिए, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, आपको लगेगा भैया ये तो अचीवमेंट अनलॉक्ड होगी. इसके अलावा जो आपके सीनियर्स हैं, प्लीज अपना ईगो छड्डो यार, अपना ईगो छड्डो. ये मत सोचो कि मैं छोटा हूँ, जब भी इनसे ज्यादा पता है मुझे. प्लीज अपने बड़ों से भी जरा बात कर लें. अपने बड़े ऐसे कि अगर आप कॉलेज में तो आपके सीनियर्स हैं, आस्क देम. कोई तो होगा, एक बंदा बंदी तो ऐसे होंगे ना जिनको कुछ तो पता होगा जिंदगी में करना क्या है, कुछ कर रहे होंगे हो सकता है. तो ये नहीं सोचना कि अरे देखो अभी से काम कर रहे हैं, इनसे कौन बात करे, भाई मैं तो अपना रास्ता चुनूंगा या चुनूंगी. ठीक है, अपना रास्ता बनाइए, बट टू हैव दैट नेटवर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत जरूरी है. इसके अलावा प्रोफेशनल से कनेक्ट करना कितना जरूरी है आप जानते हैं? आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आई नो समबडी जिन्होंने एक ऐप बनानी थी, एंड बहुत टैलेंटेड बंदा है वो, मतलब इंजीनियरिंग में भाई का कोई तोड़ नहीं, मगर उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, कोई सक्सेस नहीं. फॉर 5 years ही वॉज बिल्डिंग एन ऐप. ठीक है, ऐप किस चीज़ की थी, दिल्ली में जो बसें आती हैं उनका आना जाना जो है पता लगे कि ऑरेंज बस कब आएगी, हरी बस कब आएगी, उसका एक ऐप था. ठीक है, ही ट्राई टू बिल्ड. मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, किसी ने पूछा नहीं उसको, बिकॉज वो जिंदगी और तो शांत रहा, किसी से बात करता नहीं ज्यादा. तो अब ये डर आ गया कि मैं बात करूंगा तो मेरा आइडिया चोरी ना हो जाए, तो बात नहीं करा, अकेले दम पे लगा पड़ा, हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया. बट फिर उसने नेटवर्किंग जब शुरू करी, 5 साल बाद ही ज्वाइंड अ कंपनी, वेन इन उस कंपनी ने कहा कि ठीक है भाई, दिस इज योर क्या कहते हैं उसको, योर ओन थिंग, तो वी विल सपोर्ट यू. ऑफकोर्स हमें थोड़ा सा नाम वाम तो ऑब्वियसली चाहिए, मगर इनसे मिलो. एंड ही स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड अंडरस्टूड कि मैं अपना आइडिया भी सिक्योर कर सकता हूँ, नेटवर्किंग भी रख सकता हूँ, दे विल हेल्प मी. एंड इवेंचुअली क्या हुआ, वो ऐप लाइव हुई दिल्ली में, पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट, और ये हुआ नेटवर्किंग का नतीजा. एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो नेटवर्किंग सिर्फ काम के लिए लोगों को यूज करना नहीं होती. प्लीज आप मुझे मत समझिएगा, हाँ बेटा तुम लालची बना लो बच्चों को, ये दोस्ती मतलब के लिए करें, नहीं नहीं, आई डिडंट मीन दैट. नेटवर्किंग है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. व्हेन यू मीट समबडी और आपके ख्याल मिलते हैं, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, आप अपने घर बुलाते हैं, आप कहते हैं चलो यार दावत करते हैं, चलो चाय पीते हैं, है ना, लेट्स हैंग आउट ब्रो. हो जाता ना, तो वैसे ही जब आप नेटवर्किंग के काम पे आते हैं कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सामने वाला भी आप आपका इनपुट लेके अपना कुछ सही कर सकता है और उसका इनपुट लेके आप कुछ ठीक कर सकते हैं। तो कई मर्तबा एक प्रोडक्टिव नेचर वाला बंदा या बंदी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो हो जिनसे आपका नेटवर्क थोड़ा सा फैले। नेटवर्किंग करने को लोगों ने आज की तारीख में काफी नेगेटिव कर दिया है, मगर प्लीज अंडरस्टैंड, बोलना पड़ता है, कुछ चीजें रिलेशनशिप से बनती हैं, कुछ जो हम देसी भाषा में जिसको जुगाड़ कह चुके हैं आज की तारीख में, ये जुगाड़ नहीं है। किसी का वास्ता होना इज नॉट अ बैड थिंग। वो हमने सेंटेंस में कहना ऐसे शुरू कर दिया कि अरे इनका तो वास्ता है, अरे तो भाई तुम भी बनाते ना वास्ता, उसका कैसे वास्ता। तो हैविंग वास्ता, हैविंग नेटवर्क्स इज नॉट बैड, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग कॉनोटेशन। आपको समझना पड़ेगा कि जब आपकी डिग्री और आपकी स्किल, इसको भी तीसरी चीज की जरूरत है, वो है नेटवर्किंग। ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा कि आप कामयाबी नहीं होंगे कि आपके पास स्किल और डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं है, हो जाएंगे आप भी, लेकिन आपको इसको आगे बढ़ाना है, कुछ सीखना है और सीखते रहना है, तो आपको अंदाजा चलेगा कि आपकी स्किल में और हर किसी स्किल में इनफैक्ट हर शेर का एक सवा शेर बैठा हुआ है। एंड जब आपके दिल में आ जाता है कि हर शेर का एक सवा शेर है, तो उससे होता क्या है, आपका नेटवर्क ग्रो करता है, यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, क्योंकि आपका दिल कहता है जी और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मैं इससे भी सीख लूँ। एंड दैट हंगर बिल्ड्स इनसाइड यू एंड आपको सक्सेस मिलती चली जाती है। दैट्स व्हाई नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट। पर क्यों जरूरी है, सवाल सबसे बड़ा ही, क्यों जरूरी है? देखो, सबसे पहली चीज जो बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट है वो है अपॉर्चुनिटीज। मौके क्रिएट होते रहते हैं, है ना। जॉब अक्सर रेफरेंसें मिलती है, भाई आप ये कड़वा घूंट सच का पी लीजिए प्लीज। अक्सर, और ये कुछ गलत नहीं है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं वो अपनी कंपनीज में जाते हैं, बोलते हैं भाई ये मेरा बंदा है, बहुत अच्छा काम करता है, इसको जरा एक बार ट्राई कीजिए। अब इसको भी लोग कहते हैं अरे वास्ता है उनका, तो भाई है ना, आप क्यों नहीं बना रहे? समझ रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स और टीनेजर्स सुन रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर आर नेटवर्क्स दैट यू मेक हैव टू मेक। आप दिल में ये मत रखें कि इगोइस्टिक है, मेरे पास तो बहुत टैलेंट है यार, मुझे कौन सी कंपनी, मुझे भाई देखती उठा लेगी, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा भी होगा मगर चांसेस आर लो। यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद पीपल इन योर फील्ड जो कि काम करते हैं, जो कि आपको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनसे अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। एंड डोंट वरी, आपको लोग अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं बोलेंगे, इसमें कोई लालच नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, इसमें आप अपने लिए कर रहे हैं, और वो करना बहुत जरूरी है भाई। कोई नहीं आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाएगा जिंदगी में, ये आप बड़े भी प्लीज बच्चों को बताइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लीड देम टू अ पाथ वेर ना बोले बेटा कल ही चलना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, बट यू नीड पीपल अराउंड, दिस कैन नॉट बी डन। एंड दूसरी सबसे फायदेमंद चीज क्या है नेटवर्किंग की, वो है गाइडेंस, है ना। एक मोड़ मिस हो जाता है तो कैसे छटपटा जाते हैं, है ना। तो वो जो गाइडेंस आपको कौन दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है, आपको बता रहा है कि भाई पीछे वाला मोड़ मिस कर दिया, आगे से इधर जाओ, यू हैव अ गाइड थ्रू आउट, है ना। तो वो जो गाइडेंस है वो बड़ी जरूरी है। एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, जब उनसे आप कनेक्शन बनाते हैं, आपके बड़े जैसे मैंने कहा, तो उनकी मिस्टेक से आप बच जाते हैं। उन्होंने गलती करी, मैं ये वाली चीज सही कर लूंगा। जब आप किसी से नेटवर्क ही नहीं बनाएंगे तो आपको गलत सही वो आपके पैरामीटर के हिसाब से होगा। बट इफ यू नो समबडी, यू हैव नेटवर्क्स, यू मीट पीपल, यू अंडरस्टैंड देयर करियर या उनका जो पाथ है, तो आपको उनकी गलतियां भी पता लगती हैं। इसलिए मैं कहता हूं हाइपर मोटिवेशनल वीडियोस मत देखा करो। You need to understand and meet people जो अपने करियर में फेल भी हुए हैं, because if you don't understand failure, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और networking से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, confidence build होता है भाई, लोगों से आपकी बातचीत improve करना आज की दुनिया की demand है, please इसे understand कीजिए, ये बच्चों को बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। दे नीड टू स्पीक। चुप रहने वाला जमाना, जब ये कहता था ना कि ये इंट्रोवर्ट है, ये ज्यादा बोलते नहीं है, ये एम्बीवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, वो टाइम जा चुका है। आप इंट्रोवर्ट रहिए, पूरी जिंदगी रहिए, बट व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, योर स्किल्स टू यूज, जब आपको काम पे जाना है, काम करना है, नौकरी ढूंढनी है, कुछ भी करना है जिंदगी में, यू हैव टू ओपन योर माउथ, आपको बोलना सीखना ही पड़ेगा। No other choice. I'm sorry, ये कड़वा सच आप एक्सेप्ट कर लीजिए आज, और आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा। Just take my word. तीसरी सॉरी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस इंपॉर्टेंट चीज के बाद वो है कि आपकी ग्रोथ अच्छे से होती है, फास्ट ग्रो करते हैं आप, अकेले से ज्यादा फास्ट सीख पाते हैं. ऐसा नहीं कि अकेले आप कुछ सीखेंगे नहीं, बट दैट विल बी योर ओन एक्सपेरिमेंट्स एंड फेलियर्स. बट व्हेन यू हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल अराउंड यू, आपको पता होता है मुझे ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना. यू कैन पिक एंड चूज द फेलियर्स एंड सक्सेस थिंग्स फ्रॉम अदर लाइफ और फ्रॉम अदर पीपल्स लाइफ, एंड दैट्स हाउ इट इज. ऐसा ही होना चाहिए और इसमें कोई खामी नहीं है. लोगों ने तो इसको खामखा बदनाम कर दिया, जी इनका तो वास्ता लगा के काम हो जाता है. भैया तो बनाना चाहिए ना वास्ता, जिसका है वो कुछ गलत थोड़ी है. ठीक है, उसने भी कुछ शुरुआत में बनाया होगा ना, उसका कनेक्शन ही तो है, उसका नेटवर्क ही तो है ना. वो तो जो बच्चे अभी निकलेंगे कॉलेजेस से, फर्स्ट थिंग दे विल फेस इज टू सर्च एंड हंट फॉर अ जॉब, है ना. जब आप हंट के लिए निकलेंगे तो क्या होगा, आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ. आप नेटवर्किंग के लिए निकलते हैं, नहीं निकलते बात दूसरी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहीं बैठे हुए आपके जैसे एक या दो बंदे दिख जाते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आए. फिर आप उनसे बात करते हैं कि भाई क्या हुआ, वो बताएगा आपको, भाई मैं यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ पे गया, वहाँ भी इंटरव्यू था, वहाँ पे दिया. एंड यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, ऐसा होता है ना, कितनी दफा हमारे साथ हुआ है, इंटरव्यू देने के लिए गए, चार बंदे मिल गए, उन्होंने चारों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी. सो नाउ यू नो, यू अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या क्या करके आए, क्या क्या करने वाले हैं. आपको फिर अपने आप को इवैल्यूएट करने में आसानी रहती है, है ना. और आप फिर नंबर भी एक्सचेंज करते हैं, भाई वहां पे जाओ तो बताना क्या रहा. करते हैं ना हम लोग, ये नेचुरली हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है.
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए.
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी.
1: well, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है. क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड.
0: कतर में इंटरव्यूज आर टोटली डिफरेंट, आई एग्री. लेकिन मैं आपको एक नेटवर्किंग का सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ हाउ इट हैपेंस. अगर आप, चलिए मैंने एक और सिनेरियो देता हूँ. आप जो हैं स्कूल में हैं, ट्वेल्थ में हैं, प्रॉब्ली कॉलेज में हैं, आपका मन है अपना बिजनेस खड़ा करने का. क्या लगता है बिजनेस आपकी स्किल पर चलेगा, डिग्री से चल जाएगा? मेरे पास ये डिग्री है, मुझे कल से बिजनेस करना है, चलेगा? नहीं चलेगा ना, आपकी स्किल काफ़ी नहीं. यू नीड नेटवर्क्स. कैसे भेजेंगे आप अपने सामान को, अपनी चीज़ों को, कौन खरीदेगा? लोग क्या करते हैं, लोग ना कई मरतबा, जैसे हम कंपनीज के बारे में कहते हैं, लोग बॉसेस को छोड़ते हैं, मेरे दोस्त कंपनी नहीं छोड़ते. बिजनेस के साथ भी यही है, लोग जो है ना कई मरतबा ब्रांड से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांड क्या बना रहा है. फोन का एग्जांपल है आपके सामने, ये चीज नेटवर्किंग से आती है. How well you can sell your things. Marketing वाली पिच नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, मार्केटिंग में थोड़ा फर्क है, वो अलग चीज़ है. नेटवर्किंग आपको सिखा भी रही होती है और आपको कॉन्स्टेंटली लोगों से जोड़ती है ताकि आपकी चीज़ जो है, जो ऑलरेडी आपके अंदर इनबिल्ट है, उसमें और ज़्यादा

वो चीज़ और ज़्यादा रवा हो जाए. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक लाइन याद रखिएगा, अंग्रेजी में मैंने पढ़ी थी, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू नो, इट्स ऑल्सो हु यू नो. समझा? लेट मी, दिस इज माई फेवरेट लाइन, तो मैं एक और बार बोल के रहूंगा. इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू नो, इट्स ऑल्सो हु यू नो. फर्क नहीं पड़ता आपको क्या क्या जानते हैं आप, फर्क पड़ता है आप किसे जानते हैं. समझे? होता है ना कि घर वाले बात कर रहे होते हैं अक्सर लोगों के बारे में, कहते हैं अरे वो मेरे जान पहचान के हैं. हाँ, अरे बहुत बड़ा उनका सिस्टम है, बात करूं तुम्हारी. होता है ना, वी ऑलवेज टॉक इन दिस वे, यू फील प्राउड इन टेलिंग पीपल के भाई मैं इसको फला फला को जानता. होता है ना, तो यूजिंग दैट सेम कनेक्शन कोई बुरी बात थोड़ी है. वो तो लोगों ने खामखा इसको पता नहीं क्या बना दिया है कि अरे वास्ता मत लगाया करो, बिना वास्ते करके दिखाओ. क्यों करके दिखाओ? मेरा है वास्ता, मैं लगाऊंगा भाई. अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपने इतना सब कुछ सुना, एक वर्ड आपने सुना कि नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, ये भी कनेक्शन ही है ना. अगर मेरे घर में कोई एक जगह पे लगा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ हु ही इज और हु शी इज, और मुझे अपनी कंपनी में ले लेते हैं, तो गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, नेटवर्किंग है ना मेरी. अगर मेरा कोई चौथा पांचवा कजन है, वो किसी जगह पे लगा हुआ है और कहता है भाई तेरे पास भी स्किल है, देख मेरे को ये सब आता है, अपन दोनों मिलके ऐसा कर लें, कुछ गलत नहीं है, आई विल हैप्पीली डू इट. तो ये करने से कुछ खराबी नहीं है. नेटवर्किंग को ऐसे समझिए कि आपका करियर इस पे पूरी तरह से टिका रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म, डिग्री और स्किल के बाद ये एंकर आपको जरूर चाहिए. अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, है ना, हवाइयां नहीं जाते, हमने आपसे कहा कि प्रैक्टिकल बात करेंगे. तो क्लासमेट से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना क्यों जरूरी है? आज के क्लासमेट्स जो आपके साथ कॉलेज स्कूल्स में, भाई ये कल प्रोफेशनल्स होंगे आप ही की तरह ना. आप लोग ऐसे तो नहीं स्कूल से बाहर निकल के एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करेंगे. हो सकता है कि आप में से कई सारे आपके दोस्त सेम प्रोफेशंस में हो. एक जो कड़ी बनती है ये बड़ी जरूरी, एक चेन रिएक्शन पैदा होता है. एक बंदा स्कूल से निकला, वो इंजीनियर बना, उसने अपने पीछे अपने चार दोस्त जो इंजीनियर है उन सबको लगा दिया, सेट कर दिया. अब ये सारे के सारे सेट है. नेटवर्किंग, तो आपके क्लासमेट्स जो हैं उनसे अच्छे कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. दोस्ती अपनी जगह, दोस्ती को बहुत खूबसूरत चीज है. मैं तो कहता हूँ बिंदास दोस्त बनाओ, हर रंग के हर रूप के दोस्त बनाओ, कोई टेंशन नहीं है. बट वेन इट कम्स टू नेटवर्किंग, वो भी बना के रखिए. वो भी ये जो आपके साथ हैं कल ये प्रोफेशनल्स होंगे. एंड जो मेरे काम आई है चीज, मैं अभी ये बताता हूँ, नॉट बींग फिल्मी, नॉट एग्जेजरेटिंग, मेरे जो टीचर्स रहे हैं मैं उनसे हमेशा से जुड़ा रहा हूँ. आज भी मेरी प्रोफाइल से मेरे टीचर्स हैं, जैसे मैं आई विल गिव एन एग्जांपल, मैं मैम की बहुत इज्जत करता हूँ. मेरी मैम है घोष मैम. घोष मैम ने मुझे अंग्रेजी सिखाई थी, देखिए हमारे स्कूल में अंग्रेजी इतनी भूली नहीं जाती थी, पर घोष मैम जो थी वो कोलकाता से थी, एंड शी यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. तो मुझसे कहते थे, पहले तो हमें मज़ा नहीं आता, हमें लगता था अरे मैम जो है ज़बरदस्ती कर रही है, पर फिर मैम ने कहा कैरियर सीखो, वो सीखो, तुम्हें कॉल सेंटर भी करना है, कम से कम इतना तो आता होगा. एंड वो ऐसे बात करती थी, तुम्हें लगता अरे मैम क्यों इतना बुरा बिहेवियर हमारे साथ ऐसे करती हैं. बट देन बाद में जब करियर चॉइसेस की बात आई एंड वी कनेक्टेड, मैं स्पेशली मैम से बात करता था, तो मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बेटा यू नो रेडियो मैसेज सुनती हूँ, मुझे ना ये पसंद है, तू ये करेगा तो ये हो जाएगा. एंड फिर उन्होंने एक दो के नंबर और दिए, बताया कि देखो इनसे कनेक्ट करो, ये भी ना थोड़ी स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं. एंड थिंग्स जस्ट मूव, ये ट्रेन है पूरी. अपने टीचर्स से जुड़े रहिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ना गोल्ड है, गोल्ड माइन है ये, गोल्ड माइन. अपने जो टीचर्स हैं उनसे जुड़े रहना नो मैटर व्हाट. आई एम टेलिंग यू, ये इतनी अंडररेटेड चीज है दुनिया में जो तुमको बाद में समझ में आएगी, एंड यू विल लेटर ऑन से कि कबीर एकदम ठीक कह रहा था. तीसरी चीज, इवेंट्स अटेंड करो प्लीज, प्लीज फॉर गॉड से. कॉन्सर्ट के लिए भाग के टिकट लेते हो ना, लो भाई बिंदास देखो कॉन्सर्ट. मैं तो कह रहा हूं कोई कॉन्सर्ट छोड़ो ही मत, ठीक है? पर अगर तुम्हारे काम से रिलेटेड सेमिनार हो रहा है ना, वर्कशॉप हो रही है ना, प्लीज गो एंड अटेंड इट. प्लीज ऑनलाइन हो, ऑनलाइन देखो, जाके देखो, मगर डू इट. आज अगर कोई रेडियो सेमिनार होगा ना, 13 साल हो चुके रेडियो में, मैं उल्टे पैर भागती जाऊंगा. हाँ, ये जरूरी है. गो टू इवेंट्स जो आपकी जॉब से रिलेटेड है. कतर में मैं देखता हूँ कि इंजीनियर्स के लिए सेमिनार्स होते हैं, मैंने देखा है पेंटर्स के लिए एग्जीबिशन होती हैं, जहाँ पेंटर्स एक दूसरे से मिलते हैं, कोलैबोरेशन होता है. कोलैबोरेशन का जमाना है भाई. क्या होता है सोशल मीडिया पे, हम क्या देखते हैं, दो लोगों ने कोलैब किया, इसके फॉलोअर्स, इसके फॉलोअर्स दोनों आपस में मिल गए, है ना. दिस इज नेटवर्किंग. और क्या है ये, फायदा किसको हो रहा है, दोनों इन्फ्लुएंसर्स को हो रहा है फायदा. तो वेन यू अटेंड इवेंट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आपके काम से जुड़े हुए, तो आप

लोगों से मिलते हैं भाई, उनमें से एक तो आपके काम आएगा जीवन में, और ये कुछ गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। ये मत सोचेगा कि अरे मैं तो मतलब ही हूँ, सामने वाला मतलब ही जो मुझसे कनेक्शन करा, नहीं मतलब ना मतलब ही से करियर आगे बढ़ा ना, आप किसी गलत फायदा तो उठा नहीं रहे, नाजायज फायदा थोड़ी उठा रहे हैं। यू विल गेट टू नो, यू विल गेट एडवाइसेज, कहाँ आप गलत हो सकते हैं, कहाँ आप सही हो सकते हैं, सही कैसे होना है, गलत कैसे नहीं होना है, ये सब चीज़ें ये नेटवर्क्स बताते हैं। एंड आज के टाइम के हिसाब से ऑनलाइन नेटवर्किंग कीजिए। आपके पास लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तो करो। मैं आई विल गिव यू अ फनी स्टोरी। ओके, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो लिंक्डइन यूज करते हैं, वो अपनी फोटो अपलोड करते हैं। भाई दैट इज नॉट इंस्टाग्राम, दैट इज नॉट इंस्टाग्राम, वो जगह है जहां पे अपने काम को आप दिखाएं, यू नो दिस इज व्हाट आई डू। आप उसे सोशल मीडिया की तरह और मैट्रिमोनी साइट की तरह यूज करना बंद करें, यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपका काम नजर आए प्लीज, और अपने काम को बाहर डालिए। मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं भी इसमें गलत हूँ कि मुझे अगर कुछ मैं अगर कहानी सुना रहा हूँ मुझे ऑनलाइन करनी चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ ये, पर मैं कम से कम आपको तो बता सकता हूँ भाई करो, आलस छोड़ो, मैं भी छोड़ने वाला हूँ इसी हफ्ते आलस, आप भी छोड़ दीजिए आलस, प्लीज गो ऑनलाइन एंड डू इट। ये वाली नेटवर्किंग बहुत जरूरी है दोस्त, करनी पड़ेगी। एंड हेल्प, हाँ सिर्फ लेने की कोशिश मत करो कि सोच में आ गया मुझे तो अब कबीर ने बताया कि ड्रेन कर लूं सामने वाले को, फायदा उठाओ नहीं, आपको देने की भी कोशिश करनी है, अपना ज्ञान पूरा का पूरा निचोड़ के देना कि मुझे ये आता है आपको क्या क्या आता है, मिलकर चलो कुछ करते हैं। इट्स गिव एंड टेक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इंपॉर्टेंट बेस उसकी जड़ यही है, गिव एंड टेक। अगर आप किसी की मदद ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो आप भी बोलिए। गोल्डन रूल क्या है, पहले वैल्यू दो फिर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। रियलिटी पता क्या है, हर कोई दुनिया में बिगिनर होता ही होता ना। मैंने भी कभी ना कभी पहला शो तो किया होगा, जो सिविल इंजीनियर है वो जिंदगी में पहली मरतबा तो कभी साइट पे गया ही होगा। वो जो पहला सिस्टम होता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरीथिंग, तो हर कोई बिगिनर रहा है अपनी जिंदगी में, ये मान के चलिए। जेन्युइन रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेन्युइन नहीं है ना, आप ओजी नहीं है, जैसे आजकल की जनरेशन यूज करती है द वर्ड ओजी, तो ब्रो दिक्कत है, आपको ओरिजिनल रहना पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन आपका फट आएगा और फट गायब हो जाएगा। स्मॉल स्टार्ट भी काफी अच्छा स्टार्ट है। आपने सीधा मांझी द माउंटेन मैन बन के पहाड़ नहीं तोड़ने, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे एक साथ पूरा ग्रुप जाने, प्लीज डू नॉट ट्राई। छोटे छोटे स्टेप्स, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे जाओ, एंड आई एम टेलिंग यू, आप मेरी बात याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, ये है कड़वा सच। यू रेडी, दिल थाम लिया आपने, परफेक्ट होने का वेट मत करना, कभी नहीं ब्रो। मैंने बहुत हार्ड तरीके से सीखा है कि हम ना वेट करते रहते हैं, अब ये हो जाना तो उसके बाद, ये हमारी प्रॉब्लम है ना हमारी प्रॉब्लम, बड़ी भी सुन रहे अभी मान रहे होंगे मेरी बात को। हर चीज के परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट तो करो, हो जाना, देखी जाएगी। बस में क्या, भीड़ वाली बस में कभी चढ़े आप, हा? आपको मंजिल पे जाना है, आपको पता है एक ही बस आने वाली है, आप चढ़ गए।

0: नहीं होगा ऐसा, आपके लिए कोई सीट खाली नहीं छोड़ेगा, ये जमाना ही नहीं है। आपको जो है लटक के खड़े रह के सफर तो तय करना पड़ेगा और आपको सीट सबर के साथ अपनी मिल जाएगी, ये फैक्ट। पर आपको सवार होना पड़ेगा, तो परफेक्ट टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता है। जस्ट द पॉइंट वेर यू स्टार्ट, आपने जब शुरू किया वही सवेरा है भाई, वही परफेक्ट शुरुआत है। मेरी बात मान लेना, ये बात सॉलिड है, मैं बता रहा हूँ ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस, कोई हवाबाजी नहीं, फैक्ट बात है। ये बड़े भी अग्री करेंगे, उनसे पूछ लेना आप चाहो तो। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग भी एक स्किल ही है। ये मैं सोचेगा कि मेरी स्किल और डिग्री के अलावा ये कुछ नई सी चीज़ें नहीं, नेटवर्किंग की एक स्किल है और ये टाइम के साथ इम्प्रूव होती चली जाती है। डोंट वरी, अगर आप आज बात करना नहीं जानते हैं ठीक से, बात करते करते बात बनती चली जाएगी। बट स्टार्ट मेकिंग गुड नेटवर्क्स, यू नीड इट, यू रियली नीड इट, ट्रस्ट मी। तुम्हारे कॉलेजेस में, तुम्हारे स्कूल्स में जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, ये तुम्हारे लिए शुरुआत हैं। दे आर योर रियल नेटवर्क्स, एंड मेक गुड फ्रेंडशिप्स, फाइंड फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स, बी जेन्युइन, असली रहो भाई। ये मोटिवेशन टॉक नहीं है, मैं आपके आगे के लिए बता रहा हूँ, आगे बहुत याद करोगे आप मुझे। और मैं कोई ऐसा हूँ नहीं मुझे याद किया जाए, मगर ये दो तीन चीज़ें इक्का दुक्का आपको याद आएगी, कोई रेडियो बड़बड़ा रहा था और उसने यार ये बात सही कह दी थी। सो जस्ट टेक इट एज अ स्किल। अगर आप आज स्टार्ट करें ना, आज या कल से, कभी भी स्टार्ट करो, एक नया कनेक्शन आपका बनते रहना चाहिए, हर महीने, हफ्ते भी नहीं, हर महीने कोई एक काम का बंदा आपकी कनेक्शन होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करने वाला शख्स तो आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। और प्लीज जो कनेक्शन बनाते हैं, ज्ञान वगैरह एक दूसरे को देना बंद कीजिए। एक तो हमारी पता प्रॉब्लम क्या है, हम जब किसी को एडवाइस देने निकलते हैं या फिर किसी को सिखाने निकलते हैं, तो हम उसे ये बताने लग जाते हैं कि हम कितने बड़े हैं, अरे मैंने क्या क्या किया पता है तेरे को। नहीं प्लीज, ये सब छोड़िए कि आपने क्या अपनी जिंदगी में लठ गाड़े हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको क्या आता है वो बताना चाहिए। लोग पता क्या करते हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई मुझे जरा बताओ ये रेडियो पे कैसे बोलते हैं, तो पता क्या करेंगे, अरे मुझे तो यार 20 साल हो गए रेडियो पे, क्या क्या नहीं किया कुछ नहीं यार हो जाता है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। इसे जब कोई ऑनेस्टली मेरे पास आता है तो मुझसे कहता है कि यार कभी कैसे रेडियो कैसे चलता है, तो मुझसे कहता हूँ भाई सिंपल है, तुम्हें ना सिर्फ बोलना नहीं, तुम्हें लिखना आना चाहिए और तुम्हें रेडियो सुनना पड़ेगा। बहुत ही जेन्युइन एडवाइस है, बहुत जेन्युइन एडवाइस है। मैं जाके नहीं कहता कि मुझे 13 साल हो गए भाई, मेरे साथ बैठोगे ना कल को स्टार बन जाओगे, दैट डजंट हैपन एंड इट विल नेवर हैपन। सो इफ यू मेक अ कनेक्शन, डोंट ब्रैग अबाउट व्हाट यू आर एंड व्हाट यू विल डू एंड जो तुमने किया है, ये सब फालतू की बातें। जेन्युइन रहो, लोग जुड़े रहेंगे, काम बनता रहेगा। वास्ता ना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, वास्ता बनाओ भाई, नथिंग रॉन्ग इन इट। एक साल में आप देखेंगे योर लाइफ विल चेंज। तो जब करियर की तरफ बढ़ें तो इन बातों का ध्यान रखें। असली बात यही है कि अपॉर्चुनिटीज अक्सर, मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूँ, जो मौके आते हैं ना वो अक्सर किताबों से नहीं आते, लोगों से आते हैं। ये बॉटम लाइन है, इसको आप आज सीख जाएं बहुत बेहतर। कोई भी अपॉर्चुनिटी किताबी नहीं होती, किताबों से कुछ नहीं आने वाला। किताबें आपको डिग्री दिलाएंगी, आपको एक लेवल पे ले जाएंगी। ऑफ कोर्स स्टडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, डिग्री बहुत जरूरी है, मगर एंड ऑफ द डे अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खटखटाने के लिए आपको कनेक्शन तो चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो लोगों से आने वाली है, साफ सीधी बात। फाइनली ये कहूंगा कि अकेले चलोगे तो शायद जल्दी थक जाओगे, लोगों के साथ चलोगे तो दूर थक जाओगे। ये था स्टूडेंट्स गाइड ने मेरा कहना, मुझसे बहुत सारे लोग इस टॉपिक के खिलाफ भी होंगे, बट आई वॉन्टेड टू शेयर वॉट इज रॉ एंड वॉट इज रियल। ये चीज़ें बड़े होकर समझ में आती तो क्यों ना स्टूडेंट्स को अभी बता दीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस जगह जाके आप रब्ता कायम कीजिएगा हमसे, वहाँ पर भी हैं, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दुहा वाले कबीर के नाम से। और अगर आप चाहें तो शो में जब मॉर्निंग में आपको मिलूंगा मैं 6 से 9, तो मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं बाकी शोज के बारे में, और 666-2107 का। बट फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं।
1: एफ FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही رابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी
3: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
4: फ्रॉड अवेयरनेस।
5: सर, आपके क्रेडिट कार्ड से एक पेमेंट हुई है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने कॉल की है। वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए एक हमने लिंक भेजी है, उस लिंक पे क्लिक करें। अब आप हेल्प समझ रहे हैं, लेकिन उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली एक मॉलवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। तो जैसे ही आप वो लिंक क्लिक करते हैं, एक मॉलवेयर आपके मोबाइल में आ जाता है। उससे स्कैमर के पास आपका पूरा का पूरा एक्सेस आ जाता है। वो फोन पे लगा रहेगा, बोलेगा मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ आपको, पर असल में आपका फोन अब उसके कंट्रोल में चला जाता है। ओटीपी, यूपीआई पिन, बैंकिंग ऐप, सब कुछ उसे दिखाई देता है और आप बस स्क्रीन देखते रह जाते हो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपका बैलेंस कम होता हुआ नजर आता है। तो याद रखिए, कोई भी जेन्युइन कस्टमर केयर कभी स्क्रीन शेयर नहीं मांगता या कोई लिंक पे क्लिक करने को नहीं कहता। रिफंड, कंप्लेन, सपोर्ट सब बिना किसी लिंक को क्लिक किए या स्क्रीन शेयर के पॉसिबल होता है। तो लिंक पे क्लिक किया और फोन आपका नहीं रह जाता, किसी और का हो जाता है।
4: सतर्क रहे, सावधान रहे, फ्रॉड अवेयरनेस
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक मशहूर इंडियन क्रिकेटर के बारे में। जी हाँ, मशहूर तो थे वो, लेकिन एक वाकया ने शायद उन्हें विलन भी बना दिया था। चेतन शर्मा, इंडिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर जो 1980 की दहाई में अपनी स्विंग बॉलिंग के लिए मशहूर हुए। दोस्तों, उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में इसलिए हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली दफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री का हैट्रिक हासिल किया, एंड दैट वाज इन नागपुर 1987 में। चेतन शर्मा बिकेम द फर्स्ट बॉलर, जी हाँ, पहली मर्तबा किसी बॉलर ने वर्ल्ड कप की तारीख में हैट्रिक लिया था, एंड दैट वाज चेतन शर्मा। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था जहां उन्होंने लगातार 3 विकेट लेकर दुनिया को हैरान कर दिया था, एंड ऑल 3 वर क्लीन बोल्ड्स। लेकिन उनके करियर का एक दूसरा पहलू भी है जो फैंस कभी नहीं भूलते। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप फाइनल 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई के इस फाइनल में आखिरी बॉल पर जावेद मियांदा ने उनके फुल टॉस पर एक जोरदार सिक्स मारकर मैच पाकिस्तान के लिए जीत लिया था, और ये लम्हा क्रिकेट की तारीख के सबसे ड्रामेटिक फिनिशेस में से एक माना जाता है। आज भी लोग इसको याद करते हैं। चेतन शर्मा ने इंडिया के लिए कई अहम मैचेस खेले और अपनी स्विंग और कंट्रोल से बल्लेबाज को परेशान भी किया। उनकी बॉलिंग में एग्रेशन और जज्बा नजर आता था। बाद में वो सेलेक्टर भी बने और इंडियन क्रिकेट में अपना किरदार जारी रखा। एक बात और भी यहाँ पे बता दूं, एक सेंचुरी भी है उनके नाम और अगेंस्ट इंग्लैंड इन ओडीआई क्रिकेट, और वो भी एज अ फर्स्ट डाउन बैट्समैन। तो चेतन शर्मा ओवरऑल देखा जाए ऑलराउंडर भी क्या आप कह सकते हैं, ऑलराउंडर थे। और इंग्लैंड में स्पेशली 1986 के दौरे पर जब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था 2-0 से, उस सीरीज जीत हुई थी इंडिया के लिए, तो उस सीरीज में चेतन शर्मा अलॉन्ग विद रॉजर बेनी, कपिल देव काफ़ी यू नो अहम साबित हुए थे बिकॉज ऑफ द स्विंग बोलिंग एंड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, जिसको उन्होंने भरपूर एक्सप्लॉयट किया था। तो हाँ, देखा जाता है दोस्तों कि उनकी ज़िंदगी एक यू नो ग्लोरी और हार्ट ब्रेक का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। एक तरफ वर्ल्ड कप हैट्रिक का फ़खर और दूसरी तरफ मियादाद का वो यादगार सिक्स, ये दोनों लम्हे उनकी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स पर के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए. और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो पढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक. साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफ उज़मान हर वेंसडे सुबह 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर. तो बस FM 107 ऑन कीजिए और अरबी जुबान को सीखिए.
4: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए. हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे. अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए. सब कुछ एक ही शो में. तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से. With RJ Fazeel, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
3: कभी सोचा है हेल्थ की शुरुआत हॉस्पिटल से नहीं घर से होती है? एग्जैक्टली जिस जगह पर हम दिन की शुरुआत करते हैं, जहां हम थक कर लौटते हैं, जहां हम बिना मास्क के खुद को देख सकते हैं, वहीं से हेल्थ शेप लेना शुरू करती है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ स्टार्ट्स एट होम की। घर सिर्फ चार दीवारी का नहीं होता, घर एक फीलिंग होती है और वही फीलिंग आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट असर डालती है। वेल, सोचिए सुबह उठते ही अगर घर का माहौल एकदम शांत हो, थोड़ी रोशनी हो, थोड़ा फ्रेश हवा का फ्लो हो, तो दिन ऑटोमेटिकली कितना हल्का लगता है ना। और अगर घर में हमेशा शोर, टेंशन या क्लटर हो, तो बॉडी और माइंड दोनों अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। वेल, हेल्थ स्टार्ट्स एट होम इसका मतलब सिर्फ हेल्दी खाना नहीं होता। हाँ, घर का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर घर का एनवायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लीन स्पेस सिर्फ एस्थेटिकली नहीं होती है, क्लीन स्पेस आपके माइंड को काम डाउन करती है। जब चीजें अपनी जगह पर होती है तो दिमाग भी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फील करता है। और घर के अंदर की हवा, फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सब नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। कभी कभी सिर्फ खिड़की खोल देना थेरेपी जैसा काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, घर का कॉन्वर्सेशन बहुत मैटर करता है। वेल, घर वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा बोलते भी हैं और सबसे ज्यादा चुप भी रहना पसंद करते हैं। अगर घर में बातचीत ओपन हो, फीलिंग शेयर करना सेफ हो, तो इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होती है। और अगर सब कुछ दबा के रखा जाए तो वो स्ट्रेस बनकर बॉडी में उतर जाता है। हेल्थ स्टार्ट्स एट होम का मतलब है छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे कि साथ बैठकर खाना, फोन साइड में रखना और सिर्फ एक दूसरे को सुनना। घर वो जगह है जहाँ रूटीन बनती है स्लीप टाइमिंग, ईटिंग हैबिट्स, स्क्रीन टाइमिंग से। इसीलिए जब हम घर पर हेल्थ फ्रेंडली हैबिट्स क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ के बाकी एरियाज में भी फ्लो हो जाती है। और हाँ, घर सिर्फ फैमिली के साथ नहीं होता, अगर आप अकेले रहते हो तो भी ये बात उतनी ही ट्रू है। आप अपने घर के केयर टेकर हो, आप डिसाइड करते हो कि वो स्पेस आपको स्ट्रेस देगी या सुकून। वेल, घर ऐसी जगह होनी चाहिए कि ऑफिस के पूरे टाइम के बाद, दोस्तों से मिलने के बाद, आप एक ऐसी जगह आ रहे हो जो सिर्फ आपकी है, जो आपको सुकून दे रही है। एंड यू शुड लुक फॉरवर्ड गोइंग बैक टू होम। तो आज का एक सिंपल सा थॉट, घर को सिर्फ रहने की जगह मत बनाइए, उसे रिचार्ज जोन बनाइए। क्योंकि जब घर हेल्दी होता है ना, तो आप भी हेल्दी फील करते हो, और जब आप ठीक होते हो तो जिंदगी थोड़ी ज्यादा स्मूथ लगती है। इसलिए याद रखिए, हेल्थ का फाउंडेशन कहीं और नहीं, घर से ही शुरू होता है। एंड योर हेल्थ मैटर।
2: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. इस सेगमेंट में हम बात आज करने वाले हैं जी हाँ, ये टॉपिक है इनसिक्योरिटी को लेकर. लोग अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने कनेक्शंस आज के दौर में ज्यादातर छुपाते हैं. आपको एहसास या महसूस हुआ है? चलिए आज इसी पे बात करते हैं. देखिए, इंसानी रिश्ते जो हैं वो सिर्फ मोहब्बत और भरोसे पर नहीं

भी खरे होते हैं। दोस्ती का तसव्वुर आम तौर पर ओपननेस और शेयरिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अपने दोस्तों को अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाने नहीं देते या मिलना उनका पसंद नहीं करते। अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने कनेक्शंस शेयर करने से कतराते हैं, घबराते हैं और चाहते हैं कि उनके सोशल सर्कल उन्हीं तक महदूद रहे, है ना। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सेल्फिशनेस है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी है? देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि इनसिक्योरिटी है क्या। इनसिक्योरिटी असल में अपने आप पर डाउट का नाम है। जब इंसान को लगता है कि वो काफी नहीं है, ना दोस्ती में, ना स्किल में, ना इम्पोर्टेंस में, तो अपने रिश्तों को टाइटली कंट्रोल करने लगता है। ऐसे लोगों को डर होता है कि अगर उनका दोस्त किसी और के कनेक्शन में आ गया तो कहीं उसे ना छोड़ दे, मेरा दोस्त सिर्फ मेरा है। कई लोग अपनी दोस्ती को अपनी प्रॉपर्टी भी समझते हैं। ये सोच होती है कि अगर मैं इससे मिल रहा हूँ तो कोई दूसरा इससे ना मिले। ये रवैया अक्सर पजेसिवनेस और फियर ऑफ अबंडेंट, यही कह सकते हैं कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, इस थॉट को प्रोवोक करता है। जब इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है तो इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। अगर किसी को लगता है कि उसका कॉन्टैक्ट कमजोर है या वो सोशली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपने दोस्तों को किसी स्ट्रॉन्ग या फिर कामयाब कनेक्शन से मिलवाने देना नहीं चाहता। अंदर ही अंदर डर होता है कि कहीं दोस्त कंपेयर ना कर ले और ये ना सोचे मैं तो इससे बेहतर लोगों से मिल सकता हूँ, मैं इसके चक्कर में क्यों। कुछ लोगों के लिए कनेक्शंस सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि पावर का एक जरिया भी होता है। जब आप किसी को किसी से मिलवाते हैं तो आप एक ब्रिज बन जाते हैं। इससे उनको एहसास होता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर वो ब्रिज खत्म हो जाए, अगर लोग उनके बगैर ही कनेक्शन अपने बना ले, तो वो इम्पोर्टेंस और ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहे। वहीं एक साइकोलॉजी बचपन से भी जुड़ जाती है। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जो बचपन में फ्रेंडशिप के पैटर्न होते हैं वही चल के अडल्टहुड में भी नजर आते हैं। अगर किसी ने बचपन में रिजेक्शंस फेस की या उसके दोस्त बार बार बदलते रहे या उसे अकेले छोड़कर चले गए, तो वो बड़े होकर रिश्तों को बहुत टाइटली पकड़ने की कोशिश करेगा। वो चाहता ही नहीं है उसकी दोस्ती जो है वो डिवाइड हो, क्योंकि उसके लिए दोस्ती का टूटना ऑलरेडी एक इमोशनल जख्म बन चुका है। जब इंसान दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो अज्यूम करता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर उनका दोस्त उनके दूसरे दोस्त से मिलेगा तो बातें इधर उधर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी या ग्रुप पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। इसीलिए देखा जाए तो वो प्रिवेंशन के तौर पर ही पहले से इस चीज को रोक देता है। कई लोग अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि वो इतने इंटरेस्टिंग है, इतने वैल्यूएबल नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उनका दोस्त किसी और से मिलेगा तो ज्यादा फन, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सक्सेसफुल लोग जरूर पसंद आ जाएंगे। ये फीलिंग सेल्फ एस्टीम के मसले से जुड़ी होती है। जब तक इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं मानता, वो दूसरों की नजर में अपनी जगह इनसिक्योर महसूस करता है। नहीं, सोशल इमेज का भी डर होता है। ये रवैया किस तरह नुकसान देता है, इस पे बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस तरह की जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो सिर्फ रिश्तों को घुटन का शिकार नहीं बनाती बल्कि धीरे धीरे दोस्ती को भी टॉक्सिक बना देती हैं। दोस्त घुटने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उन पर पाबंदी लग रही है। आखिरकार या तो वो डिस्टेंस बना लेते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, और फिर वही इनसिक्योर इंसान के जो डर थे वो सच बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस सिचुएशन का, इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इसका हल कंट्रोल में है। नहीं, इसका हल दोस्तों कंट्रोल में है ही नहीं, इसका हल कॉन्फिडेंस में है। जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है तो उसे किसी और से मुकाबला महसूस ही नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि दोस्ती कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आपका दोस्त किसी और से मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। हेल्दी दोस्ती में स्पेस और फ्रीडम दोनों होनी चाहिए। बस आखिर में मैं तो यही कहना चाहूंगी, और ये कहना गलत नहीं होगा, कि दोस्ती से इनसिक्योरिटी असल में दूसरों का मसला नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ का इजहार है। जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो हर नया कनेक्शन हमें थ्रेट लगता है, मगर जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो, जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं जूनियर शेफ। भाई वो शो जहां आपका रेडियो बन जाता है किचन और आपकी इमेजिनेशन एक इंडक्शन, और जहां कुकिंग होती है इजी, एक्साइटिंग और फुल ऑफ फ्लेवर। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, और अब हम करेंगे स्लाइसिंग, टॉसिंग, टेस्टिंग और टॉकिंग फूड, सब कुछ आपके घर या गाड़ी की कंफर्ट के साथ। और भाई इस प्रोग्राम में आपका किचन बन जाता है आपका कंफर्ट जोन, और वो भी एक आपके क्रिएटिव कॉर्नर के साथ। तो दोस्तों एक गुजारिश कि जब आप इस रेसिपी को बना लें तो इसकी तस्वीरें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर कीजिए। भाई हम आपकी क्रिएशन देखने के लिए एक्साइटेड हैं। नंबर हमारा आपको पता ही है 666-22-107। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में पसंद की जाती है, चाहे बच्चे हो या बड़े, और वो है भाई होम मेड चिकन पिज्जा। तो जनाब आज का प्रोग्राम सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि

0: एक पूरा किचन एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आराम से हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे के भाई हमारे घर में पिज्जा कैसे बनाया जाता है। तो तमाम छोटे उस्ताद भी, बड़े उस्ताद भी, ख्वातीनों हजरात सबके सब शामिल हो जाएं मेरे साथ। भाई वो पिज्जा होगा जो फ्रेश होगा, साफ होगा और हमारी अपनी पसंद के मुताबिक तैयार होगा। ये पिज्जा घर पे बनाने का ये फायदा है। आज हम मार्केट के फ्रोजन पिज्जा को भूल कर खुद अपने हाथों से एक जबरदस्त पिज्जा बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान हम कुकिंग को स्ट्रेस नहीं बल्कि एक सुकून भरी एक्टिविटी बनाएंगे, जहां हर स्टेप को समझने और एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। भाई किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती, बल्कि ये वो जगह होती है जहां घर की खुशबू और मोहब्बत तैयार होती है। तो आज जब हम होममेड चिकन पिज्जा बनाने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छी आदत, एक अच्छा वक्त और एक फैमिली मोमेंट भी क्रिएट जरूर करेंगे। पिज्जा बनाने का मतलब है प्लानिंग, थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। किचन में गलतियां होती हैं और उन्हीं से सीखने को मिलता है। तो अगर आप पहली दफा पिज्जा बना रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए ही है जो सिंपल और आसान तरीके से घर का टेस्टी खाना बनाना चाहते हैं। अब वो पिज्जा भले ही ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या किसी कंट्री का मैप हो, डजंट मैटर एट ऑल। आज हम बनाएंगे भैया पिज्जा। तो आज के शो का फ्लो बहुत रिलैक्स है, ओके? हम जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे मैंने कहा, और किसी भी कॉम्पिटिशन का हम हिस्सा नहीं है इस वक्त, बल्कि हम एक फ्रेंडली किचन सेशन इंजॉय करने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। पिज्जा का मजा तब आता है जब हम हर प्रोसेस को वक्त देते हैं। भाई जो डो है हमारा, उसको उठाना, चिकन का मैरिनेट होना, ओवन का हीट पर आना, ये सारी चीजें अपना टाइम मांगती हैं, और इसीलिए आज हम हर स्टेप को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करके पिज्जा बनाने वाले हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए भी बहुत मददगार होने वाला है ये होममेड चिकन पिज्जा, जो अक्सर कहते हैं भाई मुझसे बेकिंग नहीं होती या ओवन समझ नहीं आता। तो आज हम इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे सिंपल और बहुत ही, कहते हैं ना, बिल्कुल घरेलू अंदाज में। ये समझ लीजिए मैं आपके किचन में हूँ, आप मेरे किचन में, हम एक साथ हैं। और ये होममेड चिकन पिज्जा का एक फायदा ये भी है कि हम अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल भी रख सकते हैं। हम जानते हैं कि कौन सा चीज यूज हो रहा है, कितना नमक जा रहा है और चिकन फ्रेश है या नहीं है। बाहर के पिज्जा में अक्सर ज्यादा ऑयल है, ज्यादा सॉल्ट है और वही अननोन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें वाकई पता नहीं होते, लेकिन घर का पिज्जा हमारी चॉइस होता है। तो अपना इतना कॉन्फिडेंट फील करिएगा कि नेक्स्ट वीकेंड आप खुद अपनी फैमिली के लिए ये पिज्जा बना सकें, या कमिंग वीकेंड ही सही। और जब फैमिली बोलेगी पिज्जा बहुत टेस्टी था, तो कुछ हो खुशी होगी आप ही कोई, है ना? और वो मार्केट के पिज्जा से कभी भी मेल नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें मोहब्बत भी भरी होगी। तो भैया प्रोग्राम का मकसद सिर्फ रेसिपी देना ही नहीं, बल्कि आपको किचन की दोस्ती सिखाना है। कुकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से और बेहतर होती चली जाती है। तो आज अगर पिज्जा परफेक्ट राउंड ना भी हो तो कोई बात नहीं, टेस्ट का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप किचन में कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना ही आपका खाना भी बेहतर होता जाएगा, है ना? तो जनाब शुरुआत पिज्जे से कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको कई और डिशेस में भी मदद करेगा अगर आप आज पहली बार पिज्जे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए एप्रन पहनिए, हल्का सा मुस्कुराइए और इस किचन की जर्नी का हिस्सा बनिए। अब जब हम मेंटली और इमोशनली किचन के लिए रेडी हो चुके हैं, तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे किचन सेफ्टी की। ये बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अच्छा खाना तभी बनता है जब किचन सेफ हो। भाई चाकू का सही यूज, गैस और ओवन का ख्याल और सफाई की बुनियादी रूल्स जो हैं, ये सारी चीजें हर कुक के लिए जरूरी होती हैं। पिज्जा बनाना मजे का सफर है, लेकिन सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी पॉजिटिव और रिलैक्स्ड एनर्जी के साथ चलिए अगले सफर पे चलते हैं, अगले भाग में चलते हैं प्रोग्राम के, और जानते हैं कि किचन सेफ्टी से हमारी क्या मुराद है। तो साहब किचन सेफ्टी से मुराद सिर्फ हादसों से बचना नहीं होता, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल कुकिंग हैबिट डेवलप करना होता है। जब हम होममेड चिकन पिज्जा बना रहे होते हैं, तो हम रॉ चिकन, शार्प नाइव्स ओवन और गर्म ट्रेस के साथ काम कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले रूल ये है कि किचन में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी। चाकू हमेशा सूखे या ड्राई हाथ से पकड़ना और कटिंग बोर्ड को स्लिप होने से बचाने के लिए नीचे गीला कपड़ा रख सकते हैं। रॉ चिकन को हमेशा अलग बोर्ड पर काटना चाहिए ताकि बैक्टीरिया दूसरी चीजों पर ट्रांसफर ना हो। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओवन सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, खास तौर पर जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं। ओवन को प्री हीट करते वक्त कभी अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। गर्म ट्रेस को उठाते वक्त हमेशा थिक किचन ग्लव्स का यूज करें। बहुत से लोग ओवन ग्लव्स को इग्नोर कर देते हैं लेकिन एक छोटी सी लापरवाही सीरियस बर्न या जलने का सबब बन सकती है, हाथ जलने का सबब बन सकती है। भाई पिज्जा को ओवन में रखते वक्त या निकालते वक्त जो ओवन का डोर है उसको पूरी तरीके से खोलें ताकि स्टीम फेस पर ना आए। ये प्रोग्राम इसलिए स्लो पेस में चल रहा है ताकि आप एक चीज को याद रख लें कि सेफ्टी सबसे पहले कितनी जरूरी है। सफाई भी किचन सेफ्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम चिकन मैरिनेट करते हैं या वेजिटेबल कट करते हैं तो बीच बीच में काउंटर को साफ करते रहना चाहिए। पर गीला काउंटर फिसलने का सबब बन सकता है चीजों का भी और गीला फर्श आपके फिसलने का। तो डिश क्लोथ को रेगुलरली धोकर यूज करें और हाथ बार बार धोना एक अच्छी आदत बना लें। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि कुकिंग के दौरान चीजें गिरती हैं या काउंटर गंदा होता है लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिज्जा बनाते वक्त हम किचन को मेस बनाकर एंड में सफाई करने के बजाय साथ साथ ऑर्गेनाइज रखें तो क्या ही खूब है। गैस स्टोव इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्लेम का साइज भी कंट्रोल में होना चाहिए। भाई बहुत तेज आग चिकन को जल्दी जला देती है और हाथ जलने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे पास हो तो चूल्हे के हैंडल्स को अंदर की तरफ रखना चाहिए और बच्चों को ये बताना समझाना चाहिए। ये सेफ्टी की छोटी छोटी टिप्स आज के शो का हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि कुकिंग एंजॉयमेंट तभी पॉसिबल है जब किचन सेफ और कंफर्टेबल हो, ये बात जानना जरूरी है। भाई पिज्जा जब ओवन में हो तो हम रैंडम चीजों को मूव करने के बजाय एक जगह खड़े होकर भी आराम से काम कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे ब्लेंडर या मिक्सर यूज करते वक्त उनके वायर्स और प्लग्स ड्राई होने चाहिए। भाई गीले हाथ से स्विच ऑन या ऑफ करना खतरनाक होता है। अगर किचन में ज्यादा लोग काम कर रहे हो तो स्पेस का ख्याल रखें ताकि टकराने या गिरने का रिस्क ना हो। आज के शो में हम सिंपल तरीकों से कुकिंग सीख रहे हैं और सेफ्टी उनमें सबसे पहला स्टेप है। ये एक ऐसी आदत है जो सिर्फ पिज्जा ही नहीं बल्कि हर डिश के लिए काम आएगी। तो साहब किचन में काम करते वक्त सबसे अहम चीज सेफ्टी होती है। अक्सर लोग जल्दी या गफलत में छोटी छोटी चोटों का शिकार हो जाते हैं। चाकू है, चूल्हा है और गर्म बर्तन, सब ये आपकी तवज्जो मांगते हैं जैसे कि हमने बताया अभी। साफ सुथरा किचन ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि सेहत और सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। खाना शुरू करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, किचन काउंटर साफ करें और तमाम इंग्रेडिएंट्स एक जगह रख लें। इससे आप टाइम भी बचाते हैं और उलझन से भी दूर रहते हैं। तो जनाब चाकू किचन का सबसे अहम और नाजुक टूल होता है, ये भी हम जानते हैं। इसका गलत इस्तेमाल चोट का सबब बन सकता है। हमेशा मजबूत कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करें और चाकू को बेख्याली में काउंटर पर मत छोड़िए। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो हमें ज्यादा जिम्मेदारी का सामना होता है। आग और गर्मी दोनों से एहतियात जरूरी होती है। हमेशा आंच कंट्रोल में रखें। गर्म बर्तन उठाते वक्त कपड़ा या मिट्स का इस्तेमाल करें और बच्चों को किचन से दूर रखें। ये छोटी छोटी बातों पर अमल करके हम बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। किचन सेफ्टी का एक बहुत अहम रूल ये भी है कि रॉ और कुक्ड फूड को अलग अलग रखा जाए। इसलिए गोश्त काटने के बाद वही चाकू या बोर्ड बिना धोए दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो फैल सकते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। सफाई और एहतियात के साथ हम अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी महफूज खाना तैयार करते हैं। तो जब हम पुरसकून जहन के साथ किचन में काम करते हैं तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों जल्दी गुस्से में या थकन की हालत में खाना बनाना ना सिर्फ खतरे से भरपूर होता है बल्कि जायके पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि खाना बनाते वक्त दिल और दिमाग दोनों पुरसकून हों। तो चलिए जी, जब अब हमने किचन सेफ्टी के तमाम जरूरी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं तो अब आप यकीनन ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। भाई महफूज किचन हमें ये आजादी देता है कि हम बेफिक्र होकर कुकिंग का लुत्फ उठा सकें। चलिए जी, अब बात करते हैं होममेड चिकन पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि अच्छी कुकिंग हमेशा अच्छी प्लानिंग से शुरू होती है। सबसे पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट है पिज्जा डो। भाई ये क्या होता है, ये जो डो है, ये जो गुंदा हुआ इसका आटा है, वो आटा, यीस्ट, पानी, थोड़ी सी चीनी, नमक और ऑलिव ऑयल से बनता है। ये डो पिज्जा की फाउंडेशन होती है, इसलिए इसका सॉफ्ट और इलास्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर डो अच्छी तरह से रेडी हो तो पिज्जा का टेस्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। डो को रेस्ट देना, उसे उठने देना, उठने देना ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में है, इसका मतलब यह है जब वो फूल जाता है ना, पूरे तरीके से स्टेबल हो जाता है या बैठ जाता है या उड़ जाता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो ये वक्त हम वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि डो को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप डो को हाथों से फील करते हैं तब आप कुकिंग के प्रोसेस से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो चलिए जी, अब आप बात कर रहे हैं पिज्जा के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, यानी इंग्रेडिएंट्स की। होममेड चिकन पिज्जा में हर इंग्रेडिएंट अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी डो की, उसके बाद अब बात करते हैं चिकन की। चिकन हमेशा फ्रेश होना चाहिए, बोनलेस और छोटे क्यूब्स में कटा होना चाहिए। चिकन को हम हल्के मसालों के साथ मैरिनेट करते हैं ताकि उसका नेचुरल टेस्ट कवर ना हो। भाई नमक है, काली मिर्च है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है और थोड़ा सा ऑयल काफी होता है। भाई ये चिकन पिज्जा का हीरो होता है, इसलिए इसके टेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पिज्जा का मजा तब डबल होता है जब टॉपिंग का चिकन जूसी हो और ओवर कुक्ड ना लगे। इस स्टेज पर हमें पेशेंस और बैलेंस दोनों का ख्याल रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिज्जा सॉस की, जो पिज्जा को एक पहचान देती है। पिज्जा सॉस टोमेटो बेस होती हैं, जिसमें थोड़ा सा गार्लिक, ओरिगैनो, बेसिल्स और हल्की सी स्वीटनेस होती है। भाई ये भी आपको बताता चलूं कि पिज्जा सॉस और केचप में बड़ा फर्क होता है। केचप सिर्फ मीठा होता है जबकि पिज्जा सॉस एक बैलेंस्ड चीज होती है जिसमें खट्टा, मीठा और सेवरी टेस्ट मिलता है। अगर सॉस ज्यादा तेज हो तो पिज्जा हैवी लगता है और अगर बिल्कुल हल्की हो तो पिज्जा बोरिंग फील होता है। इसलिए सॉस का सही बैलेंस बहुत जरूरी है। सॉस को हम स्पून से स्प्रेड करते हैं, प्रेशर नहीं देते ताकि डो जो है वो फट ना जाए, दब ना जाए और बेस जो है वो इवनली भी कवर रहे। तो वो स्पून को सीधा करके जब आप उसको स्प्रेड करते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। भाई चीज पिज्जा की जान होती है और अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं, ज्यादा चीज डालने से पिज्जा अच्छा नहीं होता। मोज़रेला चीज सबसे बेहतर होती है क्योंकि वो मेल्ट होके स्ट्रेच हो जाती है। अगर मोज़रेला के साथ थोड़ी सी चेदर मिला दें या मिला दी जाए तो टेस्ट और भी इम्प्रूव हो जाता है। चीज को हमेशा फ्रिज से निकालकर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए ताकि वो ओवन में इवनली मेल्ट हो। चीज ना ज्यादा मोटी लेयर में हो और ना बहुत कम। जब चीज सही क्वांटिटी में हो तो पिज्जा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बैलेंस होता है। वहीं वेजिटेबल्स भी पिज्जा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं दोस्तों। शिमला मिर्च है, अनियन है, ऑलिव्स हैं और मशरूम अक्सर लोग यूज करते हैं। सब्जियों को पतला स्लाइस करना जरूरी है ताकि ओवन में जल्दी कुक हो जाए। अगर वेजिटेबल्स मोटी होंगी तो पिज्जा के साथ थोड़ी कच्ची कच्ची रह जाती है तो वो टेस्ट बिगड़ जाता है, समझ लीजिए। तो वेजिटेबल्स सिर्फ कलर नहीं देती बल्कि टेस्ट और क्रंच भी ऐड करती हैं। लेकिन याद रखिए, पिज्जा सैलेड नहीं है, इसलिए सब्जियों की क्वांटिटी कंट्रोल में होनी चाहिए और हर चीज का बैलेंस ही पिज्जा को परफेक्ट बनाता है, याद रखिए। तो आइए अब बात करते हैं डो और ऑयल की। ऑलिव ऑयल पिज्जा डो को सॉफ्टनेस और फ्लेवर देता है। डो को रोल करते वक्त फोर्स नहीं लगाते, थोड़ा सा पेशेंस रखें और डो को हाथ से जेंटली स्प्रेड करें। ये भी याद रखें कि होममेड पिज्जा का शेप परफेक्ट राउंड ना भी हो तो कोई मसला नहीं, घर का पिज्जा हैंडमेड होता है और इसी की ये ब्यूटी होती है। जब हर इंग्रेडिएंट रेडी हो और समझ आ जाए तो कुकिंग का अगला हिस्सा आसान और टेंशन फ्री हो जाता है। तो दोस्तों, अब जब सारे इंग्रेडिएंट्स हम समझ चुके हैं, उनका रोल क्लियर हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है कुकिंग का। इंग्रेडिएंट्स को जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि बिना समझे कुकिंग सिर्फ एक अंदाजे पर चलती है, तो वो गलत होता है। तो भाई आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, अगले स्टेप की जानिब, जहां पर हम साथ मिलकर पिज्जा असेंबल और कुक करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आसानी से, बिना किसी जल्दी या घबराहट के। तो दोस्तों, अब हम पिज्जा बनाना प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। डो को फ्रिज से निकालकर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रहने देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए। किचन काउंटर पर हल्का सा ड्राई आटा छिड़क कर डो को रखते हैं। अब हम बेलन से या हाथ से धीरे धीरे डो को प्रेस करना शुरू करेंगे। ज्यादा जोर नहीं लगाना है, सिर्फ सेंटर से बाहर की तरफ शेप देना है, गोल, मटोल या जैसा भी आपको अच्छा लगे। डो को घुमाते हुए स्प्रेड करते हैं ताकि थिकनेस हर जगह बराबर हो, इवनली हो। अगर डो थोड़ा स्ट्रेच करे तो उसे रेस्ट देना बिल्कुल ठीक होता है। अब हम पिज्जा पैन या बेकिंग ट्रे तैयार करते हैं। ट्रे पर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाते हैं ताकि बेस स्टिक ना हो, ग्रीस करना है उसको। डो को आराम से ट्रे पर शिफ्ट कर दें, उंगलियों से कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं ताकि एज बन जाए। अब पिज्जा सॉस को बीच में रखकर चमचे से गोल गोल घुमाते हुए स्प्रेड कर दीजिए। भाई सॉस को ज्यादा हैवी नहीं करना, बस एक थिन इवन लेयर होनी चाहिए। ये स्टेप टेस्ट का फाउंडेशन होता है, इसलिए यहाँ जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके जी, सॉस के बाद हम चीज की पहली लेयर लगाते हैं। मोजरेला चीज को पिंच पिंच करके इवनली पूरी सरफेस पर फैला देते हैं। चीज का कॉर्नर्स तक बिल्कुल नहीं जलाना है, थोड़ा गैप रहने देते हैं ताकि एजेस क्रिस्प हो जाएं। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा ड्राइड ऑरिगेनो या इटालियन हर्ब्स स्प्रिंकल कर सकते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक। ये छोटी सी क्वांटिटी पिज्जा के अरोमा को बहुत एनहेंस कर देती है। चीज का ये लेयर टॉपिंग का बेस बनेगा, इसलिए बैलेंस जरूरी है। ज्यादा चीज इस स्टेज पर डालना गलती हो सकती है। चलिए जी, अब मैरिनेटेड चिकन को इवनली स्प्रेड करने का टाइम है। चिकन के पीसेस को पिज्जा के ऊपर बराबरी से फैला देते हैं। ध्यान रखें कि चिकन एक जगह जमा ना हो, हर स्लाइस में चिकन का होना जरूरी है। ओके, तो अब वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, अनियंस है, इनके स्लाइसेस जो हमने बना के काटे थे बारीक बारीक। सब्जियों को थिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बेकिंग के दौरान ये सॉफ्ट हो जाए। यही वो स्टेप है जहाँ पिज्जा को कलर, क्रंच और फ्रेशनेस मिलती है। तो यहाँ क्रिएटिविटी अलाउड होती है, लेकिन ओवरलोडिंग से बचना हमेशा बेहतर रहता है। तो भाई, अब पिज्जा पर फाइनल चीज लेयर आती है। ये लेयर टॉपिंग्स को होल्ड करने के लिए होती है और पिज्जा को गोल्डन लुक देती है। चीज को हल्के हाथ से ऊपर डालते हैं ताकि टॉपिंग्स नजर आती रहें। और इस वक्त हम चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर या चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड रखें। पिज्जा को ज्यादा बढ़ाना उसका बैलेंस खराब कर देता है। जब पिज्जा असेंबल हो जाए तो थोड़ी देर रुक कर चेक करते हैं कि कोई जगह खाली तो नहीं रह गई है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और ओवन को पहले से प्रीहीट किया गया हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पिज्जा को केयरफुली मिडिल रैक पर रखते हैं ताकि हीट बराबरी से मिले। ओवन का दरवाजा धीरे से बंद करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्र है। पिज्जा को बार बार ओपन करके देखना गलती होती है। ग्लास विंडो से पिज्जा का कलर ऑब्जर्व करते रहिए और इस वक्त चीज मेल्ट होना शुरू होती है और किचन में बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही होती है। तो ये वो मोमेंट होता है जब कुकिंग का मैजिक फील होता है और इस स्टेज पर कोई रश नहीं होना चाहिए। पिज्जा बहुत आराम आराम से बनाइए, उतना ही ज्यादा अच्छा बनेगा। पिज्जा ओवन के अंदर धीरे धीरे कुक हो रहा होता है, बेस नीचे से सेट हो रही होती है और चीज बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर बेकिंग से ही बेस क्रिस्प और टॉपिंग्स जूसी रहती हैं। अगर ओवन बहुत तेज हो तो हीट थोड़ी कम भी की जा सकती है। भाई हर अविन थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए अपने अविन का बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ पिज्जा के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर बेकिंग के लिए भी मददगार साबित होता है, ताकि आप जब भी कोई चीज बनाए तो आपको पता रहे, ठीक है। तो पिज्जा के एजेस हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए होंगे इस टाइम पे, चीज अच्छी तरह मेल्ट होकर सरफेस कवर हो गई होगी, ये साइन होता है कि पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी है। अविन ग्लव्स पहनकर पिज्जा को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस वक्त बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा, अगर बेस प्रॉपर कुक्ड हो चुकी हो तो ही पिज्जा निकालना है। अंडर कुक पिज्जा सॉफ्ट और सॉगी लगता है, इसलिए टाइम और टेम्परेचर का जो भी रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा पिज्जा वही होता है जो पेशेंस से बनाया जाए। तो दोस्तों अब पिज्जा को ओवन से बाहर निकालकर हीट रेजिस्टेंट सरफेस पर रख दे। पिज्जा को फौरन कट मत कीजिएगा, 2-3 मिनट रेस्ट देते हुए चीज थोड़ी सेटल हो जाती है, इससे स्लाइस क्लीन निकलती है, जो पिज्जा स्लाइस आपने काट के निकालनी है, और टॉपिंग्स वो स्लाइड होती नहीं है, इधर उधर गिरती नहीं है, जम जाती है, बैठ जाती है। तो इस वक्त पिज्जा का लुक बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है, गोल्डन चीज, कलरफुल टॉपिंग्स और क्रिस्प एजेस पिज्जा को विजुअली बहुत अपीलिंग बना देता है। ये वो मोमेंट होता है जब कुक अपनी मेहनत का रिजल्ट देखकर खुश होता है। देखा बनाया कभी पिज्जा, घर वालों को ऐसा कहना भाई चला ना नहीं ज्यादा, भाई घर की बनाई हुई कोई भी चीज हो वो अच्छी ही होती है। तो दोस्तों आप पिज्जा को कटर से स्लाइसेस में डिवाइड कर लीजिए, कटर को सीधा रखकर स्मूथ प्रेशर के साथ कट लगाते हैं। पिज्जा स्लाइस उठाते वक्त चीज स्ट्रेच होना एक अच्छा साइन है, हर स्लाइस में चिकन और वेजिटेबल का बैलेंस नजर आता है और यही वो प्रॉपर असेंबली है और बेकिंग की निशानी भी है। इस वक्त किचन में एक्साइटमेंट तो है ही है, मगर ख्याल से जरा गरम गरम चीज पैर पे भी गिर सकती है खाते वक्त, तो जरा सा देख के आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई सारे लोग घर वाले जितने भी हैं वो आपको भरी निगाहों से देख रहे होते हैं और कब मिलेगा, कब खाएं और कब इसको बताएं कि कैसा बना है, तो ये वो मूवमेंट होता है। पिज्जा को सर्विंग प्लेट पर शिफ्ट करते वक्त थोड़ा सा गर्म रहना जरूरी है, ज्यादा ठंडा पिज्जा टेस्ट लूज ही कर देता है तो हम जानते हैं। तो भाई अब हम चाहें तो साइड में केचप या गार्लिक सॉस रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेस्ट पिज्जा का खुद का होता है। घर का पिज्जा ज्यादा हैवी नहीं होता और ये बात हमारे पेट को भी कंफर्टेबल रखती है, इसी वजह से होममेड पिज्जा बाहर के ग्रीसी पिज्जा से ज्यादा बेहतर होते हैं। और अब यही वो स्टेज है जहां पर हम एक सुकून की सांस ले सकते हैं। भाई देखिए कुकिंग जर्नी को हमेशा अपनी अप्रिशिएट कीजिए, पहले खुद फिर ही दूसरे आपकी मेहनत को सराहेंगे। तो भाई अब टेस्ट एंड टॉक टाइम का वक्त आ गया जहां पिज्जा का पहला बाइट लिया जाए। पिज्जा को चखते वक्त हम सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि टेक्सचर भी फील करेंगे, बेस क्रिस्प है या नहीं, चिकन जूसी है या ड्राई, चीज क्रीमी है या रबरी, ये सब चीजें नोटिस की जाती हैं। हर बाइट एक नया एक्सपीरियंस होता है और होममेड पिज्जा का टेस्ट यूजुअली बैलेंस होता है, क्योंकि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो खुद सिलेक्ट किए होते हैं। यहीं पर हम रियलाइज करते हैं कि घर का खाना वाकई बहुत सेहतमंद होता है। टेस्ट के साथ साथ बातचीत भी होती है, सब लोग आपके पिज्जा को सराह रहे होंगे या कुछ खामियां भी निकाल रहे होंगे, तो बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे इम्प्रूवमेंट आता है। कुकिंग एक जर्नी है जहां हर एक्सपीरियंस कुछ सिखा कर जाता है, तो इस वक्त किचन में जितना भी हंसी मजाक हो वो आपको सेटिस्फेक्शन ही देगा। मार्केट के पिज्जा में ये फीलिंग्स नहीं होती भाई, घर वाले एक साथ बैठे हैं, घर का पिज्जा सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एक फैमिली का मोमेंट क्रिएट होता है। कोई भी कुकिंग हो, कोई भी चीज आप बना रहे हो, तो ये एक वाकई में अपने आप में बड़ी ही सुकून देने वाली चीज है। भाई टेस्ट एंड टॉक का मतलब सिर्फ तारीफ सुनना ही नहीं, कभी कभी जितने भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर बेस थोड़ा थिक रह गया हो या सॉस कम लगे तो उसे नोट कर लीजिए, ये नोट्स नेक्स्ट अटेम्प्ट को और अच्छा बनाने के लिए आपके काम आएंगे, ठीक है जी। तो जब आप खुद बनाकर खाते हैं तो हर बाइट में सेटिस्फेक्शन मिलता ही है, बाहर का पिज्जा कंपेयर ही नहीं किया जा सकता घर के पिज्जा के मुकाबले में। चलिए जी अब कुक इट अगेन चैलेंज आ गया है आप लोगों के लिए, और इसका मतलब ये है कि आज जो सीखा गया या सिखाया गया है उसे दोबारा प्रैक्टिस में लाएं। इस चैलेंज में कोई प्रेशर नहीं है, इसका मकसद कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगली दफा जब पिज्जा बनाए तो थोड़ा अपना टच जरूर ऐड करें, मुख्तलिफ टच, ज्यादा शायद आप चिकन स्पाइसी कर सकते हो या वेजिटेबल बदल भी सकते हैं। भाई कुकिंग एक्सपेरिमेंटेशन से ही बेहतर होती है। जब आप दोबारा पिज्जा बनाते हैं तब पहले वाले नर्वसनेस आपको अब नहीं मिलेगी, तो यही इस चैलेंज का फायदा है ना। आप कंफर्ट जोन में जाकर काम कर सकते हैं। तो इस चैलेंज के दौरान फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, बच्चों को चीज डालने दी जा सकती है, या उनका जितना भी इसके अंदर इंटरफेरेंस है वो खोल दीजिए, करने दीजिए, या बेस स्प्रेड करने दीजिए उन लोगों को, तो इससे उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, है ना। तो पिज्जा बनाना एक फन एक्टिविटी बन जाती है। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट और भी अच्छा लगता है। हर किसी की कंट्रीब्यूशन पिज्जा को स्पेशल बना देती है, और ये चैलेंज सिर्फ कुकिंग तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि फैमिली बॉन्डिंग का भी जरिया बन जाता है। तो जनाब कुक इट अगेन चैलेंज के जरिए हम अपनी स्किल्स को टेस्ट करते हैं। पहली दफा मिस्टेक्स होती हैं, दूसरी दफा बेहतर कंट्रोल होता है। ये प्रोसेस नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अगर ओवन टेम्परेचर पहले कंफ्यूज करता था, अब क्लियर हो जाएगा। अगर डो बेलना मुश्किल लगता था, अब आसान हो जाएगा। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स तब होते हैं जब हम रिपीट करते हैं। तो इस चैलेंज का मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस करना है। हर अटेम्प्ट के साथ पिज्जा और आप दोनों बेहतर होते चले जाएंगे। तो इस चैलेंज का एक और फायदा ये भी है कि हम रेडीमेड चीजों पर कम डिपेंड करते हैं। जब घर पर पिज्जा बनाना आता हो तो बाहर से ऑर्डर करना कम हो जाता है, और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और बजट के लिए भी। तो कुकिंग सेल्फ रेजिलियंस सिखाती है। जब आप खुद बना लेते हैं तो जीत आपकी ही होती है। तो आज के प्रोग्राम के एंड पर एक बात याद रखनी चाहिए कि होममेड चिकन पिज्जा सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक अच्छी आदत भी है। यह आदत सेहत, सुकून और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है। जब हम खुद खाना बनाते हैं तो हर बाइट में अपनी मेहनत और मोहब्बत होती है। तो इस शो का मकसद यही था कि कुकिंग को मुश्किल से आसान बनाया जाए। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस चैलेंज को आगे कैसे कैरी करना है या कैसे इसको फॉरवर्ड करना है। दोबारा बनाइए, इंजॉय करें और किचन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। तो साहब शुक्रिया मेरे साथ इस कुकिंग के सफर पर जुड़ने के लिए। अगली दफा तक अपनी मॉर्निंग्स ब्राइट रखें और अपनी मील्स माइंडफुल रखें। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थियोरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जी साइंटिस्ट कबीर। देखो आज जूनियर साइंटिस्ट सबसे पहले तो आपका स्वागत है, ये तो फॉर्मेलिटी आपको पता ही है। आज अगर एपिसोड शुरू करने से पहले अगर मैं गाना चलाता उससे कहूँ तो मैं अंडे का फंडा, तो थोड़ा क्लीशे हो जाता, आई नो, और थोड़ा क्रिंज भी हो जाता, आई विल नॉट डू दैट। लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में है ही कुछ ऐसा, मैं क्या करूँ। पर मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे इस शो से मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं साइंस में इतना ज्यादा चला जाऊंगा। हालांकि आई वॉच डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल आल्सो फैंसी, लेकिन फिर भी ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके साथ बच्चों के साथ करने में बड़ा मजा आता है। तो ये जो आज का एक्सपेरिमेंट है बेहद बेहद खास है। आज का एपिसोड आपको सुनने के बाद लगेगा कि यार ये तो मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे साइंस के साथ थोड़ा सा जादुई भी है मामला, तो सब कुछ लगेगा। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल सबसे पहले आ जाइए 666221077 666221077, जिनके लिए इतने एपिसोड के बाद भी ये शो एकदम नया है और सोच रहे हैं कि कबीर ये कौन से शो में आ गए, ये आप किस लाइन में आ गए। तो ये जूनियर साइंटिस्ट का मकसद ये है शो का कि हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो अमूमन आप देखते हैं आपकी इर्द गिर्द, जस्ट कि आप समझा नहीं सकते उसको। जैसे कई मरतबा होता है कि आपको चीज कोई बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, आपको लगता है यार ये कैसे किया होगा यार, या आपको आपसे कोई बच्चा पूछ ले अंकल ये कैसे होता है और आप बता नहीं पा रहे। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर सच, जिनमें एग्जाम्पल्स भी हैं और ये घर के अंदर किए जा सकते हैं। वर्ड जूनियर जो हम यूज कर रहे हैं, द वर्ड जूनियर इज बिकॉज हम चाहते हैं कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करें लेकिन बड़ों की पूरी सुपरविजन में। तो बड़े अपने सुपरवाइजर कैप को पहन लीजिए और बच्चे तैयार हो जाइए अपने साइंटिस्ट कैप के साथ, क्योंकि आज भाई कुछ होगा। तो सवाल है, लेकिन मेरा सवाल है शुरू करने से पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक अंडा, सिर्फ एक अंडा सिरके में डाल दें, सिरका मतलब विनेगर में डाल दें, तो क्या हो जाएगा, होगा क्या अंडे के साथ, क्या होगा, अंडा फट जाएगा, पिघल जाएगा या कुछ अजीब सा होगा। ये मिस्ट्री आज हम सॉल्व करेंगे एंड बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं एंड साइंस इर्द गिर्द हर जगह है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक सिंपल सी चीज से जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट एन एग, एक अंडा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक अंडा चाहिए, एक रॉ एग को देखें, बाहर से एकदम स्मूथ सफेद, अंदर हार्ड शेल होती है, लेकिन अंदर एक सॉफ्ट जिसे कहते हैं ना एल्ब्यूमिन कहते हैं उसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग व्हाइट जो होता है और योक यानी कि जर्दी। ये जो हार्ड शेल है ना, ये बना होता है एक केमिकल से जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो चीज है आपको मिलेगी चॉक्स में, लाइमस्टोन में, उसमें मौजूद होती है, इसलिए ये काफी हार्ड होती है इसकी शेल, है ना। आप कुछ लोग आएंगे बोलेंगे अंडा छीलने में तो माहिर है भाई, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दोस पीपल जो तो दो तीन स्टेप्स में उबला हुआ अंडा छील लेते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, ये एक टैलेंट है, आपके टैलेंट की कदर कोई ना करे, मैं जरूर करूंगा, बिकॉज अंडा छीलने में भाई हमको लग जाते हैं 15 मिनट, जब तक मन उब जाता है और अंडे की जो जो जो जो हिस्सा होता है वाइट वाला वो भी छिलके के साथ गुजर जाता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आज हम बात करते हैं विनेगर की भी साथ साथ अंडे की। सो विनेगर सिर्फ सैलेड के लिए नहीं होता है, सीजनिंग के लिए नहीं होता है, और ये एक माइल्ड एसिड भी है जिसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, जस्ट लाइक द फ्रेज। अब जब एसिड मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट से जो कि अंडा है, तो होता है एक जबरदस्त रिएक्शन एंड दैट इज हाउ इट इज। बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट्स अ मैसिव रिएक्शन, massive, whichever English you choose. इस reaction में बनता है वो कुछ। इस reaction में carbon dioxide gas bubble हो जाती है, पानी होता है और कुछ dissolved chemicals, मतलब shell जो है धीरे-धीरे dissolve होने लगती है। तो imagine करो अंडे की shell गायब हो गई और अंदर से soft अंडा रह गया। हाँ, ये कहने में उतना जादुई लग नहीं रहा है, but when you will do the experiment तब आपको समझ में आएगा कि क्या बढ़िया चीज। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जूनियर साइंटिस्ट, आर यू रेडी? ऑन योर मार्क, चलो शुरू करते हैं। तो एक ग्लास कंटेनर लेना है आपको सबसे पहले, टेक वन ग्लास कंटेनर, वेरी वेरी सिंपल। हाँ, उसके बाद एक रॉ एग उसमें जेंटली रख देना है आपने, बिल्कुल जेंटली, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। अब जब ये कर लिया आपने, तो अगेन अब आएंगे बड़े, उनका रोल बड़ा जरूरी है। आपको अपने पूरे सुपरविजन के साथ इस ही ग्लास कंटेनर में जिसमें आपने एग रखा है उसमें विनेगर रखना है, विनेगर डाल दीजिए उसमें, और इतने इतना कि अंडा जो है ना, मतलब इतना विनेगर डालना कि अंडा अंडा जो है पूरी तरह से कवर हो जाए. एक तो अंदर अंडा, ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ट्विस्ट टंग ट्विस्टर है. बट एनीवे, तो ग्लास कंटेनर उसमें एग और विनेगर इतना पोर करना है कि वो पूरी तरह से अंडे को कवर कर ले. ठीक है, अब इनिशियल रिएक्शन की बात करूं तो जैसे ही विनेगर आप डालना शुरू करेंगे कुछ सेकंड्स के बाद आप देखेंगे अंदर बबल्स नजर आने लगते हैं. ये बबल्स क्या है, आपको बच्चा पूछ ले आपसे ये बबल्स क्यों उठ रहे हैं, ये क्या है, पानी है क्या? तो द राइट आंसर इज कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बबल के फॉर्म में आ रही है. ये सेम रिएक्शन है जो बेकिंग सोडा और विनेगर में आप देखते हैं अक्सर, बस यहां ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा स्लो होता है और इसीलिए थोड़ा मैजिकल भी लगता है. And that's how you can explain the whole phenomena. अब अगर कुछ घंटे हम इसे छोड़ दें as it is, तो शेल जो है अंडे की वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, थिन होने लगेगी. अगर आपने 24 घंटे छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर आपने 24 घंटे शेल को छोड़ दिया तो शेल गई, कहां बचेगी भाई? धीरे धीरे थिन होते होते होते होते होते अंडे का साथ वो छोड़ देगी. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अंडा अब रबर जैसा हो जाएगा, लिटरली रबर जैसा. आई नो जो पहला रिएक्शन आपका होगा, बोलेंगे ये क्या बन गया. इसलिए हल्का सा बाउंस भी आप कर सकते हैं उसको, इफ यू वांट टू. इट्स अप टू यू, ये बड़ों के सुपरविजन में आप जो मर्जी करें, साफ सफाई तो उन्होंने ही करनी है. पर बी वेरी वेरी केयरफुल. अब ये मत सोचिएगा कि पूरी क्रेजी बॉल बन जाएगी, इट विल स्टार्ट बाउंसिंग हियर एंड देयर, बट या इट विल बी क्वाइट बाउंसी. अब अगर मैं इसका केमिस्ट्री बैकग्राउंड करूं, जिसमें मैं खुद फेलियर था मगर ये एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे पढ़ना पड़ा, तो थोड़ा सा साइंस को समझते हैं सिंपल तरीके से. ठीक है, तो इस एक इक्वेशन जो पूरी आपके सामने आएगी, आप इक्वेशन भी ढूंढ सकते हैं इसकी क्या है. आप टाइप करेंगे एग प्लस विनेगर तो आपके सामने इक्वेशन आएगी. आई विल नॉट गो इन टू द इक्वेशन, बहुत डीप मामला हो जाएगा, मगर इक्वेशन का मतलब बड़ा सिंपल है. कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अंडे की शेल है, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस क्या हो रहा है इन दोनों के रिएक्शन से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बबल फॉर्म में निकल रही है, और वाटर और डिसॉल्वड कैल्शियम कंपाउंड, ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है इस रिएक्शन से. इसलिए आप बबल्स देखते हैं, वो CO2 गैस होती है. बट हम एक्सपेरिमेंट को यहां रोकेंगे नहीं, जस्ट लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. ये जूनियर साइंटिस्ट का शो का जो मकसद है वो यही है कि छोटे छोटे मिनिमलिस्टिक चीजों को अपना के एक्सपेरिमेंट्स करना और उनके जरिए बच्चों को एग्जांपल्स देना कि हाउ साइंस वर्क्स. हमारे इर्द गिर्द हर जगह साइंस है, हमारी खुद की जो बॉडी है, एवरी फंक्शन इज कम्प्लीटली कनेक्टेड टू ईच अदर. वो इतना कॉम्प्लेक्स येट इट इज सो सिंपल. सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको इस तरीके से हमें बनाया कि एवरीथिंग हैज अ रिएक्टिव नेचर. कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपस में कनेक्टेड ना हो, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें आपको साइंस ना मिले. एंड सुभान अल्लाह की कुदरत ही ऐसी है कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ दिखेगा. इवन इन अ स्मॉल एग उसमें तक रिएक्टिव कैपेबिलिटीज हैं. सोचिए विनेगर के साथ मिलके दो बहुत ही नॉर्मल सी चीजें आपस में मिल रही हैं जो आपके घर में किचन में होती हैं, उनकी रिएक्शन से क्या क्या आप एक्सपेरिमेंट समझा सकते हैं. तो इसलिए आपको बबल्स दिखती हैं जब विनेगर और एग मिलते हैं, CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड. अब ये रिएक्शन और कहां होता है, लेट मी आस्क यू दिस. मीनवाइल आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो आइएगा जरूर, FM107 कतर, FM107 कतर. बट साथ में आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से, साथ साथ व्हाट्सएप 666-22-107. तो आपको क्या लगता है ये सेम रिएक्शन ये कहां कहां नजर आता होगा असल जिंदगी में जो हम देखते हैं बिना एक्सपेरिमेंट के? तो नंबर वन है फिजी ड्रिंक्स, जिनमें बहुत ज्यादा फिज होता है. मैं आवाज निकाल पा रहा हूँ ढक्कन की निकलने की, बट द फिज इज क्रिएटेड. तो वो CO2 बबल्स फॉर्म होते हैं, राइट? सो फिजी ड्रिंक्स आपके सामने सबसे सबसे इजी एग्जांपल है ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ इट इज रिएक्टिंग. दूसरी बात, वॉल्केनिक गैसेस. यस, इफ यू सी वॉल्केनिक गैसेस या पढ़ेंगे उसके बारे में आप, तो बच्चों को समझाने में और आसानी होगी. सो वॉल्केनिक गैसेस में सेम रिएक्शन हो रहा है. अब अगर आप अंडे को हटा दें, आप चौक यूज करें, चौक पे एसिड डालेंगे ना आप, सेम रिएक्शन आएगा. बट डोंट ट्राई दिस एट होम, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस. ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो सेम रिएक्शन है अंडे और विनेगर के, ये बाकी चीजों में भी आ सकता है. सो डू नॉट ट्राई चौक एंड एसिड एंड ऑल दीज थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. अब अगर मैं इसका फुल डिस्कशन करने बैठूंगा तो आपका ज्यादा टाइम लूंगा मैं नहीं, बहुत कम टाइम में सारी चीजें समझा दूंगा. मगर मेरी कोशिश ये है कि इस एक्सपेरिमेंट के जरिए या जितने भी हमने एपिसोड्स किए, आपके घर में जो बच्चे हैं उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है चीजों को लेकर, उनके सवाल के जवाब मिले। अक्सर जब बच्चे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू आंसर देम, हम उन्हें तरह तरह की बातें बता देते हैं कि बेटा ये तो कुदरत का निजाम है। अच्छी बात है, बताइए कुदरत का निजाम है, मगर ये भी बताइए, और आपका आंसर ब्यूटीफुल हो जाता है जब आप उन्हें समझाते हैं कि कुदरत का निजाम कितना खूबसूरत है। एंड फॉर दैट यू नीड टू एक्सप्लेन, ब्रेक डाउन थिंग्स फॉर देम, ताकि बच्चों को और इंटरेस्ट आए। यू नेवर नो, आपके घर में एक साइंटिस्ट बैठा है, यू जस्ट डोंट नो। तो अब सवाल एक और उठता, अंडा रबर जैसा क्यों हो गया भाई? शैल तो चलो चली गई है ना, अंदर जो अंडा बचा है वो आखिर रबर जैसा कैसे हो? क्योंकि शैल जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन एक थिन मेम्ब्रेन जो है उसका, बहुत ही पतला सा थिन मेम्ब्रेन, वो रह जाता है। ये जो मेम्ब्रेन है जो बचा हुआ है ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए अंडा सॉफ्ट और बाउंसी फील करने लग जाता है। अब इमेजिनेशन एक्टिविटी है, ठीक है, यू रेडी विद मी? ओके, ऑन योर मार्क लेट्स बिगिन। तो जस्ट इमेजिन आप हाथ में शेल वाला अंडा पकड़े हुए हैं, हार्ड एकदम, और फिर बिना शेल वाला सॉफ्ट और रबरी। तो ये आप इमेजिन भी कर सकते हैं अगर आपने एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं किया है, बट ट्राई एंड प्ले विद द एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू टन्स एंड टन्स ऑफ थिंग्स विद द सेम स्टफ, और आपको इस साइंस को समझने में और मजा आएगा वंस यू डू द एक्सपेरिमेंट। आप प्लीज हमें टैग जरूर कीजिएगा, FM 107 कतर हमारा पेज है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट देखने का हमारा ही मन करता है, दो तीन बच्चों ने हमें पिछले एपिसोड्स में भी दिया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा लगता है जब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स अपने माँ बाप के साथ करते हैं, दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स घर में किए जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको असली जिंदगी से कनेक्शन दूं तो बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट सिर्फ किचन तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ किचन तक महदूद नहीं है, नेचर में भी ये नजर आएगा आपको। कहां कहां नजर आएगा? केव्स फॉर्मेशन, गुफाएं जो होती हैं एसिड रॉक्स को डिसॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होता है जिससे केव्स बन जाती हैं, उसमें भी सेम ही रिएक्शन है, बट एक लेवल अलग है उस एक्सपेरिमेंट का, सॉरी उस रिएक्शन का अलग है। अब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन होती है बिल्डिंग को डैमेज करती है, बहुत ज्यादा खराब कर देती है। देखा ना आपने कई मरतबा, हम कहते हैं बारिश हुई इसलिए ना गई, फिर कुछ बारिश ऐसी होती है जो पूरी तरह से खराब कर सकती है किसी भी चीज को, लाइक एनी मटेरियल कैन बी डिस्ट्रॉयड विद एसिड रेन, अलग अलग रिएक्ट करेगा वो, मगर इट कैन कॉज डैमेज। अब एक और एग्जांपल जो असल जिंदगी से आता है, और वो है टीथ डिके, दांतों का सड़ जाना, एसिड एनिमल को डिसॉल्व करता है, एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ज्यादा एसिडिक चीजें भी नहीं लेनी चाहिए, है ना। ये सिर्फ मामला सिर्फ पेट का नहीं लेकिन दांतों का भी होता है, अगर आपके दांत ज्यादा इन चीजों से रिएक्ट करेंगे दैट इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। तो आज के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आप साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आप इन चीजों को भी समझ रहे हैं कि अगर इनका रिएक्शन हमारे इर्द गिर्द की चीजों से होगा तो क्या होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, केव्स फॉर्मेशन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। तो अगर बचपन से आपके दिमाग में भी मेरी तरह था कि यार ये गुफाएं कोई आगे बनाता होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, केव्स आर फॉर्म, ऑफकोर्स लोगों ने बनाई भी हैं, मैन मेड भी हैं, बट देन नेचुरल केव्स अगर आप देखेंगे तो उनके पीछे का जो पूरा फिनोमेना है वो साइंस ही है। अब अगर मैं आपसे सवालों की लड़ी में एक और सवाल जोड़ दूं तो अब आपके लिए सवाल है कि अगर विनेगर की जगह, है ना, चलो हटा देते हैं एक पल को, अंडा आपने ग्लास कंटेनर में डाला और विनेगर नहीं लिया, आपने लेमन जूस ट्राई किया तो क्या हो जाएगा? अगला सवाल, अगर अंडा एक वीक तक विनेगर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, है? और तीसरा, क्या एक्सपेरिमेंट सीशेल्स के साथ भी हो सकता है अगर अंडा हटा दिया जाए तो? आप ट्राई कीजिएगा जरूर, एंड लेट मी नो, बिकॉज आई वुड लव टू नो। इसके कुछ सेफ्टी एंड फन पार्ट्स भी हैं इस एक्सपेरिमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ग्लास कंटेनर यूज कीजिएगा, ऑफ कोर्स यू कैन सी थ्रू इट एंड आसानी रहेगी। अंडा जो है बाद में उसको खाना पीना नहीं है भाई, वो अंडा एक्सपेरिमेंट के लिए है भाइयों बहनों, उसको फेंक देने का, डू नॉट ट्राई के चल आप तो शेल बैठ गई है चीज ये तो खा सकते नहीं, डोंट ट्राई, वो अंडा फेंकने के लिए है, उसके बाद आफ्टर एक्सपेरिमेंट यू शुड नेवर इवन ट्राई और थिंक अबाउट इट। तीसरा, छोटे बच्चे इसमें अकेले ना जाएं, इसमें बड़ों का सुपरविजन जरूर लगेगा, मगर बड़ों को समझाना चाहिए ये, और एक्सपेरिमेंट घर में किया जा सकता है, इट्स सो मच फन, साइंस इज फन एक्चुअली, लेकिन सेफ रहना भी उतना ही जरूरी है, है ना। तो ये जो हमने देखा एक सिंपल सा अंडे और विनेगर, ये एक अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट बन जाता है। हमने सीखा कि एसिड प्लस कार्बन कार्बोनेट रिएक्शन CO2 बबल्स पैदा करता है, शेल जो होती है अंडे की डिसॉल्व हो जाती है, और रबर हो जाता है पूरा का पूरा अंडा. And that's how it is. ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है. अगर हम इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो हो सकता है कि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे और वो इन बातों को समझे. एंड यू नेवर नो कि वो बाकी चीजों को तलाशते तलाशते उनका साइंस में मन लग जाए. तो ये ट्राई जब आप करें ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे साथ भी शेयर करें यार, कबीर भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया था घर पे और ऐसा हुआ, आई वुड लव टू नो इट, है ना. अब अगर मैं चलो मैं सवालों के जवाब दे देता हूँ जो मैंने कुछ देर पहले पूछे थे. उनमें ये था कि अगर आप विनेगर की जगह लेमन जूस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा. है आपने विनेगर यूज किया, आपने लेमन जूस यूज किया, तो लेमन जूस में भी एसिड होता है ना. अगेन इट इज एसिडिक इन नेचर. इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड. वो एसिटिक एसिड था, ये सिट्रिक एसिड है. तो एसिड इसमें भी, इसलिए रिएक्शन फिर भी होगा. अब अगर समझ लीजिए मैंने अंडा हटा दिया, मैंने शेल यूज कर ली, तो कैल्शियम कार्बोनेट लेमन जूस के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से रिजल्ट सेम आएगा, फिर से बबल्स फॉर्म होंगे एंड फिर से ये बबल्स वही हैं जो आप सोच रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन फर्क होगा, फर्क आएगा. फर्क क्या आएगा, रिएक्शन थोड़ा सा स्लो या फास्ट हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है. Sometimes काफी strong citric acid वाली भी चीजें होती हैं, and sometimes you know mild भी होती हैं. Usually जो lemon juice होता है vinegar से थोड़ा कम strong होता है, इसलिए shell dissolve होने में थोड़ा ज़्यादा time लग सकता है. But then citric acid के भी और products आते हैं जो थोड़े से strong होते हैं, उनका reaction बड़ा तगड़ा सा होता है. But it just depends. तो अंडा अगर एक week तक vinegar में रख दिया तो क्या होगा. ओहो यो है जी मुद्दा बढ़िया वाला. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है. शेल तो पहले एक या दो दिन में आपको मैंने बताया डिसॉल्व हो जाता है, बाद में विनेगर का जो विनेगर मेम्ब्रेन पर ऐसा असर छोड़ता है थिन मेम्ब्रेन पे और थिन हो जाता है, वो बाउंस हो जाता है. रिजल्ट क्या आएगा, अंडा और ज्यादा सॉफ्ट और रबरी हो जाएगा, और भी ज्यादा थोड़ा सॉलन होने के चांसेस है वो भी हो सकते हैं. इट माइट जस्ट स्वेल्ड अप, ऐसा लगेगा अरे मैंने तो अंडा इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि लिक्विड अंदर चला गया ना. इसको क्या कहते हैं पता, इसका भी एक नाम है साइंस में, से कहते हैं ऑस्मोसिस. आई नो अ लॉट ऑफ कूल पीपल कीप देयर नेम स्पेशली डीजे नेम्स, डीजे ऑस्मोसिस चिक चिक चिक, लेकिन ऑस्मोसिस इज अ वर्ड आल्सो, इट्स अ फिनोमेनन, इट्स अ प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया. लिक्विड जो अंडे के अंदर चला गया एंड देन अंडा फूल गया, सूज गया, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है पर वो कभी और. इसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो सकता है पूरी तरह से अगर आप और ज्यादा रखेंगे तो, और ज्यादा दिन रहा तो अंडा जो है बोलेगा बाय बाय टाटा और अंडा फट भी सकता है. यस इट विल बर्स्ट, जैसे कोई आपने क्या कहते हैं, बट डू नॉट ट्राई दिस, डू नॉट ट्राई दिस. फटने के अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, हो सकता है कोई ग्लास व्लास इधर उधर चीजें फैल वैल जाए. सो ये सिर्फ सवाल का जवाब है और कुछ नहीं है. डोंट कीप इट फॉर लॉन्गर, वैसे मम्मी जो है फिर छोड़ेंगी नहीं आपको अगर आप ज्यादा देर जो है अंडा इसमें एसिड में छोड़ देंगे, सॉरी विनेगर में छोड़ देंगे. अब ये क्या एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने पूछा क्या ये सेम एक्सपेरिमेंट सी शेल्स के साथ भी हो सकता है, भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, सी शेल्स में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसी से बना होता है वो इनफैक्ट, तो विनेगर के साथ रिएक्ट जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा. एंड इनफैक्ट बबल्स यहाँ पे भी फॉर्म होंगे वही CO2 वाले. धीरे धीरे शेल डिसॉल्व होगा, लेकिन ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए इन्हें डिसॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग सकता है. दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड ये जो अगर मैं समराइज करूं तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने लेमन जूस यूज किया इंस्टेड ऑफ विनेगर तो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा, एक वीक तक अगर आपने अंडा रख दिया तो सॉफ्ट सुलन हो जाएगा. भाई ज्यादा लंबा मत रखने, छोड़ देना, पता चला किसी ने मेरी बात उधर पे ले लिया, छोड़ दीजिए, पड़ा रहने दो विनेगर में, अंडा फट सकता है, प्लीज डोंट डू दैट. एंड सी शेल्स अगर होगा तो सेम रिएक्शन होगा, इट विल नॉट बी अ वेरी डिफरेंट रिएक्शन, तो वो भी आप इस चीज के लिए तैयार रखिएगा बिकॉज दीज थिंग्स कैन हैपन. ओके तो अगर जो है मैं आपसे एक क्विज करूं और मेरे साथ साथ क्विज कीजिएगा, ओके लेट्स डू दिस टुगेदर, इसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ क्विज. ओके स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करूं मैं, ऑन योर मार्क आर यू रेडी, साथ साथ जवाब दीजिएगा मेरे. अब मैं आपको ऑब्वियसली साथ साथ हम बात तो नहीं कर रहे हैं, सो आई वुड नॉट नो कि जवाब सही है गलत, बट जज योर सेल्फ. ओके तो पहला सवाल आपके स्टीरियो सेट पर, अगर विनेगर की जगह हम लेमन जूस यूज करें तो क्या होगा. ऑप्शन ए कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी सेम रिएक्शन होगा लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा, ऑप्शन सी अंडा तुरंत फट जाएगा तो ऑप्शन डी अंडा थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए कोई रिएक्शन नहीं होगा सेम रिएक्शन होगा लेकिन थोड़ा स्लो जाएगा अंडा तुरंत फट जाएगा एग फ्रीज हो जाएगा क्या ओके 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर इज आंसर बी सेम रिएक्शन होगा लेकिन थोड़ा स्लो होगा अगर आपने विनेगर को रिप्लेस करके लेमन जूस यूज कर लिया तो सही जवाब लेकिन आप अगर मेरे साथ हैं और आपने गलत जवाब दिया है प्लीज रिवीजन रिवीजन रिवीजन गाइस रिवीजन अगला सवाल साथ में मेरे ओके शुरू करो ऑलराइट अगला सवाल आपके स्टूडियो सेट पर अगर अंडा पूरे एक हफ्ते तक विनेगर में पड़ा रहेगा तो क्या होगा है? अगर एक अंडा एक हफ्ते तक विनेगर में रहेगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है अंडा स्टोन जैसा हार्ड हो जाएगा ऑप्शन बी कुछ भी नहीं होगा चेंज ही नहीं होगा और ऑप्शन सी अंडा सॉफ्ट सॉलन और शायद फट भी जाए जैसे मेरा दिमाग अक्सर फट जाता है गर्मी में तो ये और आंसर डी अंडा गोल्ड बन जाएगा अब जिसने डी चूज किया ना बताऊंगा डी चूज नहीं करना है आंसर सही है सी अंडा अगर एक हफ्ता आप विनेगर में डुबा के रखेंगे तो सीधा सीधा अंडा हो जाएगा जी सॉफ्ट फूलने लग जाएगा क्या प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस लिक्विड अंदर चला जाएगा और शायद अंडा फट भी सकता है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट डू नॉट ट्राई दिस एट होम प्लीज डोंट डू दैट बाकी आप सिंपल वाला कर सकते हैं अब सवाल नंबर 3 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा क्या ये एक्सपेरिमेंट सी शेल्स के साथ भी हो सकता है सिंपल एक्सपेरिमेंट ये विनेगर और अंडे का एक्सपेरिमेंट क्या इसमें सी शेल्स को यूज किया जा सकता है ऑप्शन है नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ऑप्शन बी सिर्फ पानी में ही हो सकता है भाई आए या ऑप्शन सी क्योंकि सी शेल्स भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है या ऑप्शन डी सिर्फ गर्म विनेगर में होता है आखिरी सवाल है रेडी हैं आप क्या सही जवाब क्या सही जवाब है सी अगर ये एक्सपेरिमेंट सी शेल्स के साथ भी हो सकता तो मतलब हो सकता है तो क्योंकि सी शेल्स भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है तो सेम ही रिएक्शन आएगा ओके तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं चलो एक बोनस बोनस बोनस चैलेंज बोनस चैलेंज बोनस सवाल है थोड़ा ट्रिकी है थोड़ा ट्रिकी है लेट्स बी रेडी सो एग विनेगर में बड़ा क्यों हो जाता है मैंने बताया ना अंडा फूल जाता है विनेगर में अगर रखा रहे तो कई को ऐसा ऑप्शन दे रहा हूं मैं इस बोनस सवाल के ऑप्शन ए हवा भर जाती है उसमें और उसकी धुन भी मेरी जैसी हो जाती है या ऑप्शन बी ये सिर्फ जादू है मैजिक मैजिक या ऑप्शन सी लिक्विड अंदर चला जाता है इसके या ऑप्शन डी अरे यार ये तो गर्मी बहुत है हीट की वजह से फूल जाता है तो सही जवाब है ऑप्शन सी अगर एग विनेगर में बड़ा हो रहा है स्वॉलन है सूज रहा है तो उसका मतलब है कि लिक्विड एग के अंदर जा रहा है जिसको हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस

पर अगर कोई हमसे बच्चा पूछ ले, मैं तो आपको प्रेशर में डाल रहा हूँ, बड़ों जितने बड़ों हैं, बड़े लोग हैं, जब बच्चे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं तो आपका ऐसा मन हो जाता है ना कि यार मैं कैसे इसको जवाब दूँ, टाल देता हूँ। टालना अच्छी बात नहीं है, मैं आपको और एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ ताकि आपके पास मटेरियल भर भर के रहे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। अब बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल है, सबसे फेमस एग्जाम्पल यही, क्योंकि इसका वीडियो आपकी नजरों के सामने आएगा। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेकिंग सोडा और विनेगर वोल्केनो का है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट जब विनेगर के साथ मिलता है तो तुरंत फिज क्रिएट करता है और फोम निकलने लगता है। भाई ये भी CO2 गैस की वजह से होता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। बबल्स आ रहे थे पिछले एक्सपेरिमेंट में, इसमें फिज के साथ साथ फोम भी आ रहा है, पर वो भी CO2 ही है, बिल्कुल एग वाले एक्सपेरिमेंट जैसा। अगला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं चौक और विनेगर का। अब अगर स्कूल वाला चौक है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, मतलब बना अगर क्या बना ही होता है, तो विनेगर उसमें डालेंगे तो सेम रिएक्शन आएगा, अगेन बबल्स विल बी फॉर्म्ड, चौक धीरे धीरे उसमें घुलने लग जाएगा। सीशेल्स और कोरल का क्या होगा, ये भी तो है बेचारे, इनके साथ एक्सपेरिमेंट कोई इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। सीशेल्स और कोरल भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, वाह स्मार्ट है आप। तो ओशन में जब पानी एसिडिक होता है तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं उसमें, इसे कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ये आज आप वर्ड सीख लीजिए मेरे साथ, ओशन एसिडिफिकेशन। ये एक रियल एनवायरमेंटल इशू है, बाय द वे ये मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली में होता है। समटाइम्स ओशन का पानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है जिस वजह से ये फिनोमेना आपको नजर आता है, कई मरतबा नजर भी नहीं आएगा, मोस्टली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट तब आपको पता लगेगा, लेकिन कल को कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो साउंड बड़ा कूल लगता है बोलने में, एंड नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ इट, कि जितने भी कोरल और सीशेल्स होते हैं वो घुल जाते हैं, ओके। और ये एक रियल एनवायरमेंटल इशू है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आप और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लाइमस्टोन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। पुरानी बिल्डिंग देखिए जो लाइमस्टोन से बनी होती है, एसिड रेन जब होती है तो क्या होता है, एक किस्म के एसिड रेन क्या है, पॉल्यूटेड पानी तो है, तो धीरे धीरे ये पानी जब पड़ता है लाइमस्टोन पे तो उसे घिसने लगता है। इसलिए आप देखिए कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है वो टाइम के साथ साथ डैमेज हो जाती है। ऐसा नहीं कि वैंडलिज्म ही हो रहा है वहां जाके लोग जो है वहां जाके लोग दिल बना रहे हो तीर बनाने, नहीं सिर्फ वो मामला नहीं है, वो वैंडलिज्म नहीं करना चाहिए, बट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड लॉट ऑफ बिल्डिंग्स जो लाइमस्टोन से बनी है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो बारिश के पानी से, स्पेशली इफ इट इज एसिडिक इन नेचर, तो वो घिस जाते हैं पत्थर और आपको डैमेज नजर आते हैं, ओके। एंड काफी पर्सनल एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको दिया वो है टीथ एनामल डैमेज का। हमारे दांत भी मिनरल से बने होते हैं ना, कैल्शियम कंपाउंड्स, ऑफकोर्स डॉक्टर्स जो आपको बताते हैं वही नहीं बताते, हल्की मत लिया करो भाई। एसिड ड्रिंक्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और कई मरतबा जूसेस भी, ज्यादा फिजी ज्यादा एसिडिक भी हमारे दांतों के लिए अच्छे नहीं है। एनामल कैविटी जो होती है उसको नुकसान पहुंचता है, एनामल धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, इसलिए डेंटिस्ट कहते हैं ज्यादा एसिडिक चीजें अवॉइड करो भाई, ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी। बच्चों विद द एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड दिस, आपको ये समझ में आएगा, बड़ों को भी रोक दो, ऐप कोल्ड ड्रिंक रखो नहीं जैप, तो ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज दैट विल हेल्प यू, और ये बहुत जरूरी है, इससे भी ये फिनोमेना समझ सकते हैं आप। सो नाउ यू नो कि एनामल कैविटी में क्यों लोगों की परेशानी होती है, कई बार दफा दांत सड़ने लगते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स जो रीजन होता है वो यही होता है कि एसिडिक इन नेचर जो खाना पीना है वो कंज्यूम किया जा रहा है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल इज केव फॉर्मेशन, जो नेचुरल है, नेचर का बहुत स्लो मैजिक है। एसिडिक वाटर जो होता है, एसिडिक वाटर लाइमस्टोन के अंदर सीप इन करता चला जाता है ना, बहुत नेचुरली सीप इन करता जाता है, धीरे धीरे उन्हें डिसॉल्व करने लगता है, हजारों सालों के बाद एक गुफा बनती है। इट इज अ वेरी स्लो बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नेचुरल मैजिक जो हमारी नजरों के सामने है, सुभान अल्लाह। एंड इसके बाद ये मैजिक मत करना फिजी ड्रिंक्स वाला, है ना, अगेन कोल्ड ड्रिंक वाली बात आ गई, जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में बबल्स होते हैं ना, वो भी CO2 गैस के तो होते हैं, जब बॉटल खोलते हैं आप गैस रिलीज हो जाती है, सेम गैस जो एग एक्सपेरिमेंट से बनी होती है। अब अगर मैं बात करूं एंटासिडिक टैबलेट्स की, ये बोनस आपको मैं फीचर बता देता हूं, जब आप एंटासिड टैबलेट्स पानी में डालते हैं तो क्या होता है, डालते ही जाती गैस की आवाज नहीं, फिज की आवाज, मेरा साउंड इफेक्ट थोड़ा सा कम बजट का है, तो फिज पैदा होता है ना और गैस रिलीज हो जाती है। ये भी एसिड बेस रिएक्शन का ही एग्जांपल है मेरे दोस्त, ये भी एसिड बेस रिएक्शन ही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड

0: और कार्बोनेट आपस में मिलेंगे, वहां वाटर, वहां बबल्स और डिसॉल्वेशन क्या होता है, डिसॉल्व होती हुई चीजें आपको नजर आ जाएंगी. एंड दैट इज द होल एक्सपेरिमेंट, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो जूनियर साइंटिस्ट, मैंने इतना सब कुछ बताया आपको, आप मुझे भी बता सकते हैं आपके मन में कोई ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट है जो आपके स्कूल में किया जाता है. प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज ये जो नॉलेज की रोशनी हम तक भी जरूर पहुंचाइएगा, बिकॉज आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू. एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं घर में और बच्चों को बताते हैं, डू लेट देम नो कि एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है और क्या उसका मतलब है. आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं, और साथ साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्लीज अपने वीडियोज हमारे साथ जरूर शेयर किया करें, बिकॉज आई वुड लव टू सी योर एक्सपेरिमेंटेशन विद माई ओन आईज. बड़ा अच्छा लगता है. दो तीन बच्चों ने मुझे मेरे शो में भेजा था, बता रहे थे कि हमने एक्सपेरिमेंट घर पे किया है, एंड दे वर आल्सो शोइंग इट. कंप्लीट रिएक्शन जरूरी नहीं है, बट जो एंड प्रोडक्ट है वो भी आप जरूर भेज सकते हैं. आप टैग कर सकते हैं FM 107 Qatar, एंड वी वुड लव टू सी योर एक्सपेरिमेंट्स. एंड आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दो हवाले कबीर के नाम से. मगर जूनियर साइंटिस्ट का मकसद मत भूलिएगा इसमें, ये कुछ भी नहीं है कि मैं आपको आके ज्ञान दूं कि मुझे देखो कितनी साइंस आती है, ओ माई गॉड मैं तो बड़ा तेज हूँ. नहीं मैं वो वाली चीज़ नहीं कर रहा हूँ. इसके जरिए मैं भी सीख रहा हूँ भाई. मेरे भी चीज़ें कुछ चीज़ समझ में आ रही हैं जो मेरे कभी समझ में नहीं आई थी. एंड अभी मुझे थोड़ा वो लगता है कि मुझे भी और ज़्यादा इसमें आना चाहिए. एंड आई नो आई एम टू ओल्ड फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, बट यू आर टू यंग टू थिंक अ लॉट ऑफ स्टफ एंड यू शुड. तो क्यूरियोसिटी का बल्ब जगा के रखिए. एंड जूनियर साइंटिस्ट, ऑल द बेस्ट यू फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. अगला एक्सपेरिमेंट भी भाई एकदम बढ़िया होगा, मजे आ जाएंगे आपको. और जितने बड़े लोग हैं प्लीज सुपरविजन में रखें बच्चों को, बहुत सारा प्यार दें. एंड आपको भी बहुत सारा प्यार. प्लीज टेल देम एंड टीच देम साइंस इन योर ओन वे. जरूरी नहीं है कि हम साइंस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके एक से एक फॉर्मूला के पढ़ाएं. बोर जाता है भाई मामला, बोर जाता है. टाइम स्पेन बच्चों का भी बहुत कम है. सो उस टाइम स्पेन के अंदर आप जितने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट उन्हें टुकड़ों में समझा सकेंगे, उतना ही उनके लिए फायदेमंद है और उतना ही आपको भी समझ में आएगा. एंड जो जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि वो नॉलेज की जो इंद्रियां हैं वो ओपन होती हैं. सो ट्राई एंड डू दैट. ओपन योर आईज एंड पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, बिकॉज साइंस इज ऑल अराउंड अस. ये था जूनियर साइंटिस्ट और मैं हूँ जूनियर, मैं वेरी सीनियर. दिस इज दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ. आई मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. मगर तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मस्सलाम.
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर. दिल से देखिए आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
2: रेडियो स्टेशन विद मोर म्यूजिक. FM 107 दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम, स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ, हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से, सिर्फ FM 107 पर।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
5: दिल से देसी।

0: आके कहेंगे तो फिर वो हमारी तरफ से इजाफा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा है कि जब तो वजू करो तो ये इसे धो, ये यहाँ मसा करो, उसमें गर्दन क्या मसा शामिल नहीं है, इसलिए नहीं करते, नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो हमारी तरफ से बात है। अगर कभी ऐसे हाथ फेर लिया, खैर उसमें इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि ये कोई बड़ा गुनाह हो गया, नहीं, बस ये नीयत ना हो कि जी अल्लाह ने तो इतना कहा लेकिन मैं ज़रा और मुत्तकी बनना चाहता हूँ, मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूँ, बेहतर वजू करना चाहता हूँ, फिर वो मुश्किल हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो अल्लाह और उसके रसूल ने जितना बताया वो सबसे टॉप, सबसे अफजल वही तरीका है, अपनी तरफ से उसमें कोई भी इजाफा हम नहीं कर सकते, ठीक है।
1: लेकिन मैं इसमें, हाँ जी, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन एक चीज मेरे ध्यान में अभी दूसरी इसके साथ आ गई है कि हमारे यहाँ तो, मैं चल मैं दिल्ली से हूँ, हमारे यहाँ तो जो वजू करता है इस तरह ही करता है।
0: हाँ नहीं, उस मसलक में ये सिखाया जाता है कि इस तरह करना है, लेकिन जो लोग अब वो किस, उसके दलील क्या देते हैं मुकर शेख साहब जानते, मैं नहीं जानता उसके दलील वो क्या देते हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि कुरान पाक में ये अल्फाज आए हैं, फलां फलां फलां इनका मसा करना और फलां फलां इनको धोना है, वो मेरे उसमें गर्दन शामिल नहीं है, इसलिए हम उसमें गर्दन का मसा नहीं करते हैं। अगर जो लोग करते हैं उनकी दलील क्या है तो शेख साहब इंशाल्लाह आपको बता देंगे। अभी थोड़ा सा ज़रा इंतज़ार कर लीजिए, मैं उसके सबब नहीं जानता कि वो क्यों करते हैं, बस ये कि उनके यहाँ है। जी भाई,
1: दूसरा सवाल ये जानना था सर, कुछ लोग ना अल्हम्दुलिल्लाह को हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं, तो ये क्या दोनों वर्ड सही रहेंगे?
0: नहीं,
1: अल्हम्दुलिल्लाह और हम्दुलिल्लाह,
0: अगर कभी नमाज पढ़ रहे हैं या आप तिलावत कर रहे हैं और सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ही लाजमी है, उसमें हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। लेकिन हम्द क्या है, एक लफ्ज़ है, हम्द अगर आम बोल चाल में अगर कोई हम्दुलिल्लाह कहता है या हम्दुल्लाह कहता है, हम्दुल्लाह कहता है तो वो जायज़ होगा क्योंकि आम बोल चाल है। लेकिन जो अगर आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं और उसमें अलहम्द आया है तो उसको अलहम्द ही पढ़ना है, कुरान के किसी लफ्ज को, एक हर्फ को हम अपनी मर्जी से अलग नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। हाँ, मसला किसी ने पूछा क्या हाल चाल है तो वो कहते हैं अलहम्दुलिल्लाह, तो अब यूं लगा कि जैसे उसने अल नहीं पढ़ा, तो ये
1: जी बिल्कुल यही, हाँ, बिल्कुल यही बात आपने सही नोटिस किया।
0: हाँ, तो उसमें क्या है कि वो कहना जरूरी नहीं कि वो बाकायदा तजवीद के साथ कहे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कहे, वो आम गुफ्तगू में अल्हम्दुलिल्लाह वो इसलिए कह देता है तो वो जायज़ है, उसमें कोई ममानत नहीं है, उसमें वो कोई वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहा है, वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान तारीफ कर रहा है और उसमें

0: अब और कोई कॉल तो नहीं है, फिर हम दुआ की तरफ आ जाते हैं। वैसे भी टाइम क्या होगा, 29 हो रहे हैं। यकीन सामने आपको याद होगा कि हम जिस दुआ को याद कर रहे हैं आजकल, वो नबी उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिनहु व मा लम अलम। ये है खैर मांगने की दुआ। अल्लाह जितनी भी खैर है, जितनी भलाई है, जितनी भी नेकियाँ हैं, जितना भी माल दौलत ये वो हर जितना भी हलाल चीज़ें हैं ना, मैं सारी तुझे मांगता हूँ, फौरी मिलने वाली भी और बाद में मिलने वाली भी। मैं उनके बारे में जानता हूँ या मैं उनके बारे में बिल्कुल मुझे पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ है, लेकिन है मेरे लिए बेहतर, तो या अल्लाह मैं तुझसे वो मांगता हूँ, मुझे वो दे दे, वो फौरी हो, बाद में मिलने वाली हो, बाद में भी दे दे, मुझे अभी भी चाहिए, बाद में भी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें इस तरह दुआ सिखाई, खैर भलाई की, दौलत की, रिज़्क की, घर की, आसाइश की, गाड़ी, ज़मीन, हर ये सब चीज़ें जो भी जायज़ है ना, वो सारे खैर हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वह आऊज़ु बिका मिन शर्र कुल्लिही, हर वो चीज़ जो कि शर कहलाती है, जो कि हराम है, सूद है और कोई चीज़ें जो हराम है, जानवर हराम, जानवरों का गोश्त है और हराम काम है, जो जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना कर दिया है, वो सारे के सारे काम शर हैं, तो मैं हर शर से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। आऊज़ु बिका मिन शर्र कुल्लिही आजिल ही व आजिल ही, अभी गुनाह करूं, अभी कोई हराम काम करूं या बाद में करूं, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं, मैं इससे बचना चाहता हूं, मुझे इससे बचा के रखना। मा आलिम तुमिन हूँ व मालम आलम, मैं वो जानता हूं या मैं नहीं जानता। कई इंसान वो गुनाह कर देते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि ये भी ये गुनाह है, वो शिर्क कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये शिर्क है, ये हराम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्र कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिनहु व मा लम अलम। पहले खैर, उसके बाद उसी तरह वही अल्फाज है, सिर्फ खैर और शर का आप फ़र्क करेंगे ना, उसकी जगह पर वो रख देंगे, तो वो मांगी गई है और उससे पनाह मांगी गई है। तो ये हमारा आज इतना ही, इसी पर इत्तिफाक करते हैं, फिर अगले हफ्ते में इंशाल्लाह बाकिया इसका हिस्सा पेश करेंगे। मा आलिम तो मिन हूँ व मा लम आलम, ये शर के हवाले से। और अब हम आते हैं जवाबात की तरफ, और जवाबात में पहले जो सवाल था अहमद भाई का था, क्योंकि यासिन भाई तो वैसे ही उन्होंने रब्ता कर दिया, ऐसा सवाल नहीं आया उनकी तरफ से। ये जवाल के वक्त के हवाले से उनका सवाल था कि लोग ये समझते हैं कि 12 बजे वो तो जवाल का टाइम होता है, तो अब जवाल के वक्त क्या सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं, या जवाल के वक्त कुछ नवाफिल पढ़े जा सकते हैं, या वो मस्जिद में जाते हैं लोग पढ़ते हैं, तो क्या जवाल के वक्त नमाज पढ़ी जा सकती है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे अहमद अज़ीज़ भाई और सारे सामईन कराम, अर्ज़ ये है कि सूरज जब निकलता है तो हरकत में होता है शेख मुहतरम, शम्सु तजरी लि मुस्तक़र्रिन लहा। जब जैसे शेख साहब ने भी आप लोगों से फरमा कर ज़िक्र किया, जब आसमान के एकदम बीच को पहुंचता है तो इसको इस्तिवा कहते हैं, क्योंकि अभी ऐसे जगह को सूरज पहुँच गया है जिसके राइट और लेफ्ट को, या जहाँ से हरकत करके आया है और जिस तरफ जा रहे, दोनों बराबर हो गए हैं। इस टाइम में नमाज जो है नफल मुतलक इत्तिफाक़ उलमा मकरू है, नहीं नमाज पढ़नी चाहिए नफल मुतलक इस टाइम में। दरहाल कि जैसे शेख साहब ने आप लोगों से फरमाया, ज़वातुल असबाब जिसको पुकारते हैं, वो नमाज जो किसी सबब से जुड़ी हुई हो, जैसे तहियतुल मस्जिद है या कुसूफ है, तो वो यहाँ ख़ास तौर पर खलीज में उलमा किराम उसके जवाज़ के कायल हैं, अगर इस टाइम में सबब मौजूद हो गए तो। बहरहाल ये जो यहाँ अजान होती है ना, अजान से 10 से 15 मिनट तक शेख मुहतरम पहले ये टाइम होता है इस्तिवा का, और इसीलिए शेख मुहतरम आपने तवज्जो ज़रूर फरमाया होगा कि नमाज ईद जो है हम सूरज निकलने से
0: 10 मिनट बाद
1: तकरीबन, हाँ,

0: तो ये भी इतना ही टाइम इसमें भी होता है, वो तो लोए शम्स है और ये इस्तवा और फिर जवाल। जवाल शेख मतलब जब गुरूब का जो आधा ये है आसमान का हिस्सा है ना, दूसरे हिस्से को जब सूरज पहुंचता है और वहाँ मुंतकिल होता है तो उससे फिर जवाल शुरू होता है, क्योंकि जवाल मैलान को कहते हैं। अभी मायल हो गया सूरज उस तरफ, उसमें उस हाफ में चला गया है, तो इस टाइम में मुतलक नफल जो है वो नहीं है। आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं आप, और सजदे तिलावत शेख इसी टाइम में किसी ने किसी ऐसी आयत को पढ़ ली जिसमें सजदे तिलावत हो वो भी, और मस्जिद में दाखिल हो गए जैसे शेख साहब ने आप लोगों से तफसीर के बारे में जिक्र फरमा कर।
1: जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम।
0: और शेख मतलब आप इजाज़त देंगे तो एक और अर्ज़ कर दूँगा
1: जो मैं क्या है जवाल के हवाले से भी साथ ही, क्योंकि जवाल का दोनों तरफ मिश्रक आ गया।
0: अच्छा, और शेख मतलब इसमें एक पॉइंट ज़रूरी ये है, उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये है कि आप ऐसे टाइम में नमाज शुरू ना करो जिसमें दरमियान में ये टाइम आ जाए, या इसी टाइम में आप तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह अकबर शुरू करेंगे नमाज को, तो इससे हमें हमारे दीन और शरीयत ने, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शदीद के लाने वाले ने हमें मना फरमाया। बाकी शेख मोहतरम ये चार रकअत सुन्नत जो है जुमा के दिन नमाज से पहले, जैसे शेख साहब ने भी आप मोहतरम सामीन कराम से इसके बारे में ज़िक्र किया, ज़्यादातर उलमा ख़ासतौर पर यहाँ खलीज में तो इसके कायल नहीं है सुन्नियत की और ये कि यह सुन्नत है, बल्कि कहते हैं कि जब भी आप आगे नफल दो दो रकात नियत करके पढ़िए आप, जब भी आप आगे हो और जब तक इमाम आएगा नहीं मिंबर पर बैठेगा नहीं जब तक आप पढ़ो, अभी अल्लाह ने जितना आपके लिए चाहा होगा, दो रकात चार रकात टाइम पर है ना शेख
1: जी, जी
0: आप कितने पहले आए हैं कितने सवेरे आए हैं। लेकिन हनफी मस्तक में शेख मोहतरम ये चार रकात सुन्नत है, और ये सुन्नत जुमा है शेख, सुन्नत जुमा कबलिया है, तो वो लोग ये कहते हैं हनफी मस्तक में अहनाफ उलमा जो है वो यही कहते हैं कि इसको जुमा नमाज के वक्त और टाइम ही में पढ़ना चाहिए, और उनके यहाँ जुमा नमाज जो है उसका टाइम और वक्त जो है जवाल की बात, यानी वही बाकी दिनों में जो जहर का वक्त होता है ना शेख, तो उसी से शुरू होता है। तो उन लोगों का ये मतलब और ये राय है कि इसको जवाल के बाद पढ़ना चाहिए। कुछ लोग शेख मोहतरम यानी सब उल्मा की मुखालफत करके इसको इस वक्त से पहले पढ़ते हैं और बनियत सुन्नत पढ़ते हैं, तो ना तो उन लोगों की कौल पर इन लोगों ने अमल की के अमल किया जो लोग इसको सुन्नत नहीं तस्लीम करते हैं, और ना इसको अहनाफ जिसको सुन्नत करार देते हैं उनके मजहब पर उनके मजहब के मुताबिक अमल किया, इसको उसके टाइम में पढ़ लिया, क्योंकि जुमा नमाज का तो टाइम नहीं है अभी होता है जब ये लोग पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको पहले पढ़ते हैं, तो एक इख्तलाफ है इसमें। बहरहाल शेख मोहतरम इससे
1: रिजवान भाई के सवाल गर्दन के पीछे हाथ फेरने के हवाले से, वजू के वक्त
0: हाँ शेख
1: गर्दन के मसा करने के हवाले से
0: इसमें कुछ अहादीस आए हैं, लेकिन हमारे रिजवान भाई उलमा किराम जो हैं ज़्यादातर इसको ज़ईफ करार देते हैं, बल्कि कुछ अहादीस तो मकजूब और उसको मौजू भी उलमा किराम ने कहा है, मतलब
1: फैब्रिकेटेड
0: बनावटी अहादीस है, सही नहीं है। तो इस पर इसलिए ज़्यादातर उलमा इस अहादीस पर अमल करने के कायल नहीं है और इसको मशरू नहीं समझते हैं, बल्कि इसे मना करते हैं। हनफी मस्तक में और कुछ शाफी उलमा शेख इसको मुस्तहब करार देते हैं।
1: अच्छा।
0: शेख ऐसी हालत में मैं तो अपने सामीन के नाम से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप इसके कायल हैं हनफी मस्तक के मुताबिक और आप मुतमैन हैं करते हैं तो अल्लाह कबूल फरमाए और अजर दे, लेकिन तर्क करना इसलिए बेहतर है शेख कि अगर किसी ने ये नहीं किया ना तो हनफी मस्तक के उलमा इसको कहेंगे कि आपने बुरा किया और ना बाकी उलमा कराम, दरहाल कि अगर करेंगे ऐसे मसा ये गर्दन पर तो कुछ उलमा कराम कहेंगे नहीं आपने बिदअत यह गलत काम है नहीं करो, तो इसी में सलामती है कि आदमी ना कर ले इसको। वल्लाहु आलम,
1: जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और ज़ुल्करनैन भाई के सवाल दो, पहले उनका मज़ारों पे मन्नतें मुरादें मांगना, फिर कुछ बयान कर देना कि मैंने फलां काम करने से पहले वहाँ जाके

0: इतनी देगे चढ़ाई या एक देग चढ़ाई या देगे ज़्यादा भी चढ़ाते हैं लोग, और या ये कि वहाँ जाके इतने जानवर ज़बह किए या एक जानवर ज़बह किया, उसके बाद फिर मेरा काम फटाफट हो गया। और मैंने या फलां से कहा तो मेरी दुआ मांगी तो मेरा काम हो गया। तो इस तरह के नज़रियात के या इस तरह के कामों के बारे में क्या फरमाते हैं, इस्लाम क्या हुक्म देता है?
1: यही है हमारे ज़ुल्क़रनैन भाई कि जैसे शेख साहब ने भी आपसे ये फरमाया और ये कहा, नाजायज़ है, ये शिर्क है, ये ख़तरनाक काम है, इससे शायद एक इंसान इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाए। ये तो हमेशा हम कहते हैं कि किसी मालूम इंसान को जब आप उससे कोई ऐसा काम देखेंगे, कुछ ऐसा उसने कर लिया जो शिर्क हो और मुनाफी और मुनाकिद इस्लाम हो, उसको तो हम काफिर नहीं कहेंगे। ये बड़े उलमा का काम है, उसको बुलाकर उसको समझाएंगे, नसीहत करेंगे, और बाद में वो तकरार करके 3 दिन उसको नसीहत करके समझाएंगे। अगर फिर भी उसने अपनी अपनी बात को छोड़ा ही नहीं या अपने काम को छोड़ा ही नहीं है और उस पर इसरार किया, ज़िद पर कायम रहा, तो फिर वो उलमा किराम उसके कुफर के बारे में तकफीर जो है उसकी इसको सादिर फरमाएंगे हुक्म को, लेकिन हमारा काम नहीं है। बहरहाल ये कुफरी काम है, ये शिर्क अकबर है, खुद काम काम जो है शिर्क अकबर है, क्योंकि शेख मुहतरम ये इबादत है ना शेख, ये इबादत है, जो भी चीज़ अल्लाह को पसंद हो इसमें तालीम है ना शेख, इसमें तालीम है, और तालीम तो तालीम भी ऐसी तालीम जो अल्लाह के लिए ही मुनासिब है, उसी का हक बनता है। तो इसलिए शिर्क अकबर है, इससे इज्तनाब करनी चाहिए, और जो हो गया है अल्लाह माफ़ कर ले, तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटना है हमें, इससे भी सरदर्द हो गया हो और लोग जो करते हैं उन लोगों को समझाना। शेख मुहतरम आप तफसीरों में देखेंगे ना शेख, ये वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, इसकी तफसीर में भी उलमा किराम सारे उलमा किराम इस पर मुत्तफिक है कि अगर किसी और के नाम को लेंगे आप ज़बह करने के टाइम, या किसी और के नाम मिन्नत और ये नजर देंगे आप उसके लिए इसको ज़बह करेंगे, बल्कि शेख मोहतरम हमारे यहाँ एक बुरी आदत थी पहले, अभी नहीं जानता हूँ ये चीज़ है या नहीं, ये डोली जब आती थी या कोई बड़ा मेहमान आता था तो जानवर को जो भी होता शेख, उसको उसके पांव के नीचे वाला याज़ु बिल्ला उसकी तज़ीम और उसकी ये पता नहीं ज़बह करते थे। तो इसमें भी मैंने देखा है उलमा किराम यही फरमाते हैं कि नहीं, ये नाजायज़ है और ये अमल ख़तरनाक अमल है, ये तज़ीम तन्हा अल्लाह ही का हक बनता है, और इस चीज़ का काना नाजायज़ है, इस चीज़ का काना नाजायज़, गोश्त हराम होता है। ये शेख नज़र किसी और के नाम देंगे लोग किसी बकरे को या किसी और जान को ज़बह करके, अमल तो शिर्क है, कुफरी है, काना उसका हराम है और लोगों के लिए काना हराम है, और उसने जी उस आदमी ने जो इसने ये काम किया उसने एक शिर्की काम
0: जी, वो भी शिर्क हो गया।
1: हाँ
0: अच्छा, इसमें ना ये भी हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जी हम अल्लाह के ज़बह करते हैं तो अल्लाह के नाम लेते हैं ना, तो उसमें तो हराम कैसे हराम हो गया, तो अल्लाह के नाम से हम हराम कर देंगे? नहीं, जिस जगह जो आप ले जाके ज़बह कर रहे हैं वो जगह, उस जगह पर जाके बतौर ख़ास पहुंचा के वहाँ जाके इसको ज़बह करना और बिस्मिल्लाह अल्लाह को कह के ज़बह करना वो भी हराम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको जोड़ दिया है अपने उस मज़ार के साथ, उस कब्र के साथ, उस दरख्त के साथ और उस ढेर के साथ।
1: बिल्कुल शेख मुहतरम, हदीस के बारे में जो आपने जिसका जिक्र किया ना शेख मुहतरम, जो आप फरमा रहे थे उसमें ये बात आई है ना कि वहाँ कुछ बुत तो नहीं है, वहाँ जाहिलियत के ज़माने का कुछ मेला वगैरह, कुछ जो लोग आमतौर पर जैसे हमारे ज़ुल्क़रनैन भाई ने भी जिक्र किया इसका, वहाँ इकट्ठे होते हैं और पता नहीं कुछ रसूम और खुराफात और बिदियात और शिरकियात तो नहीं करते हैं, तो जब साहब ने कहा कि नहीं, कहा कि आप वहाँ बिल्कुल ज़बह कर सकते हैं, आप अपने नज़र को वहाँ पूरी कर सकते हैं।
0: अच्छा समीन, अगर इस दौरान में एक सवाल है इस पर हमें जवाब देने इस दौरान में, उसके बाद अगर आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, कोई सवाल हो तो हम इंशाल्लाह वसूल कर लेंगे। ज़ुल्क़रनैन भाई का दूसरा सवाल था, यतीम की तारीफ किसे कहते हैं यतीम?
1: बिल्कुल, हमारे शेख मोहतरम जैसे आपने भी फरमाया, ज़ुल्क़रनैन भाई यतीम वो इंसान है, बच्चा हो या बच्ची, लड़की हो या लड़का हो, जिसका बाप मर गया हो और वो बालिग ना हो उस टाइम में, तो मतलब ये है कि जब बालिग हो गया तो बात ख़त्म हो गई हो, यतीम की जो सिफत थी यतीम का जो नाम था उसे अभी इसके बाद ये यतीम इसको नहीं हम कहेंगे, नाम उससे ज़ायल हो गया या ये यतीम नहीं है, बुलूग पर ही बात ख़त्म हो गई, तो ये यतीम शरीयत में यही है। और लतीम जो है शेख मुहतरम वो उस इंसान को कहते हैं जिसके माँ बाप दोनों मर गए हों, लतीम यतीम जो है वो ता से है और लाम से, और ये यतीम जो है वो इंसानों में शेख मुहतरम जो बालिग नहीं हो गया और उसका माँ

0: उसका बाप वफात हो गया। और शेर हैवानात में यतीम कहते हैं कि उस छोटे हैवान को कहते हैं जिसकी माँ मर गई हो, लेकिन इंसानों में
1: क्योंकि उसकी परवरिश उसके साथ जुड़ी हुई है,
0: सुभान अल्लाह, लेकिन इंसानों में बाप मर गया हूँ और वो छोटा हूँ नाबालिग हूँ। शेख मोहतरम, ये हमारे रिद्वान भाई ने एक सवाल किया था उसके बारे में, हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में,
1: जी जी
0: आप इजाज़त देंगे तो
1: मैंने अभी मैं सोच रहा था कि मैंने लिखा कुछ भी नहीं, मैं उनकी बातों में लग गया, जवाब या जो भी गुफ्तगु थी तो उसमें मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैं सोच रहा था आपसे पूछूं कि आपने कुछ कहा, बात हुई तो थी, मैंने भूल गई,
0: लिखा है मैंने शेख मोहतरम, जज़ाकुमुल्लाह खैर
1: जी।
0: हमारे रिद्वान भाई, देखिए शेख साहब ने भी आपसे फरमाया कि ख़ास तौर पर नमाज में ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए और एहतियात पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि सूरत फातिहा जो है कुछ उलमा किराम इसको इसके पढ़ने को, ये जमहूर उलमा है शेख मुख्तरम, इसको वाजिब समझते हैं। तो आप सूरत फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे अलिफ और लाम को छोड़कर तो सूरह फातिहा को आपने पूरी नहीं पढ़ ली और उसमें खलल वाक़ हो गया, तो क्योंकि वाजिब का आमदन और जानबूझकर छोड़ना जो है इससे बहुत ज़्यादा खलल नमाज में वाक़ होता है, जिसका जबीर शख्स पर सजदे साहो से भी मुमकिन नहीं है, इसलिए आमदन और इंटेंशनली या जानबूझकर आप किसी ने छोड़ दिया किसी वाजिब काम को चीज़ को नमाज में, तो वो जबीरन उसका मुमकिन नहीं है सजदे साहो से। और कुछ उलमा किराम तो शेख ये शाफी मज़हब है सूरत फातिहा पढ़ना हर रकात में हर नमाज में उसको रुकन करार देते हैं, तो ये तो और भी बात ख़तरनाक हो गई, जब इसको इंसान ने छोड़ा अलिफ लाम को तो मतलब एक जुज़ और एक हिस्सा उसने छोड़ा और सूरत फातिहा जो है उसको पूरी नहीं पढ़ ली इसने, तो खुदा ना खास्ता इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा इसका ख़तरा है कि नमाज सही ना हो।
1: अच्छा, ये पहलू भी है ना कि अगर तो आप नमाज में नहीं पढ़ रहे, वैसे आप तिलावत कर रहे हैं कुरान पाक का, आपने सामने खोला और कहते मैं तिलावत करना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, भाई तिलावत कर रहे हैं, जो जो हर्फ है उसका अजर आपको तब मिलेगा जब आप पढ़ेंगे,
0: बिल्कुल
1: अल्हम्दु पढ़ेंगे तो आपको अलिफ और लाम का भी अजर मिलेगा। आप क्यों अपने आप को अजर से महरूम कर रहे हैं और फिर एक कुरान के साथ एक इतनी है उसको अहमियत बे अहमियत, पढ़ लिया नहीं पढ़ा तो ना पढ़ी कोई बात नहीं, इधर ये काट दें तो वो काट दें, ये तो हराम है, जायज नहीं है।
0: नहीं नहीं, और सवाब भी नहीं होगा ना शेख, क्योंकि अल्लाह ने अल्हम्दु कहा है, नाजिल फरमाया और हमने हम्द कहा, तो तिलावत नहीं की हमने इस लफ्ज़ का, इस लफ्ज़ की तिलावत नहीं की हमने, बिल्कुल
1: नहीं। फिर एक और ख़तरनाक दरवाज़ा खुलता है ना कि भाई कोई बात नहीं, अगर यह कोई हर्फ आपने गोल कर दिया है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, नहीं कुरान पाक के साथ ये सिलसिला नहीं चलेगा, कुरान पाक में आप हर लफ्ज़ के हर हर्फ के पाबंद हैं, उसकी पाबंदी लाजमी है।
0: शेख महतरम, कुछ उलमा के नाम तो इसके कायल है कि तजवीद भी फ़र्ज़ है, तजवीद भी फ़र्ज़ है, यानी मतलब जैसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया इसको, जैसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत काफ़ी और चीज़ें भी आती हैं ना शख्स, तनहा हरूफ तो नहीं है उसमें, तो जैसे इख़फ़ा इदगाम और पतन इक़लाब और ये सिफ़ात
1: इज़हार,
0: हाँ इज़हार और सिफ़ात जो हैं ये सब उसमें शामिल है, जो इसके बनस्बत बहुत छोटी चीज़ें हैं, इसके बनस्बत कुछ उलमा के नाम तो इसके कायल हैं शेख, और उसमें उन लोगों में एक जज़री रहमतुल्लाह भी है, उसने ये भी कहा है ना शेख, لأنه من الإله والأخذ بالتجويد فرض حتم لازم والفرض والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به من الله لأنه به من الله أنزل ومنه وهكذا منه إلينا وصل كچ ایسے فرمایا شیخ ایسے نازل فرمایا اللہ نے اس کو اور اسی طرح ہم تک یہ
1: اچھا ہمارے ہاں شاید کوتاہی برتی جاتی ہے کہ خیال نہیں رکھتے کئی حفاظ بھی ہیں ان کے آپ ان سے یاد ان سے قرآن سنیں تو انہیں پتہ نہیں بس تھوڑا تھوڑا دب دب پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی حروف کھا جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں
0: بالکل شیخ محترم بالکل
1: ہاں اب باقی کچھ لوگوں نے اس پہ اہتمام شروع کیا ہے لیکن پہلے ماضی میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں یا ان کا قرآن سنیں تو در افسوس ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ قرآن تو اس طرح نہیں
0: دونوں ہے شیخ محترم جیسے آپ نے فرمایا کچھ بہت ممتاز قاری لوگ بھی ہیں شیخ جو ماشاء اللہ یہ کہتے تھے کہ عالم اسلام کے لیول پہ ہیں پاکستان میں افغانستان میں بہت ہائی لیول پر ہیں ماشاء اللہ تجوید میں اور قرآت وغیرہ میں ایک دم ٹاپ ہے شیخ اور جو عام طور پر جیسے آپ نے فرمایا ہمارے خاص طور پر دیہات وغیرہ گاؤں میں جو لوگ حفظ کرتے ہیں تو بس ان لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ حفظ کر لے بس تجوید کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے ان لوگوں میں سے زیادہ ایسی چیز

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: ये है कि हर किसी का अपना एक पेस होता है. किसी का फास्ट फॉरवर्ड मोड चल रहा होता है, किसी का स्लो बट स्टेडी. एंड गेस व्हाट, दोनों ही सही हैं. बस अपनी जर्नी को समझना जरूरी होता है. और भाई, इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए बिना मिरर के सामने मैं बेस्ट हूँ वाला एटीट्यूड रखकर, उसको बार बार 100 दफा रिपीट किए हुए. ऑल्दो वो भी कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी टिप्स हैं कि जिंदगी को इजी कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अपने डिसीजंस को बेटर बनाया जाए ताकि आप हर बार वो जो उप्स वाले मोमेंट्स होते हैं ना उनसे बच सकें, और कैसे अपने इमोशंस को हैंडल किया जाए स्पेशली जब आपको लगे कि भाई दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई है, लेकिन असल में मामला सिर्फ ये हो कि असल में आपका सिर्फ वाईफाई डाउन हो, कुछ और नहीं. अच्छा, मजे की एक बात बताऊं साथियों, पेरेंट्स के रूल्स और बच्चों के ये जो हम कहते हैं ना लेकिन क्यों वाला सेंटेंस, इसके बीच ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रहती है. हम बात करते हैं सोशल प्रेशर की. जब आप फील करते हैं ना कि सब लोग मुझसे बेटर हैं, लेकिन असल में हर किसी की अपनी स्ट्रगल हो रही होती है, एक अपना ही उनका दुनिया का हिसाब चल रहा होता है जो वो रैपिडली अपने स्टेटस पे नहीं लगाते. साथियों, गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आपको सिखाता है कि अपनी आवाज को सुनना भी जरूरी है. हर किसी की लाइफ में लोग होते हैं जो एडवाइस देते हैं, लेकिन आखिर में डिसीजन आपको ही लेना होता है, आपका ही होता है डिसीजन. और अगर कभी आप गलती करते हैं तो टेंशन मत लें. देखिए, समझने की कोशिश करें कि गलतियां वो छोटी छोटी प्लॉट ट्विस्ट हैं जो आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं. वरना लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है ना अगर हम गलतियां ना करते और कुछ सीखने को भी ना मिलता. और भाई, हम में से तो कोई किसी बोरिंग स्टोरी का फैन नहीं है कि नहीं? तो साथियों, इस जर्नी में हम ये सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ अच्छा स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छा लिसनर, अच्छा फ्रेंड और अच्छा ह्यूमन होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. और ये सब क्वालिटीज एक दिन में नहीं आती साथियों, ये एक प्रोसेस है. ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस. जैसे बिरयानी अगर जल्दी में बना दी जाए ना तो उसका टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और आप अम्मी कहते हैं, अम्मी आज वो मजा नहीं आया बिरयानी खाने में जैसे आप पहले बनाती थी. तो भाई, इसमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी मेहनत और फिर परफेक्ट रिजल्ट मिलता है. लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है. तो भाई साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, जहाँ हम सिर्फ लेक्चर नहीं देते बल्कि थोड़ा हंसते भी हैं, थोड़ा सीखते भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे को समझाते भी हैं. तो भाई चलिए, इस सफर को शुरू करते हैं जहाँ हर छोटा दिल इम्पोर्टेंट है, हर सवाल वैलिड है और हर मुस्कुराहट एक स्टेप है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर.
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर. Because this show is an inspiring companion for spiritual and personal growth.
0: अच्छा साथियों, बच्चे जो सबर प्रैक्टिस करते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता रेजिलिएंट बन जाते हैं. रेजिलिएंस का मतलब होता है, कैसे समझाया जाए, कि अगर आप गिर कर उठ जाएं, आप फेल हो लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहें, आप डिले से फ्रस्ट्रेट ना हो बल्कि उसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़े. देखें, ऐसे बच्चे अपने इमोशंस को समझते हैं, दूसरों को भी समझते हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं. वो सिर्फ अभी के बारे में नहीं सोचते बल्कि बाद में जो होगा उसके बारे में भी सोचते हैं. साथियों, आज के एपिसोड में हम सबर को सिर्फ एक वर्ड के तौर पर नहीं बल्कि एक जर्नी के तौर पर एक्सप्लोर करने वाले हैं. हम ये जानेंगे कि इस्लाम हमें सबर के बारे में क्या सिखाता है, कैसे कुरान और हदीस की रोशनी में हमें गाइडेंस मिलती है इसके बारे में. हम थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से डिले ग्रेटिफिकेशन क्या होता है और क्यों वेट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है. हम प्रैक्टिकल टूल्स भी सीखेंगे भाई, ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं जब हमें गुस्सा आए तो, जब आप इम्पेशेंट फील करें तो, या जब आपको लगे कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रही हैं. तो भाई साथियों, आज के प्रोग्राम के एंड तक ना मैं चाहूंगी कि आप सबर को एक बर्डन के तौर पर ना देखें. सबर कोई बोरिंग या कोई मुश्किल चीज नहीं है साथियों, सबर एक रोशनी है, गाइडेंस है जो आपको सही रास्ता दिखाता है जब सब कुछ अनक्लियर लग रहा होता है. ये आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर बनाता है और आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो हर सिचुएशन में बैलेंस रहता है. तो चलिए, अपने दिल को ओपन करते हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं जहां हम सीखेंगे कि वेट

बहुत ही गहरे और रोशन हिस्से में दाखिल होने लगे, जहाँ हम बात करते हैं इस्लाम की उस खूबसूरत तालीम की जो हर इंसान की जिंदगी को बैलेंस देती है, और वो है सबर यानी पेशेंस। इस्लाम में सबर को सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं समझा जाता, बल्कि इसे ईमान का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया गया है। भाई कुरान करीम में बार बार मोमिनीन को याद दिलाया जाता है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, जब रास्ते बंद नजर आए, जब दिल थक जाए, तब सबर और नमाज के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगो। देखिए सूरह अल बकरा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, सबर और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो साथियों जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रीअश्योरेंस है। जब आप वेट कर रहे होते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं, जब आपको लगता है कि भाई कोई भी आपको नहीं समझ रहा, तब अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। भाई इससे ज्यादा पावरफुल सपोर्ट सिस्टम और क्या हो सकता है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं सबर की बात करूँ, सबर का मतलब सिर्फ चुप करके बैठ जाना नहीं होता और कुछ ना करना नहीं होता। अगर हम रिलीजियस वे में देखें ना, तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि सबर एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी आप रुकते हैं लेकिन अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं। आप वेट करते हैं लेकिन अपनी होप नहीं छोड़ते। आप डिले फेस करते हैं लेकिन अपनी फेथ और इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो इंसान को टूटने नहीं देती, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। और ये बात हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबर की एक लाइव एग्जांपल थी। साथियों जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था ना, तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कभी लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, कभी आप पर जुल्म हुआ, कभी आपको इमोशनल पेन फेस करना पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने मिशन को छोड़ा नहीं। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सबर के साथ, हिकमत के साथ और अल्लाह पर कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहे। साथियों आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ मिशन तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर दिखाया। कैसे? भाई उनकी फैमिली में चैलेंजेस थे, इमोशनल लॉसेस थे और डेली स्ट्रगल्स थी। हर सिचुएशन में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पांस सबर और दुआ होता था। और ये सब हमें ये सिखाता है कि सबर कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वीक इंसान जल्दी टूट जाता है, लेकिन सबर वाला इंसान हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है। देखिए अब अगर हम इस बात पर अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें ना, तो सबर सिर्फ बड़े कॉन्सेप्ट तक लिमिटेड नहीं है। ये हर रोज के छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमारे पास होते हैं ना, उनमें मौजूद है। जब आप स्कूल में अपनी टर्न का इंतजार करते हैं, ये सबर है। जब आप किसी को पूरी तवज्जो से सुनते हैं बिना इंटरप्शन, ये भी सबर है। जब आप एक मुश्किल होमवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना गिव अप किए, ये भी सबर है। जब आप गुस्से में अपने वर्ड्स कंट्रोल करते हैं, ये भी सबर है। यानी सबर कोई डिस्टेंट आइडिया नहीं है, ये आपकी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा है। और इस्लाम हमें ये याद दिलाता है कि हर छोटी कोशिश, हर छोटा एक्ट ऑफ पेशेंस अल्लाह के नजदीक कीमती है। चाहे वो किसी छोटी सी बात पर कंट्रोल करना ही क्यों ना हो, या बड़े डिसीजंस में रुक कर सोचना हो, सबर हर लेवल पर रिवॉर्ड रखता है। जरा सोचिए, जब आप किसी गोल के पीछे जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं और वो गोल फौरन अचीव नहीं होता, आपका रिएक्शन क्या होता है? आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर आप समझने की कोशिश करते हैं शायद ये डिले आपके लिए बेहतर हो। देखिए इस्लाम हमें ये पर्सपेक्टिव देता है कि डिलेज कभी कभी पनिशमेंट नहीं होते, बल्कि प्रिपरेशन होते हैं। जब हम सबर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी डिवेलप कर रहे होते हैं, और वो है ट्रस्ट इन अल्लाह प्लान। हम ये समझना सीख लेते हैं कि भाई हर चीज हमारे टाइम के मुताबिक नहीं हो सकती, यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, बल्कि अल्लाह के परफेक्ट टाइमिंग के मुताबिक होती है। और अल्लाह का प्लान हमेशा हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा ही बेहतर होगा। भाई कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई सब कुछ हमें फौरन मिल जाए, लेकिन उस डिले के पीछे हिकमत होती है। शायद हम अभी रेडी नहीं हो, शायद हम अभी सीख रहे हो, शायद अल्लाह ताला हमें एक और बेहतर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। जब हम सबर करते हैं ना, तो हम अपने ईगो को छोटा कर देते हैं और अपने रब पर भरोसा बढ़ाते हैं। ये है असली ह्यूमिलिटी। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज भी तो है साथियों, जो सबर को
ایک گفٹ کے

तौर पर प्रेजेंट करता है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान को सबर से बेहतर और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोई गिफ्ट नहीं दिया गया। सोचिए, सबर को गिफ्ट कहा गया है, यानी कि ये कोई बर्डन

0: करते हुए रुकना है ये सिर्फ टॉलरेट करना नहीं बल्कि ट्रस्ट के साथ फेस करना है और जब आप इस सबर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं ना तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट या बच्चा नहीं रहते बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन जाते हैं आपके डिसीजंस बेटर हो जाते हैं आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और आपकी जिंदगी में एक ऐसा सुकून आ जाता है जो दुनिया की किसी भी फास्ट चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता तो साथियों सबर को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं क्योंकि जिस दिल में सबर होता है उस दिल में अल्लाह ताला का नूर भी मौजूद होता है
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर बिकॉज़ दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ
0: साथियों अब हम अपने सफर के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम बात करते हैं कि सबर को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बना सकते हैं क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं होता ना असल चेंज तो तब आता है जब हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम उस समझ को अपनी रोजमर्रा की छोटे छोटे एक्शंस में लेकर आते हैं और यही वो जगह है जहाँ पेशेंस एक आइडिया से ज्यादा बनकर एक हैबिट बन जाता है देखिए आज की फास्ट दुनिया में पेशेंस सीखना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मसल को स्ट्रॉन्ग करना होता है ना तो शुरू में थोड़ा सा आपको वीक लगती है अपनी प्रोसेसिंग लेकिन प्रैक्टिस से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है सबर भी ऐसे ही डिवेलप होता है छोटी छोटी सिचुएशन से छोटी छोटी चॉइसेस से छोटी छोटी विंस से देखिए सबसे पहला स्टेप जो हम ले सकते हैं वो ये है स्टार्ट स्मॉल अक्सर हम ये सोचते हैं कि पेशेंस सिर्फ बड़े मोमेंट्स में चाहिए होता है लेकिन असल में सबर हर रोज की छोटी छोटी चीजों में होता है जब आप अपनी क्लास में अपनी टर्न का इंतजार करते हैं जब आप किसी कन्वर्सेशन में दूसरों को कम्प्लीटली बोलने देते हैं जब आप अपना होमवर्क जल्दी जल्दी खत्म करने के बजाय देहान से कम्प्लीट करते हैं तो ये सब पेशेंस के छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं और जब आप इन छोटी सिचुएशंस में सबर प्रैक्टिस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड और आपका दिल ट्रेन हो जाता है कि मुश्किल मोमेंट्स में काम कैसे रहा जाए भाई दूसरा बहुत ही पावरफुल टूल है ब्रीद एंड रिफ्लेक्ट ये मैंने अक्सर लोगों से सुना भी और किया भी है काम करता है भाई जब कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना जब लगता है कि भाई सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई है तो उस वक्त फौरन रिएक्ट करना सबसे आसान होता है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो रिएक्शन से पहले पॉज करता है एक डीप ब्रेथ लेना अपने आप को थोड़ा सा काम करना और फिर सोचना क्या मैं इस सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल कर सकता हूँ ये छोटी सी हैबिट आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है जब आप रुक कर सोचते हैं ना तो आप इंपल्सिव डिसीजंस से बच जाते हैं आप गुस्से में कुछ ऐसा नहीं करते जो बाद में जिसका आपको रिग्रेट होने लगे आप सिचुएशंस को थोड़ा डिस्टेंस से देखते हैं और फिर बेटर डिसीजन लेते हैं ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप तो भाई तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है रियलिस्टिक गोल्स सेट करना साथियों देखिए भाई अक्सर हम इम्पेशेंस इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए लेकिन हर चीज का एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना जैसे मैंने एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दी है जो कि हर कोई देता है कि एक दिन के अंदर तो प्लांट उग नहीं जाता ना उसे वक्त चाहिए होता है वैसे ही स्किल्स फ्रेंडशिप्स अचीवमेंट्स को वक्त चाहिए होता है अगर आप एक नई स्किल सीख रहे हैं जैसे स्विमिंग ड्राइंग या कोई भी लैंग्वेज स्किल होती है तो शुरू में वो इंतहाई मुश्किल होती है भाई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती वो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपको समझें तो उसमें भी टाइम लगता है अगर आप अपने

0: कि ग्रोथ ग्रेजुअली होती है, तो आप अपने आप पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते, और जब प्रेशर कम होता है ना तो सबर नेचुरली बढ़ता है भाई। अच्छा भाई, इसी के साथ अगर चौथे स्टेप के बारे में बात करें तो चौथा स्टेप हमारे पास है एफर्ट को रिवॉर्ड करना, सिर्फ रिजल्ट को नहीं एफर्ट को भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है साथियों। अक्सर हम खुद को सिर्फ तब अप्रिशिएट करते हैं जब हमारा रिजल्ट परफेक्ट आ जाता है, लेकिन हमारा दीन ऐसा नहीं बोलता। इस्लाम और लाइफ दोनों हमें ये सिखाते हैं कि एफर्ट इटसेल्फ इज वैल्यूएबल। अगर आपने किसी चीज में मेहनत की है, अगर आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की है, अगर आपने गिव अप नहीं किया, तो ये सब ऑलरेडी एक अचीवमेंट है। लिटरली यू ऑलरेडी हैव द सुपर पावर। रिजल्ट फौरन आए या ना आए, आपका एफर्ट आपकी ग्रोथ को शो करता है साथियों। जब आप अपने आप को एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करते हैं ना कि मैं थका जरूर लेकिन रुका नहीं, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन को नहीं, पूरी पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं आप, और यही सबर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फिर भाई आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सपोर्ट लेना और शेयर करना। देखिए, बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि भाई पेशेंस एक सोलो स्ट्रगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हैं ना, तो आपका बर्डन हल्का हो जाता है। कभी कभी सिर्फ अपनी बात कह देना भी ना दिल को काम कर देता है। और जब कोई आपको गाइड करता है ना, कोई आपको समझाता है, तो आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। शायद जो चीज आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम लग रही थी ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी जल्दी जल्दी में, वो किसी और नजर में मैनेजेबल होती है। सपोर्ट लेना कोई वीकनेस नहीं होता, नो, ये विजडम है, क्योंकि इंसान अकेला हर चीज परफेक्ट तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। और जब आप सीखते हैं कि अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, तो आप पेशेंस को और इजी बना देते हैं। साथियों, आज की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत कॉमन हो गई है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें फौरन मिल जाए, फौरन रिप्लाई, फौरन रिजल्ट्स, फौरन सक्सेस, लेकिन लाइफ हमें ये सिखाती है कि जो चीज डिले से आती है ना, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है भाई। जब आप पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को शेप देते हैं, आप इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं, आप थॉटफुल बन जाते हैं, आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, आपका माइंड क्लियर होता है और आपका दिल काम हो जाता है। देखिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट चूज करें ना। जैसे अगर आप अपना वक्त वेस्ट करने के बजाय पढ़ाई पर फोकस करें, या अगर आप इंस्टेंट एंगर के बजाय काम रिस्पॉन्स चूज करें, तो ये सब आपके फ्यूचर को बेटर बना सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, पेशेंस आपको ये सिखाता है कि हर चीज का अपना एक वक्त होता है बेटा। देखिए, आपको अपनी जर्नी पर और खुद पर ट्रस्ट करना होता है, आपको अपने एफर्ट्स पर यकीन रखना होता है, और आपको अल्लाह ताला के प्लान पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना होता है। जब आप सबर सीख लेते हैं ना, तो आपको हर डिले एक दुश्मन नहीं लगता, आप यू डोंट जस्ट गेट एंग्री ओवर इट, बल्कि एक टीचर लगने लगता है। हर रुकावट एक लेसन बन जाती है, हर मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो भाई साथियों, याद रखिए, पेशेंस कोई बोरिंग या कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये एक मैं कहूंगी पावरफुल टूल है, जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली बैलेंस्ड और स्पिरिचुअली कनेक्टेड बनाता है। देखिए, अगर आप आज से छोटी छोटी सिचुएशंस पर सबर करना शुरू करेंगे ना, तो कल जब आप थोड़े माशाल्लाह से और बड़े होंगे, आप एक बहुत डिफरेंट इंसान होंगे। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ वेट नहीं करता, बल्कि वाइजली वेट करता है। और याद रखिए, जो इंसान सबर सीख लेता है ना, वो जिंदगी को जीतना सीख सकता है, सक्सेसफुल होना सीख सकता है भाई।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
0: साथियों, अब हम अपने सफर के एक बहुत ही खूबसूरत और रोशन हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम पेशेंस को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइट के तौर पर समझते हैं। एक ऐसी रोशनी जो जिंदगी के हर अंधेरे रास्ते में हमें गाइड करती है। जरा सोचिए, अगर आप रात के वक्त किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हैं और आपके आसपास टॉर्च ना हो, तो हर कदम कितना मुश्किल लगता है ना। हर चीज अनक्लियर होती है, हर शेडो से डर लग रहा होता है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक रोशनी हो, एक छोटी सी लाइट, तो वो पूरा रास्ता आसान हो जाता है। देखिए, पेशेंस बिल्कुल इसी लाइट की तरह होता है। ये आपको ये बताता है कि कब रुकना है, कब चलना है, क्या चीज नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। तो भाई, आज की फास्ट पेस दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए होता है सबको, मैं मानती हूँ। हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स फौरन मिल जाएं, आंसर्स फौरन मिल जाएं, और हर प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व हो जाए। लेकिन लाइफ

0: ऐसी नहीं होती, लाइफ अपने रिदम में चलती रहती है, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी ऐसी सिचुएशंस में ले आती है जहां हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और यहां पर पेशेंस हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट बन जाता है। साथियों, जिंदगी को अगर हम एक जर्नी की तरह देखें ना, तो हर इंसान एक सफर पर है। इस सफर में कभी हम खुश होते हैं, कभी कंफ्यूज्ड, कभी एक्साइटेड, कभी थके हुए। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स हमें शॉर्ट टर्म खुशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होते। लेकिन पेशेंस वो चीज है जो इस जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। ये सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि पूरे सफर को वैल्यूएबल बनाता है। जब आप सबर सीख लेते हैं ना, तो आप सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, बल्कि हर स्टेप को समझने लगते हैं। आपको ये एहसास होता है कि हर डिले का अपना एक रीजन होता है, हर रुकावट का अपना लेसन होता है, और हर मुश्किल का अपना हिडन ग्रोथ का चांस होता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, तब हम कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें, तो शायद वो डिले हमें किसी बिगर प्रॉब्लम से बचा रहा होता है, या हमें किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। पेशेंस हमें ये सिखाता है कि लाइफ को सिर्फ अपनी स्पीड से नहीं, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी देखना चाहिए। जब बच्चे पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। अगर किसी एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए, तो वो टूटते नहीं है, बल्कि सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव करना है। अगर कोई किसी फ्रेंडशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कामली बात करते हैं, सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढते हैं। यही एग्जैक्टली सबर उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये भी समझना जरूरी है साथियों कि पेशेंस सिर्फ वेटिंग का नाम नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल वेटिंग का नाम है। जब आप वेट कर रहे होते हैं ना, तो आप खाली नहीं होते, आप डिवेलप कर रहे होते हैं। आपके अंदर पेशेंस बिल्डअप हो रहा होता है, आपका कैरेक्टर ग्रो कर रहा होता है, आपकी थिंकिंग मैच्योर हो रही होती है। पेशेंस हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, और वो है एम्पैथी। जब आप खुद वेट करते हैं, जब आप खुद स्ट्रगल करते हैं, जब आप खुद किसी डिले या डिफिकल्टी को फेस करते हैं ना, तो आप दूसरों के इमोशंस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये समझ आता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है। शायद जो बंदा आपको रूड लग रहा है, वो किसी स्ट्रेस में हो। शायद जो दोस्त रिप्लाई नहीं कर रहा, वो किसी टेंशन में हो। शायद जो क्लास में क्वाइटली बैठा है, वो अपनी इंटरनल फाइट्स लीड कर रहा है। पेशेंस आपके अंदर एक सॉफ्टनेस पैदा करती है, एक कंपैशन, एक अंडरस्टैंडिंग, जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। और जब ये एम्पैथी डेवलप हो जाती है, तो आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं। आप ज्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं, आप ज्यादा फॉरगिविंग हो जाते हैं, आप ज्यादा काम हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें हैंडल करते हैं अच्छे तरीके से। ये है वो माइंडसेट जो एक पीसफुल पर्सनालिटी बनाता है। देखिए, पेशेंस आपको सिखाता है कि लाइफ को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, बल्कि लाइफ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब आप कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट सीख लेते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। आप हर चीज को पैनिक के बजाय पेशेंस से देखते हैं। अगर हर चीज इंस्टेंटली मिल जाए ना साथियों, तो जरा सोचिए क्या हम उसकी वैल्यू समझ पाएंगे? शायद कभी नहीं। वेटिंग ही वो चीज है जो एप्रिसिएशन को जन्म देती है। जब आप किसी चीज के लिए वेट करते हैं ना, और फिर वो जब मिलती है, तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। और ये ही है लाइफ का बैलेंस्ड साइकिल। पेशेंस हमें ये भी सिखाता है कि हर चीज का एक वक्त होता है, ना पहले ना बाद में, बल्कि एग्जैक्टली उस वक्त जब हमारे लिए वो बेस्ट होती है। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारा दिल ज्यादा पीसफुल हो जाता है। पेशेंस एक इनविजिबल स्ट्रेंथ है साथियों। ये लाउडली नहीं बोलती, लेकिन साइलेंटली आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करती है। ये आपको ग्राउंडेड रखती है जब दुनिया फास्ट हो, ये आपको स्टेबल रखती है जब सिचुएशंस अनसर्टेन हो, ये आपको होपफुल रखती है जब सब कुछ अनक्लियर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? पेशेंस आपको अल्लाह ताला के प्लान पर ट्रस्ट करना सिखाता है। जब आप समझ जाते हैं कि हर डिले के पीछे कोई हिकमत होती है, तो आप कंप्लेन करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, और शुक्र अदा करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो भाई साथियों, पेशेंस को अपनी लाइफ की लाइट बनाएं, एक ऐसी लाइट जो आपको हर सिचुएशन में गाइड करे, चाहे रास्ता क्लियर हो या ना हो। क्योंकि जो इंसान सबर के साथ चलता है ना, वो कभी भी डायरेक्शन नहीं खोता। याद रखिए, पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि वेट को विजडम में बदलना है। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि सबर सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी स्किल होती है जो दिल को स्ट्रांग बनाती है, एक ऐसी खूबी है जो इंसान का किरदार रोशन करती है, और एक ऐसी रोशन ताकत है जो हमें मुश्किल वक्त में गिरने नहीं देती। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला का खास इनाम होता है। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं बल्कि एक प्रॉमिस है। जब हम सब्र सीखते हैं तो हम सिर्फ जिंदगी को हैंडल नहीं करते बल्कि उसे समझना भी सीखते हैं। हम इमोशनल तौर पर स्ट्रांग होते हैं, हम ज्यादा काम सोचने लगते हैं और हम अपनी फीलिंग्स को बेटर तरीके से मैनेज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अल्लाह ताला के प्लान पर पूरा पूरा ट्रस्ट होता है। साथियों, सब्र कोई एकदम से डेवलप होने वाली स्किल नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। जब आप वेट करते हुए गुस्सा नहीं होते, जब आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, जब आप हर काम में कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो ये सब मिलकर आपके अंदर पेशेंस की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है और ये फाउंडेशन आपकी पूरी जिंदगी को स्टेबल बनाती है। याद रखिए, हर एफर्ट का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता लेकिन हर एफर्ट का एक मीनिंगफुल रिजल्ट जरूर होता है। जब आप मेहनत करते हैं, चाहे रिजल्ट फौरन मिले या ना मिले, तो आप असल में अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे होते हैं और ये वो चीज है जो आपको बाद में लाइफ के हर चैलेंज में सपोर्ट करती है। पेशेंस आपकी लाइफ में एक रोशनी बन जाती है, एक ऐसी लाइट जो आपको सही डिसीजंस में मदद करती है, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाती है और आपको एक बैलेंस्ड इंसान बनाती है। और जब ये लाइट आपके अंदर आ जाती है ना, तो फिर आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो साथियों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को और हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज को दीजिए इजाजत। याद रखिए, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का ख्याल क्या ही रखेगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें।

0: कभी ऐसा लगता है कि लाइफ एक तरह से बिल्कुल सॉर्टेड है पर दूसरी तरफ से पूरी ही उलझी है। काम ठीक चल रहा है पर नींद कंप्लीट नहीं हो रही, फूड कंट्रोल में है पर स्ट्रेस कंट्रोल के बाहर है, सोशल लाइफ एक्टिव है पर मी टाइम एकदम जीरो है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बेसिक के बारे में। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं होता कि परफेक्ट टाइम पे आपको उठना है, परफेक्ट डाइट लेना है, परफेक्ट वर्कआउट होना चाहिए। ये सब सिर्फ प्लानर्स और रील्स में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में बैलेंस का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एंड दैट इज कभी काम ज्यादा, कभी रेस्ट ज्यादा, कभी सैलेड ज्यादा, कभी घर का कंफर्ट फूड ज्यादा, कभी हसल ज्यादा और कभी स्लो डाउन होना थोड़ा ज्यादा। प्रॉब्लम तब होती है जब लाइफ एक ही साइड झुकी हुई हो। अगर सिर्फ काम ही काम है और रेस्ट नहीं तो बॉडी थक जाती है, अगर सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट है और मूवमेंट नहीं तो एनर्जी लो हो जाती है। माइंड और बॉडी दोनों रिदम पर काम करते हैं, जब रिदम बिगड़ती है तो हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का बेस होता है तीन सिंपल चीजें, दैट इज मूवमेंट, नरिशमेंट और पॉज। मूवमेंट का मतलब जिम मेंबरशिप भी नहीं है, मूवमेंट का मतलब है बॉडी को दिन में थोड़ा सा हिलाना, दैट इज स्टेयर्स लेना, थोड़ा वॉक करना, स्ट्रेच करना, बस इतना काफी होता है। नरिशमेंट का मतलब अगेन क्रैश डाइट नहीं है, इसका मतलब है ऐसा खाना जो आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी दे, ना ही सिर्फ कैलोरीज दे। और पॉज होना मतलब सबसे अंडररेटेड चीज है। पॉज का मतलब है बीच बीच में रुककर सांस लेना। एक बार मेरे साथ सांस लो, अच्छा महसूस कर रहे हो ना? ऐसे क्या करो, फोन को साइड में रख के थोड़ा सा रुक के सांस लो और खुद से पूछो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये है स्लीप और स्ट्रेस का बैलेंस। अगर आप सोने का टाइम काम के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो और काम का टाइम नींद के हिसाब से नहीं, तो इम्बैलेंस शुरू हो चुका है। और स्ट्रेस तब डेंजरस होता है जब वो नॉर्मल लगने लगे, जब इरिटेशन पर्सनालिटी बन जाए, जब थकान डेली कंपेनियन हो, जब साइलेंस अनकंफर्टेबल लगे। ये सब साइंस होते हैं कि लाइफस्टाइल थोड़ा रीबैलेंस मांग रही है। बैलेंस लाइफस्टाइल का मतलब जिंदगी को स्लो करना नहीं, उसे सस्टेनेबल बनाना है, ताकि आप आज भी काम कर पाओ और कल भी थके हुए ना हो, ताकि आप सिर्फ सरवाइव ना करो बल्कि थोड़ा एंजॉय भी करो, ताकि आज का एक जेंटल थॉट, अपनी लाइफ को जज मत कीजिए, बस थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा रहे किस चीज की कमी है, रेस्ट की, मूवमेंट की, कनेक्शन की, जिस चीज की कमी हो वही आपका नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि जब लाइफस्टाइल बैलेंस होती है ना, तो हेल्थ को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली फॉलो करता है। और जब हेल्थ साथ होती है तो जिंदगी भी थोड़ी लाइट लगती है, थोड़ी मैनेजेबल और काफी ज्यादा सुकून वाली। इसलिए याद रखिए, बैलेंस्ड परफेक्शन नहीं, बैलेंस अवेयरनेस है, एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Matter. Your health matter with RJ Shruti.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app QMC now.

0: हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें कि आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महविश खान के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: runway. It's not just a magazine. It's a global icon. A winding road that brings us back.
1: तो अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून इन किया है, आज जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही महंगी पिक्चर की बात करेंगे हम। महंगी इन द सेंस कि मूवी में हर चीज आपको महंगी लगेगी। ये मूवी रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, इट्स अवेलेबल कतर में भी रिलीज हुई है। सबसे अच्छी बात तो यही है, इसका नाम है द डेविल्स वेयर प्राडा 2। नाम क्या है, 2 लगा हुआ है तो समझ गए आपकी पहली पिक्चर कभी तो आई होगी। तो जी हाँ, सही जवाब, 7 करोड़ भाई। डेविल्स वेयर प्राडा का ये सेकंड पार्ट है। ओरिजिनल मूवी को आए हुए जमाना हो गया भाई, 20 साल टू बी प्रिसाइज। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि सीक्वल इतना टाइम लेके आए, मगर माय गॉड दे डिड अ गुड जॉब। 2006 में पहली मूवी आई थी जो बहुत फेमस हुई थी। इस मूवी में थी एन हैथवे एंड मेरिल स्ट्रीप, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था भाई साहब, भाई मैं लड़का हूँ लेकिन मैंने जब मूवी देखी है, मैंने कहा यार अगर कोई लड़की इस मूवी को देखेगी शी विल बी ब्लोन अवे, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है ना। आई सजेस्ट ऑल द फीमेल्स आउट देयर, जितनी भी खवातीन सुन रही हैं, आपको तो इसका पहला पार्ट देखना ही देखना चाहिए, दूसरा पार्ट आप रिव्यू के बाद डिसाइड कर लीजिएगा। अब 20 साल बाद ये सीक्वल फाइनली आ चुका है और लोग इसे देखकर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि जब ट्रेलर आया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा अरे वो बनाया हो किसी ने, वो फैन फेवरेट ट्रेलर बनाते रहते हैं ना, तो वही किसी ने बना दिया होगा। ऐसा हो तो नहीं सकता कि डेविल्स वेयर प्राडा 2 क्यों बनाएंगे, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कई मरतबा होता है कि पिक्चर की आपको उम्मीद होती है सेकेंड पार्ट आएगा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन आ गए भाई। ये रिव्यू जो है बहुत डिटेल्ड में होगा, मैं एक एक चीज कवर करने की कोशिश करूंगा। इसका स्टोरी, एक्शन, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, विजुअल, फैशन, म्यूजिक, थीम्स, सब कुछ ओरिजिनल से कंपेयर किया जाएगा। मेरी गलती नहीं है भाई, दूसरी पिक्चर है तो पहले से तो कंपेयर मैं करूंगा ही करूंगा। तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सब कुछ कवर की जाएगी, मगर पहली मूवी से सीधा सीधा कंपेरिजन होगा। मैं इसे नई मूवी की तरह लेना चाहता भी नहीं हूँ और मैं लूंगा भी थोड़ा सा। ओके, सो मीन वाइल आई कंटिन्यू एंड डिसाइड कि मुझे किस बारे में बात करनी है। आप जरा सोशल मीडिया हैंडल्स पर आ जाइए, FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज गेट इन टच विद अस। एंड इसी के साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, 666-22107, 666-22107 पर। तो ये जब आप देखेंगे तो पहला तो बेसिक है, मैं आपको बता दूं, मूवी जो रिलीज हुई इस बार 1 मई को रिलीज हुई, 1 मई 2026 को थिएटर्स में आई डेविल्स वेयर प्राडा 2। इसके डायरेक्टर हैं डेविड फ्रैंकलिन, जो ओरिजिनल मूवी को भी डायरेक्टर डायरेक्शन कर चुके हैं। राइटर हैं एलिन ब्रॉश मिकेना, बड़ी जबरदस्त नाम इनका। इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है इसका पूरा, और ये है एक, एक, एक किताब आई थी बहुत टाइम पहले, रिवेंज वेयर प्राडा, तो वो लॉरेन वेस्टबर्जर, मैं इनका नाम भी नहीं पढ़ पाता, मैं लिखा हुआ है जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू। तो बुक है, किताब है रेवेंज वेयर्स प्राडा, तो उसको डेविल्स वेयर प्राडा करते हैं, उसी पे ये बेस्ड है। इसका जो लगभग रन टाइम है वो यूजुअल, आजकल तो बॉलीवुड भी 2 घंटे की बनाने लगा है, तो ये लगभग लगभग 2 घंटे का है, PG-13 रेटिंग के साथ है। सो कास्ट में वापस आ चुकी हैं द वेरी ब्यूटिफुल, एलिगेंट, फॉर एवर ब्यूटी, एवर ग्रीन मेरिल स्ट्रीप। मैं भाई बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन।
2: Hello.
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
3: She was one of the Emilys.
1: रिसेंटली मैंने बोला है कई मरतबा कई एक्टर्स, भाई बुढ़ापा हो ना अगर जिंदगी रहे तो भाई ऐसे दिखे बंदा, क्या खूबसूरत लग रही है वो इस उम्र में भी, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल। 20 साल का टाइम लाइन तो खा गई, वो लग ही नहीं रही कि 20 साल बीच में चला गया है। एंड शी इज ब्यूटिफुल एंड शी इज अमेजिंग। सो मेरिल स्ट्रीप इज बैक मिरांडा प्रिस्टली के रोल में, एंड साथ में एना हैथवे, कहने की बात ही नहीं, सबका क्रश रह चुके हैं वो, एना हैथवे और साथ में Emily Blunt. So Anne Hathaway is back with her role, Andy Sachs, and Emily Blunt अपने रोल में है जिसका नाम है Emily Charlton. So ये दोनों अपने ही अपने किरदार में है, और एक Stanley है, Stanley ने प्ले किया है Tushy Nijel नाम का रोल, पता नहीं इतने खतरनाक तो नाम है इसके, जब मैं देख भी रहा था मैंने कहा भाई ये तो बहुत बोलने मुश्किल आएगी। बट कुछ नए एक्टर्स भी हैं इस मूवी में, जैसे कि जस्टिन है इसमें, सिमोन एशली है, लूसी ल्यू है, कैनेथ है, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी जबरदस्त स्टार्ट ले चुकी है भाई। हाइप का पैसा होता है, मानिए बात को, पहली मूवी ने क्या किया, पहली मूवी ने एक इमारत को मजबूती दे दी, उसके ऊपर माले बनाए जाएं, आप बनाए जाएं, लेकिन माले बनाने का

तरीका होता है, ज्यादा बनाया तो बिल्डिंग लड़खड़ा जाती है, सिर्फ बेस ही रह जाता है। लेकिन इस मूवी के साथ स्टार्ट काफी अच्छा हुआ, पहले वीकेंड में 77 मिलियन डॉलर्स अमेरिकी डॉलर की बात करो तो कमा लिया, एंड 233 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। तो लोग इसको देखने के लिए थिएटर तो जा ही रहे। दो वजहें हैं, एक है नॉस्टैल्जिया जो उन्हें हिट कर रहा है जिन्होंने 20 साल पहले की मूवी देखी है डेविल्स वेयर प्राडा, और दूसरा है फैशन। मैं दोनों की वजह से गया था एंड मेरिल स्ट्रिप की वजह से गया था। I wanted to just watch the movie and get done with it because वो रह जाता, होता ना एक FOMO जो आज के generation वाले use करते हैं, FOMO, feeling of left behind, ऐसे कुछ है FOMO, पता नहीं ऐसे कुछ है, मतलब FOMO कहते हैं उसको, मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर देना, ठीक है। तो वो एक चक्कर है जिस वजह से लोग थिएटर की तरफ जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं, और मैंने भी मूवी देखी। अब स्पॉयलर फ्री प्लॉट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।

0: I having a hallucination?
1: Hi, Emily.
2: You also know her?
0: We were at runway at the same time, Miranda.
2: Really?
3: Story 20 साल के बाद सेट है, तो वो हो चुका है जो 20 साल पहले हुआ. अच्छी बात ये कि मूवी का जो पूरी स्टोरी है, प्लॉट को 20 साल बाद सेट किया है. अब एंडी जो है, जो पहले बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, अब एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट है, लेकिन उसको ले ऑफ किया जाता है. कहते हैं चलो भैया आपका हो गया काम, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में डिजिटल एआई की वजह से बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, तो उसकी जॉब को खतरा हुआ, उसको ले ऑफ कर दिया गया. वो फिर से रनवे मैगजीन के पास वापस चली जाती है कि नौकरी दे दो, जहां पे वो 20 साल पहले काम करती थी, यानी डेविल्स वेयर प्राडा पार्ट 1 में जहां पर थी. लेकिन इस बार फीचर्स एडिटर का रोल उसे मिलता है रनवे मैगजीन की. खुद भी हालत बड़ी खस्ता दिखाई गई है कि मैगजीन की हालत खराब हो गई है, डिजिटल वर्ल्ड में वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है. प्रिंट मीडिया का जमाना एकदम खत्म हो रहा है, मूवी में दिखाया गया है कॉरपोरेट बायआउट्स हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं और फास्ट फैशन इश्यूज हैं. कपड़े देख रहे हैं आप आजकल क्या फैस्ट, आपको लगता है कि आज मैं कुछ ट्रेंडी पहन रहा हूँ, कल को वही पुराना हो जाता है फॉरन. यू कांट कीप अ पेस विद फैशन, और उस फास्ट फैशन को बहुत अच्छे से मूवी में दर्शा गया. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ये ऐसा टॉपिक है कि मूवीज अक्सर इस पर टैप इन नहीं करती है, मगर दिस वॉज द बेस्ट मूवी टू डू दैट बिकॉज डेविल्स वेयर प्राडा इज बेस्ड ऑन इट. सो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि फास्ट फैशन पेस दुनिया को भी इसमें कवर किया. इसके अलावा मिरांडा का जो रोल है, जो मेरिल स्ट्रिप ने प्ले किया है, वो अभी भी बॉस है, लेकिन थोड़ी सी वल्नरेबल हो चुकी है. पहले क्या था, उन्हें अकड़ थी, चलती थी तो पूरी बिल्डिंग काम जाती थी, अभी वो थोड़ी वल्नरेबिलिटी उनके चेहरे पर नजर आ रही है. और एमिली जो है अब डियोर में काम कर रही है, सो फैंसे, और उसका अपना खुद का वेरी प्राइवेट बिलियनेयर बॉयफ्रेंड है जो रिवेंज प्लॉट में इन्वॉल्व्ड है. ये है कहानी का किकर. पूरी की पूरी स्टोरी में टीम वर्क, धोखा, पावर स्ट्रगल, मैगजीन को बेचने की कोशिशें, फैशन वर्ल्ड के अंदर कॉरपोरेट की ग्रीड, वो लालसा, और लेगेसी मीडिया को सेव करने का एक एंगल इसमें दिखाया गया है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फिल्म बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही स्टाइलिश है. बहुत सारे फैशन मॉन्टाजेस में नजर आ जाएंगे आपको. न्यूयॉर्क है, इटली के सीन्स हैं, अलग अलग जगहों के सीन दिखाए गए. और ओरिजिनल पसंद करते थे अगर आप, इफ यू हैव वॉच डेविल्स वेयर प्राडा, जो मैं कह रहा हूँ अगेन, अगर मुझे खवातीन सुन रही है तो प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है, डेविल्स वेयर प्राडा जरूर जरूर देखिए. तो ओरिजिनल अगर आपने पसंद की है, तो ये जो नॉस्टैल्जिया इस मूवी में हिट किया गया है, वो परफेक्ट परफेक्ट है. इसमें बहुत सारे कॉलबैक्स हैं, डायलॉग्स हैं जो पहली मूवी के थे, तो मैं आई विल नॉट स्पॉइल देम, तो वो आप जरूर देखिएगा. अब जरा डिटेल में जाते हैं.

स्पॉइलर वार्निंग है ना, बच के रहिएगा, मैं बताने वाला बहुत सारी बातें, सो यू माइट एज वेल, अगर आपको देखनी है तो, पर अगर आपको टिके रहना है और देख के भी जाना है तो ऐसी कोई सस्पेंसफुल मूवी नहीं है, मगर मेरा काम तो है डिटेल में जाना तो मैं जाऊंगा, तो सुन लीजिए प्लीज। तो मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, वरना पूरी स्टोरी स्पॉइल हो सकती है, पर स्पॉइलर्स के साथ भी मूवी आपको देखने में मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो फिल्म शुरू होती है एंडी की करंट जिंदगी से, एंडी यानी एनी हैथवे, एंड वो जो है वो एक न्यूज़पेपर में काम कर रही है, ले ऑफ हो चुका है, डिजिटल मीडिया आ गया है, AI कंटेंट ने सब कुछ क्या कहते हैं उसको छींचा लेदर कर दिया है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफी बदलाव दिखाया गया है, एक सपोर्ट

0: सिर्फ लड़का जो उसके साथ था पीटर, जिसका रोल जस्टिन ने किया है, लेकिन वो सब प्लॉट थोड़ा सा फोर्स लगता है, ऐसा लगता है कि खामखा मतलब जरूरत नहीं थी वो सपोर्टिव बॉयफ्रेंड के रोल की, लेकिन दिखा दिया गया। वो थोड़ा सा मामला ऐसा है कि मुझे लगा रही है क्यों दिखाया। फिर मिरांडा कॉल करती है, मिरांडा कहती है एंडी को, कैंडी रनवे में फीचर्स एडिटर का रोल है, करोगी क्या, आओगी क्या डिजाइनेशन पे, और रोल के लिए भुला लेती है। अब क्योंकि मैगजीन को बचाना है, जरूरत है, रनवे पे लेऑफ्स हो रहे हैं, तो अभी जरूरत है कि कॉर्पोरेट टेक ओवर के खतरे से बचा जाए। एमिली जो है ऑन द अदर हैंड, व्हिच इज प्लेड बाय एमिली ब्लंट, एमिली ने अब नौकरी करना शुरू कर दी है डियोर में, हाई पोजिशन पे, लेकिन उसका जो बिलियनियर पार्टनर है वो रिवेंज लेना चाहता है मिरांडा से। वो चाहता है कि मिरांडा को बर्बाद कर दे, यानी मेरिल स्ट्रिप को, क्योंकि पहले उसने उसको इंसल्ट की थी, बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी उसकी। तो जो एमिली है, व्हिच इज प्लेड बाय एमिली ब्लंट, अब वो डियोर में काम करती है और काफी हायर पोजिशन में काम करती है। उसका एक बिलियनियर बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है बेंजी, और वो जो है वो बदला लेना चाहता है, बेसिकली रिवेंज भी इसमें डाल दिया गया है, और वो मिरांडा से बदला लेना चाहता है। मतलब मेरिल स्ट्रिप के आगे कोई बोल सकता है क्या, लेकिन ये बंदा चाहता है उन्हें बर्बाद करना। उसे याद आता है कि मैरिलिन ने, यानी मिरांडा ने, कई एक जमाने में उसकी बेइज्जती करी थी, और बेंजी चाहता है कि वो रनवे को बाय करे, और यही प्लानिंग वो करता है ताकि मिरांडा को निकाल दे, और प्लानिंग करता है कि किसी तरीके से मिरांडा को निकाल दे। आई नो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा ही सॉफ्ट बॉल फेंक दिया है, बिल्कुल एक क्या कहते हैं वो डेली सोप्स वाली कहानी है, लेकिन वो प्लॉट जो है वो बड़ा जबरदस्त है। एंडी और मिरांडा मिलकर ये सब हैंडल करती है, नाइजल और एमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, और स्टोरी में एक ऑल्टरनेट बायर उन्हें मिलता है जो गुड बिलियनियर टाइप है, जो मैगजीन को सेव करना चाहता है, उसकी लेगेसी को संभालना चाहता है, बड़ा फिक्रमंद दिखाया है उसको। और मिलान फैशन वीक के सीन्स हैं जहां भाई साहब एक आम आदमी की नज़र पड़ती नहीं है मिलान फैशन वीक पे, क्योंकि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, बट मूवी ने उसे इतना अच्छे से दर्शाया, बिकॉज आई वेंट बैक एंड चेक के दिखता कैसा है भाई ये फैशन वीक, एंड जैसा दिखता है वैसा ही मूवी पे पर्दे पर उतारा गया है, जो कि बहुत ग्लैमरस है।
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं, और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग। अब एंड में सब कुछ रिजॉल्व होता है कि नहीं, इमोशनल मोमेंट्स कैसे आते हैं, ये मैं मूवी पे छोड़ता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। मिरांडा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, पहले जब वो गुस्सैल रहती थी, बिल्कुल नाक पे रहता था उनका गुस्सा, तो वो चीज़ें हटा दी गई हैं। एंडी जो है ऑन द अदर हैंड शी इज़ मच मोर मेच्योर, और दोस्ती और टीम वर्क जो मैसेज है वो ये मूवी बखूबी देती है। पूरी फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, एक नहीं है, सो आई विल नॉट स्पॉइल देम, बहुत सारे ट्विस्ट हैं इसमें। एक्सपोजे है, पावर डायनेमिक्स चेंज कैसे होता है, डिजिटल दुनिया और ट्रेडिशनल फैशन जर्नलिज्म।

और पूरी स्क्रीन को खा जाते हैं। फिर उनके इर्द गिर्द कोई बड़ा एक्टर भी हो नजर नहीं आता। एंड मेरिल स्ट्रिप के साथ यही सीन है। लाइक एन है तो जब भी स्क्रीन पर आती है तो ऑफकोर्स एक ग्लैमर आता है, मगर जब मेरिल स्ट्रिप स्क्रीन पर है फिर भाई किसी की मजाल नहीं है। क्या परफॉर्मेंस थी, वो अब भी काफी आईसी एंड पावरफुल दिखाई गई है, लेकिन इस बार थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी उनके चेहरे पे है और वो जो आनी चाहिए कि भाई बिलियनर भी है, पैसे वाली भी है, लेकिन थोड़ी सी वल्नरेबल भी है, वो थोड़ी सी बेचैन है, परेशान है, वो भी चेहरे पे बहुत परफेक्टली दिखाया गया है। जैसे कि मैगजीन को बेचने के लिए उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनके डायलॉग्स एकदम शार्प है, डरी भी है वो, घबराई भी है, लेकिन अपना ऑरा खत्म नहीं कर सकते। हम कहते हैं आज की तारीख में ऑरा फार्मिंग, तो वो बरकरार है, मजबूर है, लेकिन सार्केज्म पूरा है भाई, और स्क्रीन पे वो कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड एन हैथवे एज एंडी, सॉलिड जॉब किया भाई इन्होंने भी। इनको तो मतलब ऐसा है ना कि मुझे तो पता है पिक्चर में क्या करना है, 20 साल पहले किया तो था, तो अब वो मच्योर और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं और अपनी ओल्ड चार्म जो है वो उन्होंने बरकरार रखी जो 20 साल पहले की थी। उनके इमोशनल सीन्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली जब वो ले ऑफ डील करते हैं, उनकी कंपनी उन्हें निकाल देती है और फिर वो रनवे ज्वाइन करते हैं, जो बीच का जो हार और जीत का जो बीच का वक्फा है वो बड़ा कमाल का है जो उन्होंने कवर किया है। एमिली ब्लंट एज एमिली चार्ल्टन, मज़ेदार है। उनका पहला जो कैरेक्टर था 20 साल पहले वो भी बड़ा चटपटा सा था, और इस बार भी काफी सैसी और फनी, थोड़ी इन्वॉल्व नजर आ रही है। पिछली मूवी मेरी शिकायत सिर्फ ये थी कि मूवी एक नंबर है, लेकिन एमिली ब्लंट को थोड़ा सा और इन्वॉल्व करना चाहिए था, और इस बार मूवी ने किया है। जो रिवेंज का सब प्लॉट है वो भी काफी एनर्जेटिक है। स्टैनली जो है एज नाइजल परफेक्ट हैं, काफी काम है, काफी इंटेलिजेंट है, फैशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जैसे नजर आएंगे आपको। देखते लगता ना कि ये बंदा जो है ये फैशन के बारे में जानता होगा। सो ही प्लेड दैट कैरेक्टर रियली वेल। जो न्यू कास्ट में है जस्टिन एज बेंजी, एंड कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा बोरिंग और फोर्स लगते हैं, आई वुड से इतना भी ज्यादा नहीं, पर हाँ केमिस्ट्री उनकी बनी नहीं है एंडी के साथ, मतलब एना हैथवे के साथ उनकी केमिस्ट्री इज नॉट दैट गुड, लग ही नहीं रहे, वो थोड़े से ऐसा लगता है ऑफ टॉपिक बात हो रही है, वैसा वाला सीन है। और सिमोन एशली और लूसी जो हैं सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे काफ़ी नजर आते हैं, और कैनेथ मिरांडा के जो हस्बैंड बने हैं इज फाइन, ही इज ओके। ओवरऑल जो ऑनसेंबल कास्ट है उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, ओरिजिनल वाली फील आएगी, पर कहीं ना कहीं लगेगा अरे थोड़ा सा इनको बाहर निकाल दो, इन्हें बाहर निकाल दो स्क्रीन पे, इन तीनों को रहने दो, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर कॉन्स्टेंट थिंग फॉर द स्क्रीन। ये कॉन्स्टेंट कमेंट्री चलती रहेगी आपके दिमाग में। अच्छा अब जरा डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। स्टोरी तो है ही, बट हाउ डू यू ड्राइव समथिंग जो फैशन से जुड़ी हुई है, उसको कितना ही खींच लोगे, मगर खींचा नहीं है भाई साहब, बिरयानी बनाई है लज्जतदार। डेविड फ्रैंकल जो कि इसके डायरेक्टर हैं, ओरिजिनल उन्होंने जो मूवी बनाई थी ये वही है, तो बिल्कुल वैसा ही ग्लॉसी फास्ट पेस्ड फील देती है मूवी। ऐसा लगा खट खट खट, दो घंटे कम निकल का पता नहीं लगा, दो घंटे की तो है भी नहीं, उससे भी थोड़ी सी कम की। लेकिन कुछ कुछ क्रिटिक्स जो कह रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा कि स्क्रीन प्ले थोड़ा सा रेपिटेटिव है, बहुत कॉल बैक्स हैं ओरिजिनल मूवी के जो कभी कभी फोर्स लगते हैं। होता है ना कि कई मरतबा मूवीज बनाई जाती हैं, सीक्वल्स होती हैं, और वो पिछली मूवी क्योंकि हिट हुई थी तो उसके डायलॉग्स उसके रेफरेंसेस बहुत दे देते हैं, उस वजह से मामला ख़राब हो जाता है। गिव एन एग्जांपल, बॉलीवुड में क्या होने लगा है, बॉलीवुड जो मूवीज़ बना रहा है उसमें वो एक गलती बार बार करे जा रहा है, बॉलीवुड मीम्स को यूज़ कर रहा है, और वो मीम्स के कॉल बैक को मूवी के अंदर डाल रहा है, जो उसको लग रहा है कि बहुत फनी है पर है नहीं। इसे निपटाने में भी काफी अच्छा काम किया है, जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक दिया गया ना, absolutely adored the music that they've used in the movie, बहुत बहुत brilliant background score, जैसे मैंने कहा, उसके अलावा sound design clearly सुनाई दे रहा है, अमूमन आजकल movies में पुसपुसाने का काम बहुत होता है, तो वो नहीं है, thank you so much। इसके अलावा themes और messages को अगर मैं explore करूं तो film बहुत timely है। I'll explain में क्या कहना चाह रहा हूँ, ये प्रिंट मीडिया के डिक्लाइन को शो कर रही है, तो अगर आप प्रिंट मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़े तो आप रिलेट करके बुरा भी फील कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और जर्नलिज्म को AI और कॉर्पोरेट से बचाने की जो कोशिश है, आई थिंक दिस विल मेक यू दैट फील। हाँ, कि थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया, पर इट इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट, तो आपका काम चल जाएगा। इसमें कॉर्पोरेट ग्रीड जो आजकल कंपनीज करती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ गेमिंग की दुनिया में भी ऐसा ही है कि वो पैसे बनाने के चक्कर में कुछ भी बना रहे हैं, उनको प्लेयर्स की नहीं पड़ी है। वैसे ही कई मरतबा होता है कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज एक दूसरे को खरीद रही होती हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले की मार्केट क्या है, तो उससे क्या होता है क्रिएटिव फ्रीडम मर जाती है। आप कुछ करना चाहते हैं मगर उसके लिए कंपनी तैयार नहीं क्योंकि उसका बजट जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, वो उसको एक परचूनी की दुकान बना देना चाहती है, तो वो जो ग्रीड है कॉर्पोरेट ग्रीड वो दिखाया गया है, और अच्छी अच्छी लेगेसी जो खत्म हो जाती हैं वो समझाई गई है।

0: वुमेन एम्पावरमेंट अगेन, जैसे मैंने कहा कि खवातीन जरूर देखने जाएं, जो मिरांडा मेरिल स्ट्रिप और एन हैथवे की जो एक्टिंग है दोनों की जोड़ी है, इट्स ब्रिलियंट है, काफी इंस्पायरिंग है, वो जो दोस्ती है, वो जो टीम वर्क है. लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि ये थीम्स थोड़े से सरफेस लेवल पे हैं, प्रोपोस्टरस लगते हैं, गुड बिलियनर सेवियर फेमिनिज्म, ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इनकी बातों मत जाइएगा. ये सब कुछ है, आई एम नॉट डिनाइंग, फेमिनिज्म भी है इसमें, सरफेस लेवल पे कहानी भी है, गुड बिलियनर सेवियर वाली कहानी भी है, मगर फिर भी यार वो जो पावर डायनेमिक्स है काफी अच्छा है.
1: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
1: Yeah, we are all so thrilled.
2: You know what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you?
0: एक चीज की कमी है. एक चीज. बट लगाना भूल गया. बट. इसमें जो वो सटायर है ना, जिसे हम हिंदी में कटाक्ष कहते हैं, वो कम है. ज्ञान ज्यादा हो गया. तो ओरिजिनल से कंपैरिजन अगर मैं करूं तो ओरिजिनल 2006 की फिल्म थी, बहुत शार्प थी, बहुत फनी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मूवी ये मार्केट

0: ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है खुद को, मीडिया इश्यूज पे ज्यादा फोकस कर दिया रादर देन द कैरेक्टर्स इटसेल्फ. कैरेक्टर उन्होंने सोच लिया होगा डायरेक्टर साहब ने कि कैरेक्टर तो सबको पता ही है, क्यों ना मैं कहानी में कुछ कर दूं, तो वैसे कुछ किया उन्होंने. सो फैशन सेम लेवल का है लेकिन विट थोड़ी कम है, समझ रहे हैं? वो जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमर होता है वो नहीं है, तो उसके बिना चल जाएगा वैसे आपको, बट यू विल मिस इट इफ यू हैव सीन द फर्स्ट पार्ट. फिर भी इंजॉयबल है, फिर भी फैंस को मजा आएगा, फिर भी कंपेयर करके भी वो खुश रहेंगे. तो उसकी जो खासियत है, जो स्ट्रेंथ है, वो बता दूं आपको, एक नंबर स्टार केमिस्ट्री है इसके अंदर. जो ओरिजिनल कास्ट है, एमिली ब्लंट एंड हैथवे मेरिल स्ट्रिप, विजुअल्स आर टॉप नॉच. जैसे मैंने कहा कि फैशन इंडस्ट्री को हॉलीवुड वाले जो दिखाते हैं, और एक वो अपने लड़के ने दिखाया था फैशन मूवी बना के, बहुत जबरदस्त. उसके बाद से किसी ने टैप इन नहीं किया इस पर. स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस का जो जो प्रूफ है वो ये मूवी देती है. एक हिट करा दो आप, दूसरी अपने आप चल जाएगी. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये. इमोशनल मोमेंट्स हैं इसमें, पर जैसे मैंने कहा कि जो उसकी खामियां हैं उसमें ज़बरदस्ती का रोमांटिक एंगल है, कोई ज़रूरत नहीं थी सब प्लॉट की. पहली मूवी में जो था वो अच्छा था, वो समझ में आ रहा था. इस मूवी में चल जाता, मगर वो काफ़ी प्रीची डायलॉग्स हैं. क्या मैं ये ना करूँ, क्या मैं वो ना करूँ, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया. प्लॉट होल्स उसके वही हैं, और ओरिजिनल से थोड़ी सी कम शार्पनेस है. होता ना कि दाढ़ी तो अच्छी लग रही लेकिन दाढ़ी ढंग से बनवाई नहीं है, इफ़ दैट मेक सेंस. तो वैसा वाला सीन है. टेक्निकली मूवी बहुत अच्छी, एडिटिंग बहुत टाइट है, रन टाइम परफेक्ट है. 2 घंटे ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था मैं, लेकिन शुक्र है उससे नीचे. साउंड और VFX मिनिमल है, एंड यही सबसे अच्छी बात है. बहुत बढ़िया है फैशन. सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको मूवी की, फैशन जितना भी दिखाया गया वो CGI नहीं है भाई, ये असलियत में किया गया है. इसीलिए ये मूवी थिएटर लायक है, बड़ी स्क्रीन पे देखने लायक है, क्योंकि CGI इन्होंने नहीं किया यूज फैशन में. एंड थैंक यू टू द डायरेक्टर डेविड भाई साहब, कति घना कसूती बनाई है आपने पिक्चर, घनी कसूती है. देखो एंड में आपको वर्डिक्ट की तलाश है कि मैं क्या करूँ, ये देखूँ या ना देखूँ, मैंने पहले ही देखी थी. तो मेरा पहला सजेशन ये सभी को, तमाम खवातीन को भी, पहली मूवी जरूर देखें, डेविल्स वेयर प्राडा 2006 में आई थी. प्लीज गो एंड वॉच, मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि वो जिस टॉपिक पे है मूवी, इट इज ब्रिलियंट है. वो उस टाइम की टाइमलेस मूवी. उसके बाद आप इधर आइएगा, फिर आप एक ओरिजिनल फैन बन के मूवी देखेंगे जिसमें फैशन है, ड्रामा है, हल्की कॉमेडी है, एंड बड़ी शार्प कॉमेडी है. तो रेटिंग मैं इसको क्या दूँ, लेट मी डिसाइड. 8 दे देते हैं, है ना, 8 दे देते हैं. 10 में से 2 नंबर में काटता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगी कि कमी है तो है भाई, आई एम सो सॉरी. ये मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, और उसके बाद मुझे थोड़े से 2 नंबर काटने पड़े हैं, मुझे खुद को बुरा लग रहा है.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर, या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: सीखना, समझना और बोलना, ये 3 हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए. और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक. साथ होंगे आपके आरजे तला अशरफुज़्ज़मान हर वेंसडे सुबह 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर. तो बस FM 107 ऑन कीजिए और अरबी सुन

0: अगर आपका फैशन सेंस है तो चाहिए, मगर ख्वातीन अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ ये मूवी जरूर जरूर बैठ के देखें। आप अभी देखें, बाद में देखें, बट डू वॉच इट, बिकॉज ये मूवी आपको एक एक अलग जोन में ले जाएगी, विच यू विल एब्सोल्युटली लव। बिकॉज मुझे इसमें जो खामियां लगी वो हो सकता है कि मेरे लिए ही खामियां हो, क्योंकि मैंने पहली मूवी से कुछ ज़्यादा ही चाहत दिखा ली थी। तो कुछ जो थीम्स ये मूवी बात कर रही है बहुत ही सिंपल है एंड मुझे बड़ी अच्छी लगी। बेसिकली जो उसकी एक इनर लेयर है वो कहती है कि पहली मूवी सर्वाइवल थी भाई, लड़ रहे थे कमाने के लिए, जीने के लिए, फेमस होने के लिए, और दूसरी मूवी है कंट्रोल और आइडेंटिटी के लिए। मतलब अब आपके पास पैसा आ गया, अब स्ट्रगल आगे का, अब कैसे बचोगे बाबू, ये मूवी वैसी है। इसमें कई सारी जो थीम्स है उसमें से पावर और पैशन की लड़ाई है जो हर इंडस्ट्री में होती है। आपके पास पावर है लेकिन सामने वाले के पास पैशन है, क्या आप उसके मुंह पे पैसा दे सकते हैं उसे जितना वो मांग रहा है ताकि आपकी पावर बरकरार रहे और उसका पैशन? वेल कॉम्प्लिकेटेड राइट, लेकिन ये उसी चीज के बारे में बात करती है कि सक्सेस जो है, जो कामयाबी हो बिना पर्सनल लाइफ के अधूरी है। ये मूवी यही कह रही है बार बार, ठीक है यू कैन क्राई इन अ बीएमबी बट यू स्टिल नीड समबडी लाइक वेरी क्लोज वन टू यू, जिसके साथ आप खर्चा कर सकें, वरना कोई फायदा नहीं है पैसे का। हाँ, आपको पैसा उन चीज़ों से हटा देगा जहाँ पे आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, मगर खर्च करने के लिए तो पर्सनल लाइफ चाहिए भाई, वरना मज़ा ही नहीं है। ओल्ड और न्यू का जो कोई कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा, जितना करना था मैंने कर दिया, डिसाइड आप कर लीजिए। और एक जो आखिरी सवाल है इस मूवी का जो सबसे पूछ रहा है ऑन द फेस, वो यही है भाई, कौन डिसाइड करेगा कि फैशन क्या है? मेरे लिए फैशन अलग है, किसी और के लिए फैशन कुछ और है, और तीसरे के लिए फैशन कुछ और हो सकता है। तो मूवी से जब बाहर निकलेंगे तो ये सवाल पूछेगा कि आपके लिए फैशन क्या है, व्हाट डू यू कंसिडर टू बी फैशनेबल, है ना। हम लोग देखते हैं कि किसी ने अतरंगी कपड़े पहन लिए तो क्या फैशन है, ये क्या फैशन है, दोनों तरीके के रिएक्शन होते हैं। बट क्या वही फैशन है या फैशन की कोई और भी परिभाषा, कोई डेफिनेशन है? तो काफ़ी कोल्ड एंड कैलकुलेटेड और पावरफुल मूवी बन सकती है अगर आप इन चीज़ों को तराशें देखें, बिकॉज लग्जरी ऑन द अदर हैंड डज नॉट इक्वेट टू फैशन। मूवी भी आप सही कह रही है कि भाई जहाँ लग्जरी, इसका मतलब ये नहीं कि यही फैशन है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप देखिए माशाल्लाह हमारे पठान भाई कुर्ते में कितने बढ़िया लगते हैं, अब हर कोई दूसरा थोड़ी कुर्ते में बढ़िया लग जाता है, ठीक है कुर्ता पहन लेते हैं लोग ईद पे, मगर ये बात भी तो सच है कि हर किसी पे कुर्ता नहीं अच्छा लगता, जिस तरह से हर किसी पे टी शर्ट अच्छी नहीं लगती या हर किसी पे लेदर जैकेट अच्छी नहीं लगती। इट्स जस्ट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड फैशन को इसलिए एक डेफिनेशन में बांधना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए फैशन इंडस्ट्री के बारे में जो नॉलेज है इस मूवी में दी गई है, मैं उसके लिए इन्हें पूरे 10 के 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इन इन टॉपिक्स को कोई टैप इन नहीं करता है। हम अक्सर देखते हैं जब फैशन के बारे में बात होती है तो हम उन ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं जो हमने जिए। एक ज़माने में बेल बॉटम पहनते थे भाई, तेरे भाई के पास थे, फिर वो चौड़े कॉलर आए थे, फिर बड़ी बड़ी आस्तीनों वाली शर्ट्स आई थी, है ना। दीज वर ट्रेंड्स, ये फैशन का अभी भी हिस्सा है, आप अभी भी पहन के निकलिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आप पे अच्छा लगेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फैशन वो नहीं है जो आपको हमेशा दिखाया जाता है कि भाई रनवे पे चलने वाले ही फैशनेबल हैं, ऐसा नहीं है। एक आम आदमी का फैशन अलग हो सकता है, उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। डज नॉट मीन कि आपने बोला कि तुम्हारा फैशन सेंस नहीं है तो वो फैशन सेंस कैसे सुनो, लेट मी रिफ्रेज दिस। कोई आपको बोलता है कि आपका फैशन सेंस नहीं है, हो सकता है कि उसे आपका फैशन नहीं पता है ना। अब जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, बाकियों की बात क्यों करूँ, मैं सूट बूट पहन के नहीं निकल सकता, मुझ पर नहीं सूट करता है, आई नो दैट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसे कैरी करने का, तो आई विल नॉट डू दैट। अब मैं ये कह दूं कि कोई और सूट वूट पहने हुए तो उसका फैशन सेंस नहीं है तो गलत है ना, बिकॉज वो मुझ पर नहीं जच रहा है बट सामने वाले पे जच रहा है, तो वो उसका फैशन सेंस है। बट अगर मैं एक लॉकेट डाल लूँगा और बैंडाना कैरी करूँगा तो हो सकता है मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगे, और हो सकता है ये मेरा लुक किसी और पर अच्छा ना लगे, तो मेरा उसका फैशन अलग है। तो एक डेफिनेटिव परिभाषा फैशन की नहीं है एंड ये मूवी बात करती है। सो डेविल्स वेयर प्राडा इज जस्ट अमेजिंग, राइट टाइम पे आइए। 1 मई को रिलीज हो चुकी है, अभी भी थिएटर्स में है, आप थिएटर्स में देखना चाहें थिएटर्स में देखिए, या फिर आप बाहर जाके देखना चाहें तो बाहर देख सकते हैं। मूवी के अंदर जितने जितने प्लॉट्स इसमें लिए गए हैं उनमें से, जैसे मैंने कहा, मेरी शिकायत सिर्फ एक ही प्लॉट की है और वो सब प्लॉट से है जहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती के रोमांस को दिखाने की कोशिश करी है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मूवी जा ही रही है एक कहानी की तरफ तो किसी चौथे पांचवे की ज़रूरत थी नहीं। पर वह है कि इनको क्या कहते हैं, कहानी के ऊपर सवार होके जाना था, पहली मूवी को एक ओड देनी थी, तो उस चक्कर में इन्होंने ये किया है, विच आई अंडरस्टैंड। पर आई एम जस्ट अ मूवी नर्ड, मुझे मूवीज के बारे में बात करना बहुत पसंद है, तो शायद हो सकता है मेरी ही प्रॉब्लम है, पर आप इस मूवी को जरूर थिएटर में देखें. एंड इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट ये कि 666-22-107 जो व्हाट्सएप का नंबर है इस पर भी जरूर बताइएगा. एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 खतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज़ हमसे जुड़ें एंड लेट अस नो कि व्हाट डू यू फील अबाउट द मूवी, एंड क्या आप चाहते हैं कि सीरीज़ के भी रिव्यू किए जाएँ. जो सीरीज़ आ चुकी हैं हो सकता है आपको ना पता हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उन सीरीज़ का भी रिव्यू किया जाए जो शायद लोगों ने देखी नहीं है और वो ज़माने से OTT प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं. तो प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा. एंड मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बताइएगा, बिकॉज मेरे लिए क्लियर थॉट हो जाएगा. सो व्हाट्सएप 666-22-107 है, या आप मुझे सुबह के शो में बता दीजिएगा, संडे को मैं पढ़ लूँगा इंशाल्लाह ताला, या सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, यहाँ पे आप मुझे भी ढूंढ लीजिएगा एंड वहाँ पे भी हम रास्ता कायम कर सकते हैं. बट फॉर नाउ रिव्यू ऑफ द वीक, डेविल्स वेयर प्राडा 2, डेविल्स वेयर प्राडा 2. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मास्सलाम.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: हाँ जी दोस्तों, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए 10 से लेकर 1 तक के कौन से बेस्ट गाने हैं जो आपकी प्लेलिस्ट में आज ऐड होने वाले हैं। 10 नंबर पे आप लिख लिए रोमियो का गाना, 9 नंबर पे लिख लिए अगेन रोमियो का गाना, और 8 नंबर पे लिख लीजिए आप सलमान खान की मूवी का गाना। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, हर हफ्ते हम बेहतरीन से सॉन्ग के बारे में बात करते हैं, और इस हफ्ते भी हम टॉप 10 से लेकर यानी कि नंबर 10 से लेकर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको अपनी प्लेलिस्ट में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। मुझे लगता है आपको बिल्कुल करना चाहिए। बेहतरीन से गाने कुछ ऐसे जो नंबर 8 पे थे, नंबर 9 पे थे, अब आ गए हैं नंबर 5 पे, और नंबर 3 वाला गाना पहुंच गया है नंबर 8 पे। बहुत ज्यादा गाने जो है वो आ रहे हैं, लोगों के तरफ से पसंद किए जा रहे हैं, चाहे वो क्रिटिक्स हो, चाहे वो हो सुनने वाले हमारे और आपके जैसे। रील पे कौन से गाने ट्रेंड कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस शो में जिसका नाम है टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक,
1: FM 107 टॉप 10।
0: तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 और नंबर 9 से। दोस्तों नंबर 10 पे है वो गाना जो एक समय पे नंबर 3 नंबर 4 पर पहुंच चुका था, लेकिन अब नंबर 10 पे आ गया, क्योंकि नए गानों ने बिल्कुल पावर जो है अपनी दिखा दी और नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर आ गए धीरे धीरे करके। इसलिए नंबर 10 पे ओ रोमियो का ये ट्रैक विच इज आशिकों की कलोनी में, ये वाला वर्जन नहीं, असल वर्जन सुनिए। यह है ओ रोमियो का ट्रैक आशिकों की कॉलोनी, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ये दूसरा ट्रैक विशाल भारद्वाज का 2026 के रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी ओ रोमियो से है, और मासी ये गाना और उसके अलावा लोगों के बीच जो टीनेजर्स हैं उनमें हाईलाइट ये बहुत ज्यादा गाना है। मधुबंती बागची और जावेद अली का गाया हुआ, लेजेंडरी गुलजार का लिखा हुआ लाजवाब गाना। उसकी एक लाइन है, इश्क का इत्र महंगा था पर ले लिया, क्या करे यार 500 कतरी रियाल का था बट लेना पड़ा क्योंकि ये इश्क का इत्र था। कंपोजर हैं इसके विशाल भारद्वाज, और गुलजार के साथ पार्टनरशिप करते हुए ये गाना बहुत ही लाजवाब है। मेघदीप बोस ने इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट किया है जिसमें तबला है, घुंघरू है, ढोलक है, मॉडर्न एलिमेंट्स जैसे कि मैंडोलिन, गिटार, बेस और मॉड्यूलर सिंथेसाइजर का इस्तेमाल करते हुए, और ये 90s का जो रेट्रो मैजिक है वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसके अलावा अगर वीडियो की बात करें तो शाहिद और दिशा की जो केमिस्ट्री है इस गाने को और ट्रेंडी बना रही है और व्यूज लेकर आ रही है, इसलिए नंबर 10 पे अभी भी ये बना हुआ है कॉल्ड आशिकों की कॉलोनी। नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं, अगेन ये ओ रोमियो का ट्रैक है जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, लिरिसिस्ट हैं अगेन द लेजेंडरी गुलजार साहब, कंपोज किया है अगेन विशाल भारद्वाज ने। इंस्ट्रूमेंट का सही इस्तेमाल और कैसे गाने को ट्रेंड बनाया जाता है ये आप विशाल और अरिजीत से सीख सकते हैं।
2: मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है।
0: इश्क का फीवर भले ये स्लो सॉन्ग है बट इतना लाजवाब है, जो सुर है, जो ताल है, जो कह सकते हैं कि लाइन को कहां पर उठाना है कहां पर छोड़ देना है, वो अरिजीत सिंह से अच्छा कौन कर सकता है यार। और ऐसा गाना जिसकी राइटिंग अच्छी है, गुलजार साहब ने लिखी है ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा टीनेजर पसंद करते हैं किसी गाने को, तभी वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आता है, लेकिन बावजूद उसके ये गाना अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो मैं बता दूं ये टीनेजर्स की वजह से नहीं, ये अरिजीत, गुलजार और विशाल की वजह से ट्रेंड करा नंबर 9 पे। ओ रोमियो का ये ट्रैक एंजॉय करें दो गानों को FM 107 पे। वापस आएंगे तो नंबर 8 और नंबर 7 के बारे में हम बात करेंगे। दिल से देसी
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. उम्मीद है कि आपने ये दोनों सॉन्ग यानी कि नंबर 9 और नंबर 10 के सॉन्ग लिख लिए होंगे. अब बारी है नंबर 8 के बारे में बात करने का. तो दोस्तों नंबर 8 के बारे में हम बात कर लेते हैं. नंबर 8 का ये जो गाना है ये है चांद मेरा दिल. ये उस पर नहीं है ऑब्वियसली.

0: इसमें लक्ष्य है, अनन्या है, सचिन जिगर है, फहीम अब्दुल्ला है, अमिताभ भट्टाचार्य है। ये लाजवाब गाना 14th ऑफ अप्रैल को रिलीज हुआ और ये रोमांटिक गाना बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान पसंद किया जा रहा है। उसके अलावा जो इमोशन है, जो म्यूजिकल और लिरिकल हाईलाइट है, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया है लेजेंड लोगों ने, या कहें कि हमारे ऐसे टीनेज लोग। मैं अपने आप को टीनेज ही बुलाता हूँ भाई, क्यों बुढ़ा बुलाऊँ अपने आप को। कॉम्पोजिशन है सचिन जिगर की, रॉक हैवी और बेहतरीन साउंड बेस का इस्तेमाल कंटेम्प्रेरी लेयर्स के साथ, क्लासिक और सोलफुल वाइब जरूर आपको इसमें देखने को मिलेगी या एहसास करने को मिलेगी। उसके अलावा वोकल्स पे हैं फहीम अब्दुल्ला, नोन फ्रॉम सैयारा, अगर आपको याद हो सैयारा क्या लाजवाब गाना गाया था, मुझे लगता है टॉप 10 में उसको डाल देना चाहिए क्या। तो बहुत ही अच्छा ये गाना गाया है। और उसके अलावा फहीम अब्दुल्ला का साथ दिया है अमिताभ भट्टाचार्य ने, क्योंकि अमिताभ ने जो लिखा है वो बड़ा ही आग लिख दिया है। उसके अलावा ये गाना आपको आरव और चांदनी की वजह से बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, उम्मीद पूरी है। विजुअल भी और केमिस्ट्री भी दोनों की लाजवाब है। एंजॉय करें नंबर 8 पे ये गाना कॉल्ड चांद मेरा दिल। और अब बात कर लेते हैं चांद देख लेना।
1: तुम चांद देख लेना, तुम्हें हम नजर आएंगे।
0: ये जो गाना है चांद, ये 7 और 8 में आपको सुनने को मिलेगा। और बड़ी इत्तेफाक की बात हुई, नंबर 10 पे जो गाना है वो रोमियो का है, नंबर 9 पर भी रोमियो का है, नंबर 8 पे चांद मेरा दिल, और नंबर 7 पे गाना है चांद देख लेना। क्या बात है, चांद मेरा दिल, तो यानी कि दिल को देखने की बात हो रही है। वेल, ये जो 7 नंबर पे गाना है, ये है मातृभूमि मूवी का ट्रैक, जिसे निहाल तौरो और अनुपमा मुखर्जी ने गाया। इस पर ज्यादा हम बात करें उससे पहले बता दें कि मातृभूमि मूवी का ये ट्रैक जो है, ये न्यू कमर्स निहाल और अनुपमा ने गाया है। सलमान इसके लिए बहुत ज्यादा बॉलीवुड में फेमस है कि वो नए लोगों को चांस देते हैं, और नए लोगों को चांस देने में बड़ा रिस्क होता है, लेकिन सलमान सलमान कैसे होंगे अगर वो रिस्क ना ले। तो निहाल को और अनुपमा को ये मौका दिया और इन दोनों ने बिल्कुल इस मौके को ग्रैब किया और बेहतरीन गाना गाकर दिखाया और बताया कि कैसे निहाल और अनुपमा मुखर्जी आने वाले वक्त में बॉलीवुड के सिंगर बेहतरीन स्टार बनने वाले हैं। चांद देख लेना के लिरिसिस्ट हैं समीर अंजान, कंपोजर हैं वन एंड ओनली हिमेश रेशमिया, इंस्ट्रूमेंट पे सितार बजाते हुए सुनील खट्टी हैं, और जितेंद्र जो हैं वो वायलिन बजा रहे हैं, लोकेश फ्लूट पे हैं, और गिटार बजाया है दीपक सिन्हा ने। ब्यूटीफुल ये ट्रैक ट्रेंड कर रहा है, 2026 का ये गाना। अभी तक सलमान खान ने इसे रिलीज कराया था ईद के वक्त पे, और नंबर 7 पे अभी तक बिल्कुल बरकरार है। एंजॉय करें इन दो गानों को और वापस आएंगे तो नंबर 6 और नंबर 5 के बारे में हम करेंगे बात। सुनते रहो FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 Top 10 Number 8।

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, ये शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक आप सुन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नंबर 6 और नंबर 5 के बारे में। नंबर 6 पे है साद लामजड और नेहा कक्कड़ का गाया हुआ बेजफ ये गाना, जिसमें शहनाज गिल हैं, रजत नागपाल हैं, शरीफ बेनिस और अंशुल गर्ग का बिल्कुल सही साथ है। ये एक हाई एनर्जेटिक क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन है। इससे पहले भी साद लामजड ने जिस तरह के गाने दिए हैं वो काफी ट्रेंड किए, और खास तौर पे गल्फ में भी और बाकी मुल्कों में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था, क्योंकि साद को ये समझ में आ गया है कि मेरा गाना वहां ज्यादा अच्छी तरह से चल पाएगा जहां पर आप बॉलीवुड सिंगर से कोलैब कर लें। कोलैब करने में दो मुल्क जो है साथ में हो जाते हैं और गाना हिट बन जाता है। और साद लामजड ने ये जो खेल है इसे क्रैक जरूर कर लिया है। गुल्ली मता भी इससे पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था। और अगर हम बात करें वोकल पे, ऑब्वियसली हम मोरक्कन स्टार साद और नेहा कक्कड़ हैं। और हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो शरीफ बेनिस और रजत नागपाल हैं। इस गाने को एंजॉय करें, बहुत ही लाजवाब ये गाना। उम्मीद है कि नंबर 6 से नंबर 4 या 3 पर शायद आ जाए, लेकिन काफी लंबे वक्त से नंबर 6 पर। नंबर 5 पे है कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक कॉल्ड जब तलक। जब तलक ये मेरे ख्याल से जब आया था तो ये नंबर 10 पे था, फिर ये नंबर 8 पे आया और अभी नंबर 5 पे आ गया। तो 3 ही हफ्ते में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है और हर तरफ ये गाना आपको सुनने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपने एक आइकॉनिक ट्रैक सुना होगा, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें, ये बीच पार्टी वाला जो गाना था ये आपको नॉस्टैल्जिक फील इसमें भी देगा, जब तलक में भी देगा। कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, अकाशा सिंह और मधुबंती बागची ने। और खास इस गाने को कंपोज किया है प्रीतम चक्रवर्ती ने, लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। अमिताभ देखना बहुत लंबे वक्त तक यहाँ पर रुकने वाले हैं दोस्तों। इस गाने को एंजॉय करें। नंबर 5 पे है जब तलक और नंबर 6 पे है बेजफ जिसे गाया है साद और नेहा कक्कड़ ने। वापस आइए और फिर हम बात करते हैं नंबर 4 और नंबर 3 के बारे में, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: FM 107 टॉप 10 नंबर 6।

0: FM 107 Top 10.
1: हाँ जी हबीबी, तो नंबर चार और नंबर तीन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है. आप सुन रहे हैं टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. और अभी तक अगर आपने ये गाने नहीं सुने हैं कि नंबर 10 से लेकर नंबर 5 तक कौन से हैं, तो नंबर 10 पे है आशिकों की कॉलोनी, नंबर 9 पे है रोमियो मूवी का ट्रैक इश्क का फीवर, 8 पे है चांद मेरा दिल और 7 पे है चांद देख लेना. क्या बात है, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट हो गया. नंबर 6 पे है साद और नेहा का गाया हुआ बेजा.

0: क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन इस गाने में और नंबर 5 पे है वो गाना जो 2 हफ्ते पहले नंबर 10 पे आया था, कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक कॉल्ड जब तलक। और नंबर 4 पे है अब वो गाना जिसकी मूवी ने एक्चुअली हर तरफ काबू करके रखा था, थिएटर को, थिएटर में आने वाले लोगों को और थिएटर के बाहर के लोगों को, जिन्होंने ये मूवी नहीं भी देखी थी उनके जहन में ये गाना था या कहें उनके जहन में ये मूवी भी थी। दिस मूवी इज कॉल्ड धुरंधर द रिवेंज और इसका गाना है जाइए सजना। ये गाना अभी तक ट्रेंड कर रहा है पंजाबी सूफी ट्रेडिशनल एलिमेंट के साथ मॉडर्न सिनेमेटिक साउंडस्केप्स और कंपोज किया है इस गाने को शाश्वत सचदेव ने। देखिए इस गाने को गाया है जैस्मीन ने और जो वोकल है सतिंदर सरताज के इसमें वो सोलफुल सूफी डेप्थ को सेलिब्रेट करना है और सतिंदर का जो काम है ना वो बिल्कुल हटके है, जैस्मीन के काम से बिल्कुल हटके है, लेकिन इस गाने को नंबर 1 पर होना चाहिए, मेरा दिल तो यही कहता है, बट और भी गाने हैं जो नंबर 1 पर ट्रेंड करने हैं, बट दिस सॉन्ग जाइए सजना ये एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसे कंपोज किया है शाश्वत सचदेव ने और कंपोजिशन के लिए इसे ज्यादा प्रेज मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके लिरिसिस्ट सतिंदर सरताज और जैस्मीन ने लिखे हैं और गाया भी इन्हीं दोनों ने है। ये ट्रैक जैस्मीन का कंटेम्परेरी सॉफ्ट येट रॉ वोकल जो टेक्सचर है सरताज का वो इतना ज्यादा पोएटिक सूफी है और इतना इंटेंस है उसमें कि आप एक्चुअली सरताज की लाइन में खो जाते हैं ना कि जैस्मीन की। हालांकि जैस्मीन का अपना काम बहुत आला है बट सरताज ने, आई एम सॉरी जैस्मीन, मैं ये कह रहा हूँ कि सरताज ने एक्चुअली महफिल लूट ली। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में, जाइए सजना आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले रांझा के बारे में बात कर लें। रांझा ये गाना जिसे दिलजीत दोसांझ ने गाया है और सिया ने गाया है जिसके लिरिसिस्ट दिलजीत ने लिखे हैं, कंपोजर हैं डेविड। स्टेडियम साइज्ड एडीएम सिंथेसाइजर इलेक्ट्रॉनिक डांस प्रोडक्शन ट्रेडिशनल पंजाबी फोक हर यू नो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर दिया है और रांझा को बना दिया है इतना बेहतरीन कि नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है। सिया और दिलजीत का गाया हुआ ये गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, एंजॉय करें इन दो गानों को। FM 107 पे वापस आएंगे तो नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन से गाने, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 Top 10 Number 4

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी. गाइडिंग लिटिल हार्ट्स. एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए. जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर. बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ.
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट.
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग.

0: न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टॉप 10।
3: हाँ जी, एक बार फिर से इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे। वक्त आ गया है नंबर दो और नंबर एक के बारे में बात करने का, लेकिन नंबर दो पे वो गाना आ गया है जो नंबर एक पर पिछले हफ्ते था, बट नंबर दो पर खिसक गया है। ये गाना है नवतेज सिंह रेहाल का गाया हुआ, खान साहब, जैस्मीन, सुधीर यदुवंशी, रेबल और टोकन का आरी यारी यारी। ये छोड़ो, ये गाना आपके दिमाग में छप गया है, अब तो प्ले करना पड़ेगा। इसके लिरिसिस्ट हैं इरशाद कामिल और बॉम्बे रॉकर्स के बेहतरीन खिलाड़ी। उसके अलावा कंपोज किया है शाश्वत सचदेव ने। इंस्ट्रूमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, हैवी बेस, पंजाबी फोक का इस्तेमाल, और ये ट्रेंडिंग कर रहा है हाई ऑक्टेन गाना, हाई एनर्जेटिक गाना जिसपे झूमने में आप मजबूर हो जाएंगे। पार्टी एंथम वाइब, सुनिए इस गाने को। FM 107, दिल से देसी। FM 107।

0: FM 107 Top 10।
1: वैसे अब तक तो आप जोश से भर चुके होंगे इस गाने को सुनने के बाद। अब सुनिए धुरंधर का एक और ऐसा गाना जो कि बहुत ही लाजवाब है। अगेन शाश्वत ने इतना जबरदस्त कंपोज किया है, खान साहब ने इतना जबरदस्त गाया है कि ये गाना बिल्कुल जबान से नहीं उतरता। धुरंधर द रिवेंज मूवी का ये ट्रैक कॉल्ड जान।

0: खान साहब और शाश्वत सचदेव ने लिरिसिस्ट इसके ऑब्वियसली नुसरत फतेह अली खान, उनको तो हम हटा ही नहीं सकते, भले इसमें कुछ और आप इंक्लूड कर दें, कुछ लफ्ज अपनी मर्जी के इंक्लूड कर दें, लेकिन नुसरत साहब को कैसे भूल सकते हैं। नंबर एक पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है, जान से गुजरते हैं, फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज, कंपोज किया है शाश्वत ने, और इस पे इंस्ट्रूमेंट अगर हम बात करें मेहताब अली नियाजी ने जितार बहुत अच्छा बजाया है, हारमोनियम का टेक्सचर है, हिप हॉप बेस लेयरिंग है, और ये सूफी जो गाना है जिसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर क्या स्ट्रॉन्ग लगा है, अब इसको सब ने पसंद किया है। जेन जी जो मुझे लगता है आज से 50 साल बाद भी इस गाने के लिरिक्स से कनेक्ट कर पाएगी ऑब्वियसली। उसके अलावा जो बहुत जमाने पहले नुसरत फतेह अली खान साहब को सुन चुके हैं, उनकी कव्वाली को सुन चुके हैं, वो भी इस गाने को बहुत पसंद करेंगे। आज के जमाने वाले भी पसंद कर रहे हैं, 90s के जमाने वाले भी पसंद कर रहे हैं, उसके अलावा कॉम्पोजिशन लाजवाब हुई है, तो कैसे मैं इस गाने को नंबर एक पर नहीं डालूंगा। तो नंबर एक पर ये ट्रेंड कर रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज है, पसंद किया जा रहा है, रील में इस्तेमाल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट पे हर जगह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्रिटिक्स कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस गाने को। तो ऑब्वियसली नंबर एक पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है, एंजॉय करें धुरंधर द रिवेंज मूवी का, जान से गुजरते हैं। और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक के, जहां पर हम नए गानों के बारे में बात करेंगे। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 Top 10 Number 1।

0: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम T20 क्रिकेट के बारे में कुछ बात करेंगे। T20 क्रिकेट का मतलब ही है जश्न, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, T20 इज अ बिग सेलिब्रेशन। दोस्तों आप सुन रहे हैं स्पॉटकास्ट शो, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि T20 आखिरकार शुरू कैसे हुआ था। आई मीन द स्टाइल, दी यू नो द ऑरा, ये कहां से स्टार्ट, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इन दिस स्पॉटकास्ट शो, जो कि खुसूसी प्रोग्राम है और यहाँ पर हम वेरियस इश्यूज पे बात करते हैं, एंड वेरियस इश्यूज लाइक फ्रॉम फुटबॉल से लेके क्रिकेट, क्रिकेट से लेके ओलंपिक स्पोर्ट्स, हर तरह के खेलों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे यू नो थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ, छानबीन कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और भी है कि क्रिकेट, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन क्रिकेट टुडे बिकॉज द रीज़न इज क्रिकेट यू नो इज ऑलमोस्ट अ नेशनल गेम ही है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका सबके लिए यू नो क्रिकेट इज अ बेसिकली अ नेशनल सेंटिमेंट है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान में हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट, लेकिन क्रिकेट यू नो क्रिकेट इज द एंड एंड नो ओपनिंग ऑफ एवरीथिंग। ये दोस्तों बात ये है कि क्रिकेट की तारीख की बात करूं तो ये T20 क्रिकेट बहुत ही अहम हो चुका है। लोग इसको कहते हैं कि यार ये क्रिकेट है नहीं, कुछ लोगों का कहना कि ये क्रिकेट है, कुछ लोगों का ये मानना ही है कि चले नौजवान क्रिकेटरों को मौका तो मिल रहा है इस गेम के जरिए, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्मेट्स। हालांकि टेस्ट क्रिकेट तो उस लेवल पर है जाके आप यू नो मास्टर्स करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं पढ़ाई में, वैसे ही टेस्ट क्रिकेट को वैसे ही हम मानते हैं। उसके साथ साथ ODI क्रिकेट, अब ODI क्रिकेट को हटाकर T20 इज द न्यू सेंटिमेंट ऑफ द न्यू जनरेशन। आज का सवाल है दोस्तों कि क्या T20 क्रिकेट का एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल असल में 1990s में ही पैदा हो चुका था। आई मीन 1990 के दहाई में क्या T20 के जो आज के जो फॉर्मेट हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्या उसका झलक हमें 1990s में दिखने को मिला था? यकीनन मैं कहूंगा यस। अच्छा, जिनके पैदाइश मिड 90s के बाद है तो मैं उनके लिए एक रेफरल पॉइंट ये दे सकता हूँ कि आप 1996 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ था, उस वर्ल्ड कप को आप देखें और उस वर्ल्ड कप को श्रीलंकन टीम को देखिएगा। इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हमने बता दिया कि टुडेज टॉपिक इज T20 क्रिकेट बेसिकली ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम 1990s, और इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। आई मीन 1990s की बात कर रहा हूँ कि 1990s में उस दौर में ODI क्रिकेट वॉज ऑन द टॉप, लेकिन ODI में भी बहुत सारे बैट्समैन को हमने देखा है जिन्होंने थोड़ा एग्रेसिव बैटिंग करते हुए और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लगाते हुए, और इस इनकलाब के पीछे दो नाम हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और नाम गौर से सुनिएगा, सनत जयसूर्या और रोमेश कालुवेतराना। आप सोचेंगे यार ये तो इंडियन पाकिस्तान के तो नहीं है, नहीं है, ये श्रीलंकन टॉप लेवल के बैट्समैन थे। सनत जयसूर्या आज भी क्रिकेट में अगर बात होती है, श्रीलंकन क्रिकेट को लेकर बात होती है, तो नेचुरली अननेचुरली दे गिव द रेफरेंस टू सनत जयसूर्या।

हाल ही में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, बट उससे इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। और रोमेश कालू की तरह ना एक विकेट कीपर थे श्रीलंकन टीम के। इसके बारे में हम आपको मजीद आगे बढ़ाते हैं, आगे इस टॉपिक को जब हम यू नो विल कम इन टू दी मेन टॉपिक ऑफ T20, तब हम इन दोनों बल्लेबाजों के बारे में थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्रिकेट का एक पुराना दौर था जब 1971 में ODI क्रिकेट वॉज फर्स्ट प्लेड, तो ODI क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के ही स्टाइल में खेला जाता था, स्लो। लेकिन हाँ, वेस्ट इंडीज ने इस स्टाइल को थोड़ा चेंज किया एंड वेस्ट इंडीज केम अप विद सच ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज इन 75 और 79 वर्ल्ड कप, एग्रेसिव बैटिंग, एग्रेसिव फास्ट बॉलिंग। तब जाके लोगों को लगा कि ODI क्रिकेट में भी हम कुछ कर सकते हैं। एंड इंडिया ने 1983 में 2011 में उन्होंने करके दिखाया कि धीरे धीरे इंडिया पाकिस्तान ऑल्सो वॉन, श्रीलंकन ऑल्सो टीम ऑल्सो वॉन द ODI वर्ल्ड कप। तो एग्रेशन बिकेम की फैक्टर विनिंग ODI, यानी लिमिटेड ओवर मैचेस को अगर जीतना है तो वहाँ पे एग्रेशन की ज़रूरत है, अटैकिंग एक प्लान की ज़रूरत है। ये टीमों को समझ में आ गया बाय वॉचिंग वेस्ट इंडीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को भी देखकर बहुत से टीमों ने थोड़ा इंस्पायर और मुतासर हुआ कि हाँ, ये भी एक स्टाइल है जो हम ले सकते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज टू डोमिनेंट इन ODI क्रिकेट में, सबसे सक्सेसफुल टीम आज के दौर में वही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। तो 1990s से पहले की क्रिकेट को देखें तो खासतौर पर ODI इंटरनेशनल्स तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ गेम आपको नजर आता है। ओपनिंग बैट्समैन का रोल क्या होता था, ये आप इस चीज को समझिए। सिर्फ क्रीज पर टिकना, विकेट्स बचाना और धीरे धीरे रन्स बनाना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टेस्ट क्रिकेट को उसी स्टाइल से खेलना, उसी स्टाइल से बॉलिंग करना। अच्छा, ये बता दूं कि ODI क्रिकेट आया कहाँ से, ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो आप लोगों को आइडिया होगा। देन आई विल कम टू T20 क्रिकेट। ODI क्रिकेट इसलिए आया था क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच वाज बेसिकली फर्स्ट 4 डेज 3 डेज बारिश की वजह से जो है वॉश्ड आउट था, कोई रिजल्ट नहीं था। तो लास्ट डे, फाइनल डे, तो दोनों टीमों ने डिसाइड किया चलो लेट्स प्ले लिमिटेड ओवर्स फॉर एंटरटेनमेंट के लिए। तो उसी एंटरटेनमेंट को फॉलोअप करते करते करते ODI बिकेम अ टूर्नामेंट, ODI बिकेम अ न्यू फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। लेकिन अंदाज तो वही था, टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन बॉलर सब वही खेल रहे थे, तो उनका अंदाज वो टेस्ट क्रिकेट वाला था, जो माइंडसेट था वही ODI में था। इसको बाद में बहुत सारे टीमों ने चेंज, जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब ने चेंज किया। अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन का रोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता था। बस गेम को खेल दो, गेंद को खेल दो, गेम को खेल दो, यानी दोनों चीजें, आप टिके रहो वहीं पर ही। रन बन जाए कोई फ्लिक शॉट से, कोई पुल से, तो बन गया बन गया, सिंगल्स ले लो। गावस्कर वाज क्वाइट इनफेमस इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट में। एनीवे, वो कभी और बात करूंगा मैं इस बारे में। पहले 15 ओवर में फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस होती थी, लेकिन बैट्समैन फिर भी कंजर्वेटिव रहते थे, रिस्क लेने का ट्रेंड ही नहीं था। आप समझ रहे हैं इस चीज को, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं, पहले 15 ओवर्स में द फील्डर्स वर इनसाइड द सर्कल, लेकिन बैट्समैन उछाल के मारें, हार्ड हिट करें, टॉप ऑफ द बॉलर मारे, ये अंदाज वाज नॉट देयर विद दोस बैट्समैन ड्यूरिंग द टेरा। स्कोर 250 हो जाए तो मैच जीतने के लिए काफी समझा जाता था, दैट वॉज द माइंड सेट। अब ये दौर दौर की बात है, जनरेशन जनरेशन की बात है, कि पहले तो आप 5 रुपए में भी आप गुजारा कर लेते थे, 10 रुपए में गुजारा कर, आज तो 10-5 रुपए क्या है, यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन 10-5 रुपए। तो वो एक माइंडसेट की बात है, चलो 250 रन है तो मुमकिन है। तब 1996, जैसे मैंने पहले कहा 1996 वर्ल्ड कप, एंड वो एक गेम चेंजर बना। That particular tournament became a game changer. आज जो हम T20 क्रिकेट देख रहे हैं, सूर्यवंशी, बाबर आजम, न जाने कितने नौजवान बल्लेबाज जो हैं, जिस तरह के शॉट्स लगा रहे हैं, उल्टा सीधा, मैं तो उल्टा सीधा बोलूँगा क्योंकि मैं थोड़ा क्लासिकल फॉर्मेट में बिलीव करता हूँ कि अगर यू फील अ राइट हैंडेड बैट्समैन तो वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की तरह शॉट लगा रहे हैं। एनीथिंग ऑफ द पिच, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को आपने लेग साइड में पुल करके मार दिया, व्हाटएवर, रन्स बननी चाहिए, दैट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन T20 क्रिकेट। रन इज इंपॉर्टेंट, रन इज योर USP। लेकिन ये दौर वहीं से आया, 1996 वर्ल्ड कप से, और वो लम्हा जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया,

That was the 1996 Cricket World Cup that was hosted in India and Pakistan. Sri Lanka ki team ek underdog, lekin ek naya soch lekar aayi thi. Sri Lanka ko bola yaar ye kya hai, ye to inko chalta karenge. लेकिन भाई साहब श्रीलंका ने उस वर्ल्ड कप, मैं पूरी स्टोरी यहाँ पे नहीं सुनाना चाहता हूँ, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स एट वर प्लेट. मैं दोबारा दोहराता हूँ इस चीज़ को, जिन्होंने जिनका जिनकी पैदाइश जो है 1995 के बाद के हैं, वो ज़रूर देखें इस चीज़ को, यू नो इस मैचेस को ज़रूर देखें. 30 साल पुरानी मैचेस हैं. 30 साल इज़ I would say not very old. तो आप लोगों के ज़माने के जो matches हैं वो तो नहीं है, मतलब आज की बात कर रहा हूँ मैं. लेकिन the foundation was laid in 1996. बार बार इस चीज़ को मैं focus, stress इसलिए कर रहा हूँ so that you know the history, at least you know the history कि how it started. और ये इस सोच के मरकज में थे सनत जयसूर्या और रोमेश कालुवितराना. दोस्तों पावर प्ले का जो अटैक है, पावर प्ले का जो पहला अटैक है, इन्होंने सिखाया. इन्होंने कौन? सनत जयसूर्या ने. अच्छा, सनत जयसूर्या को देखकर रोमेश कालुवितराना भी बड़ा हो गया, भाई हमारा टीममेट, हमारा जो सीनियर ओपनिंग पार्टनर है, अगर वो इस तरह का शॉट लगाए तो मैं भी लगा सकता हूँ. जब दुनिया डिफेंसिव क्रिकेट खेल रही थी, जयसूर्या और कालुवितराना ने पावर प्ले को अटैक का मौका बना दिया. फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स, कोई बात नहीं, उन्होंने पहले ही ओवर से मारना शुरू कर दिया. फील्ड ऊपर है तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी. ये अप्रोच उस वक्त रेकलेस समझी जाती थी. सोचिए इस चीज को, जो प्योरिस्ट कोच थे, सेलेक्टर्स थे, टीममेट्स थे, उनको लगता था कि यार ये क्या खेल रहा है ये सनत जयसूर्या, टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज इस तरह का शॉट लगा रहा है. आई मीन इट वाज कंसीडर्ड टू बी अ टेबू. आई मीन कैसे हो सकता है ये, दिस इज नॉट पॉसिबल. लेकिन पॉसिबल था. जयसूर्या ने करके दिखाया कि रन इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपके 15 ओवर फर्स्ट 15 ओवर्स में फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं, फील्डर्स आउटफील्ड पर नहीं हैं और वो सर्कल के अंदर हैं, तो यू हैव टू हिट एवरी डिलीवरी, यू हैव टू हिट. और उन्होंने वो करके दिखाया था. क्या शॉट और क्या पावर. आई मीन पावर की बात कर रहा हूँ, मतलब बल्लेबाज की जो रिस्ट की पावर जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ एफर्टलेस स्ट्रोक्स, एफर्टलेस शॉट्स थ्रू योर पावर. एंड ये जयसूर्या और रोमेश कालुवितराना, चाहे वो फास्ट बॉलर्स थे, चाहे वो यू नो स्पिनर्स थे, किसी की परवाह नहीं, किसी को नहीं छोड़ना. और ये अप्रोच, जैसे मैंने बताया कि उस टाइम रेकलेस, बोले ये दिमाग खराब हो गया जयसूर्या का कि इस तरह का शॉट लगा रहा है. आज हम स्ट्राइक रेट 140 150 देखते हैं T20 में, लेकिन उस वक्त ODI में 70 भी बहुत बढ़िया होता था. जी हाँ दोस्तों, और जयसूर्या का 90 प्लस स्ट्राइक रेट वो जमाने का T20 था. तो नेवर एवर से कि T20 वाज एन इनोवेशन इन द मॉडर्न एरा. हर चीज का एक फाउंडेशन हमेशा पीछे से शुरू होकर आती है. एंड यू नीड इंस्पिरेशन. आप मुतासिर होते हैं उस फलाने बैट्समैन को देखकर या फलाने स्टाइल को देखकर, उस स्टाइल को आप रिक्रिएट करते हैं, री इन्वेंट करते हैं. सो दैट्स हाउ द T20 फॉर्मेट टुडे हैज कम इन टू प्ले. जयसूर्या ओवर नाइट जयसूर्या बिकेम नोन एज अ डिस्ट्रॉयर, खतरनाक बल्लेबाज. सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे वो, एक माइंडसेट थे. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसको अब यू नो बाद में कितने भी बल्लेबाज आए जयसूर्या के बाद, इनफैक्ट जयसूर्या ने IPL भी खेला है और बेसिकली ही वॉज अ रोल मॉडल. तो जयसूर्या की जो माइंडसेट, ही हैड दैट माइंडसेट, कई बैट्समैन ने फॉलो किया है, कई बैट्समैन ने. अब किसी का भी आप नाम लीजिए, इंडियन बैट्समैन, पाकिस्तानी बैट्समैन, जो IPL में, उस टाइम जब IPL शुरू हुआ था 2008 में, तब से लेके आज तक देखिए, सेम माइंडसेट. यू हैव टू किल द बॉलर, यू हैव टू फिनिश ऑफ दैट बॉलर बाय हिटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी. एंड दैट इज व्हाट T20 के आज जो मैचेस देखते हैं, किस तरह के स्कोर्स हो रहे हैं, 250 260 T20 में 260. अभी कुछ दिन पहले पंजाब की टीम ने, माफ कीजिएगा, दिल्ली की टीम ने दे स्कोर 260 प्लस स्कोर इन IPL. तो दीज आर अचीवेबल. आज के डेट में सब कुछ मुमकिन है. और जयसूर्या का उस टाइम का जो स्टाइल था, उनका बैट स्विंग, उनका जो फियरलेस एटीट्यूड, वो हर बॉलर को डोमिनेट करते थे. उनका फिलोसॉफी सिंपल था, बेस्ट डिफेंस इज द अटैक. यानी आप डिफेंस करेंगे अपने आप को, तो अटैक करिए जरूर.

0: अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, फुटबॉल में भी एक कहावत है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जयसूर्य को देखकर मुझे विवियन रिचर्ड्स की बात हमेशा याद आती है। विवियन रिचर्ड्स ही डिडंट प्ले 1996 वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने 1983, 79, 75 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में जब विव रिचर्ड्स बैट करने आते थे तो लोगों के साथ ऐसे ही होता था, ओपोनेंट टीम भी यूज टू फील यार विव आ गया आप तो मार डालेगा, यानी वाकई वो मार डालता था। बॉलर्स को छोड़ना नहीं है, बट वो क्लासिकल शॉट ज्यादा पसंद करते थे खेलना, बट इट वॉज मोर ऑफ पावर, मोर ऑफ एग्रेशन। जयसूर्य शोर दैट पावर प्ले में, यानी 15 ओवर्स के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम ओडीआई में, बॉलर के सर के ऊपर से, फील्डर के सर के ऊपर से आप मार रहे हो, आई मीन दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। एक मैच आपको मैं यहाँ पे एक मैं मुझे वो मैच याद है, दिल्ली में हुआ था, 1996 की बात कर रहा हूँ, ऑन दैट मैच वॉज अगेंस्ट इंडिया, होस्ट इंडिया, ग्रुप मैच था। एंड वहाँ पे मनोज प्रभाकर को जिस तरह से फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में जयसूर्या ने पीटा था, एंड मनोज प्रभाकर करियर गॉट ओवर। ईच डिलीवरी, कई शॉर्ट पिच डालें, कई यॉर्कर डालें, कुछ भी, जयसूर्या ने इधर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए प्रभाकर को इधर उधर हर तरह के शॉट्स खेलते हुए उनके करियर को ख़त्म कर दिया। और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ओपनर सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं होता दोस्तों, बल्कि मैच जीतने के लिए होता है। दे आर द पायनियर, दे आर द पायनियर ओपनिंग बैट्समैन, दे शो द वे। और ऑपोजिशन टीम्स का क्या हाल होता था आप थोड़ा तसव्वुर कर सकते हैं। कैप्टन सोचता था कि फील्ड ऊपर है लेकिन बॉल कहाँ डालूं, दैट वॉज द कन्फ्यूजन ही क्रिएटेड अमॉन्ग द यू नो ओपोनेंट प्लेयर्स, ओपोनेंट फील्डर्स, बॉलर्स के दिमाग में। बॉलर प्रेशर में होते थे, कैप्टन डिफेंसिव, और गेम श्रीलंका के कंट्रोल में। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो T20 की फाउंडेशन ईयर्स के बारे में हम बात करेंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं स्पॉटकास्ट विद मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: वेलकम बैक टू FM 107, आप सुन रहे हैं स्पॉटकास्ट, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और आज हम बात कर रहे हैं, एक सवाल है मेरा कि क्या T20 क्रिकेट का एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल असल में 1990s में ही पैदा हो चुका था। मैं कहता हूं जी हां। आप क्या कहते हैं, आप अपना जवाब जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं 6622107 पर, यू कैन शेयर योर यू नो इनपुट्स ऑन दिस। तो मैं जैसे कि ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि वाई जयसूर्या, जयसूर्या माइंडसेट के बारे में वी डिस्कस्ड, कि जयसूर्या माइंडसेट वाज किलिंग, जस्ट मस्ट खत्म कर डालो ओपोनेंट टीम को विद द स्ट्रोक्स, विद द स्ट्राइक्स, जो भी आपके पास मौका मिलता है आप उड़ा डालो, एंड दैट ही डिड। एंड उनके साथ एक उनका परफेक्ट पार्टनर भी था, रोमेश कालूवितराना। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि रोमेश कालूवितराना वॉज द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, विकेट कीपर, हमेशा फिफ्थ सिक्स पोजिशन या सेवन डाउन पे आते हैं, लेकिन उस टूर्नामेंट में श्रीलंकन टीम के कप्तान यू नो अर्जुन रणतुंगा ने सोचा कि थोड़ा रन रेट को बढ़ा दिया जाए, एंड लेट्स प्रमोट कालूवितराना को विद जयसूर्या, एंड दैट वाज द मैजिक मूव दैट ही मेड, एंड ये मूव सक्सेसफुल रहा आज के हिस्ट्री में। आज इससे तारीखी एक डिसीजन था उस टाइम में, आज भी लोग कहते हैं कि यार क्या डिसीजन लिया था, क्या यू नो वही जो कहते हैं ना, क्या खेला था ये, यू नो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द बैट्समैन बट आई एम टॉकिंग ऑफ द कैप्टन अर्जुन रणतुंगा, एंड फर्स्ट मैच से हिट। तो रोमेश कालूवितराना का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, वो विकेट कीपर बैट्समैन थे और उनका एग्रेसिव इंटेंट जयसूर्या को सपोर्ट करता था, इशारा हवाई अगले बॉल जो है, अगली गेंद जो है आप खेल देना, मुझे एक मतलब एक सिंगल लेके मुझे दे देना स्ट्राइक। That was a brilliant understanding between these two players that helped Sri Lanka rule over other teams. Aur us saal 1990s World Cup, Sri Lanka, they defeated Australia in Lahore. Us shaam, agar har kisi ne enjoy kiya, celebrate kiya Sri Lankan victory ko, to sab logon ne taaliyan to bajayi, lekin sabse zyada taaliyan in dono ballebazon ke upar, you know, Romesh Kalubitarana aur Sanat Jayasuriya. दोनों ने मिलकर बॉलर्स को प्रेशर में डाल दिया, अगर एक आउट हो जाए तो दूसरा फिर भी अटैक कंटिन्यू करता। दैट वाज द परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो कि आज की तारीख में आई डोंट थिंक कि ओपनिंग कोई ऐसे बल्लेबाज हैं, जो ओपनिंग पेयर हैं जिनका दम इतनी बाखूबी से जो यू नो ओपनिंग स्पेल्स को जिस तरह से रोक सकते हैं बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन रोक सकते थे जैसे जयसूर्या और कालूवितराना, वो कोई है मुझे

बिल्कुल उस तरह कंसिस्टेंसी नहीं है, दैट टूड बी बट कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, कालू मिर्जा ना विकेट कीपर बैट्समैन थे और उनका एग्रेसिव इंटेंट जैसे बताया जयसूर्या को सपोर्ट करना था, ही वाज इन अ सपोर्टिंग रोल एंड दैट वाज अ परफेक्ट सपोर्टिंग रोल दैट ही डिड। और ये पार्टनरशिप T20 स्टाइल का दोस्तों ब्लू प्रिंट थी। कोई भी अगर आपसे कह दे कि नहीं नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे स्टूडियो पे आ जाइए, हम आपको आपको पिक्चर दिखाएंगे, नॉट ट्रेलर, आपको बताएंगे ईच एंड एवरी शॉट्स टेक्निकली एनालिटिकली। आई विल शो इट टू पीपल हु डिसएग्री ऑन दिस कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। तो जैसे कि डोनाल्ड ब्रैडमैन प्लेड 29 सेंचुरीज उस जमाने में जहाँ पे बॉलर्स रूल द रूस्ट, तो डोनाल्ड ब्रैडमैन को कंपेयर कर लेते, नहीं नहीं डोनाल्ड ब्रैडमैन तो है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। पुरानी चीज़ों को आप ऐसे मतलब फेंक नहीं सकते हैं कि भाई इजी था, इजी कुछ नहीं होता था पहले ज़माने में। पहले के ज़माने में लोग जहाज़ से जाते थे, पानी वाले जहाज से ट्रैवल करते थे, यू नो, कंट्री टू कंट्री, सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आज तो सब कुछ परफेक्ट है, यू नो, दैट इज़ वॉट आई ट्राइंग टू पॉइंट दिस। ईच एंड एवरी फेज जब गुजर जाए ना, तो ये समझ लीजिए कि पिछला फेज जो था वो स्ट्रगलिंग वाले फेज की बात कर रहा हूँ। आज का फेज जो है आने वाले फेज में भी वुड बी डिफरेंट। आज जो स्ट्रगल है आने वाले फेज में वो स्ट्रगलिंग वो फैक्टर्स वुड नॉट बी देयर। सो सनत जयसूर्या, रोमेश कालू वितराना विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड समवन हु मोटिवेटेड द फ्यूचर प्लानर्स, द फ्यूचर जो भी यू नो क्रिकेट को लेके रिसर्च करते हों, तो उनके लिए एक वो रोल मॉडल थे, एक ब्लूप्रिंट था जिसके बलबूते पर T20 क्रिकेट का आगाज हुआ था। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स पे अगर नज़र डालूं मैं, इससे स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा इम्पैक्ट और क्या हो सकता है। अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो शायद आज के T20 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एवरेज लगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट नंबर से कहीं ज़्यादा था। उन्होंने माइंडसेट चेंज किया, उन्होंने क्रिकेट का टेम्पो बदल दिया था, दैट इज़ काफ़ी अहम है, टेम्पो बदल देना। आज मॉडर्न T20 में सेम फिलोसॉफी को फॉलो किया जा रहा है। आज जब हम इंडियन प्रीमियर लीग या यू नो PSL पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखते हैं तो क्या होता है, ओपनिंग बैट्समैन पहले ओवर से ही सिक्सेस और फोर्स मारते रहते हैं, पावर प्ले का फुल यूज होता है, स्ट्राइक रेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब किसने शुरू किया, जयसूर्या और कालू वितराना, ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखना, ये जनरल नॉलेज है दैट पॉडकास्ट के इस यू नो शो में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि दीज आर द यू नो लेजेंड्स, दीज आर द लेजेंड हु स्टार्टेड द गेम चेंजर। अगर आप इन स्टैट्स को ध्यान से देखें तो आपको एक क्लियर पैटर्न नजर आता है, तेजी से स्टार्ट करना, पावर प्ले को डोमिनेट करना, फियरलेस बैटिंग और गेम का टेम्पो को अपने हाथ में रखना, यही T20 का फॉर्मूला है आज भी। और ये जयसूर्या और कालू वितराना ने दिखाया, दुनिया को दिखाया कि इफ यू फॉलो दीज रूल्स एवरीथिंग विल बी अंडर योर कंट्रोल। अच्छा, इसी से मॉडर्न प्लेयर्स भी इंस्पायर्ड हुए और आज के स्टार जैसे विराट कोहली, डेविड वार्नर, जॉश बटलर, रोहित शर्मा तो T20 स्पेशलिस्ट हैं, आई मीन मोर देन 11,000 रन ही स्कोर्ड। तो ये सारे बैट्समैन जो है ये सब एग्रेसिव ओपनिंग का जो स्टाइल यूज करते थे, रमेश कालू वितराना और जयसूर्या उन्हीं को फॉलो किया, कोहली, वार्नर, बटलर, रोहित। तो दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज समथिंग, आप इस पैरामीटर को यू नो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वही फाउंडेशन की बात अगर आ जाती है तो 1996 में ही रख दी गई थी, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस शो, कि आज T20 फॉर्मूला अगर हिट है विद द पब्लिक, विद द स्पॉन्सर्स, विद द प्लेयर्स, दो बंदे ने इस काम को अंजाम दिया था, यही स्टाइल है जो आप आने वाले टाइम में कैन यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई थिंक जयसूर्या थोड़ा सा लकी रहे हैं कि 2008 में वो 2008 में ही प्लेड IPL, जैसे मैंने बताया शुरू में, तो एक तरह से ही हैड कम्प्लीटेड दैट इनिंग्स। इनिंग्स मीन्स टेस्ट भी खेल लिया, ODI फॉर्मेट भी, ऑब्वियसली ही वॉज अ मास्टर, और इसके साथ साथ T20 में भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया, एंड दैट इज सो वंडरफुल। रन्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट एरा, आज भी है T20 में रन्स आर इम्पॉर्टेंट, कहीं से भी आए। उनका स्टाइल क्रिकेट बुक के खिलाफ था, कोचेस कहते थे कि लाइन पे खेलो, पेशेंस रखो, लेकिन जयसूर्या ने हमेशा कहा बॉल दिखी तो मारो,
दिस इज

0: द फिलॉसफी स्टिल टुडे इज बीइंग फॉलोड. कितने टेस्ट क्रिकेट पर जो है यू नो वो T20 में खेल रहे हैं आज भी. बाबर आजम एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बाबर आजम, तीनों फॉर्मेट में माहिर है. ठीक है, तो वो भी इस तरह के शॉट्स खेल रहे होंगे ना. तो बॉल देखिए तो मारो, दिस इज T20. इधर उधर का यू नो फॉर्मूला शॉर्मूला जो है टेस्ट बुक रहने दें, टेस्ट बुक हम टेस्ट क्रिकेट में फॉलो कर लेंगे. ये जो है धूम धड़क का, तो आज के T20 का कोर यही है, क्रिएटिविटी माना जा रहा है इसको, और यही है इंस्टिंक्ट. क्रिटिक्स और डाउटर्स हमेशा रहेंगे, क्रिटिक्स हमेशा यू नो तनकीद करेंगे, तनकीद करते रहेंगे कि यार ये क्या क्रिकेट है. उस वक्त के क्रिटिक्स जो थे उन्होंने कहा था कि ये स्टाइल सस्टेनेबल नहीं है. पॉजिटिव एटीट्यूड तो हमेशा हमने समाज में हमने देखा है कि कोई लोग अच्छा काम करें, किसी को मदद करें, तो लोग उसका एक नुक्स जो है एक ड्रॉबैक जरूर निकालने की कोशिश करते हैं. उन्होंने उस टाइम कह दिया किसी ने कि यार ये क्या खेल रहा है, ये बंदा क्या खेल रहा है, तो ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता है. लेकिन हुआ, ये टीम को नुकसान पहुंचाएगा, टीम को नुकसान नहीं पहुंचा. श्रीलंका बिकेम वर्ल्ड चैंपियन बाय बीटिंग ऑस्ट्रेलिया. और ये इरेस्पॉन्सिबल क्रिकेट है, कहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आपकी टीम जीत रही है तो देन देट इज नथिंग कॉल्ड इरेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड क्लास आई वुड से, क्योंकि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू हिट दोज शॉट्स विद अ क्लास. हाँ, ये मैं जैसे कहता हूँ कि आपको पढ़ाई की जरूरत होती है, बिना पढ़ाई किए आप एग्जाम में जैसे बैठ नहीं सकते और बिना मेहनत के आप कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही कोई ऐरा गहरा नथु गहरा आके इस तरह के खेल तो खेल नहीं सकता कि हम गली क्रिकेट खेला तो मैं बैट्समैन हूँ, मैं हिट करूंगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ईयर्स एंड ईयर्स की मेहनत के बाद इफ यू प्ले दैट लेवल ऑफ क्रिकेट लाइक जयसूर्या, तो तब जाके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करना कोई मामूली बात नहीं है. फॉर दैट आपके बैक ऑफ द माइंड में नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, सम इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर, यू शुड बी लोडेड विद इनफ इन्फॉर्मेशन, तब जाके आप इस सब कर सकते हैं जो कि जयसूर्या ने 1996 में करके दिखाया था. तो उन्होंने सबको साबित कर दिया कि भाई आप गलत हैं, आपने कुछ करा नहीं है, आपने ये नहीं किया, लेकिन उन्होंने सबको बता दिया कि भाई देखो श्रीलंका हैज वन द वर्ल्ड चैंपियन, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, एंड वर्ल्ड कप जीत कर सबको जवाब दे दिया. तो लेगेसी है जयसूर्या और रोमेश कालू वितराना का. आज जब भी T20 क्रिकेट की बात होती है हम क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स या मॉडर्न हिटर्स को याद करते हैं, लेकिन असल पायनियर्स सनत जयसूर्या और रोमेश कालू वितराना, उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, उन्होंने एक नया एरा क्रिएट किया, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे क्रिएटेड अ न्यू एरा और आज भी वो कंटिन्यूड है. नाउ IPL स्टार्टेड इन 2008 और ऑलमोस्ट 20 साल होने को जा रहा है. PSL का 11वां एडिशन है. बांग्लादेश में भी T20 के मैचेस होते हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट होते हैं वहाँ पर भी, नेपाल में भी है, कहाँ नहीं है, श्रीलंका में भी है. सो दैट काइंड ऑफ अ बैटिंग विच रोमेश कालू वितराना, सनत जयसूर्या ने जो स्टार्ट किया था, आज उसको फॉलो किया जा रहा है. तो दोस्तों, फाइनल थॉट ये है कि क्रिकेट सिर्फ टेक्निक का गेम नहीं है, ये सोच का गेम है, और जब सोच बदलती है तो गेम भी बदल जाता है. जयसूर्या एंड कालू वितराना ने दुनिया को सिखाया कि डर के आगे सिक्स है. दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, आप सुन रहे थे FM 107 का खास पॉडकास्ट. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि आप किस लेजेंड पर अगला एपिसोड चाहते हैं ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर 666-222-107 पर. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें. और ये पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन www.urduradio.ua पर. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज को दीजिए इजाजत. खुश रहिए, सेफ रहिए और क्रिकेट को देखते और एंजॉय करते रहिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज. पॉडकास्ट
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: जो मस्ती मजाक नहीं सही लेकिन लाइफ के लेसंस भी दे पाए।
1: कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी।
0: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से ना सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
4: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: एक एक वाक्य से एक एक पहलू पर जो है तवज्जो दिलाई जाती है कि भाई आप भी अपने जो है ना आपस में माहौल आपके माहौल में जरा सोचें और फिक्र करें कि हमें यहाँ सीखने को क्या मिल रहा है। सामिन इकराम, बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से एक दिन चाहा था जो उनके लिए आराम का दिन हो, साथ ही मुकद्दस हो। जैसे कि आज भी तकरीबन हर एक मुल्क में कुछ वीकेंड के हवाले से जो एक आइडिया है ना, तो ये तस्वुर गोया कि उनसे भी उनके उनसे शुरू हुआ था, ये हम ये कह सकते हैं। ओवरऑल ऐसी कोई बात हतमी तौर पर साबित नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि ये तब से ही वो सिलसिला है, या फिर आप अगर देखें नसारा में भी ये चीज़ है कि उनके भी हफ्ते की एक वीकेंड वगैरह ऐसे ईद का दिन बताया जाता है कि वो इतवार का दिन है, तो यहूद के लिए था हफ्ते का दिन। तो अल्लाह ताला ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाया और हफ्ते के दिन को उनके लिए मुकद्दस और आराम का दिन करार दिया और हुक्म दिया किस दिन वो अपने माश के लिए कोई काम न करें। फिर अल्लाह ताला ने मछलियों के जरिए उनका इम्तहान लिया और हफ्ते के रोज़ मछलियाँ कसरत से सतह आप पर नजर आतीं और बकिया दिनों में छुप जातीं। इस आजमाइश में बनी इसराइल साबित कदम न रह सके, यानी वो सामने के शिकार को हाथ से किस तरह जाने देते? क्या वो अल्लाह ताला से किए हुए अहद पैमान की खातिर इतने बहुत सी मछलियों को खो देते? यहूद की तो फितरत नहीं है, उन्होंने सब्त यानी हफ्ते की बेहरमती की, उन्होंने अहकाम की खिलाफ वर्जी हीले और बहाने से की, जैसे कि हमारे हम भी कर रहे होते हैं। माद अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारी हिफाज़त फरमाए। इस्लाम के नाम पर जो है ना हम काम इलाही की खिलाफ वर्जी करते रहते हैं, हीले और बहाने तराश कर, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो इस तरह जो है ना यहूदियों ने और बनी इसराइल ने वो सब्त के दिन मछलियों को घेर लेते और आड़ खड़ी करके उन्हें समंदर से अलग कर लेते, अलबत्ता उस दिन उनका शिकार न करते। जब सब्त का दिन यानी हफ्ते का दिन ख़त्म हो जाता तो शाम को जल्दी से उन घेरी हुई मछली को पकड़ लेते थे। तो इरशाद खुदावंदी है, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور تم اپنے ان لوگوں کا حال جانتے ہی ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی، لہذا ہم نے ان سے کہا کہ हो जाओ जलील व खार बंदर। फिर हमने उस वाक्य को मौजूदा और बाद में आने वालों के लिए इबरत का सामान और अल्लाह से डरने वालों के लिए मौइज़त व नसीहत का वाक्या बना दिया है। समी करम कुलना लहुम कुनु क़िरदतन ख़ासीन, यानी तो हमने उनसे कहा हो जाओ जलील व खार बंदर। तो अल्लाह से उन्होंने जो अहद किया था उसे तोड़ने की सज़ा जो है ना उन्हें मिल कर रही और वो जानवर बना दिए गए, क्योंकि वो इरादा व इख्तियार रखने वाले इंसान के मकाम से गिर कर हैवानात की दुनिया में शामिल हो गए थे। जानवर इरादा व इख्तियार नहीं रखता, जानवर पेट की ख्वाहिश और पुकार से ऊपर नहीं उठता। इन लोगों ने इरादा व इख्तियार की खसूसियत को खो दिया था, जिसके जरिए इंसान अहद इलाही के सिलसिले में साबित कदमी का मुजाहरा करता है और वो जानवर के पस्त मकाम पर जा गिरे थे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जिस्मानी एतबार से भी बंदर हो गए हों, अपनी रूह और अपने तर्ज़ फ़िक्र के एतबार से बंदर हो गए थे ये भी कह सकते हैं। और ये हकीकत है कि इंसान के तर्ज़ फ़िक्र का उसके चेहरे, उसके ज़ाहिर और उसके खद्दो ख़ाल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इंसानों के बंदर बनाए जाने का ये वाक़या तमाम मुखालिफ़ हक के लिए जो इस दौर में थे या उससे मुतसिल अदवार में हुए इबरत का सामान बना, और अहले ईमान के लिए तो हर दौर में मौइज़त व नसीहत का हामिल वाक़या था।
1: आइए फलाह अशरफ उल ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: सभी कराम, इंसान की असली खसूसियत ये है कि वो अपने नफ्स की कोई ख्वाहिश पूरी करते वक्त पहले ये देखता है कि इस ख्वाहिश को पूरा करना जायज भी है या नहीं, और अगर जायज है तो उसके लिए क्या शरई और अखलाकी हदूद व क़ुयूद है। इंसान में जब वाकई अखलाक व इंसानी शऊर हो, बरक्स उसके बंदर की किसी ख्वाहिश और उसके फेल के दरमियान अखलाकी हुदूद व क़ुयूद की कोई रुकावट नहीं होती, जिस चीज़ को उसका नफ्स चाह बैठता है उसको वो फौरन कर गुजरता है।

और हैवानों में कोई चीज मुमय्यज न रही थी। अब वो खैरुल बरिया बेहतरीन मखलूक की बजाय शर्रुल बरिया बदतरीन मखलूक, अलआमा यानी अंधे, अल्लज़ीन ला यालमून बेखबर अक्ल से आरी इंसान थे, अंजामकार कौम की। और यानी आखिरी हालत ये हुई कि वो बंदर और सूअर बना दिए गए, क्योंकि बास अमराज इस कस्म के होते हैं कि इंसान की सूरत मस्ख हो जाती है और वो बिल्कुल जानवरों के मुशाबे हो जाता है। अब ये अल्लाह ताला का इरादा है, अल्लाह ताला का जो है ना उनकी हिकमत है और उनके इल्म में है। वो बदामालियों की सज़ा जैसे और जिस तरह चाहे दे सकता है। एक मकाम पर इरशाद हुआ है, وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ। वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन पर उसका गजब नाजिल हुआ, फिर उनमें से बास को उसने बंदर और सुअर बना दिया और बास को तागूत शैतान के बंदे बना दिया। यही लोग दर्जा के लिहाज से बदतर और सीधी राह से बहुत बहके हुए हैं। और फिर एक दूसरे मकाम पर उन लोगों का हाल बताया गया जो सिरात मुस्तकीम से भटके हुए और ख्वाहिशात नफ्स के बंदे हैं। उलाइक कल अनआम बल हुम अदल, ऐसे लोग चौपाइयों की तरह हैं, नहीं नहीं बल्कि उनसे भी यानी बदतर। और इसी तरह कहा गया है, फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा, फिर हमने इस वाक़े को मौजूदा और बाद में आने वालों के लिए इबरत का सामान बना दिया। मुआज़ातन लिलमुत्तकीन, और इस तरह जाना परहेज़गारों के लिए ये सज़ा या कौम बनी इसराइल बाइस नसीहत बनी ताकि वैसी गलती का इर्तिकाब न करें और हमेशा अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी का दम भरते रहें। सामने किराम, इन आयात में हमारे लिए ये इबरत है, ये नसीहत है कि जो अफराद या जो कौमें अखलाकी हदूद व क़ुयूद से तजावुज़ करती हैं वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बच नहीं सकती हैं। इसका कानून अटल और यकीनी है। तो गोया यहाँ कौमें दो किस्म की होती हैं, एक तो फसादी कौम और एक इस्लाह पसंद कौम। अगर फसादी कौम रही तो यहाँ जो है ना बड़ी फिक्र की बात है, बड़ी दावत की मेहनत करनी पड़ेगी और उनमें जो है ना इस्लाह की फिक्र करें और इस्लाह पसंद कौम तैयार करें, ऐसा मुआशरा बनाएं, ऐसा मुआशरा कायम करें जो इस्लाह चाहता हो, जो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हो, जिस तरह जो है ना हम अल्लाह के अजाब से बच सकेंगे। वरना अगर कौम फसादी हो तो ये बहुत बड़ी जो है ना एक आजमाइश है। बनी इसराइल की सूरत हाल यही थी और उनके कौम के फसादी होने की और जो है ना वाकया अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें ये बताते हैं। इरशाद खुदावंदी है, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ

0: कौन है? अल्लाह जल्ला जलालुहू। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि इंसान को मार कर जगाना हमारे बस की बात है, और जिस तरह उस मख्तूल ने दोबारा ज़िंदा होकर अपनी जो है ना पहली ज़िंदगी के हालात बता दिए थे, इसी तरह हम तमाम इंसानों को जब क़यामत के दिन ज़िंदा करेंगे तो वह ख़ुद अपने अमाल की गवाही देंगे। अल्लाह सुब्हानहु ताला हमें इन वाक़ियात की जो नसीहतें हैं, जो भी हिकमत है, इन्हें सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। जराइम तो दूर की बात है, कितमान जुर्म जैसी सूरत हाल भी पेश ना आए कि हम सब अल्लाह सुब्हानहु ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु ताला हमें जो है ना तमाम तर आफात से, शुरूर से, अपने नफ्स के शर से बचाए, और इस तरह दूसरों की दुश्मनी और दूसरों के जो है ना गलबा, इसी तरह बुग़्ज़, हसद, जो जो बुरे अखलाक हैं, इन सब से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान के आज के हल्के से साउंड डिजाइन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
4: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स RJ नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेफ आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर

0: इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए आ रहा है शो करियर कैंपस सीजन टू, जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास। दोस्तों, ये शो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को अलाइन करना चाहते हैं, उन बातों पर फोकस करना चाहते हैं जो उनकी पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी को शेप करे। आज का एपिसोड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दैट टू फॉर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, आलिया मसूदी। आलिया मसूदी देखा जाए तो एक एजुकेटर हैं और प्रोफेशन के तौर पर एजुकेटर और साथ ही फैमिली बॉन्ड की एक फाउंडर भी हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो फैमिली रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने एंड ऑफ कोर्स हेल्दी फैमिली डायनामिक्स को प्रमोट करने के लिए काम करता है। आप देखा जाए तो अपने काम के जरिए जो है वो उन लोगों की वेलबींग का ख्याल करती हैं जो वैल्यूज और कम्युनिकेशन को समझकर अपने आप को सुधारना चाहते हैं। और आज का ये जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें नेविगेट करने में आपकी वैल्यूज, आपके टिप्स काफी यूजफुल भी होती हैं। वेल एजुकेशन के एक्सपीरियंस और फैमिली डेवलपमेंट के लिए अपने पैशन के साथ आलिया ये समझती हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनल फाउंडेशंस कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स और सक्सेसफुल करियर्स बनाने में हेल्प करती है। आलिया, आपको मैं वेलकम कहना चाहूंगी आज के हमारे इस खास एपिसोड में। वेलकम ऑन FM 107। उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत से होंगी।
2: थैंक यू नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, today's conversation is about emotional intelligence and that too in the life of students. So let's start with this, that why do you believe emotional intelligence is important for students? One. Secondly, how does emotional intelligence help students understand and manage academic stress and pressure?
2: ठीक है, द क्वेश्चन इज वेरी नाइस। तो लाइक वी आर मूवी दीज डेज आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, बट लाइक बहुत ही मैंने व्हाट आई हैव ऑब्जर्व बीइंग लाइक एडुकेटिंग फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग पीपल ऑलवेज लाइक फील इट लाइक इट वेरी ट्रिकी, लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइक यू नो दैट वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड, बट आई ऑलवेज इट लाइक इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, दैट यू जस्ट हैव टू ओनली अंडरस्टैंड योर इमोशंस simply, like it's nothing. The word looks like tricky, emotional intelligence, but it's just understanding your emotion, and you then have to manage them and respond to the other with awareness and empathy. It's so simple, like you know, emotional intelligence. Jaise ki hum example denge isme, like take an example of a traffic light. How would stop, like it is a stop. So when we feel something, we need to stop. We need to observe our emotions. We need to understand what is happening inside our body, how we are feeling. Then we need to pause and then manage them and then respond, not react. Simple, you know, emotional intelligence. Okay. So this is something like a heartbeat, just because, you know, it's like a heartbeat, your heartbeat. हम इसको कभी नोटिस नहीं करते, बट वी आर ऑलवेज फीलिंग इमोशंस अराउंड अस, इनसाइड अस, बट इट अफेक्ट्स एवरीथिंग वी डू। हर चीज को हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अफेक्ट करती है, बट वी डोंट पे अटेंशन टू इट, बिकॉज वी हैव नॉट बीन, यू नो, वी आर नॉट टॉट अबाउट एनीथिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशंस इंपॉर्टेंट। अब जहां बात अब स्टूडेंट्स की करती है, तो दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, यू नो, विद द स्टूडेंट्स। सो व्हाट डू यू से, लाइक सी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, दैट अलाउज द स्टूडेंट्स टू लेबल देयर स्ट्रेस, सिंपल थिंग, व्हेन दे आर लाइक बीइंग पैरालाइज्ड, इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरालाइज्ड बाय इट, कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इफ दे नो हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस, दे कैन टेल दैट आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग एंग्शियस। तो फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक आई एम फीलिंग, ओके, आई एम फीलिंग, अ स्टूडेंट विद EI, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, वुड से आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय दिस स्पेसिफिक वर्कलोड, I'm feeling overwhelmed by this subject, this task, something like this. So instead of blaming and feeling like, oh, I'm nothing, self-doubt and all that, a child, a student who does not have emotional intelligence will always feel like I'm not worthy and I feel the self-doubt. Lekin jisme emotional intelligence hogi, he will be able to, you know, give the name to those feelings that I'm being feeling overwhelmed by this specific task or the work, right? So jahan pe hum shift karte emotion,

0: observations go to observation. You know, when we shift to observation, we observe our emotion, we prevent burnout, we prevent stress, and that keeps our brain, you know, in a solve. Let's solve this problem then in a free state. Oh, what happened to you? What will I do now? For example, you understand? मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील एंग्शियस बिफोर माय मैथ टेस्ट. ओके, सो इफ आई जस्ट, ओ माय गॉड, मुझे यार मैं क्या करूं, मुझे नहीं आता है, क्या कर पाऊंगी मैं, क्वेश्चन नहीं आएगा, लाइक सी, बिकॉज आई डिडंट हैव एन इमोशनल इंटेलिजेंस, आई वाज नॉट ट्रेन्ड विद इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस उस टाइम होती तो मैं बोलती कि ये चीज मुझे टफ लग रहा है. ठीक है, आई फील दिस टफ, आई फील एंग्शियस. मैं ये नहीं बोलती कि मैं फेल हो जाऊंगी या मुझे कुछ नहीं आएगा. You understand? Mm. So it's simple. When you shift from emotion to observation, so obviously we don't feel. We shift from problem solving to free state. तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स का काम करती हूँ, मैं आपको एग्जांपल दूंगी. आई कॉल इट, मैं ऑलवेज आई टीच देम इमोशनल इंटेलिजेंस ड्यूरिंग माय सेशंस. आई ऑलवेज टेल देम इट्स लाइक अ फ्रोजन जीनियस. यू नो, अ चाइल्ड इज अ जीनियस बट ही डज नॉट नो हाउ टू मैनेज हिज इमोशंस एंड गिव द वोकैबुलरी. सो वी ऑल कॉल हिम लाइक अ फ्रोजन जीनियस हु नोज द मटीरियल, यू नो, हु नोज द मटीरियल बट ही कैन नॉट एक्सेस इट बिकॉज देयर नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज इन द फाइट और फ्लाइट मोड. So yeah. That is where we have to, as educators, we have to teach them to label the emotion. That is, if you can name it, you can tame it. अगर आपको पता है कि आप क्या feel कर रहे हो, आप उसको manage कर सकते हो. तो वो feel करना, that is called the, you know, emotional intelligence. And then children can navigate from stress, from free state to solving problem. It, you know, the emotional intelligence. It's Nazir, what is this stress? And it's just an energy. Hmm. You know, it's just an energy. It's energy without a name. इसको हम कहेंगे ना एनर्जी विदाउट अ नेम. अगर हमें पता है कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, वी विल नॉट यूज दिस वर्ड ऑलवेज. विल से वी आर ओवरवेल्ड, यू नो, वी आर, आई एम एंग्शियस, आई एम ओवरवेल्ड, बट वी डोंट हैव द वोकैबुलरी, सो वी यूजुअली से स्ट्रेस, बट इट्स नॉट एक्चुअली दैट थिंग. तो मैं कोई एग्जांपल दूंगी. जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट थी, आई वोंट नेम हर, बट यू नो, हु वुड फिजिकली शेक लाइक बिफोर a class, before a particular, jaise maine aapko apni example di, mera math was, so main anxious ho jati thi, she used to shake before a class. So uski parents, they brought her to me, and she was saying like she's bad at the subject, she's bad at this, she won't be able to do it. Same, like, you know, it's very common with the student, self doubt. So what we did is that we shifted her focus to EQ, emotional intelligence. So what we taught her, that instead of saying I can't do this, let's say my heart is racing because I care about doing well. You know, like this. So by labeling jo uska physical sensation tha, by labeling that physical sensation, she took the power away from the panic. So wo panic se nikal ke, she didn't just pass, no, she mastered her nervous system. Nervous system, that is real intelligence, more than what we say, this intelligence, what we use academics, we need to focus on the emotional intelligence, you know, so to master our nervous system. So it was easy for her to understand, just to shift the focus from the freeze mode to the solve state. That will help the students to manage their stress, you know, during the exam.
1: That's such a powerful point, a very important point, in fact. You know, one needs to really recognize the emotions before they, as you mentioned, overwhelm. Very nice.
0: Yeah.
1: Okay, Alia, tell me, in what ways can, you know, emotional intelligence improve students' relationships with the peers and teachers?
0: देखिए, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जो बोलते हैं ना क्लास रूम्स, आई ऑलवेज से क्लास रूम्स आर नॉट बिल्ट ऑन जस्ट करिकुलम, दे आर बिल्ट ऑन कनेक्शन. हर किसी चीज में, हर किसी रिश्ते में, एवरी रिलेशन नीड्स अ कनेक्शन. वी डोंट नीड अ सिस्टम इन एवरीथिंग. वी नीड समटाइम्स कनेक्शन टू मेक दैट सिस्टम वर्क ईजी, राइट, टू मेक दिस सिस्टम मेक ईजियर फॉर अस. सो वी विल, देखिए, जब स्टूडेंट को ईक्यू डेवलप होता है, they stop seeing teacher as an obstacle. I'll tell you frankly, this is the reality. जब एक बच्चे को emotional intelligence का उनका वो teacher को उस नजर से नहीं देखते कि like she is like a threat, you know, always like अगर हम देखें कि बच्चा हमेशा teacher से, in traditional time, most of the time we used to say students are very afraid of teacher.
1: Yeah, yeah.
0: Like हमेशा से बहुत डर होते थे. Because what was the problem? The problem was they lack the emotional intelligence. अगर वो उनमें EQ होगा, they stop seeing teachers as obstacles, believe me, and they will start seeing them as mentors. just because of this emotional intelligence. For example, एक student है जैसे she was constantly getting stressed with a strict teacher. ये is very common. It happened with everybody else. हमारे बचपन में भी हम लोग के साथ भी या ऐसा होता था कि वो teacher strict लगता था school में and we used to feel very anxious या constant clashes हो जाते थे. तो what happens कि teachers sometimes they start blaming that child or judging or labeling that child as a rebellious or like he's being rude or he's being... So if a teacher has emotional intelligence, she has compassion, she puts herself in a student's shoes, she will understand that he is not a rebellious or anything. It's just he's misreading his teacher's high expectation as a personal dislike. आप समझ रहे हो मेरी बात को? सिंपल चीज, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझ रही हूँ. तो एक स्टूडेंट के अंदर भी एक ये चीज कि टू पुट योरसेल्फ इन अनदर पर्सन शूज एंड टीचर में भी अगर ये चीज होगा, दोनों में ऐसा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम व्हेयर दे आर इन द सेम क्लासरूम वर्किंग टू ग्रो to help each other, because it's not a one ki hum students ko khali sikha rahe, with students we are teachers are also learning in every step. So agar dono mein emotional intelligence hogi, compassion hoga, empathy hogi, understand hoga emotions ka, aur regulation hoga, sabse badi cheez regulation ki teacher ko agar gussa aa raha hai, she's pause kar rahi hai gussa express karne se pehle, she's trying to regulate herself. This will definitely improve the relationship with her student. She will not, if the teacher is not regulated, if the teacher is dysregulated, how can she teach anything to a student? क्योंकि उसके सामने role modeling ही है, इसलिए नहीं कि teacher खुद गुस्से में हो रहा है, वो अपने गुस्से को control नहीं कर रहा. आप समझ रहे हो मेरी बात?
2: बिल्कुल.
0: तो it's simple. A regulated teacher, a regulated teacher is role modeling to the student the relationship. What kind of relationship a teacher and a student have? तो एक teacher का regulated होना classroom में बहुत important है. वो उसकी वजह से स्टूडेंट भी रेगुलेट होगा, स्टूडेंट को भी सम, ही विल आल्सो नो स्टॉप सीइंग एज अ टीचर एज ऑब्स्टिकल एज आई सेड, बिकॉज़ ही विल सी हाउ शी इज रिस्पोंडिंग टू अस, नॉट रिएक्टिंग.
2: Right, very
0: so that
2: nice.
0: Is the most important thing.
2: Very
0: so you
2: nice
0: don't teach we don't teach respect. We don't teach respect. We model it, right? Yeah. We have to model. So हम बच्चों से इज्जत ऐसी कि हमारे बच्चा इज्जत करे क्लास में, वो तो तब करेगा जब हम वो मॉडल करेंगे, हम उनको सिखाएंगे कि रिस्पेक्ट मॉडल करेंगे, राइट? एक बच्चे की मैं आपको एग्जांपल दूंगी. ही ऑलवेज यूज्ड टू स्क्रीम एट अ टीचर. ओके, तो टीचर ने क्या किया, व्हाट द टीचर डिड, इंस्टेड ऑफ अ टाइम आउट जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं टाइम आउट, उसमें शी यूज्ड ईक्यू एंड व्हाट शी सेड टू हर चाइल्ड द स्टूडेंट that I can see what is happening to you. She observed the child, okay? Ki is bacche ko kya ho raha hai, agar he scream kare, what is happening to his physical body? His fists are tight, theek hai? Iska laal chehra ho raha hai, his fists are tight, he is getting feeling like, he's unhurt. Isko koi samajh nahi raha hai, theek hai? To jab teacher aise bacche ko bolegi, beta, I can feel your emotion, you're getting angry, I can see your body is getting hot, come have a glass of water. सिंपल एग्जाम आपको बता रही हूँ. तो ऑब्वियसली बच्चा देख रहा है कि टीचर इज हेल्पिंग मी टू रेगुलेट द टीचर, स्टूडेंट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड,
2: बिकॉज़
0: दैट इज, दिस इज व्हाट वी हैव टू मॉडल. So this is a secret I would always say to the teacher when we give to the sessions training about emotional intelligence. I always say regulation is the secret to peer and teacher relationship.
2: True.
0: जहाँ पे बच्चा एक human behavior देखता है teacher का, कि एक human है before a teacher, before a mentor. He sees a human, that she's feeling my emotion, she's understanding what I'm going through right now.
2: Excellent. Excellent, Alia. I really love the way highlighted the understanding, the respect, and as you mentioned that when students they feel heard and understood, it truly transforms the classrooms
0: into
2: respect, and the classroom also becomes a safe and supportive space for them where they feel connected, as you mentioned.
0: Connected.
2: There should be a connection.
0: And that's what again will come to the same thing. Classrooms are built not on curriculum. It's on
2: connection. On connection.
0: Everything is built on connection.
2: Beautiful.
0: चाहे ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे घर का हो, हर चीज कनेक्शन पे डेवलप होती है. कनेक्शन तब बनता है जब हम एक दूसरे के जज्बात अंडरस्टैंड करते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशन एंड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज वेयर वी बिल्ड कनेक्शन देन बॉन्ड.
2: Fantastic, Alia. बहुत ही अच्छा. अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन इसको हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन एंड हाउ वुड यू बिलीव दैट ये स्किल जो है वो पर्सनल और एकेडमिक ग्रोथ के लिए स्टूडेंट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
0: बहुत, इट्स लाइक एन इंटरनल GPS. I always say self-awareness is internal GPS. You cannot यू कैन नॉट फिक्स नाजिया व्हाट यू कैन नॉट सी. जो आप नहीं देखेंगे अंदर से, आप सेल्फ अवेयर नहीं हो ना, आप कभी उसको फिक्स नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट लीड अदर्स अंटिल यू कैन लीड योरसेल्फ. That is such an important thing, self-awareness. So, you understand, self-awareness is not just for students' internal mirror. It's for everybody. We all need to be self-aware. It's like our internal mirror to understand ourselves, you know, to see ourselves, what is happening inside us. So, if you don't know who you are, who actually you are inside, the world will tell you who to be. You're getting me? आपको दुनिया बताएगी आपको कैसा बनना पड़ेगा. तो आपको ये खुद नहीं पता होगा अपनी जगह कि आप है कौन, आपकी क्या है. आप देखिए इसमें, आप ये देखिए, आप थिंक ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली क्लास में डिस्टर्ब करता है. कितने सारे स्टूडेंट ऐसे, एटलीस्ट क्लास में एक स्टूडेंट ऐसे हो जो क्लास में डिस्टर्ब करते हैं. I was among them, one of them.
2: Oh, you really don't sound that way.
0: No, I was very hyperactive. So often, you know, they don't realize. Teachers जो होती है, they don't realize that they are bored. Look, that every child is different. Every child is different. Every child is unique. We cannot put them like at same level. ठीक है, तो जो बच्चा कोई hyperactive हमारे class में होगा, he will be always in that disrupting mood because he's bored. उसका attention span कम होगा, तो he will be, और उसको अगर teacher उसके style में नहीं teach कर रही है class में, obviously he will get bored. You know, because every child learns in a different way, in a different style.
2: Right.
0: So he will get bored or he will feel lonely in the classroom. So there comes the self-awareness. So self-awareness is that, oh, you know, when you realize I'm acting out because I need help in this chapter with my teacher, I'm not getting it. You know, it जहाँ पे वो समझे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ बच्चे को नहीं पता होगा, he will disrupt the classroom. So यहाँ self, उसको समझ, बच्चे को जब self-awareness होगा, emotional intelligence होगी, he will understand that what is happening actually. I'm not able to understand what teacher is saying. She's not teaching it in my way. So जब वो ये नहीं बोल रहा, वो समझ रहा है, और उसके बाद वो नहीं बोल पा रहा है, obviously it becomes a trouble in the classroom, right? It becomes a trouble in the classroom, and teacher may be emotional intelligence lack kar rahi hai, she's also not able to understand what is actually happening beneath that boredom and the disruption, you know, that wo bhi wo nahi samajh rahi hai. So obviously it becomes a trouble in the classroom. So if child is self-aware, if child knows why I am bored, and teacher also knows, you know, what is happening, she's also showing emotional empathy, so if he can become like a troublemaker, can turn into a self-educate.
2: Yeah.
0: Understanding, you know, about what is happening inside him. So that is it. And they, बच्चे भी अक्सर भी होते हैं कि बच्चे ना, they are very afraid to admit. हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग कोई अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कोई कॉन्सेप्ट. अगर बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस हो, वहाँ पे he has the courage to say, ma'am, I'm stuck here, please help me. And a teacher who has empathy, she will not judge him. She will not label him. क्यों नहीं समझ आया? She will say, okay, you didn't understand. Let's find it another way to understand this concept.
2: Right.
0: This is emotional intelligence of a teacher and the self-awareness of a student when he understands what is happening, why I'm bored or lonely. ठीक है ना? तो this is a foundation of personal growth. ये हम सब के लिए. So it moves us from being like mostly अगर हम students की बात करें, from being a passive recipient of page. You know, to an active driver of their own evolution. If we say, so they become the, that is very important. So self-awareness is not only important for students, everybody, and it's about emotional intelligence, what is happening inside us. For that, I would always say, before school, before teacher, it's the role of the parents to, you know, help children to give that emotional vocabulary. Jab wo apne usi stage mein bacche ko pehle aap vocabulary de. First thing that what they need to, what I taught to my daughter was no. You know, no is important. No, kahan pe stop. So that is something very important which parents need. They need to teach no and yes.
2: Yeah.
0: That is content. So emotional, and that is the parent's job before the school, you know. So
2: that really stands out.
0: Truly, a mother is the first educator of a child.
2: Yeah, of course. Very nice, Alia. Very impressive.
3: Students ke liye aaj ke daur ka sabse bada challenge hai ki kaun sa rasta chune. Naye career options ki wajah se students confused hain. Doctor, engineer ya AI expert, karna kya hai? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे.
2: अच्छा हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू हैंडल द फेलियर्स एंड द सेटबैक इसे किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है।
0: सी देखिए स्टूडेंट कि जिसकी EI लो EI होगा, ठीक है, लो बैड ग्रेड, इट बिकम्स हिज आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, जिसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, उसका ग्रेड खराब आ गया क्लास में, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन जो स्टूडेंट हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है, ही नोज दैट दिस इज नॉट अ डेटा, बैड ग्रेड इज नॉट अ डेटा फॉर मी, ओके, ये अभी नाउ वी कैन डिफरेंशिएट हियर। बच्चे जिसमें बिल्कुल नहीं होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके लिए वो मतलब ही विल बी थिंकिंग लाइक हाँ हाँ जी, आई डोंट हैव अ वर्थ, आई एम नॉट वर्थी, दिस वाज यू नो नथिंग, आई डिड रॉन्ग, ही विल बी सेल्फ ब्लेमिंग हिमसेल्फ। लेकिन जिस बच्चे में अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, इट डजंट मैटर फॉर हिम, उस बच्चे के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बिकम्स इट प्रोवाइड्स द रेजिलियंस, आप समझ रहे हैं, इट प्रोवाइड्स द रेजिलियंस टू दैट डीकपल सेल्फ वर्थ फ्रॉम परफॉर्मेंस, आप समझो सेल्फ वर्थ और परफॉर्मेंस में आपस में कोई लिंक है नहीं, ठीक है, सेल्फ इट डज नॉट हैव अ लिंक, सो दिस अलाउ देम टू बाउंस बैक फास्टर एंड विदाउट द शेम कि मैंने मेरे ग्रेड कम आ गए, आप समझ रहे हैं,
2: बिल्कुल
0: सिंपल सिंपल सिंपल। तो आप बच्चे में है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको कोई बात नहीं है, मैंने इसमें अच्छे मार्क्स मेरे आज नहीं आ गए, नो प्रॉब्लम, आई वर्क हार्ड, आई डू नेक्स्ट। लेकिन उसी दूसरी तरह से दूसरा बच्चा जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस लैक होगा, he will get anxious, he will not sleep in the night, he will be overthinking, he will get stressed. So this happens, you know, when we have less EI or child with high EI. So ab yahan pe hum log kya kar sakte hain na, we need to stop protecting students from failure and we have to give them, equip them with the emotional intelligence. That is the only thing. Otherwise, our children will, like right now, just say mental health, we are the adults, jo hamari condition hai, depressions, this will happen in the children also, you know, at a very faster rate.
2: That is the reason,
0: that's why we have to equip them very early, from very early with the emotional intelligence skills. Kyunki yehi emotional intelligence allow karti hai humko, you know, bounce back hone mein, when we get failure, jab hum failure fail ho jate hain crisis mein, it helps us to get back, resilience jisko hum kehte hain na, that is this. So they will say like this didn't work for me, an emotionally intelligent child will say this didn't work for me, but I'm not a failure, right?
2: Bilkul, true, yeah. True.
0: Yes, but a child who has less emotional intelligence, they will see I'm failure, he will just, you know, identity crisis, I use the word identity crisis, becomes identity crisis. और हमें याद रखना है, वी हैव टू रिमेम्बर दैट अ डी लाइक ग्रेड डी और सी ऑन अ पेपर इज अ मेजरमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, आप लोगों ने जो काम किया या आपको उसका ग्रेडिंग दिया जा रहा है, ठीक है, स्कूल में, बट इट्स नॉट द मेजरमेंट ऑफ योर वर्क, राइट, इट्स नॉट द मेजरमेंट ऑफ योर वर्क, आपने आपको स्कूल में काम दिया था, आपने ये किस तरह से आपने काम किया, उन्होंने आपको उसका मार्क दे दिया, ये ए बी और सी, बट इट इज नॉट मीन यू आर नॉट वर्दी, इट्स नॉट द मेजरमेंट ऑफ योर वर्क, ये हमें बहुत ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू मेक देम दिस अंडरस्टैंड, क्योंकि यही बच्चों के लिए इशू बन जाता है, दे गेट इन डिप्रेशन, stress and anxiety because they feel like we are worthless because we got the D grade on the paper, you know, this is very important, so
2: very powerful and very nice,
0: and this is the job of parents and teachers, you know, to make them understand
2: that failures are feedback, not rather than defeat.
0: So jab aap bachche ko report card dete hain ya parents ko, don't give them the body language, the show them the body language that we are disappointed. Okay, this is what you have done, this is the, but it's not the measurement of your worth, you have more than this, right?
2: Yes.
0: Har bacche mein to sare bacche to nahi hote hamare jo grade A plus le aaye, kuch bachcho to they are so good in sports, they are so good in extracurricular activities. Let's enhance that, let's not wo na limit na kare grade ko ek bacche ke worth ke sath, that's very important,
2: very important, very nice. Ali, tell me, why do you believe that emotional regulation is as important as intellectual ability in student success?
0: It is important to see failure jo na, it's just a data, it's not hum kahenge na wo, it's not a master class in resilience, ye bas ek data hota hai, main aapko kal ek example bataungi, so easy. जैसे कि हम लोग बच्चे में जैसे हम सेशन देते हैं बच्चों को, तो वी व्हाट वी डू इज जस्ट we teach them that a fail is just a first attempt in learning. Mm-hmm. You know, when you fail, okay? Mm-hmm. मैं आपको बताऊंगी, एक आई रिमेम्बर अ चाइल्ड हू साइंस प्रोजेक्ट इट डिडंट वेंट वेल, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग हिम क्राई, हम लोगों ने क्या किया, वी डिड एन इमोशनल लाइक कहते ना कि उसके we did an emotional inquiry with him, theek hai, okay. session diya, okay. we asked okay. him like what did we feel, humne kya learn kiya isme, what is the next, aap samajh rahe ho, bacche ka na bachcha andar se kya feel kar raha hai is failure ke baad, what did he feeling inside, so he expressed his feelings, he told everything, to theek hai, after this ab jab student ka iska high ye ho gaya intelligence, theek hai na, so it became like you know it was very easy for him to bounce back and just by talking to him about this about his emotion, what he felt through this failure in his project, so they bounce back faster kyunki unko pata chalta hai ki nahi hamari self worth jo hai na is not tied to the perfect score, jo hume perfect score mila.
2: I think ke acche se aapne samjha bhi diya, वैसे तो मैंने यही वाली बात पूछी थी किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है एंड वाइज इमोशनल रेगुलेशन एज इम्पॉर्टेंट एज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन स्टूडेंट सक्सेस एंड इट रियली मैटर्स किस तरह से वो अपने फेलियर्स और सेटबैक्स को भी हैंडल करते हैं जो से पहले भी हम बात कर रहे थे.
0: बिल्कुल, जो EQ है ना, इट्स एक्चुअली अ पॉज बटन, यू नो, पॉज बटन फ्रॉम अ ट्रिगर, बिटवीन अ ट्रिगर एंड अ ट्रेजेडी. अगर हमने इसको पॉज कर लिया, कब मतलब इधर, इफ वी डोंट हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, वी कैन टर्न एनी सिचुएशन इनटू बैड सिचुएशन, ट्रेजेडी, लाइक यू नो, इफ वी हैव एन EQ, वी कैन टर्न इट इनटू, वी कैन, इफ यू मैनेज इट, वी कैन, यू नो, मैनेज अ सिचुएशन विद दिस जस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस.
2: But मुझे लगता है आलिया, it requires lot of strength and you know practice or some kind of environment or kind of a support, क्योंकि एकदम से turn कर लेना failures को एक feedback में, it's not that quite easy. कुछ बुरा होता है तो लगता तो है ही, चाहे वो student है, चाहे हम बड़े हैं, कोई भी है.
0: बिल्कुल, इसलिए तो हमें मतलब why we need parents and नई generation को educate करना is very easy. No, it's easy to educate them. If they have regulated parents around, if they have the regulated students and the environment, it's not easy, but we have to try. We will also fail in this, but it's our responsibility as humans and the people who are learning, relearning and unlearning, healing, we have to create that environment for ourselves also and for our students. Uske liye sabse pehle hame khud parents ko, educators ko na, khud ki emotional vocabulary deni hai, jo ki hamare paas hai nahi hai, jo hame sikhai nahi gayi hai. When our emotions were suppressed, right? It was suppressed during our childhood, we're not allowed to express our emotion. So that becomes a childhood trauma, okay? So when we become parents, these children, they trigger our childhood traumas. But if we take them instead of trigger as a mirror, we can work on our traumas and relearn and unlearn and heal ourselves and learn and grow with our children. आप समझ रहे हो, एक पेरेंट को, अगर पेरेंट अपने आप में एक जर्नलिंग का हैबिट डेवलप करे, दैट इज कॉल्ड ब्रेन डंप, ठीक है, वॉट एवर ही इज फीलिंग इनसाइड, जो भी कंफ्यूजन है, ही स्टार्ट्स राइटिंग एंड ही रोल मॉडल्स इट टू अ चाइल्ड. His child is seeing what my mom is managing or how my dad is managing this situation, how they are doing this. Obviously, he will also develop this habit. क्योंकि बच्चे तो सब देख के ही सीखते हैं ना, more than के करके. So इसमें थोड़ी सी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी parents को. But it will not be always perfect. But at least we have to try, right? We're not trying it.
2: Yeah. Achha, Alia, as you mentioned about journaling, it reminds me, are there any more tips like or practices that students can adopt in order to become emotionally intelligent?
0: जी, obviously journaling सबसे पहली चीज है emotional vocabulary, ठीक है, कि बच्चा हम अगर हम beginning से start करें, a child who is in his toddler stage, if we give him the vocabulary about the feeling sad, happy, you know, tired, this is in the beginning, ठीक है, and then when the child is that he becomes a student in the school, we have need to talk to the child, okay, we need to talk to the child. I will give you one tip, it's the tip for the moms who have tweens, like the before the teenage, the children group from like 7 to 10, like 8, like let's take 8 to 11. Let's have, if moms will start a journal called Mom and Daughter or a Mom and Son Journal, okay, where they talk to each other बिकॉज सम ऑलवेज इट्स नॉट लाइक कि बच्चे माँ बाप से कुछ चीजें हमेशा फेस टू फेस नहीं शेयर कर पाते, ठीक है. इफ दे हैव अनदर कम्युनिकेशन लाइक अ जर्नल वेयर दे टॉक अबाउट द फीलिंग्स. Okay, I have suggested this to a lot of parents and it has worked like magic, you know, because some children, they are really very, they don't express, they are fine. If you look at them, they are always busy, they are always fine, but inside they are not

0: बात करें कि हम ऐसा हो रहा है ऐसा कर रहे हैं एंड दे गिव देम आंसर बैक इन द सेम डायरी ओके सो इट बिकम्स अ कम्युनिकेशन या ब्रिज दिस इज दिस हैज वर्क वंडरफुली लाइक दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस
1: So for really the student, nice. Quite practical also.
0: Yeah, mostly for the students who go to school, they can write. They don't talk about everything with their parents, the working parents. But at least they have a time that every weekend they go through the diary and they check that what they have written to each other. Let me check. Is there something they want to talk to me? We didn't get time to talk in weekdays. So वहाँ पे वो लोग बात करें एक दूसरे के साथ. So that it becomes very very distressing. I have seen.
1: Yes, very nice, very powerful, and practical. Tip. Thank you so much, Arya, for this.
0: And now the gratitude bhi hai, gratitude journal, jahan students jo gratitude kar sakte hai, they can write brain dump, confusion. If they feel confusion, they can do brain dump. They can have a brain dump journal. They can have an affirmation journal. Sorry. So, like, it's journaling is the best way, the one of the best ways to de-stress for the students mostly and for the adults, everybody.
1: Very good. Very nice. Thank you, Arya, for this. Please do tell me, how does, you know, developing empathy through emotional intelligence reduce bullying and promote inclusion in schools?
0: Yeah, that is true. Bullying usually happens also because when there is a lack of connection. It happens. When there is no empathy, there is no connection, the bullying will happen there. In my experience as an educator, I have seen that children often seek power because they feel powerless elsewhere. आपको समझ आ रहा है उनको वो कहीं और पावरलेस फील करते हैं दे वांट टू गो देयर जहां पे उनको लगता है कि हमें यहाँ पे पावर मिलेगा पावर बुली ठीक है यहाँ पे अगर बच्चे में एम्पैथी हो इफ अ चाइल्ड इज हैविंग एन एम्पैथी इट फ्लिप्स दैट स्क्रिप्ट एंटायरली बिलीव मी सिर्फ एक एम्पैथी कि हाउ डज इफ आई पुट माई सेल्फ इन अदर पर्सन शू हाउ डज इट फील यू नो फील एक बच्चे में अगर एम्पैथी डेवलप की हो माँ बाप ने कंपैशन डेवलप किया हो पेरेंट्स ने दैट चाइल्ड विल दैट विल फ्लिप द स्क्रिप्ट ठीक है क्योंकि व्हेन वी डेवलप अ स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस वी आर गिविंग देम द ग्लासेस कि ये जो बेटा आपके पास एक ग्लास है टू सी द वर्ल्ड थ्रू समवन एल्सेस आई राइट सो दिस जो ये दिस मेक्स द जो एक कूल फैक्टर ऑफ बीइंग अ बुली है ना दैट डिसअपीयर इफ दे हैव द एम्पैथी किसी को कूल नहीं लगेगा किसी को बुली करना बिकॉज द पेन दे वुड कॉज टू अदर पर्सन that becomes visible through that glass.
1: Yeah.
0: Are you getting me?
1: Yeah.
0: It's simple. For example, एक बच्चा हो ठीक है एक बच्चा he's sitting on alone at a lunch canteen में वो अकेले बैठा हो just a student without EQ he will ignore him ठीक है he will ignore him or he will follow the crowd like in making a joke about him or कुछ भी ऐसे इस तरीके से जिसके पास emotional intelligence नहीं लेकिन वहीं पे अगर एक empathetic student होगा he will stop and think give I remember how like I felt when I was new when it was my first school day when I had no one to talk.
1: Yeah.
0: Right. So that memory jo uski khud ki wo memory hoti hai na that triggers a compassionate action. So wo chal ke they go he go and he sits with him. This is not because the teacher told them to do. Kisi teacher ne to nahi bol diya aisa karne ke liye. It's because they felt a connection because that memory got triggered. Jo unke saath hua tha on their first day of the school. तो अगर हम ये चीज बच्चे में डेवलप करेंगे ना द कंपैशन एंड एम्पैथी इन ब्लीमी नाजिया इंक्लूजन स्टॉप्स बीइंग अ स्कूल पॉलिसी यू नो इट एंड स्टार्ट्स बीइंग अ स्टूडेंट लेड कल्चर वेयर एवरीवन फील्स दे ट्रूली बिलोंग बिकॉज स्कूल के साथ साथ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली द पेरेंट्स टू टीच देयर चिल्ड्रन सेल्फ कंपैशन एम्पैथी एक्सेप्टेंस जब हम अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे ऑब्वियसली स्कूल में अगर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होगा टीचर सिखा रहे बच्चे भी घर से ये सीख के आ रहे हैं सो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ कनेक्शन एंड बुलिंग विल डिसअपीयर इट विल नॉट बी अ कूल थिंग इट विल नॉट स्टे अ कूल थिंग इन द स्कूल सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट इज रेज द एम्पैथी सो बुलिंग को अगर आप स्टॉप करने यू हैव टू रेज एम्पैथेटिक चिल्ड्रन यू हैव टू रेज कंपैशनेट चिल्ड्रन टू स्टॉप दिस बुलिंग इन द स्कूल्स और एनीवेयर एंड देन इंक्लूजन बिकम्स इजियर क्योंकि टीचर भी आपको गलत नहीं बोलेगा करने के लिए किसी को बुली इन स्कूल आई हैव सीन देयर आर एंटी बुलिंग कैंपेन आल्सो इट हैपेंस इन द स्कूल यू नो सो इट दे विल ऑलवेज एजुकेट नॉट टू बुली इट्स नॉट अलाउड इन द बुली लेकिन बच्चा अगर खुद एम्पैथेटिक नहीं होगा तो it will not stop you know so empathy to wo ghar se hi aati hai that happens comes from the home the compassion and the empathy so this is what is important to stop the bullying empathy and compassion
1: very nice excellent now coming to

0: Towards the last question, Alia, how can schools integrate emotional intelligence education to better prepare students for future options?
1: In my work with Family Bond, I always say it was my guiding principle, like a dysregulated brain cannot learn. And मैंने आपको बिगनिंग में भी यही बात बताई कि एक जो डिसरेगुलेटेड ब्रेन होगा बच्चे का क्लास में, दैट ही विल नॉट लर्न. ओके, एंड वी कैन नॉट सेपरेट अ स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर इमोशनल स्टेट. ओके, सो ईक्यू इज द ब्रिज, ठीक है, दैट कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, चाहे सोशली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे एकेडमिकली हो. इट्स सपोर्टेड बाय यू नो एवरी होलिस्टिक वेलबींग मॉडल एजुकेशन साइकोलॉजी में. देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल सिंपल बताऊंगी. सिंपल एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट एक इमोशनली रेगुलेटेड हो, ठीक है, व्हेन ही इज इमोशनली रेगुलेटेड, जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट्स फुली ऑनलाइन. So it's fully online, you know. But if they are stressed or they are lonely, they're in fight or flight mode. ठीक है ना? जो ऐसे हो. तो learning जो है, that becomes physically impossible. Simple मैंने आपको बता दिया. बच्चा जब तक regulated नहीं होगा, उसका prefrontal cortex जो है ना, thinking part नहीं, वो that will not be able offline. That will be offline. अगर हम ऐसे word करें ना, वो offline. So जब offline होगा, वो stressed होगा, lonely होगा, वो fight and flight mode में होगा. They will not be able to learn. But if thinking part of the brain is active, okay, it's regulated. They are not in that flight and fight and flight mode. They are learning easily. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए a regulated brain cannot learn. A dysregulated brain cannot learn. Only a regulated brain can learn. तो इस चीज को हमें देखने के लिए, बच्चा regulated है, we have to develop the socially. No, they have. So हमें environment देखना है कैसा है, teachers को role modeling करना है, and घर का माहौल कैसा है, घर में क्या हो रहा है, ठीक है? If they are regulated, they will learn academically well. Socially, they will have less but better friendships. You know, and mentally, they will have the tools to handle the anxiety that ever happens around them. ठीक है, and academically they can focus. If EQ is a foundation of house, I always say this. If EQ is a foundation of the house, the academics are the furniture.
0: Oh, wow.
1: समझ गया? If the furniture.
0: Fantastic.
1: अगर foundation ही shaky होना है, foundation is shaky, तो पूरा घर हमारा जो है ना, it doesn't matter. How many trophies or A star घर के अंदर हो बच्चे का. That will eventually crack, Nazia. That will eventually crack. True. So we have to build the foundation. And foundation only happens with emotional intelligence, by allowing children to understand what happens inside them, how to manage it. ठीक है? Resilience and raise regulated children. It will not happen always. हम तो dysregulated होंगे. लेकिन जब अगर हम school में हैं, we have to create an environment where a child feels regulated. ठीक है? So that they can have better friendships. They can have tools, anxiety mein wahi kahungi, and they can do well academically. Only sub, everything begins with the EQ. Everything begins with the EQ. I told you, it's a heartbeat. Jo hume kabhi hum, it's always inside us.
0: Yeah, I can say that's truly the foundation of lasting success and well-being. That's
1: exactly. We have heart inside, right?
0: Yeah.
1: लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं, हम very less कि कभी हम बैठे और अपनी heart beat को observe करें, right? This is actually emotional intelligence. This is what it is. अपने emotions को हमको बैठ के ना, हमको observe करने हैं, and then we have to, it will help us to manage them, and you know, not react but respond, and it will help us to be regulated. And it's not a one day work. It's a everyday
0: it's
1: work.
0: It's a journey. It will take. Yeah,
1: so
0: it's an everyday.
1: We don't have to put pressure. Yes. Yeah, we have to put pressure on ourselves. It's a journey. It's a journey that starts from home, then school, then उसके बाद बच्चे आगे जाए, then they will good and bad times in life. How they will bounce back in bad times. How they will how they will respond in the good times.
0: बहुत ही अमेजिंग आलिया, आई जस्ट कांट थैंक यू इनफ. कितने अच्छे से आज के इस टॉपिक को आपने जो है वो एड्रेस किया, और एग्जांपल्स के साथ हमारी ऑडियंस तक बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स पहुंचाए. थैंक यू वंस अगेन कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ी. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच.
0: टेक केयर. Well, दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन इजाजत लेने से पहले मैं कहूंगी कि आज की जो कन्वर्सेशन है वो हमें याद दिलाती है कि करियर जो है वो

0: सक्सेस सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स का नाम नहीं है बल्कि ये हमारे वैल्यूज का नाम है, रिलेशनशिप्स का नाम है और उन सपोर्ट सिस्टम का नाम है जिससे हमारी जिंदगी शेप होती है और बढ़ती है और निखरती है। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हमें लाइफ में इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चों को रेज करना है बीइंग अ पेरेंट, और ये शुरुआत होती है घर से, जैसे हमारी गेस्ट ने कहा। तो बिल्कुल इस तरह का माहौल बनाइए कि जहाँ बच्चे की बात सुनी जाए, समझी जाए, उसे अहमियत दी जाए और फिर वो बच्चा सारे वैल्यूज को आसानी से ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट भी करता है। वेल, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। इस वादे के साथ के नए एपिसोड में नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
1: Well, क्या आपने सोचा है कभी कि छोटी छोटी जो डेली हैबिट होती है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने में मदद करती है. हेल्थ कोई बहुत बड़ा रिजोल्यूशन नहीं होता है कि चलो नया साल स्टार्ट हो चुका है, इस साल से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा. जिस मोमेंट भी आपको लगता है कि नाउ इज द हाई टाइम, आपको तुरंत अपनी हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट करना होगा. एंड ये सब चीजें छोटी छोटी डेली हैबिट से बनती है. जैसे कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं? ओके, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 4 से 6 लीटर पिए, पर मैं हमेशा ये जरूर कहूंगी कि जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है. जब जब आपका शरीर पानी मांगता है आपको तब तब पानी पीना चाहिए. और उसका भी एक तरीका होता है, पानी को एक

0: बल्कि सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीना है। और बस इस साल आपको यही सारे छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेने हैं कि सबसे पहली चीज आपको पानी ढेर सारा पीना है क्योंकि इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ये मैंने खुद के लाइफ में भी नोटिस किया है। सेकेंडली, कभी भी अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, माइग्रेन हो रहा है या लाइफ में और कोई भी टेंशन है, तो बस ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीदिंग आपको अच्छे से करनी है। वो जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग था, आपने सुना ही होगा, सांस लो, सांस लेना मत छोड़ो। So, अपनी ब्रेथ को काउंट कीजिए कि क्या आप सही में प्रॉपरली सांस ले रहे हैं। इस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या मेरी आवाज कहीं भी सुन रहे हैं तो एक बार जोर से सांस ले, ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट, यू विल फील बेटर। आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना होगा। आप लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कितना भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। दिन भर में 18 घंटों का काम करके हम अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि बाकी के बचे हुए 6 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमें आराम करना चाहिए। तभी नए सेल्स बनेंगे, तभी दिमाग अच्छे से चलेगा। और अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है इज बिकॉज आपकी स्लीप साइकिल पुअर है। मेक श्योर करें कि आप एक स्ट्रेच में एटलीस्ट 6 घंटा सो पाए, एंड ये टाइम भी मैनेजेबल हो सकता है इफ यू रियली वॉन्ट टू डू इट। अगर किसी की नाइट ड्यूटी है तो वो डे टाइम पे ये आवर्स कम्प्लीट करे, अगर कोई डे टाइम पे अपनी ड्यूटी करता है तो वो अपने नाइट आवर्स कम्प्लीट करे। एंड जितने भी न्यू मॉम्स है, आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम्स, बट अगर आपके साथ आपके घर वाले रहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल होता है वो आपकी बॉडी को रेस्ट करने दे, सो दैट जब भी आप अपने बेबी को दोबारा उठाए उसी एनर्जी उसी चार्म के साथ उठाए विद ऑल द हैप्पीनेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर कीजिए कि आप रोज 10 मिनट का वॉक कर रहे हैं फॉर डाइजेशन। इससे सिर्फ आपका खाना ही नहीं पचेगा बल्कि आपका मूड और फोकस दोनों इम्प्रूव होगा।
1: FM 107 Dil Se Desi
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर, विद RJ सर्वर।
1: मेहतराज ऐप पर लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म की एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट या रिन्यू करने का तरीका क्या है, आइए जानते हैं। वजारत दाखला ने मेहतराज ऐप पर एक नई सहूलत मुतारफ कराई है, जिसके जरिए लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म की एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट या रिन्यू की जा सकती है। ये सर्विस जनरल सर्विस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है और चंद आसान कदम में मुकम्मल हो जाती है। स्टेप बाई स्टेप तरीका कुछ इस तरह है। सबसे पहले मेहतराज ऐप ओपन करें और अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाएं। मेन मेन्यू से जनरल सर्विस पर क्लिक करें। जनरल सर्विस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद अपडेट या रिन्यू एस्टेब्लिशमेंट सर्विस चूज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद कैटेगरी में से लाइफ स्टॉक कैंप या फॉर्म सिलेक्ट करें। जरूरी मालूमात एंटर करें, डिटेल्स को अच्छी तरह चेक करें और कंफर्म करें। तमाम डेटा कंफर्म करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अप्रूवल का इंतजार करें। अप्रूवल के बाद रिक्वायर्ड फीस पे करें। अप्रूवल और पेमेंट मुकम्मल होने पर अपडेटेड या रिन्यूड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐप के मेहतराज ई वैलेट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, आसान और तेज है। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती और वहीं सर्टिफिकेट सीधा ई वॉलेट में मिल जाता है। ये सर्विस MOI की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज को और बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कानून पर अमल करना जरूरी है। वजारत दाखला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग शौक से करने वालों को हिदायत दी है कि हिफाजती कानून पर सख्ती से अमल करें, ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी महफूज बनाई जा सके। डाइविंग शुरू करने से पहले तस्दीक शुदा ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी है, जो किसी ऑफिशियल और मकबूल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समुंदर और मौसम की सूरत हाल भी चेक करना चाहिए, ताकि नामुनासिब हालात में डाइविंग से परहेज किया जा सके। वजारत ने वाज़े तौर पर कहा है कि अकेले डाइव ना की जाए और ना ही खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग की जाए जो तवज्जो को या होश पर असर डालती हो। समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच करना लाजमी है, ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया VOI लगाएं, ताकि कश्तियां और लोग मुतनब्बे रहें। डाइविंग के दौरान गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हदूद से दूर रहना जरूरी है। और खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। हिफाजती कानून पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी से उठाएं। वजारत दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी की जानिब से शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने मिली पोल टेक एक्स 2026 एग्जीबिशन और समिट की हिफाजती तकरीब में शिरकत की। ये इवेंट मरीना बे सैंड्स एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर सिंगापुर में मुनक्किद हुआ।

जिसमें पब्लिक सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स के शोबों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स की जानिब से वसी बैन अल-अक़वामी शिरकत देखने को मिली। एग्जीबिशन के दौरान मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड सेशंस और पैनल डिस्कशंस का एहतमाम किया गया, जिनमें सिक्योरिटी सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत बनाने और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के हवाले से तबसरे और मशावरत शामिल हैं। दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने जमहूरिया सिंगापुर के मुस्लिम अफेयर्स के एक्टिंग मिनिस्टर इंचार्ज और होम अफेयर्स के सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोहम्मद फैसल इब्राहिम से मिलीपोल टेक एक्स्ट 2026 एग्जीबिशन और समिट की इफ्तिताह के मौके पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के शोबों में मौजूदा ताबुन का जायजा लिया और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की। इसके साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने GCC सिक्योरिटी मीडिया कमेटी की 21वीं मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मीटिंग में वजारत दाखिला के वफ्त की कयादत, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मुफ्ताह ने की। इजलास के दौरान एजेंडा के मुख्तलिफ नुकात पर बहस की गई और जरूरी रिकमेंडेशंस को मंजूरी दी गई। दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के दोस्त मुल्क के दौरे के दौरान पुलिस ऑपरेशंस कमांडर सेंटर और सिंगापुर नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का दौरा किया। ये दौरा मिलीपोल टेक एक्स 2026 एग्जीबिशन और समिट में शिरकत के हवाले से उनके सिंगापुर के दौरे के मौके पर हुआ। दौरे के दौरान पुलिस ऑपरेशन कमांडर सेंटर के जिम्मेदारान ने उन्हें मरकज के काम करने के तरीके, रिपोर्ट्स और रिसीव और प्रोसेस करने, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करने और मुख्तलिफ सिक्योरिटी यूनिट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन के निजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्हें बताया गया कि ये मरकज शहरी अमन व अमान बरकरार रखने और फौजी और सिविल सिक्योरिटी इदारों के दरमियान राब्ते में किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ उन्होंने सिंगापुर नेवी के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के ऑपरेशनल सिस्टम का भी जायजा लिया। IFC को समंदरी मालूमात को शेयर और एनालाइज करने का एक एडवांस्ड प्लेटफॉर्म करार दिया जाता है, जो मैरीटाइम रूट्स की हिफाजत, ट्रांजेक्शनल क्राइम्स से मुकाबला और समंदरी सलामती को बेहतर बनाने के लिए रीजनल और बैन अल-अक़वामी सतह पर कोशिशों को सपोर्ट करता है। इस मौके पर शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मैदानों में सिंगापुर की तरक्की याफ्ता महारत को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि दोनों जानिब सिक्योरिटी सिस्टम्स को मजीद तरक्की देने के लिए ताउन को मजबूत बनाना और तजुर्बात का तबादला बेहद जरूरी है। पुलिस एकेडमी, जो सिक्योरिटी रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर के जरिए नुमाइंदगी कर रही है, इसने सिविल डिफेंस काउंसिल के तावुन से एक साइंटिफिक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसका उन्वान इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल और इंटीग्रेटेड नेशनल सिस्टम की जानिब रखा गया। इस सेमिनार में वजारत दाखिला के लीगल एडवाइजर और पुलिस एकेडमी के जनरल सुपरवाइजर मेजर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अलमाल और पुलिस सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल और सिविल डिफेंस काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन मेजर जनरल मोहम्मद जासिम अल सुलैती ने शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स और अफसरान भी इस सेमिनार का हिस्सा बने। सेमिनार का बुनियादी मकसद कौमी तजुर्बात का जायजा लेना

0: बेहतरीन रिवायात का तबादला और अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजीद बेहतर बनाना था ताकि इदारों के दरमियान बेहतर हम आहंगी कायम और मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी का दर्जा बुलंद किया जा सके। सेमिनार के दौरान दो बुनियादी मौजूद पर खासकर तवज्जो दी गई। पहला मौजू इदारती चैलेंजेस, रिस्क रजिस्टर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग पर मरकूज था, जबकि दूसरे मौजू में नेशनल रिस्पांस मैकेनिज्म, बिजनेस कंटिन्यूटी और सपोर्टिंग पॉलिसीज का तफसीली जायजा लिया गया। इस साइंटिफिक सेमिनार को इमरजेंसी, क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से कौमी सतह पर मनसूबा बंदी को मजबूत करने और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी निजाम को फरोग देने की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया। वजारत दाखिला ने अवाम से अपील की है कि रियासत कतर की समंदरी हदूद में अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज या अनजानी डेबरीज नजर आए जो इंटरसेप्ट की गई मिसाइल से या ड्रोन से मुतालिक होने का शक हो तो फौरन इत्तला दी जाए। वजारत ने वादे किया है कि ऐसी चीजें खतरनाक हो सकती हैं जो अवाम की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं, इसलिए अवाम को सख्ती से हिदायत दी जाती है कि ना तो इन चीजों के करीब जाएं और ना ही उन्हें छूने की कोशिश करें, बल्कि सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुतालिक इदारों को ही इस किस्म के अशिया से निपटने का काम करने दिया जाए। वजारत दाखिला ने मजीद कहा है कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में फौरन इमरजेंसी नंबर 999 पर राब्ता किया जाए ताकि मुतालिक अथॉरिटीज मंजूर शुदा सेफ्टी प्रोसीजर्स के मुताबिक जरूरी इकदामात कर सकें और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अपनी और दूसरों की सलामती के लिए इन हिदायत पर अमल करें, नामालूम चीजों से दूर रहें और सिर्फ ऑफिशियल इदारों को इत्तला दें। जेट स्की से महफूज रहते हुए लुत्फानंदोज होना है तो चंद बुनियादी हिफाजती हिदायत पर अमल बहुत जरूरी है। पानी पर जाने से पहले हमेशा मौसम का हाल जरूर चेक करें। अगर तेज हवाएं चल रही हों या लहरें ज्यादा बुलंद हों तो बेहतर है कि पानी में जाने का इरादा पोस्टपोन कर दें। इसके साथ साथ जेट स्की का मुकम्मल जायजा लें, इंजन ठीक तरह काम कर रहा हो और फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ हो, इस बात को यकीनी बनाएं। जब आप पानी में उतरें तो लाइफ जैकेट पहनना कभी ना भूलें और किल स्विच लैनयार्ड को ठीक तरह से बंद करके ही सवारी शुरू करें। हमेशा मुकर्रर करदा राइडिंग एरियाज के अंदर ही जेट स्की चलाएं और स्विमिंग जोन्स, आउटर बीच एरियाज और पानी के किनारे बने घरों से मुनासिब फासला रखें। सेफ स्पीड में सवारी करें, दूसरों से दूरी बरकरार रखें और किसी किस्म के खतरनाक स्टंट्स या लापरवाही से परहेज करें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी इमरजेंसी का सामना हो तो फौरन 999 पर कॉल करें। याद रखें, असल हिफाजत आपकी अपनी जिम्मेदारी से शुरू होती है। इन हिदायत पर अमल करके आप ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बना सकते हैं और जेट स्की का तजुर्बा खुशगवार बन सकता है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। आज के सेगमेंट में बात करने वाली हूं मैं वैलिडेशन की। भाई वैलिडेशन होता क्या है और ये इतना क्यों जरूरी है? देखिए इंसान जो है उसे सिर्फ रोटी कपड़ा या मकान सिर्फ यही नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए चाहिए फॉर श्योर चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर मैं कहूँ तो नहीं। इंसान को जज्बात एहसास गहरी सोच और समझ के लिए भी जाना जाता है। जब कोई हमारी बात सुनकर ये महसूस करवाए हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो, इसको कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन एक कुव्वत है, एक ऐसी कुव्वत जो दिल को सुकून देती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। वैलिडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे से एग्री कर रहे हैं या उसकी गलती को सही कह रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उसके जज्बात को तस्लीम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो वो महसूस कर रही है या कर रहा है वो रियल है और काबिले एहतराम है। देखिए वैलिडेशन असल में है क्या, लोग समझ ही नहीं पाते। वैलिडेशन का सिंपल मतलब है किसी के जज्बात सोच या एक्सपीरियंस को मानना और एक्सेप्ट करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे मैं बहुत परेशान हूं, उसे ये कहना कि तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो वैलिडेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं समझ सकता हूं तुम क्यों परेशान हो, ये वैलिडेशन है। साइकोलॉजी के मुताबिक वैलिडेशन का मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट करें कि दूसरे शख्स के जज्बात उसके सिचुएशन के मुताबिक समझने लायक हैं, चाहे हम उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें। देखिए वैलिडेशन और एग्रीमेंट में फर्क होता है, कई बार लोग उसे एक समझ लेते हैं। बहुत से लोग वैलिडेशन को एग्रीमेंट समझते हैं, इसीलिए वो घबरा जाते हैं कि कहीं सामने वाला गलत चीज पर खुद को सही ना समझ ले। नहीं, ऐसा नहीं है। वैलिडेशन का मतलब गलती को सही कहना नहीं होता। आप किसी से ये कह सकते हैं मैं देख सकता हूँ कि ये बात तुम्हें बहुत हर्ट कर रही है। इस जुमले में आप ये नहीं कह रहे कि सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली गलत या सही है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जेन्युइनली समझता हूँ। अब कहते हैं ना वैलिडेशन बहुत जरूरी हो गया है। देखिए वैलिडेशन जो है वो इंसान की बुनियादी इमोशनल जरूरत है। जब किसी को वैलिडेट किया जाता है तो उसे लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसके जज्बात अहमियत रखते हैं, उस दुनिया में अकेला नहीं है। यहाँ पर एक रिसर्च का हवाला भी मैं आप लोग को देना चाहूंगी। एक रिसर्च कहती है कि जब लोग वैलिडेट होते हैं तो उनकी इमोशनल इंटेंसिटी कम हो जाती है, गुस्सा ठंडा होता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसके बरक्स जब वैलिडेशन ना मिले और बार बार कहा जाए कि तुम्हें ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारी तो आदत हो गई है, तो इंसान और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है और रिश्ता खराब होने लगता है। देखिए रिश्तों में वैलिडेशन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग असर दिखता है। हर रिश्ता चाहे वो पेरेंट्स का हो, दोस्तों का हो, शादी का हो, वाइफ का हो, वैलिडेशन से ही ग्रो करता है। जब हम बिना जज किए किसी को सुनते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, दूसरा शख्स खुद को सेफ महसूस करता है और शायद खुलकर बात करता है। थेरेपीज जैसे कि DBT, ये है डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी। इसमें वैलिडेशन को एक बेसिक टूल के तौर पर यूज किया जाता है क्योंकि ये इमोशनल हीलिंग में मदद करती है। अब सोचिए कितनी कमाल की चीज है ये। सोचिए एक बच्चा रोता है और कहता है मुझे डर लग रहा है, अगर हम कहें इसमें डरने वाली क्या बात है भाई, तो हम उसके एहसास को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों डर रहे हो, तो बच्चा खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करता है। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। जब कोई अपना दुख शेयर करता है और सामने वाला सिर्फ सुन लेता है, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता, तो वही वैलिडेशन उस दुख का बोझ हल्का कर देती है। खुद को वैलिडेट करना, सेल्फ वैलिडेशन बड़ा जरूरी है। सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी वैलिडेट करना आना चाहिए। जब हम खुद से कहते हैं मैं जो महसूस कर रही हूँ वो गलत नहीं है, तो हम इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, सेल्फ वैलिडेशन इंसान को गिल्ट और शर्म से निकाल कर ग्रोथ की तरफ लाता है। इसीलिए जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, वैलिडेशन एक छोटी सी बात लगती जरूर है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये जज्बात को ठंडक देती है, दिल को सुकून देती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। वैलिडेशन का मतलब ये नहीं कि हम हर बात से एग्री करें, इत्तेफाक रखें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम इंसान को समझने की कोशिश तो करें। जब दुनिया में हर इंसान थोड़ा सा भी वैलिडेशन देना और लेना सीख ले, तो गलतफहमियां कम हो जाती हैं और हम ज्यादा बेहतर इंसान और बेहतर सोसाइटी बनाते हैं। चलिए आज इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपको छोड़ रही हूँ कि क्या आप वाकई वैलिडेशन खुद को दे पाते हैं? सोचिएगा, और अगर आपको जवाब समझ में आ जाता है हाँ में है तो बहुत अच्छी बात है, और ना में है तो एटलीस्ट कोशिश जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस सेगमेंट को वापस से सुनिएगा और मुझे बताइएगा क्या कुछ फर्क पड़ा। फिलहाल के लिए नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: ऑफिस में बैठे हुए थोड़ा सा कॉफी ब्रेक लिया, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच ही रहे हैं, तभी आपको एक कॉल आती है।
4: सर गारंटीड रिटर्न्स, 30 दिन में पैसा डबल, जीरो रिस्क।
3: और आप पूरी स्कीम समझ के इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, पहले थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट और फिर एक लंबा साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, यह है फ्रॉड अवेयरनेस और मेरा नाम है वेद। इस किस्म के फ्रॉड को कहते हैं फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम। शुरू में छोटा प्रॉफिट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बाद में बड़ा पैसा और एग्जिट। क्रिप्टो स्टॉक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप्स, सबका मिसयूज। तो थोड़े ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद जैसे ही आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही ये कंपनियां, ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। तो अपने आप को ऐसे फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचाएं। तो कैसे पहचानेंगे ऐसे स्कैम्स को? जब बहुत ही ज्यादा गारंटीड रिटर्न की बात हो, कोई अगर सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आपको देता है उससे दूर रहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को ही ट्रस्ट कीजिए। तो अगर कोई बोलता है जल्दी इन्वेस्ट करो और मौका जीतो, ये कार जीतने का मौका जीतो, पैसे डबल करने का, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। कहते हैं ना, मार्केट में रिस्क होता है लेकिन गारंटीड रिस्क सिर्फ स्कैम में होता है।
2: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी.
1: Midnight Melodies, only on FM 107. Dil Se Desi.

ये हमारी कार फरमाई है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए सितारों से आरास्ता किया और हर शैतान मर्दूद से उनको महफूज कर दिया। कोई शैतान उनमें राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि कुछ सुनगुन ले ले, और जब वो सुनगुन लेने की कोशिश करता है तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता है। हमने जमीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर नौ की नबातात ठीक ठीक नपी तुली मकदार के साथ उगाई और उसमें मईशत के असबाब फराहम किए, तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूकात के लिए भी जिनके राजिक तुम नहीं हो। कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास न हो, और जिस चीज को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मकदार में नाजिल करते हैं। बारावर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और इस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो। जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है, और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सब को इकट्ठा करेगा, वो हकीम भी है और आलीम भी।

हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिनों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहां से क्योंकि तू मर्दूद है और अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सबको बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस न चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करें और उन सब के लिए जहन्नुम की